जिन लोगों को हमेशा से थकान, कमजोरी एंड डिहाइड्रेशन होता रहता है, उसके लिए पानी पीना अति आवश्यक हो जाता है। कई बार आप लोगों ने सुना होगा कि जरा सा कुछ हैवी खा लिया, जरा सा कुछ ऑयली खा लिया तो पेट खराब हो जाता है। ये अधिकतर उन लोगों को होता है जो गर्मियों में पानी कम और खाना ज्यादा खाते हैं। पाचन तंत्र को हमेशा से बेहतर बनाने के लिए भी पानी का सेवन हमें जरूर करना चाहिए। जिन लोगों को लगता है हमारी स्किन हमेशा से जवा रहे, हम 45, 46, 47 की एज में भी 25 की लगे, तो उन महिलाओं को भी पानी की मात्रा को अपने जीवन में बढ़ा देना चाहिए, जिससे हमारी स्किन में निखार और ताजगी हमेशा बनाए रखता है। मांसपेशियों और जोड़ों के सही कार्य में ये सहायक होता है। अब आते हैं योग के दौरान शरीर में ऊर्जा बनाने रखने के लिए भी पानी का महत्व। योग को करते करते यदि हमें प्यास लग जा रही है, योगा को करते करते अगर हमें बीच में पानी की प्यास लग जा रही है, तो थोड़ा सा विश्राम करके हम पानी ले सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण की बात यह है कि योग के साथ साथ पानी को भी हमें अपने जीवन में शामिल करना चाहिए। योग करने से लगभग 20 से 30 मिनट पहले थोड़ा सा पानी पी सकते हैं एंड योग के तुरंत बीच में पानी बिल्कुल न पिए, थोड़ा सा बचे। योग समाप्त करने के बाद धीरे धीरे पानी पिए। बहुत ठंडा पानी तुरंत पीने के बजाय सामान्य तापमान का पानी बेहतर रहता है। गर्मियों में हमें अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए एक छोटे से योगासन है, जिसको करने से साथ ही साथ हमें पानी को पीने से बहुत सारे फायदे होते हैं। सबसे पहले सूर्य नमस्कार। पूरे शरीर का व्यायाम एक सूर्य नमस्कार के माध्यम से हो जाता है, शरीर में ऊर्जा और लचीलापन बढ़ाता है। दूसरा आता है ताड़ासन। शरीर का संतुलन सुधारता है और रीढ़ की हड्डी को मजबूत बनाता है। फिर उसके बाद आता है भुजंगासन, पाचन तंत्र को बेहतर बनाने में सहायक होता है। और उसके बाद आता है वज्रासन, भोजन करने के बाद किया जाने वाला सबसे आसान यह आसन होता है, जो पाचन में मदद करता है। उसके बाद आता है अनुलोम विलोम प्राणायाम, जिसे हमने आपको कई बार बता के रखा है कि मन को शांत करता है, श्वसन तंत्र को मजबूत बनाने में मदद करता है। शीतली प्राणायाम, जो बिल्कुल भी, ये मैं आपको बता दूं कि इतना ज्यादा आवश्यक होता है गर्मियों में, जिसको करने से गर्मी में शरीर को ठंडक और मानसिक शांति देने वाला यह प्राणायाम माना जाता है। सुबह उठकर सामान्यता से पानी पिएं, फिर हल्का योग और प्राणायाम करें, ये एक स्वस्थ दिनचर्या होती है। दिन भर थोड़ी थोड़ी मात्रा में पानी लेते रहें और अपने शरीर के संकेतों को नजरअंदाज ना करें, प्यास, थकान, कमजोरी। यदि आपको याद न रहे तो थोड़ा सा अपने लिए सचेत हो जाएं, यानी कि टाइमर का इस्तेमाल कर सकते हैं। पानी शरीर की जरूरत है और योग शरीर व मन का संतुलन, दोनों का साथ गर्मियों में हमें स्वस्थ, ऊर्जावान और प्रसन्न बनाए रखता है। ऐसे ही बहुत सारी जानकारियों के लिए हम फिर से मिलेंगे एक नए योग सीरीज में। तब तक के लिए करें योग, रहें निरोग। सुप्रभात दोस्तों, मैं समता योग की पाठशाला में आप सभी का तहे दिल से स्वागत अभिनंदन करती हूं। जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता है कि जो गर्मी का समय है, तापमान है, ये भीषण गर्मी आ चुकी है और इसमें जो भी लोग नित नियम योगा करते हैं उनके लिए थोड़े से प्रिकॉशन करना जरूरी है, क्योंकि जब हम योगा करते हैं तो हमारी बॉडी ऑलरेडी फिर से हीट होने लगती है, जिसके कारण से कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। इसीलिए गर्मी में किए जाने वाले योग भी कुछ अलग हैं और उनसे कुछ सावधानियां भी, तो आइए जानते हैं। सबसे पहले है सुबह जल्दी उठ करके ही योग कर लेना चाहिए, जैसे सुबह 5 बजे से 7 बजे के बीच योग करना सबसे अच्छा समय माना गया है। इस समय मौसम ठंडा होता है और हमारा शरीर भी फ्रेश रहता है। शरीर को हाइड्रेट रखें, योग से पहले और बाद में पर्याप्त पानी पिएं। नींबू पानी, नारियल पानी या छाछ भी फायदेमंद होता है, लेकिन ध्यान रखें योग करने के तुरंत बाद नहीं, थोड़ा सा समय का अंतराल 20 मिनट 25 मिनट के बाद में आप नींबू पानी, नारियल पानी या छाछ ले सकते हैं। दिन में, सुबह, रात में हल्का ही भोजन करें। योग से पहले

या तला भुना खाना न खाएं, फल सलाद और हल्का भोजन ही लें। कूलिंग योगा करें, जैसा कि बहुत सारी सीरीज में हमने आपको बताया है, शीतली प्राणायाम, शीतकारी प्राणायाम, बालासन, शवासन, ताड़ासन, ये सारे वो प्राणायाम और आसन हैं जो गर्मी में हमारे पूरे शरीर को ठंडक पहुंचा करके फायदा करते हैं। साथ ही साथ कॉटन के हल्के कपड़े और शरीर को ठंडा रखते हैं और पसीना जल्दी सूखता है, इसीलिए गर्मी के दिनों में जब हम योग करते हैं तो ढीले और सूती कपड़े ही पहनने चाहिए। खुली और ठंडी जगह ही चुनें योग करने के लिए। हवादार कमरे या फिर पेड़ पौधों वाली शांत जगह पर ही बैठ करके योग करें। ज्यादा कठिन योगासन से बचें। तेज धूप या बहुत ज्यादा मेहनत वाले आसन गर्मी में थकान चक्कर ला सकते हैं, जैसे सूर्य नमस्कार, चंद्र नमस्कार, ये थोड़े से हैवी आसन होते हैं। अगर आप स्वस्थ हैं और पूर्ण रूप से इसे कर रहे हैं और इसको करने के बाद में कोई भारीपन या चक्कर नहीं आ रहा है, तो ही आप नियमित रूप से इसको अपनी दिनचर्या में ला सकते हैं, वरना आप इसे अवॉइड भी कर सकते हैं। योग के बाद तुरंत तेज धूप में न जाएं, कुछ देर आराम करें ताकि शरीर का तापमान सामान्य हो जाए। गर्मी में कुछ ऐसे प्राणायाम हैं जो और फायदेमंद होते हैं, जैसे अनुलोम विलोम, भ्रामरी, शीतली, जो मन को शांत करने के साथ साथ शरीर को भी ठंडा रखने में मदद करते हैं। गर्मी में योग करें शांत मन, ठंडे वातावरण में, जिससे शरीर और मन दोनों स्वस्थ रहते हैं। योग से पहले चेहरा हाथ पैर को धो लेना चाहिए, जिससे शरीर को ठंडक मिलती है और आराम जल्दी मिलता है और साथ ही साथ आलस भी कम होता है। ज्यादा देर खाली पेट ना रहें, पूरी तरह भूखे रहकर योग करने में कमजोरी महसूस हो सकती है। जरूरत हो तो आप सुबह एक केला या कुछ भीगे बादाम खा सकते हैं। नींद पूरी लें, कम नींद होने पर भी गर्मी में जल्दी थकान और चिड़चिड़ापन होता है। बहुत सबसे महत्वपूर्ण बात, योग करने से पहले मेडिटेशन जरूर करें। ध्यान 5 से 10 मिनट ध्यान करने से मन शांत रहता है और स्ट्रेस कम होता है। सांसों पर ध्यान धीरे धीरे लगाएं, जैसे धीरे धीरे और गहरी सांस लेने से शरीर में ठंडक और ऊर्जा बनी रहती है। योग के तुरंत बाद ठंडा पानी बिल्कुल ना पिए, सामान्य या हल्का ठंडा पानी शरीर के लिए बेहतर होता है। योग के बाद थोड़ा वॉक करना जरूरी होता है। यदि आप घर से बाहर नहीं जा सकते हैं तो अपने ही घर में छत पर या आगे कहीं पे भी आप अपने घर के आसपास थोड़ा सा वॉक कर सकते हैं, जिससे आपकी हल्की वॉक शरीर को रिलैक्स करती है और फ्रेशनेस भी देती है। गर्मी में ये चीजें आप ज्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं, खीरा, तरबूज, पुदीना, दही और नारियल पानी। तरबूज के लिए मैं आपको एक बात बता दूं कि आप मार्केट से लेकर के आ रहे हैं तो तुरंत ही तरबूज को काट करके ना खाएं। उसे कुछ देर के लिए ठंडे पानी में या फिर किसी पानी, नॉर्मल पानी में भी आप रख सकते हैं और उसके बाद ही आप उसका सेवन करें। ज्यादा चाय, कॉफी, जंक फूड, धूप में तुरंत एक्सरसाइज, बहुत टाइट कपड़े, इन सब चीजों से गर्मी में आप बच सकते हैं। 5 मिनट के लिए आप जो आपका समर योगा रूटीन होगा वो होने वाला है 5 मिनट डीप ब्रीथिंग, 10 मिनट हल्के आसन, 5 मिनट प्राणायाम, 5 मिनट मेडिटेशन और अंत में शवासन। योग केवल शरीर को नहीं मन को भी ठंडक देता है, इसीलिए आज की इस दिनचर्या को हम पूरी गर्मी भर अपना करके अपने आप को स्वस्थ कर सकते हैं। तो दोस्तों, फिर मिलेंगे एक नई जानकारी, एक नई सीरीज के साथ। तब तक के लिए करें योग, रहें निरोग। सुप्रभात दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, जब हम कोई भी स्थिति में होते हैं, जब हम परेशान होते हैं, जब हम बहुत मायूस होते हैं, तो हम हमेशा से अपने अंतर्मुखी बातों को सोचने और समझने की कोशिश करते हैं। तो आइए हम सभी मिलकर के आज ध्यान करने जा रहे हैं। ध्यान उस प्रभु का, अपनी अंतर आत्मा को जानने के लिए हमें अपने अंतर्मुख में जानना जरूरी होता है। तो आइए हम सब मिलकर करते हैं ध्यान। सुप्रभात दोस्तों, योगशाला में आप सभी का स्वागत करते हैं। योग
जो मस्तिष्क को लेकर के हमारे पूरे शरीर की देखभाल करता है। योग का अर्थ यही होता है कि शरीर को मस्तिष्क से जोड़ना, और उसके लिए जरूरी है हम अपने मस्तिष्क को सर्वप्रथम एकाग्र रख सके। और मस्तिष्क को एकाग्र रखने के लिए ध्यान योग बहुत जरूरी है। तो आइए योग की शुरुआत एक उच्चारण से करते हैं।

स्वास्थ्य को बनाने के लिए और अच्छा उत्तम और अपने आप को तंदुरुस्त बनाने के लिए हम रोज सवेरे करते हैं प्राणायाम और आसन। प्राणायाम और आसन नित सवेरे करने से हम स्वस्थ तो रहते हैं, जबकि हमारे मन की सारी क्रियाओं को एक ताकत मिलती है, एक सुकून मिलता है और हमें जीवन को जीने की नई कला मिलती है। तो आइए दोस्तों, हम शुरू करते हैं अपना प्राणायाम। सुप्रभात दोस्तों, मैं समता योग की योग पाठशाला में आप सभी का स्वागत अभिनंदन करती हूँ। दोस्तों, आज हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं वो एक अहम टॉपिक है, या हम ये कह सकते हैं कि आज हर घर में एक दूसरा व्यक्ति इस प्रॉब्लम को जूझ रहा है, इस प्रॉब्लम के साथ में अपने आप को जी रहा है। कई ऐसी बातें हैं जिसे हम अपने किसी खास के साथ ही उसे शेयर कर पाते हैं, या फिर ये भी कह सकते हैं कि जब हम बहुत ज्यादा सोच लेते हैं, यहाँ तक कि ऐसी स्थिति आ जाती है कि अब हमारे पास कोई रास्ता नहीं बचता है। धीरे धीरे अंदर ही अंदर हम घुटते रहते हैं, हमारे जीवन के आगे भी ये लगता है कि अब कुछ नहीं बचा। उसी को कहते हैं हमारी मानसिक स्थिति को संभालना, सोचना और झेलना। हर एक व्यक्ति को लगता है सब कुछ ठीक हो जाएगा, हमारे जैसे होगा, हम जैसा सोचते हैं वैसा होगा, लेकिन कई ऐसी बातें होती हैं जब हमारे हाथ में नहीं होती हैं और मजबूरन हमें सोचना पड़ता है। ज्यादा सोच, टेंशन और इन्हीं सब का कारण बन जाता है मानसिक स्थिति खराब। अब हम यूं कह सकते हैं कि मानसिक स्थिति खराब का होना शायद लोगों का दूसरा सोचना हो जाता है कि ये एक बच्चा या बच्ची या एक लड़का या लड़की पागल होने की स्थिति पर है। जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मानसिक स्थिति खराब होने का सीधा असर पागलपन से नहीं होता है, वो ऐसा एक धीमा जहर है जो आपको धीरे धीरे खत्म कर रहा होता है। आज जो टॉपिक हम लेकर के आए हैं दोस्तों, ये मानसिक स्थिति को किस तरीके से ठीक कर सकते हैं बिना किसी दवाई के और बिना किसी भी एक लंबे इलाज से। अब आप सोचेंगे कि एक सोच को सिर्फ और सिर्फ ऐसे ही बिना दवाइयों के या फिर किसी प्रिकॉशन के कैसे ठीक कर सकते हैं। बिल्कुल, मैं बताऊंगी आपको, क्योंकि कहा जाता है ना कि जब कोई परिस्थिति खुद पर बीतती है तभी हमें उस चीज को ठीक करने का अनुभव ज्यादा होता है, या हम यूं कह लें सीधे शब्दों में कि कहीं ना कहीं उस परिस्थितियों को हमने भी महसूस किया है, हमने भी झेला था। तो आज कहीं जाकर के इन सारे पॉइंट्स को मैं आपके साथ भी शेयर करना चाहती हूँ। सबसे पहली बात यह है कि मानसिक स्थिति को बेहतर करने के लिए हम बहुत सारी चीजों को अवॉइड करते हैं जो हमें रोजमर्रा दिखती और मिलती हैं। छोटी सी कहावत है, या ये हमने कहीं सुना पढ़ा होगा, या आप लोगों ने भी सुना होगा कि हमें कल की चिंता थी लेकिन आज ही मर गए। इसका मतलब क्या हुआ कि हमें जब कल की चिंता है, हमें पता ही नहीं है कि कल होने क्या वाला है, उसकी चिंता अगर हम आज से ही करेंगे तो कल देखा जाएगा, लेकिन आज हमारा जो नुकसान होगा उससे हमारा शरीर, हमारी मनोवृत्ति और हमारा सब कुछ खराब होने लगेगा। इसीलिए कल को कल पर ही छोड़ दें। हमें सबसे पहले अपने वर्तमान को ही सुरक्षित करना है और वर्तमान को सुरक्षित करने के लिए सबसे पहले हमें अपनी मानसिक स्थिति को बेहतर बनाना है। कैसे बेहतर बनाना है, कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो आज आपको बताने जा रही हूँ। सबसे पहला पॉइंट है कि अपनी फीलिंग्स को स्वीकार करना, एक्सेप्ट करना, अपनी भावनाओं को स्वीकार करना। जो महसूस हो रहा है उसे दबाने के बजाय समझने की कोशिश करें। किसी भरोसेमंद व्यक्ति से बात करना ये आपके लिए सबसे अच्छा साबित होता है। इससे आपका मन भी हल्का होता है और कहीं ना कहीं कुछ ऐसे सॉल्यूशंस भी आपको मिल जाते हैं। तो कोई भी अगर आपकी जिंदगी में ऐसा इंसान है जिसे आप अपने मन की, अपने दिल की बात बताना चाहते हैं और लगता है कि वो आपकी बातों को कहीं भी इधर से उधर नहीं करेगा, आपकी फीलिंग्स को समझेगा या समझेगी, तो आप अपनी भावनाओं को उनके साथ साझा करें। दूसरा पॉइंट जो कि सबसे पहला पॉइंट होना चाहिए था, ध्यान और श्वास अभ्यास। रोज 5 से 10 मिनट बैठकर गहरी लंबी सांस लेना, प्रार्थना और ध्यान करना, मन को स्थिर करना सबसे अच्छा ये प्राणायाम माना जाता है, जिससे हमारी मानसिक स्थिति के साथ साथ हमारी शारीरिक स्थिति भी सुधरती है।
थोड़ा समय प्रकृति और शरीर को दें। हल्की वॉक करना, योग, खुली हवा में समय बिताना और अपने मूड को चिल करना। कहते हैं ना कि आजकल सभी लोग बाहर घूमने क्यों जाते हैं? अरे मूड को चिल करने जा रहे हैं। अपने काम से 2 से 3 दिन की छुट्टी लेकर के अपने आप को रिलैक्स मोड में जाना। यानी कि ऐसा नहीं है हम प्रेशर में हैं, हमारी मानसिक स्थिति जितनी भी उलझी हुई है लेकिन हम काम करे जा रहे हैं। ये भी एक बहुत बड़ा कारण होता है धीरे धीरे हमारी मानसिक स्थिति को खराब करने में। फिर आता है अच्छी चीजें पढ़ें और सकारात्मक संगति करें। बिल्कुल दोस्तों, पॉजिटिव सोच वाले लोगों से आपकी दोस्ती होना ये आपकी मानसिक स्थिति को सबसे और जल्दी बेहतर करता है और आपकी बहुत सारी चीजों को जो कि खराब हो चुकी हैं उन्हें ये हील करने में सबसे ज्यादा मदद करता है। अच्छे विचार, आध्यात्मिक ज्ञान और प्रेरणादायक बातें आपको और आपके मन को मजबूत बना देती हैं। फिफ्थ पॉइंट बहुत ही इम्पॉर्टेंट है जो कि है नींद और भोजन का ध्यान रखना। कम नींद और अनियमित खानपान का असर हमारे मन स्थिति पर तो पड़ता ही पड़ता है, साथ ही साथ हमारी मानसिक स्थिति भी खराब करता है। एक दिन में 8 घंटे की नींद लेना और पर्याप्त गहरी नींद लेना सबसे अच्छा माना गया है। खानपान की बात करें तो आज की न्यू जनरेशन सिर्फ और सिर्फ बाहर के खाने की ओर ज्यादा भाग रही है, लेकिन अगर हम हल्का और जो जल्दी पचने वाला खाना अगर खाते हैं तो हमारे पेट को भी राहत मिलती है और हमारा मन भी और मूड भी अच्छा होता है। मन की बातों को लिखना, अपनी कोई भी चिंता, भावनाएं और दिन की सबसे अच्छी बातों को एक डायरी में लिखना मन को शांत करने जैसा होता है। साथ ही साथ ये आपको उस ओर लेके जाता है जब आप बहुत ज्यादा गुस्से में हो, कुछ ऐसे चिड़चिड़ेपन हो, आपकी जो भी फीलिंग्स हो आप एक डायरी में उसे उतार देते हैं तो मन हल्का हो जाता है। फिर आता है पॉइंट कृतज्ञता का अभ्यास करें। रोज ऐसी 3 चीजों को याद करें जिसके लिए आप आभारी हैं। सबसे पहले आपका स्वास्थ्य, उसके बाद ईश्वर। सबसे पहले हम ईश्वर को भी धन्यवाद कर सकते हैं और उसके बाद हम अपने स्वास्थ्य के लिए हम अपने ईश्वर को भी आभार व्यक्त कर सकते हैं और उसके बाद हम अपने माता पिता के लिए भी ये आभार व्यक्त कर सकते हैं कि जिन्होंने हमें ये सुंदर जीवन दिया और हमें ये सुंदर जीवन देखने का अनुभव प्राप्त कराया। तो ये थे कुछ ऐसे पॉइंट्स जिसको हम अपने जीवन में उतार सकते हैं और अपनी मानसिक स्थिति को ठीक कर सकते हैं। दोस्तों, अब हम जो बताने जा रहे हैं वो है आपकी मानसिक स्थिति, तनाव और मन को स्थिर रखने के लिए छोटे मोटे ऐसे योग प्राणायाम जिसकी मदद से हम अपने आप को पूर्ण रूप से ठीक कर सकते हैं। सबसे पहले उसमें आता है अनुलोम विलोम प्राणायाम। 5 से 10 मिनट करें, मन को शांत करके और श्वासों को संतुलित करने में मदद करता है। दूसरा है भ्रामरी प्राणायाम। 5 बार से शुरू करने के बाद में इसको हम और भी बढ़ा सकते हैं, मन की बेचैनी, तनाव में राहत महसूस कर सकते हैं। उसके बाद कर सकते हैं बालासन। शरीर और मन को आराम देने वाला ये आसन होता है। फिर हम कर सकते हैं एक छोटा सा रूटीन जिसमें आता है 5 मिनट की गहरी श्वास, 10 मिनट अनुलोम विलोम, 5 मिनट भ्रामरी, 10 मिनट ध्यान और अंत में शवासन। ये सारे प्राणायाम आपकी मन की स्थिति को तो ठीक करते ही करते हैं, साथ ही साथ आपको ये फील कराते हैं कि यस, हम ये काम कर सकते हैं। तो दोस्तों, जिस दिन आप अपने मन से हार जाएंगे यानी कि आप सब कुछ हार जाएंगे, क्योंकि कहा जाता है मन के जीते जीत और मन के हारे हार, इसीलिए मन से कभी भी अपने आप को हारा हुआ महसूस नहीं करना चाहिए। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, हम फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक, एक नई सीरीज के साथ। तब तक के लिए करें योग, रहें निरोग। सुप्रभात दोस्तों, मैं समता योग की योगशाला में आप सभी का स्वागत करती हूँ। दोस्तों, हर बार की तरह योगशाला में भी आज मैं जो आप सभी के लिए लेकर के आई हूँ वो है समय सारणी, मतलब योग की समय सारणी। अब आप सोच रहे होंगे कि योग की समय सारणी क्या होती है। समय सारणी का मतलब होता है कि किस समय कितना और कौन से प्राणायाम को करना है और उसका लाभ भी एक साथ हम आज आपको

फेफड़ों में जब हम श्वास भरेंगे तो उसी गति से हम श्वास को छोड़ेंगे। आइए दोस्तों, अब हम आपको बता दें भस्त्रिका प्राणायाम के लाभ। दमा, अस्थमा व फेफड़ों से संबंधित सभी रोग दूर होते हैं। साथ ही साथ में आज हम आपको सूक्ष्म व्यायाम भी एक बार ये कराते रहेंगे। उसका कारण पता है आपको? एक प्राणायाम के बाद में एक सूक्ष्म व्यायाम करना हमारे शरीर के लिए, हमारी मानसिक स्थिति के लिए बहुत ही ज्यादा आवश्यक होता है। सूक्ष्म व्यायाम, श्वास भरते हुए गर्दन को 5 बार ऊपर नीचे, 5 बार दाएं बाएं, 5 बार क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है। यानी कुल मिलाकर के ये जो सूक्ष्म व्यायाम है, ये हमें सर्वाइकल में बहुत ज्यादा आराम देता है। जिन लोगों को गर्दन में अकड़न रहती है, गर्दन के आसपास एरिया में दर्द रहता है, आप एक जगह काम करते हैं काफी घंटे बैठकर, तो ये देखा गया है कि गर्दन में और पीठ में यानी रीढ़ की हड्डी में अकड़न हो जाती है। जिन लोगों को ये चीजें होती हैं, ये प्रॉब्लम्स होती हैं, वो सूक्ष्म व्यायाम ये वाला कर सकते हैं, जो कि क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज अपनी गर्दन को घुमाना है। दूसरा समय सारणी में आता है कपालभाति, यानी कपालभाति प्राणायाम। समय लगातार 5 मिनट 1 सेकंड में 1 बार। प्रथम चक्र जो है वो हम आगे करते हैं। सुविधा अनुसार आसन में बैठकर पेट को ढीला रखकर पेट को पीठ की तरफ झटका देना व छोड़ना है। नौसिका से श्वास स्वतः बाहर निकलेगी और अंदर जाएगी। मुंह बंद रहेगा। मध्यम शक्ति व मध्यम गति से इस प्राणायाम को करना है। साथ ही साथ में जो इसका एक सूक्ष्म व्यायाम है वो है अपने हाथों पैरों को एक जगह पर रखने से हाथों पैरों में कंपन सी होने लगती है। तो आइए सूक्ष्म व्यायाम में पैरों और हाथों को चलाने का व्यायाम। पैरों को सामने खोलकर व हाथों को पीछे टिकाकर पैरों की उंगलियां चलाना, पंजे चलाना और आगे पीछे दबाना। पैरों को क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज घुमाना व दोनों तलवे मिलाकर बटरफ्लाई की स्थिति में आना और बटरफ्लाई करना। यानी कि जब आप इस आसन को, जब इस प्राणायाम को आप करेंगे तो तितली नुमा एक आकार बन जाता है। कपालभाति प्राणायाम प्रथम चक्र की भांति 5 मिनट ही करना चाहिए। आइए अब चलते हैं कपालभाति के दूसरे चक्र पर, यानी सूक्ष्म व्यायाम का दूसरा चक्र। हाथों को सामने कंधे की सीध में खोलकर मुट्ठी खोलना एवं बंद करना। कभी अंगूठा अंदर करना है तो कभी बाहर। उंगलियां आधी मोड़ना और छोड़ना। पंजों को कलाई से ऊपर नीचे करना। मुट्ठी बंद करके क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज घुमाना। कोहनी को निरंतर मोड़ते रहना है।

नमस्कार श्रोताओं, उगते सूरज की सुनहरी किरण के साथ आपका स्वागत है पहली किरण में। आज का ये विशेष अंक समर्पित है न्याय के देवता, कर्म फलदाता, अनुशासन और सत्य के प्रतीक शनि देव को। कहते हैं सूर्य प्रकाश देते हैं लेकिन शनि दिशा देते हैं, सूर्य जीवन देते हैं लेकिन शनि जीवन जीने का तरीका सिखाते हैं। आज हम जानेंगे कि आखिर शनि देव क्यों डर नहीं बल्कि सुधार का संदेश है, क्यों उनकी दृष्टि इंसान को तोड़ती नहीं बल्कि मजबूत बनाती है। शनि देव दंड नहीं देते, वे केवल हमारे कर्मों का आईना दिखाते हैं। जिस दिन इंसान अपने कर्म सुधार लेता है उस दिन शनि भी कृपा बरसाने लगते हैं। जी हाँ, मैं हूँ आपकी होस्ट एंड दोस्त आरजे आकांक्षा और आपने ट्यून करके रखा हुआ है रेडियो यानस्ली 89.6 एफएम गोंडा शहर की धड़कन और कार्यक्रम चल रहा है पहली किरण। चलिए आज की किरण को और ऊर्जावान बनाएंगे शनि की कृपा के साथ में।

जी हाँ श्रोताओं, आज हम बात कर रहे हैं शनि देव की। शनि यानी वो शक्ति जो कि न्यायप्रिय है, वो शक्ति, वो सत्ता जो कि हमारे कर्मों का फल हमें देती है। फिलहाल कुछ और मैं आपसे कहूँ उससे पहले मैं एक कहानी आपसे साझा करना चाहूँगी। एक बार शनि देव को अपने बल और प्रभाव पर बहुत गर्व हुआ। उन्होंने सोचा कि संसार में कोई भी उनकी दृष्टि से बच नहीं सकता। वे पहुँचे हनुमान जी के पास और बोले, अब आपकी राशि पर मेरी 7.5 साती आने वाली है। हनुमान जी मुस्कुराए और बोले, जो प्रभु राम का नाम लेते हैं उसका क्या बिगड़ेगा। शनि देव नहीं माने। तभी हनुमान जी ने अपनी पूंछ बढ़ानी शुरू कर दी और शनि देव उसमें फंस गए। जैसे जैसे पूंछ लंबी होती गई, शनि को कष्ट होने लगा। आखिरकार उन्होंने क्षमा मांगी और वचन दिया कि जो सच्चे मन से हनुमान जी की भक्ति करेगा उस पर उनकी कठोर दृष्टि थोड़ी सी कम होगी। यानी यहाँ से ये सीख मिलती है कि अहंकार का अंत निश्चित है, भक्ति और अच्छे कर्म सबसे बड़ा कवच है। शनि देव न्यायप्रिय हैं, शत्रु नहीं, और जो भी हम करते हैं वो हमारे कर्म के अनुसार ही हमें प्रदान करते हैं। इसीलिए कहा जाता है इन्हें कर्म फलदाता शनि देव।

दोस्तों, अक्सर लोग कहते हैं कि शनि भारी है, लेकिन सच तो ये है कि जब इंसान गलत रास्ते पर चलने लगे तब शनि उसे रोकते हैं, कभी परिस्थितियों से, कभी संघर्षों से और कभी अकेलेपन से, ताकि इंसान फिर से अपने असली रास्ते पर लौट सके। और अगर जीवन के संदेश की बात करें तो हमारे कर्म के फल के रूप में ही हमें कई सारे संदेश देते हैं शनिदेव। जैसे गरीब और ज़रूरतमंद की सहायता करें ताकि आपके कर्म अच्छे हों और आप अपने जीवन में अच्छे से आगे बढ़ सकें। बुजुर्गों का सम्मान करें ताकि जब वो आपके साथ रहें तो वो एक छांव की तरह आपको उस जीवन के संकट में धूप से बचा सकें जो हर किसी के जीवन में एक ना एक दफ़ा ज़रूर आता है। मेहनत और ईमानदारी को जीवन का हिस्सा बनाएं। किसी का हक ना मारें, क्योंकि ये बहुत ही ज़रूरी पॉइंट होता है हमारी लाइफ में। और कहते हैं ना कि हम किसी से उम्मीद लगा के बैठ जाते हैं, पर जब हमारा उम्मीद टूटता है तो हमें सबसे ज़्यादा चोट होती है। और उम्मीद हम वहीं लगाते हैं जहाँ हम कर्म करते हैं, और कर्म का फल प्राप्त करना हमारा हक हम समझते हैं। और इसी तरह से बस यही इतना कहेंगे कि किसी का हक आप ना मारें और कर्मों को शुद्ध रखें, क्योंकि शनि देव मंदिर से पहले मनुष्य के व्यवहार को देखते हैं। आप मंदिर जाके कितना भी चढ़ावा चढ़ाएं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप कर्म भूमि पे हैं, ये पृथ्वी आपकी कर्म भूमि है और आप कर्म कर रहे हैं, क्योंकि आपने मनुष्य का तन पाया है। तो कर्म आपकी प्राथमिकता होनी चाहिए और आप अपने कर्मों पे फोकस रहिए ताकि आपके कर्म अच्छे हों और आपका जीवन सुगम हो सके।

जी हाँ श्रोताओं, आप शो सुन रहे हैं भूरे भूरे का आध्यात्मिक शो यानी कि पहली किरण। मैं हूँ आपकी होस्ट एंड दोस्त आरजे आकांक्षा, और आज हम बात कर रहे हैं जीवन के उस पक्ष की जो कि हर इंसान की लाइफ का सबसे महत्वपूर्ण अंग है, यानी कि कर्म। कर्म से जुड़े हुए हमारे देवता यानी कि न्याय के देवता, न्याय प्रिय देवता शनि देव की। जिंदगी में जब सब साथ छोड़ दें, जब मेहनत का फल देर से मिले, जब बार बार परीक्षा हो, तो समझिए शायद शनि देव आपको कमजोर नहीं पहाड़ जैसा मजबूत बना रहे हैं। ओम शं शनिश्चराय नमः। इस मंत्र का शांत मन से जाप व्यक्ति को धैर्य, संतुलन और सकारात्मक ऊर्जा देता है। चलिए एक और छोटी सी कहानी आपसे साझा करते हैं। एक किसान रोज अपने खेत में काम करता था। पास में बैठा कौवा उसकी मेहनत को देखता। एक दिन किसान बोला, मेहनत का फल देर से मिलता है। कुछ महीनों बाद वही खेत सोने जैसे फसल से भर गया। शनिदेव भी यही सिखाते हैं, धीरे चलो लेकिन सही चलो, क्योंकि देर से मिला फल अक्सर सबसे मीठा होता है। तो दोस्तों, आज की पहली किरण में इतनी ही बात मैं आपसे कहना चाहूंगी कि शनिदेव डर का नहीं, सत्य और कर्म का नाम है। अगर नीयत साफ हो, कर्म अच्छे हो और दिल में दया हो, तो शनि परीक्षा जरूर लेते हैं लेकिन अंत में सफलता भी वही दिलाते हैं। मैं हूं आपकी होस्ट एंड दोस्त आरजे आकांक्षा। इसी सकारात्मक ऊर्जा के साथ अब मुस्कुराते रहिए और अच्छे कर्म को करते रहिए, क्योंकि हर अंधेरी रात के बाद एक नई पहली किरण जरूर आती है।

0: श्रोताओं, अब आपसे एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल पे चर्चा होगी। सवाल यही है कि शनिदेव न्याय के देवता कैसे बने। एक पौराणिक कथा के अनुसार शनिदेव सूर्य देवता और माता छाया के पुत्र माने जाते हैं। कहते हैं जब शनिदेव माता छाया के गर्भ में थे, तब माता कठोर तपस्या और भगवान शिव की भक्ति में लीन रहती थी। उसी तपस्या और संयम का प्रभाव शनिदेव पर भी पड़ा। जन्म से ही उनका स्वभाव गंभीर, शांत और न्यायप्रिय था। उनकी बचपन की एक घटना की बात करें तो जब शनि देव का जन्म हुआ, उनकी दृष्टि बहुत तेज और प्रभावी थी। कथा के अनुसार जैसे ही उनकी दृष्टि सूर्य देव पर पड़ी, सूर्य का तेज थोड़ा मंद पड़ गया। इससे सूर्य देव को लगा कि ये बालक अत्यंत प्रभावशाली है, लेकिन शनि देव के मन में कभी अहंकार नहीं आया। उन्होंने कठोर तप और ध्यान आदि से सत्य का मार्ग चुना। फिर एक समय शनि देव ने वर्षों तक तपस्या करके भगवान शिव को प्रसन्न किया। भगवान शिव प्रकट हुए और बोले, वत्स, वर मांगो। शनि देव ने धन, शक्ति या स्वर्ग नहीं मांगा। उन्होंने कहा, प्रभु मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि मैं संसार में न्याय स्थापित कर सकूं, हर व्यक्ति को उसके कर्मों के अनुसार फल मिल सके। शनि देव की निष्पक्षता और तपस्या देखकर भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने शनि देव को नौ ग्रहों में विशेष स्थान देते हुए कहा, आज से तुम कर्मफल दाता और न्याय के देवता कहलाओगे। राजा हो या साधारण मनुष्य, सभी को उनके कर्मों के अनुसार फल दोगे। तो इस कथा से ये बस इतनी सी बात सामने आती है कि शनि देव किसी के शत्रु नहीं हैं, वे केवल अच्छे और बुरे कर्मों का परिणाम देते हैं। मेहनत, ईमानदारी और अनुशासन शनि देव को प्रिय हैं। अन्याय, छल और अहंकार करने वालों को वे चेतावनी अवश्य देते हैं, क्योंकि हर किसी को सुधार का एक मौका मिलना ही चाहिए। तो दोस्तों, शनि देव का नाम सुनते ही अक्सर लोग डर जाते हैं, लेकिन सच तो ये है कि वे डराने नहीं, सुधारने आते हैं। जैसे एक शिक्षक गलती पर डांटता है ताकि भविष्य बेहतर बने, वैसे ही शनि देव इंसान को कर्मों का महत्व समझाते हैं। शनि देव की अदालत में ना दौलत चलती है ना ताकत, वहाँ केवल कर्मों का हिसाब होता है।
1: भगवान शनि की सर्व फलदायी स्तुति मनुष्य के जीवन में चमत्कार कर देती है। रवि पुत्र शनि देव जो नील वर्ण वाले हैं, जो छाया और मार्तंड भगवान सूर्य के पुत्र हैं, जो यम के अग्रज हैं, ऐसे भगवान शनि को जो बारंबार नमस्कार करता है, उस पर शनि की असीम कृपा हो जाती है।

सावन महीने के शनिवार को कई स्थानों पर संपत्ति शनिवार यानी कि संपत्ति देने वाला शनिवार कहा जाता है। ये मान्यता विशेष रूप से उत्तर भारत में प्रचलित है। ये नाम दो शब्दों से जुड़ा माना जाता है। पहला संपत यानी संपत्ति, और इसको अगर माना जाए आम बोलचाल की भाषा में तो सुख समृद्धि धन और सौभाग्य। शनिवार यानी कि शनिदेव का दिन, इसलिए माना जाता है कि सावन के शनिवार पर श्रद्धा सेवा और अच्छे कर्म करने से जीवन में सुख समृद्धि और स्थिरता आती है। बस एक बात और भी है कि शनि देव जो हमारे हैं वो हैं शिव जी के बहुत बड़े भक्त, और सावन महीने की बात करें तो सारे शिव भक्त अपनी एक अलग ही होड़ और रंग रूप में दिखाई देते हैं भक्ति करते हुए। जी हाँ, और उसी तरह से कहीं ना कहीं जब हम अनुकंपा की बात करते हैं, कृपा पाने की बात करते हैं, तो फिर शनि देव भी अपनी कृपा बरसाने को आतुर होते हैं। सावन महीना विशेष रूप से भगवान शिव को समर्पित माना जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार शनि देव भगवान शिव के परम भक्त हैं। कहा जाता है कि शिव कृपा से ही शनि देव को न्यायाधीश का पद मिला। इसी कारण सावन में आने वाले शनिवार का महत्व और बढ़ जाता है। लोग इस दिन पीपल वृक्ष की पूजा करते हैं, तिल के तेल का दीपक जलाते हैं, गरीबों को दान देते हैं, हनुमान जी की आराधना करते हैं, शनि मंत्र का भी जप करते हैं। और एक लोक मान्यता के अनुसार अगर एक कथा कहूँ तो लोक कथाओं में कहा जाता है कि सावन के शनिवार को जो व्यक्ति मेहनत ईमानदारी और सेवा भाव से जीवन जीने का संकल्प लेता है उस पर शनि देव की कृपा बनी रहती है और उसके घर में संपत्त यानी स्थाई सुख समृद्धि आती है। इसलिए बुजुर्ग भी कहते थे सावन का शनिवार कर्म सुधारने का त्योहार। आइए चलते हैं, इस त्योहार को मनाते हैं। और दोस्तों एक बात और कि संपत्ति शनिवार केवल धन पाने का दिन नहीं है, बल्कि ये अपने कर्म व्यवहार और सोच को समृद्ध बनाने का अवसर है। क्योंकि असली संपत्ति केवल पैसा नहीं बल्कि अच्छा समय, सच्चे रिश्ते और मन की शांति भी होती है।

जी हाँ श्रोताओं, आप शो सुन रहे हैं भूरे भूरे की पहली किरण और मैं हूँ आपकी होस्ट एंड दोस्त आर्जा कांक्षा। आपने ट्यून करके रखा हुआ रेडियो ज्ञानस्ले 89.6 एफएम गोंडा शहर की धड़कन और आज हम बात कर रहे हैं शनि देव की, न्याय के देवता की, अनुशासन प्रिय देवता की। चलिए उसी ओर ले चलती हूँ मैं आपको। और अब यहाँ पे एक बात और, शनि देव और हमारे कर्मों का संबंध हिंदू दर्शन के उस सिद्धांत से जोड़ा हुआ है जिसमें कहा गया है कि हर कर्म का फल निश्चित होता है। वैसे खाली ये हिंदू धर्म में नहीं है, ये हर एक धर्म में माना जाता है कि जो इंसान कर्म करता है उसका फल ज़रूर आता है। और धर्म को अगर साइड में रखें, कोई भी अगर हम नॉर्मल भी काम करेंगे तो उसका कहीं ना कहीं रिएक्शन हमको देखने को मिलता है, एक्शन का रिएक्शन होता है, ये साइंस में भी प्रूव्ड है। तो चलिए बढ़ते हैं और बताते हैं आपको कि शनि देव को उसी कर्म फल का न्यायाधीश माना गया है। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब शनि देव ने कठोर तपस्या कर भगवान शिव को प्रसन्न किया तब उन्होंने कोई धन या शक्ति नहीं मांगी। उन्होंने इच्छा व्यक्त की कि संसार में हर व्यक्ति को उसके कर्म के अनुसार फल मिले। उनकी निष्पक्षता, धैर्य और सत्यप्रियता देखकर भगवान शिव ने उन्हें ये दायित्व दिया कि जो व्यक्ति अच्छे कर्म करेगा उसे उन्नति और सम्मान मिले, जो छल, अन्याय और अहंकार करेगा उसे अपने कर्मों का परिणाम समझ आए। इसी कारण से शनि देव को कर्म फलदाता और न्याय के देवता का

स्थिरता और सफलता देते हैं। अगर कोई व्यक्ति दूसरों का हक मारता है, अहंकार करता है या गलत रास्ता अपनाता है, तो जीवन की कठिनाइयां उसे सुधारने का माध्यम बनती हैं। उदाहरण के लिए, अगर व्यक्ति मेहनती, ईमानदार और दयालु है, तो शनि देव स्थिरता और सफलता देते हैं। अगर कोई दूसरों का हक मारता है, अहंकार करता है या गलत रास्ता अपनाता है, तो जीवन की कठिनाइयां उसे सुधारने का माध्यम बनती हैं। कर्म और शनि देव का गहरा संदेश ये है कि शनि की चाल धीमी जरूर है, लेकिन उनका न्याय बहुत सटीक माना जाता है। इसका अर्थ है कि कर्मों का फल तुरंत मिले या देर से, लेकिन व्यक्ति के व्यवहार और नियत का असर जीवन में जरूर दिखाई देता है। दोस्तों, शनि देव हमें ये याद दिलाते हैं कि किस्मत से ज्यादा ताकत हमारे कर्मों में होता है। इंसान मंदिर में क्या चढ़ाता है, उससे पहले ये मायने रखता है कि अपने व्यवहार में क्या बांटता है, सम्मान, ईमानदारी और दया, या अहंकार या अन्याय। सोचने की बात है, ठीक है, आप सोचिए और अपने दिन को बेहतरी की ओर लेके चलिए। तब तक हम आपको लेके चलते हैं एक और प्यारे से भजन।

आज के समय में एक सवाल बहुत लोगों के मन में आता है, अगर अच्छे कर्म करने वालों को भी संघर्ष और दुख मिलते हैं तो न्याय कहाँ है। इसका उत्तर केवल धार्मिक आस्था में नहीं है, बल्कि दर्शन, मनोविज्ञान और जीवन के व्यवहारिक अध्ययन में भी मिलता है। तर्क और दर्शन के अनुसार कर्म का फल हमेशा तुरंत नहीं मिलता। भारतीय दर्शन, विशेषकर भगवद गीता में कहा गया है, कर्म करने का अधिकार है, लेकिन फल तुरंत और हमारी इच्छा के अनुसार मिले ये निश्चित नहीं। अक्सर अच्छे कर्मों का परिणाम धीरे धीरे बनता है। विश्वास, सम्मान, मानसिक शांति, अच्छे संबंध और स्थायी सफलता के रूप में। अच्छा इंसान दुखी है, ये हमेशा पूरी तस्वीर नहीं होती। जी हाँ, इसके पीछे भी एक रीज़न है, चलिए उधर ले चलती आपको। मनोविज्ञान की कई किताबें बताती हैं कि हम दूसरों की बाहरी सफलता देखते हैं, लेकिन उनकी आंतरिक परेशानियां नहीं देखते। उदाहरण के लिए मैंस सर्च फॉर मीनिंग में विक्टर फ्रैंकल बताते हैं कि कठिन परिस्थितियों में भी इंसान अर्थ और धैर्य खोज सकता है। उनके अनुसार दुख हमेशा अन्याय का प्रमाण नहीं होता, बल्कि कभी कभी वो इंसान को गहरा और मजबूत बनाता है। एक और सवाल जो आजकल लोग अक्सर न्याय को केवल धन, शोहरत या आराम से जोड़ देते हैं, लेकिन दार्शनिक दृष्टि से न्याय का अर्थ है मन की शांति, अपराध बोध से मुक्ति, सम्मान, स्थायी रिश्ते, आत्मविश्वास। कई बार गलत तरीके से सफल दिखने वाले लोग भीतर से असुरक्षित और अशांत होते हैं। एक और सवाल जो हम लोगों के जहन में काफी आता है वो ये है कि समाज में गलत लोग सफल क्यों दिखते हैं। द रिपब्लिक में प्लेटो ने लिखा कि समाज में कई बार अन्यायी लोग कुछ समय तक शक्तिशाली दिख सकते हैं, लेकिन अन्याय लंबे समय तक स्थिर नहीं रहता। गलत रास्ते अक्सर डर, असुरक्षा और अस्थायी सफलता पर टिके होते हैं। अब शनि देव को प्रतीक की तरह समझें। शनि देव को केवल चमत्कार करने वाले देवता नहीं, बल्कि कर्म और परिणाम के प्रतीक के रूप में भी देखा जाता है। उनका संदेश ये माना जाता है कि अनुशासन रखो, मेहनत करो, दूसरों के साथ न्याय करो, परिणाम आने में समय लग सकता है, लेकिन शांति बनाए रखो। तो दोस्तों, अच्छे लोगों की जिंदगी में संघर्ष हो सकता है, लेकिन संघर्ष और हार एक जैसी चीज नहीं होते हैं। बरगद का पेड़ भी एक दिन में इतना बड़ा नहीं होता। धीरे धीरे बढ़ने वाली चीजें अक्सर ज्यादा मजबूत होती हैं। इस बात को ध्यान में रखें और अपने जीवन को और मजबूती की ओर आगे बढ़ाते जाएं, अपने कर्मों को नेक बनाते हुए। फिलहाल चलते हैं एक और प्यारे से भजन की ओर।

हिंदू धर्म में न्याय और कर्म के देवता शनि मानव भाग्य पर अपनी शक्तिशाली प्रभाव के लिए जाने जाते हैं। वे सूर्य देव और छाया देवी के पुत्र हैं। विभिन्न हिंदू धर्म ग्रंथों और क्षेत्रीय मान्यताओं के अनुसार शनि देव की दो पत्नियां हैं, नीलिमा यानी कि नीला देवी और मंदा यानी कि धामिनी। नीलिमा नीला देवी और नीलिमा जिन्हें नीला देवी के नाम से जाना जाता है, दिव्य संगीतकार चित्ररथ की पुत्री मानी जाती हैं। कुछ कथाओं के अनुसार वे भगवान शनि की भक्त थीं और उन्होंने प्रेम और आदर के साथ उनसे विवाह किया था। हालांकि शनि देव की दृष्टि की शक्ति और तीव्रता के कारण वे अनजाने में उनके दिव्य प्रभाव से प्रभावित हो गईं। कुछ कथाओं के अनुसार उनकी दृष्टि ने उन्हें कष्ट पहुंचाया, जिससे उनके वैवाहिक जीवन में कठिनाइयां उत्पन्न हुईं। समय के साथ उनका सामंजस्य स्थापित हो गया और वे शनि के दिव्य संगनियों में से एक के रूप में पूजी जाने लगी। अब बात करते हैं मंदा देवी की यानी कि धामिनी की। मंदाना यानी कि जिन्हें हम धामिनी के नाम से जानते हैं, भगवान शनि की एक अन्य पत्नी हैं और उन्हें चित्ररथ की पुत्री भी कहा जाता है। वे एक गुणी और प्रेममयी पत्नी थीं, लेकिन शनि देव की गहन तपस्या और कर्म के स्वामी के रूप में अपने कर्तव्यों के प्रति समर्पण के कारण उन्होंने उनकी उपेक्षा की। उपेक्षा महसूस करते हुए मंदाना ने उन्हें श्राप दिया कि उनकी दृष्टि हमेशा कष्ट लगाएगी। माना जाता है कि इसी श्राप के कारण ज्योतिष में भगवान शनि की दृष्टि अशुभ मानी जाती है। इन चुनौतियों के बावजूद दोनों पत्नियों ने उनके दिव्य दायित्व में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। शनि देव के उपासक मानते हैं कि उनकी पत्नियों का सम्मान करने से उनके कठोर प्रभाव को कम किया जा सकता है और आशीर्वाद प्राप्त होता है। उनकी कहानियां धैर्य, भक्ति और मानव जीवन में कर्म के परिणामों का प्रतीक हैं। और कहा भी जाता है कि हर एक अच्छे चीज़ों के पीछे कहीं ना कहीं बहुत सारे कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। एक अच्छा चरित्र निर्माण में भी हम अपने जीवन की अगर बात करें, नॉर्मल हम मनुष्य, तो हमने कितना कुछ झेला होता है और उसके बाद में हम एक अच्छे पर्सनैलिटी के रूप में सामने आते हैं, निखर के सामने आते हैं। तो ऐसी कुछ कहानी हमारे शनि देव की भी है कि अगर जीवन में उनके इतना सब कुछ ना होता तो शायद आज वो न्याय के देवता या फिर न्याय को इतने करीब से ना जान पाते और हमारे जीवन का न्याय इतनी आसानी से ना कर पाते। तो फिलहाल बोलते हैं जय शनिदेव।

ज्योतिष शास्त्र में शनि देव को न्याय का देवता माना गया है। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार शनि देव के पास कोई एक निश्चित सवारी नहीं बल्कि पूरे 9 वाहन हैं। जब शनि एक राशि से दूसरी राशि में गोचर प्रवेश करते हैं तो उस समय के वार और स्थिति के अनुसार उनका वाहन तय होता है। ये 9 वाहन और उनकी जुड़ी कथाएं या प्रतीक कुछ इस प्रकार से हैं। पहला है हाथी। ये जब शनि देव चांदी के पाए पर गोचर करते हैं तब ये हाथी पर वाहन होता है इनका। इसे बहुत शुभ और फलदायी माना जाता है। ये ज्ञान, भारी सफलता और राजसी सुख का प्रतीक होता है। घोड़ा। जब शनि देव लोहे के पाए पर गोचर करते हैं तो ये घोड़े पर सवारी कर रहे होते हैं। ये शनि का सबसे उग्र और पराक्रमी वाहन माना जाता है। ये तेज, बदलाव, ऊर्जा और चुनौतियों पर विजय प्राप्त करने का प्रतीक है। दोस्तों, मैं कुछ और बताऊं उससे पहले ये बताना चाहूंगी कि जिस प्रकार से इनका वाहन होता है और हमारी राशि में इनका गोचर होता है, ये हमारे कर्म पे डिपेंड करता है। अगर हमने अच्छे कर्म किए हैं तो जाहिर सी बात है कि शनि देव हमारी राशि में विचरण करने हाथी पे सवार होकर आएंगे, यानी कि चांदी के पाए पे आएंगे। और अगर हमने कुछ ऐसा वैसा किया होगा तो जाहिर सी बात है कि फिर हमें लोहे जैसा बनाने के लिए, यानी कि हमारे सुधार के लिए, वो घोड़े पर सवार होकर आएंगे। नेक्स्ट इनकी सवारी की बात करें तो हिरण। शनि देव का एक शुभ वाहन माना गया है। हिरण चंचलता और गति का प्रतीक माना जाता है। पौराणिक कथाओं में इसका संबंध मानसिक शांति और स्थिरता से है। अब बारी आती है गधे की, यानी कि गधा। जब शनि ताम्र यानी तांबे के पाए पर गोचर करते हैं उस वक्त इनका वाहन होता है गधा, और इस पर इनका आना सामान्यतः अशुभ या फिर संघर्ष भरा माना जाता है। ये कड़ी मेहनत, परिश्रम और धैर्य का प्रतीक है। नेक्स्ट वाहन कुत्ता। जब शनि स्वर्ण यानी सोने के पाए पर आते हैं, और सोना सबसे महत्वपूर्ण धातु भी है, इसलिए इस वाहन को अत्यधिक शुभ माना जाता है। ये वफादारी, सुरक्षा और अचानक धन लाभ का संकेत देते हैं। अगला भैंसा। इसे भी एक महत्वपूर्ण गोचर सवारी माना जाता है। भैंसे का वाहन होना संघर्ष और चुनौती से भरा होता है। ये कर्मों की कठोर नियम और अटूट शक्ति को दर्शाता है। अगला गिद्ध। जब शनि सामान्य दिनों में यात्रा करते हैं, गिद्ध मृत्यु या मृत्यु के बाद के संसार का प्रतीक माना जाता है। ये जीवन की नश्वरता और वैराग्य का बोध कराता है। अगला शेर। ये शनि देव के सबसे शक्तिशाली वाहनों में से एक है। शेर साहस, निर्भयता और नेतृत्व का प्रतीक है। ये जीवन की बड़ी से बड़ी बाधाओं और शत्रुओं का नाश करने की क्षमता को दर्शाता है। यानी आपने जिस तरह से कर्म किया होगा और अगर आपका निर्णायक समय होगा और उस पर शनि देव ने अगर शेर पे सवारी की है तो समझ लीजिए आपके शत्रुओं का तो भाई क्या होने वाला है। और जो आम तौर पे हम जानते हैं कि इनकी सवारी दर्शाई जाती है कौवे के रूप में, तो इनका जो 9वां वाहन है वो है कौवा। इसे शनि का सबसे प्रिय और पारंपरिक वाहन माना जाता है। कौवा अपनी सतर्कता और बुद्धिमत्ता के लिए जाना जाता है। इसके पीछे की कथा में बताया गया है कि ये जातक को सचेत रहने और अपने कर्मों का फल भुगतने के लिए तैयार रहने का संदेश देता है। शनिदेव अपने इन 9 वाहनों के माध्यम से मनुष्य को उनके कर्मों के अनुसार फल प्रदान करते हैं। प्रत्येक वाहन का अपना विशेष महत्व और है, और साथ ही साथ में जो व्यक्ति के जीवन में आने वाले अच्छे या बुरे समय का भविष्यवाणी भी करता है। चलिए फिर चलते हैं एक और प्यारे से भजन की ओर और लेते हैं शनि देव की कृपा। ओम संघ शनिश्चराय नमः।

जी हाँ श्रोताओं, आप शो सुन रहे थे भोरे भोरे की आध्यात्मिक किरणों से भरपूर यानी कि पहली किरण। मैं थी आपकी होस्ट एंड दोस्त आरजे आकांक्षा और अब वक्त आ गया कि आपसे विदा लिया जाए। जी हाँ, आज हमने बात की शनि देव जी की। शनि देव हमें डराना नहीं, जीवन का सही रास्ता दिखाना सिखाते हैं। कर्म अच्छे हों, नियत साफ हो और मन में दया हो तो हर कठिन समय भी एक नई सीख बन जाती है। इसी विश्वास के साथ दीजिए मुझे इजाजत, फिर मिलेंगे एक नई सोच, एक नई पहली किरण के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, जय जिनेंद्र, रब राखा सब राखा, अल्लाह हाफिज, जय शनिदेव।

हर दिन की उम्दा शुरुआत आपके अपने आरजे अदनान के साथ। नई सुबह, नई बात, थॉट ऑफ द डे एंड व्हाट हैपेंड टू दिस डे। जिंदगी की बात, जिंदगानी की बात, गोंडा की बात और गोंडा वालों की बात। आपके अपने आरजे अदनान लेकर आते हैं गुड मॉर्निंग गोंडा। सुनिए हर सुबह 8 बजे ओनली ऑन रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा, शहर की धड़कन। स्टे ट्यून्ड।

भाई जिंदगी में यूं तो बड़ी परेशानियां हैं, तो खुशियों के लिए है ना हर मौके अहम। अब हर मौके और हर मूड पर है ना ज्ञानस्थली 89.6 FM आपके संग। तो आप भी डाउनलोड कीजिए अपने ज्ञानस्थली 89.6 FM की एप्लीकेशन को अपनी अनइंटरप्टेड लिसनिंग के लिए। अगर आप एंड्रॉइड यूजर तो आपको जाना है प्ले स्टोर पर और टाइप करना है रेडियो स्पेस ज्ञानस्थली स्पेस 89.6 FM। और अगर आप है आईफोन यूजर तो आपको जाना है एप स्टोर पर और टाइप करना है रेडियो स्पेस ज्ञानस्थली स्पेस 89.6 FM। अब गुना सुनेगा अपना FM।

0: सिर में लगातार दर्द, चक्कर आना, याददाश्त में कमी या हाथ पैर का सुन पड़ जाना, इन लक्षणों को नजरअंदाज ना करें।
1: आइए मंडल के एक मात्र न्यूरो हॉस्पिटल सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर, जहां दिमाग, नस, रीढ़, माइग्रेन, कमर दर्द, लकवा, ब्रेन हैमरेज व न्यूरो से संबंधित सभी बीमारियों का मंडल के जाने माने वरिष्ठ न्यूरो सर्जन डॉक्टर सुजीत कुमार शुक्ला द्वारा सफल इलाज 17 वर्ष के अनुभव के साथ साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सुविधा उपलब्ध है। भरोसे का दूसरा नाम सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर। अभी कॉल करें 9838283886।
0: पता है सर्कुलर रोड, आवास विकास कॉलोनी, गोंडा।
2: इलाज होगा बेहतर, खुशहाल होगी जिंदगी।

0: क्या आप ढूंढ रहे हैं ऐसा कॉलेज जहां पढ़ाई के साथ साथ फन भी हो और जो लड़कियों को सशक्त बनाने के उद्देश्य से हो समर्पित, ताकि करियर बने मजबूत और सफल?
1: तो आइए NJPG कॉलेज, जहां 6 वोकेशनल कोर्सेज के साथ में DMC की तैयारी भी कराई जाती है, जो आपको बनाए फ्यूचर रेडी।
0: यहां होती है BA, MA और BCom की क्लासेस के साथ साथ रेडियो जॉकी की भी ट्रेनिंग। कॉलेज कैंपस में खेल का बड़ा मैदान, जहाँ सीखने का बिल्कुल ऑथेंटिक वे।
1: आधुनिक सुविधाओं से लैस कंप्यूटर रूम्स, ताकि लड़कियों को सशक्त बनाने का हो पूरा मिशन।
0: तो देर किस बात की, आज ही कॉलेज विजिट करिए। पता है दुखरनाथ मंदिर के पीछे, नारी ज्ञान स्थली PG कॉलेज, गोंडा।
2: जब आप बच्चों के आसपास धूम्रपान करते हैं तो उन्हें हजारों ऐसे केमिकल से प्रभावित करते हैं जिनसे उनके जीवन को खतरा है। बीड़ी सिगरेट के धुएं में साइनाइड और कार्बन मोनोऑक्साइड जैसे कई जहरीले तत्व होते हैं, जो स्वास्थ्य की गंभीर समस्याओं को जन्म देते हैं, जैसे कानों में दर्दनाक संक्रमण, गंभीर अस्थमा और जानलेवा निमोनिया। बच्चों का जन्म के समय कम वजन बीड़ी सिगरेट के धुएं की वजह से भी होता है, और ये अचानक होने वाली शिशु मृत्यु के जोखिम को दुगना कर देता है। इसीलिए आज ही बीड़ी सिगरेट पीना छोड़ें।
3: स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी।

0: बीड़ी सिगरेट का हर कश आपको नुकसान पहुंचाता है। धूम्रपान की वजह से आपके दिल तक खून ले जाने वाली मुख्य नसों में जहरीले पदार्थ भर जाते हैं, जिससे दिल का दौरा पड़ सकता है। धूम्रपान करने वालों के दिल में इस जहरीले पदार्थ की लगभग एक चम्मच तक की मात्रा पाई गई है, वो भी सिर्फ 32 वर्ष की उम्र में। धूम्रपान जानलेवा है, इसे आज ही छोड़ें। भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
1: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े बनता है।
2: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
1: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
2: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती है, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
1: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
2: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, उतराला रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करें 888-100-9400।

0: सिंबाद द सेलर। अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू, आप सभी का वेलकम करते हैं आपके मॉर्निंग जॉय का आरजेतनान। आपने ट्यून कर लिया है गोंडा एफएम रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 एफएम, ये है गोंडा शहर की धड़कन और मैं हूं आपका मॉर्निंग जॉय का आरजेतनान। और आज है फ्राइडे, यस ऑफ कोर्स फ्राइडे, और फ्राइडे है तो जाहिर है फ्राइडे वाली बातचीत भी होने वाली है और फ्राइडे वाली वाइब भी आने वाली है। यानी बहुत कुछ है जो इस बार फ्राइडे को और भी ज़्यादा स्पेशल बनाने वाला है आपके मॉर्निंग वाले शो में। बहरहाल मुझे ऐसा लगता है कि भाई आपकी सुबह तो हो ही गई होगी, क्योंकि सुबह जो हुई है वो आज जो हुई है वो बदली के साथ नहीं बल्कि गर्मी के साथ कह सकते हैं हो रही है, क्योंकि आज बहुत खिली खिली सी धूप है और जब खिली खिली सी धूप है तो जाहिर है कि भाई दिन का मौसम भी वैसा ही होने वाला है। फिलहाल मौसम बाहर का कैसा हो ये तो हमारे अख्तियार में नहीं है, लेकिन अंदर का मौसम कैसा हो ये ज़रूर हमारे हाथ में है। तो भाई चलिए अपने अंदर के मौसम की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि आज हमारे अंदर का मौसम कैसा है और हम इसको कैसे और अलग करने वाले हैं थ्रू आर मॉर्निंग शो। गुड मॉर्निंग गोंडा विद योर मॉर्निंग जॉक आरजे अदनान।
1: नाउ यू आर लिसनिंग गुड मॉर्निंग गोंडा विद योर फेवरेट आरजे अदनान।

हाँ जी, तो क्या कहता आज का फ्राइडे स्पेशल थॉट? दरअसल आज का थॉट कहता है कि चलने से पहले हजारों लोगों से पूछना मत। हाँ, जब चलना शुरू कर देना, जहां भी मौका मिले सीखना और बेहतर बनना। हर रोज पहला कदम इच्छा शक्ति का होता है। बहुत ही प्यारी बात कही है आज के इस थॉट ऑफ द डे ने, बहुत प्यारा कहा है। आज का थॉट कहता है कि चलने से पहले हजारों लोगों से मत पूछना। कभी देखा है ना आपने कि किसी एक चीज की आए आपने शुरुआत में राय बहुत ज्यादा लोगों से ले ली है, तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आया है, क्या है, कैसे है, क्या करना है, कैसे करना है, कुछ नहीं समझ में आया है। वजह, कंफ्यूज्ड हो गए आप कि होगा कैसे, क्योंकि हर कोई तो अलग अलग तरह से बता रहा है। फिर ये थॉट कहता है कि हाँ, जब चलना शुरू कर देना, जहां भी मौका मिले सीखना, यानी शुरुआत नहीं, पहला कदम तो खुद से ही बढ़ाएगा, उसके बाद जब हम चल चुके होंगे फिर कहीं कुछ सीखने का मौका मिलेगा, ऐसा लगेगा कि ऐसा मौका है, तो हमें वहां जरूर सीख लेना होगा और बेहतर हर रोज बनाना होगा उसको। लेकिन पहला कदम जो है वो इच्छा शक्ति का होता है, ऐसा कहना है आज के थॉट ऑफ द डे का। और मैं 100% इस बात से इत्तफाक रखता हूँ कि पहला जो कदम होता है वो सच में हमारी इच्छा शक्ति का होता है। पहले कदम में हम अगर बहुत ज़्यादा पूछने लग जाते हैं, राय लेने लग जाते हैं, तो चीज़ें नहीं हो पाती हैं। लेकिन जब बात आती है कि हम पहला कदम ले लेते हैं, तो डेफिनेटली चीज़ें होती हैं और वो वर्क करती हैं, इसमें कोई शक की बात नहीं है। यही कहना है आज के थॉट ऑफ द डे का। सो आज का थॉट ऑफ द डे कहता है कि चलने से पहले हजारों लोगों से मत पूछना। हाँ, जब चलना शुरू कर देना, जहां भी मौका मिले सीखना और बेहतर बनना। हर रोज पहला कदम इच्छा शक्ति का होता है। सो बात ये सच है कि ये आपकी इच्छा शक्ति, ये आपकी विल पावर का होता है कि आप खुद से कोई स्टेप लेते हैं, उस रास्ते की तरफ बढ़ जाते हैं, उसके बाद आप सीखना शुरू करते हैं या जानना शुरू करते हैं कि कहाँ पे क्या हो सकता है, कहाँ पे क्या हो रहा है। और अगर आप शुरुआत में ही बहुत ज़्यादा पूछने लग जाते हैं, तो फिर कहीं ना कहीं आप हर चीज़ करने में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। और इसी से बचने का तरीका सीधी सी बात है कि भाई पहला कदम अपने अकॉर्डिंगली लेना और बढ़ चलना। क्योंकि देखिए, हमेशा हम ये कहते हैं कि नहीं सही हो, अच्छा हो, इसलिए हम पूछते हैं, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि इस तरह बार बार करके हम खुद को डाउट में लाते हैं। हम ये यकीन करना भूल जाते हैं कि हम अपने लिए बेहतर डिसीजंस ले सकते हैं। हमको ये अंदर से तो पता होता है कि हम बेहतर ही करेंगे, लेकिन कर पाएंगे ये नहीं होता है। इसीलिए हम चार तरफ राय लेते हैं और इसीलिए चीज़ें शुरू हो ही नहीं पाती हैं। सबके अपने लाइफ के अलग एक्सपीरियंसेस, हर कोई अपने एंड से बताता है, इसीलिए हमको लगता है ये तो चीज़ ही समझ में नहीं आई भाई तो चूंकि हम शुरुआत ही ऐसी कर लेते हैं, तो शायद हमारी शुरुआत अगर सही होगी तो मेरे ख्याल से वो सब चीज़ें बहुत बेहतर होंगी। फिलहाल इस थॉट को सुना आपने और बहुत गहराई से इस थॉट ने अपनी बात को कहा। आपको कैसा लगा ये थॉट, क्या बताता है जो आपको लगता है कि हाँ आपके साथ भी ऐसा ही है? सो ज़रा सोचिए, रीथिंक करिए और वापस आइए, क्योंकि आपका मॉर्निंग शो शुरू हो चुका है। अ वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन।

0: हाँ जी, और इसी के साथ भाई आप लोगों ने बहुत सारी दुआएं दे दी है और आपका आज का थॉट भी रीथिंक हो गया है। चलिए, ये बहुत अच्छी बात है। फिलहाल वक्त है आपका वेलकम करने का, क्योंकि आपने ट्यून किया है फ्रिक्वेंसी से, आपने ट्यून किया है रेडियो गार्डन से, और आपने ट्यून किया है रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 एफएम की एप्लीकेशन से। आप सभी लोगों का वेलकम करते हैं मॉर्निंग चौक आरजे अदनान। और उसी एप्लीकेशन से सुनने वालों ने कुछ चैट बॉक्स पे भी मैसेजेस किए हैं। क्या कुछ लिखा है आपने, आइए बताते हैं आपको आपके मॉर्निंग शो में।
1: Now you're listening. Good morning, Kota, with your favorite RJ Khan. RJ Khan.

सो चैट से सुनने वालों में कुछ लोगों ने हमारे पास मैसेजेस भेजे हैं जो इस तरह हैं। सबसे पहले आशु जी का आया है, आपने लिखा है सुप्रभात सर जी, सुप्रभात आपको भी। और आपने लिखा है कि पाने से कहीं ज़्यादा मुश्किल होता है उसे संभाल कर रखना, चाहे वो दौलत हो, इज्जत हो, प्रेम हो या कोई अच्छा इंसान। क्या बात है, बहुत सही बात कही आपने, थैंक यू सो मच। आपको भी सुप्रभात। प्रीति जी बहराइच से हैं, सर जी वेरी लवली मॉर्निंग, अ वेरी लवली मॉर्निंग टू यू। धर्मेंद्र मोहन जी हैं फ्रॉम आवास विकास गोंडा, सर वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, आदमी के अच्छे कर्म उसे महान बनाते हैं बेशक, एंड आपको भी अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। कमल नयन जी मौजूद हैं, लिखा है आरजे अदनान सर गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, आपका भी वेलकम करते हैं मॉर्निंग के स्पेशल शो में। प्रीति जी लिखती हैं प्रेरणादायक थॉट, यदि स्वयं की इच्छा शक्ति मजबूत है तो सारे कार्य सुगम हो जाते हैं और अपनी मंजिल भी हमें सरलता से प्राप्त हो जाती है। बेशक सरलता हो ही जाती है, अगर आपकी इच्छा शक्ति है तो सारी चीज़ें फिर सरल ही सरल है। मुकेश भी कहते हैं गुड मॉर्निंग सर, वेरी नाइस थॉट, दिल से थैंक यू सो मच मुकेश, आपका भी वेलकम करते हैं मॉर्निंग स्पेशल शो में। एंड कमल जी लिखते हैं कि आज का थॉट कहता है कि अपनी अंतरात्मा को, दिलो दिमाग को खुश करके कोई भी काम किया जा सकता। बेशक हम तो हमेशा से ही कहते हैं कि आप दुनिया को खुश करने निकलते लेकिन आप खुद को खुश ही नहीं करते हैं। तो पहले खुद को खुश कर लो, दुनिया खुद ब खुद खुश लगने लग जाएगी। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा रिएक्शन दिया कमल जी। एंड आशु जी ने लिखा है वेरी नाइस थॉट सर जी, थैंक यू सो मच लखनऊ से आशु जी को कि उन्होंने भी अपना रिएक्शन दिया। एंड यस थैंक्स टू एवरीवन जो भी इस थॉट को सुन करके अपने थॉट के साथ अलाइन कर पाए और उनको कहीं ना कहीं महसूस हुआ ये बात बिल्कुल सच है। सो चलिए इसी के साथ ही साथ ले रहे हैं एक खूबसूरत सा गाना आपके मॉर्निंग शो में, आपकी मॉर्निंग को और भी ज़्यादा ताज़ा बनाने के लिए।

0: क्या आप ढूंढ रहे हैं ऐसा कॉलेज जहां पढ़ाई के साथ साथ फन भी हो और जो लड़कियों को सशक्त बनाने के उद्देश्य से हो समर्पित, ताकि करियर बने मजबूत और सफल?
1: तो आइए NJPG कॉलेज, जहां 6 वोकेशनल कोर्सेज के साथ में DMC की तैयारी भी कराई जाती है, जो आपको बनाए फ्यूचर रेडी।
0: यहां होती है BA, MA और BCom की क्लासेस के साथ साथ रेडियो जॉकी की भी ट्रेनिंग। कॉलेज कैंपस में खेल का बड़ा मैदान, जहां सीखने का बिल्कुल ऑथेंटिक वे।
1: आधुनिक सुविधाओं से लैस कंप्यूटर रूम्स, ताकि लड़कियों को सशक्त बनाने का हो पूरा मिशन।
0: तो देर किस बात की, आज ही कॉलेज विजिट करिए। पता है दुखरनाथ मंदिर के पीछे, नारी ज्ञान स्थली PG कॉलेज, गोंडा।
2: भाई जिंदगी में यूं तो बड़ी परेशानियां हैं, तो खुशियों के लिए है ना हर मौके अहम। अब हर मौके और हर मूड पर है ना ज्ञानस्थली 89.6 FM आपके संग। तो आप भी डाउनलोड कीजिए अपने ज्ञानस्थली 89.6 FM की एप्लीकेशन को अपनी अनइंटरप्टेड लिसनिंग के लिए। अगर आप एंड्रॉइड यूजर तो आपको जाना है प्ले स्टोर पर और टाइप करना है रेडियो स्पेस ज्ञानस्थली स्पेस 89.6 FM। और अगर आप हैं आईफोन यूजर तो आपको जाना है ऐप स्टोर पर और टाइप करना है रेडियो स्पेस ज्ञानस्थली स्पेस 89.6 FM। अब गुना सुनेगा अपना FM।
3: ज्ञानस्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन।
4: हाँ जी, गाना तो आप सुनने ही वाले, लगातार बैक टू बैक सुनेंगे और जबरदस्त हिट सॉन्ग सुनेंगे। लेकिन उससे पहले बता दे, इस म्यूजिकल ब्रेक के जस्ट उस पार वापस आते हैं और बताते हैं गोंडा में क्या कुछ चल रहा है, यानी आपकी सिटी अपडेट की तरफ। सो आप भी हो जाइए जरा अपडेटेड और ध्यान दीजिएगा अपने काम के साथ साथ अपने मॉर्निंग शो पर।

0: क्या बात है। तो भाई इस गाने ने हमारे धर्मेंद्र मोहन जी का दिल जो है वो खुश कर दिया, एंड थैंक्स टू यू कि इस गाने को इतने प्यार से इतने दिल से सुनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। साथ ही नगेश्वर आ गए हैं मध्य प्रदेश से, लिखा है गुड मॉर्निंग सर जी, गुड मॉर्निंग टू यू। और साथ ही लिखा है कि सरल है किसी को प्रारंभ में पसंद करना, अत्यंत कठिन है उसी पसंद पर स्थिर रहना। क्या बात है, बहुत खूब कहा है, एंड थैंक यू सो मच टू यू नगेश्वर। फिलहाल वक्त हो गया है आपको ले चलने का सिटी अपडेट्स की तरफ और बताने का कि क्या कुछ चल रहा है अपने शहर गोंडा में।
1: Now you're listening. Good morning, Gonda, with your favorite, RJ Khan. RJ Khan.

सो भाई आपको बता दें कि फिलहाल 14 वाहन सीज हुए हैं और 142 का चालान किया गया है। चूंकि आपको बता दें, परिवहन विभाग और यातायात पुलिस ने अभियान चलाकर यातायात नियमों का जो उल्लंघन करने वाले हैं उन पर सख्त कार्रवाई की। और कल यानी आपको बता दें कि ARTO RC भारती और CO यातायात के नेतृत्व में चले अभियान में 11 वाहन सीज किए गए, जबकि 142 वाहनों का चालान किया गया है। और इस दौरान 46 स्कूटी वाहनों की जांच की गई है। फिटनेस ना मिलने पर 3 स्कूली वाहनों को सीज किया गया है। ARTO ने बताया कि नियमों का अगर उल्लंघन हुआ तो उसके खिलाफ वाहन चालकों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। दूसरी जो अपडेट्स आ रही है वो है 4 उर्वरक विक्रेताओं को थमाया गया है नोटिस। जी हाँ, सो कृषि

विभाग के अधिकारियों ने ज़िले में उर्वरक बिक्री केंद्रों का निरीक्षण किया है। चार के यहाँ अनियमितताएँ मिलने की वजह से कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। क्वालिटी की जांच के लिए 11 नमूने प्रयोगशाला भेजे गए हैं। ज़िला कृषि अधिकारी ने बताया है कि निरीक्षण में कई दुकान पर साइन बोर्ड नहीं लगा मिला, तो कहीं वितरण पंजिका और उर्वरक कारोबार से संबंधित जो अभिलेख थे वो भी उपलब्ध नहीं कराए गए थे। सो संबंधित विक्रेताओं से स्पष्टीकरण मांगा गया है। इसके अलावा बता दें कि करनैलगंज में ही कन्हैया लाल इंटर कॉलेज परिसर में कोबरा सांप निकल आया, जिससे अफरा तफरी मच गई। सो इस दौरान इसी कैंपस में निर्माण कार्य चल रहा था, मजदूरों की नज़र पुराने भवन के पास निकले सांप पर पड़ी। सो इन्होंने सूझबूझ से सांप को एक डिब्बे में बंद करके प्रशासन को सूचना दी। सो वहाँ के जो प्रधानाचार्य हैं मेजर राजाराम ने बताया कि वन विभाग और सांप पकड़ने वाली टीम को सूचना दी गई, टीम उसे सुरक्षित अपने साथ ले गई है। प्रधानाचार्य ने छात्रों से परिसर में सावधानी बरतने की अपील की है। इसके अलावा आपको हम ले चलते हैं अगली अपडेट्स की तरफ, और अगली जो अपडेट आ रही है वो दरअसल आपको हम इवेंट्स के बारे में बताने वाले हैं कि सुबह 10 बजे से आज ही कंपोजिट विद्यालय लोहंगपुर में पीएम श्री धनौरा में स्कूल चलो अभियान का आयोजन किया जाएगा। इसके अलावा सुबह 11 बजे विकास भवन के जो सभागार है वहाँ पे बीसी सखी का इंटरव्यू होगा। इसके अलावा आपको हम ले चलते हैं अगली अपडेट की तरफ, चूँकि अभी हमने देखा कि भाई शहर के ही प्रतिष्ठित एक कॉलेज के सामने करंट लगने से एक युवक की मौत हो गई थी, जिसके बाद अब वेंडिंग जोन के पास स्ट्रीट लाइट के खंभे में करंट उतरने से चूँकि युवक की मौत हुई थी, इसके बाद बिजली विभाग जो है वो एक्शन में आ गया और खंभों पर इंसुलेटर लगाने का अभियान शुरू कर दिया गया है। जिस स्ट्रीट लाइट खंभे से हादसा हुआ उसकी जिम्मेदारी को लेकर के कहीं ना कहीं काम किया जा रहा है। और बीते दिनों बहराइच ज़िले के हुजूरपुर के भगड़वा निवासी जो विमल थे यहीं पे इनकी सामने ही करंट लगने से मौत हो गई थी, जिसके बाद फिलहाल कहीं ना कहीं बिजली विभाग अभियान चला करके इंसुलेटर लगा रहा है। और इसके अलावा आप ले चलते हैं आपको अगली अपडेट की तरफ। सो अगली अपडेट जो आ रही है वो काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रही है, और जैसा कि आपको भी बताया कि भाई चलते चलते अचानक लॉक हो रहा है ई रिक्शा की बैटरी, आखिर इसको लेकर के क्या रहा। सो हम एरिया में ही बता दें, कंपनी के लिथियम बैटरी वाले ई रिक्शा के रास्तों में अचानक बंद हो जाने से जो चलाने वाले हैं वो काफ़ी परेशान हैं। पिछले 3 दिन में करीब 1000 चालक जो है समस्या से अफेक्टेड हुए हैं। एजेंसियों में बैटरी अनलॉक कराने वालों की भीड़ लग रही है। सो चालकों का कहना है कि चलते वक्त अचानक ई रिक्शा की बिजली आपूर्ति बंद हो जाती है, इसके चलते वाहन जो है बीच सड़क पर ही रुक जाता है। ऐसा होने से दुर्घटना की आशंका बढ़ जाती, साथ ही यात्रियों को भी परेशानी होती है। सो कहीं ना कहीं BMS ऐप का जो दुरुपयोग है उसका करके ब्लूटूथ के ज़रिए बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम यानी BMS से छेड़छाड़ की कोशिश होती है, जिससे बैटरी की आपूर्ति बंद हो जाती है। सो ये प्रॉब्लम सिर्फ बिना पर्याप्त सुरक्षा वाली ब्लूटूथ आधारित बैटरियों में आ रही है। ई रिक्शा व्यापारी ने बताया है कि उनके शोरूम में 2 दिन में 400 से ज़्यादा चालक बैटरी अनलॉक कराने आ चुके हैं। कंपनी ने संयम बरतने की अपील की है। इस बीच कंपनी ने अपने कंज्यूमर से संयम बरतने की अपील की, कहा कि समस्या के समाधान पर तेज़ी से काम हो रहा है, कुछ मामलों में टेक्नीशियंस की मदद लेनी पड़ रही है इसलिए वक्त लग सकता है। तकनीकी विशेषज्ञों के हिसाब से ये कोई साइबर हमला नहीं, BMS की सुरक्षा कमजोरियों और ऐप का दुरुपयोग की वजह से ऐसा हो रहा है कि ई रिक्शे अचानक चलते चलते रुक जा रहे हैं। इसके अलावा आपको हम बता दें नेक्स्ट अपडेट की तरफ चल करके। सो अगली जो अपडेट है वो है, GM ने गोंडा जंक्शन रेलवे स्टेशन का निरीक्षण किया। सो रेलवे महाप्रबंधक ने अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत गोंडा जंक्शन का निरीक्षण किया। इन्होंने पुनर्विकास कार्यों में जैसे यात्री सुविधाओं, खान पान स्टॉल, मॉडिफाइड गार्ड वैन, कैंपेन कोच का जायजा लेकर के अधिकारियों को जो भी गुणवत्ता है उसके साथ समय पर पूरा करने के निर्देश दिए हैं। महाप्रबंधक ने स्टेशन भवन, प्लेटफॉर्म, प्रतीक्षालय, प्रवेश निकास व्यवस्था, स्वच्छता, सुरक्षा, निर्माण कार्यों की जो प्रगति की समीक्षा की। इसके साथ ही खान पान के स्टॉल्स पर
साफ सफाई, खाद्य गुणवत्ता और सही दाम में बेचे जाने के लिए निर्देश दिया। इन्होंने आधुनिक तकनीक से लैस मॉडिफाइड गार्ड वैन और कैंपिंग कोच का भी निरीक्षण किया और कर्मचारियों के लिए अवेलेबल फैसिलिटीज की जानकारी लेकर के जो ज़रूरी सुधार हैं उसके लिए बोला। सो फिलहाल ये रही नेक्स्ट अपडेट। इसके बाद आपको बता दें कि पोलियो अभियान अभी चलाया गया था। सो पोलियो अभियान में खामी मिलने के बाद में निगरानी जो है वो बढ़ाई गई है। पल्स पोलियो अभियान की समीक्षा में ज़िले के प्रवासी और जो जहां ज़्यादा जोखिम वाले एरियाज हैं वहां टीकाकरण की जो स्थिति है वो चिंताजनक मिली है। सो 30 जून को हुई जांच में 28 साइट्स में 77 बच्चों की निगरानी की गई, जिसमें से 21 बच्चे यानी 27% बिना टीकाकरण के पाए गए हैं। सो 3 हाई रिस्क ग्रुप HRT साइटों पर टीम के ना पहुंचने की बात भी सामने आई है। इसे गंभीरता से लेते हुए अफसरों की टीम गांव-गांव भेजी अब जा रही है। सो रिपोर्ट के हिसाब से बेलसर, हलधरमऊ, इटियाथोक, कटरा बाजार, मनकापुर, मस्कनवा, काजी देवर, वजीरगंज और बभनजोद क्षेत्र के कई ऐसे बच्चे मिले जिन्हें पोलियो रोधी खुराक नहीं पिलाई गई थी। हलधरमऊ, मस्कनवा और काजी देवर की 3 HRT साइटों पर टीम के ना पहुंचने का भी बताया गया है। कहीं पर मॉनिटरिंग में कमी मिली तो कहीं पर कुछ और कमियां। इसके बाद CMO डॉक्टर संतलाल ने सभी MOIC के गांव में जाकर के 100% बच्चों को टीकाकरण के लिए कहा है जो पात्र बच्चे हैं। सो ये रही अगली अपडेट। एंड इसके साथ ही साथ ज़िले में ज़्यादा से ज़्यादा युवक युवतियों को रोज़गार प्रशिक्षण देकर के इन्हें स्वरोजगार और निजी क्षेत्रों में रोज़गार जोड़ने पर प्रशासन का जोर हो रहा है। जिलाधिकारी प्रियंका निरंजन के निर्देश पर जो लोकल के रोज़गार की संभावनाओं और उद्योग की मांग को ध्यान में रखते हुए कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम जो है वो संचालित किए जा रहे हैं। सो कलेक्ट्रेट में जो है उसके सभागार में कौशल विकास मिशन के तहत संचालित जो प्रशिक्षण कार्यक्रम है जिसमें रोजगार सृजन की समीक्षा बैठक ने कहा कि एग्रीकल्चर, ऑटोमोटिव, कंस्ट्रक्शन, इलेक्ट्रॉनिक्स, फूड प्रोसेसिंग, मीडिया एंड एंटरटेनमेंट, प्लंबिंग, हैंडीक्राफ्ट और कारपेट, ब्यूटी और वेलनेस, टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी, IT, ITS और रिटेल समेत कई सारे रोजगार परक ट्रेडों में ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं को प्रशिक्षण दिया जाए। उन्होंने बताया कि प्रशिक्षण पूरी तरह से उद्योगों और बाजार की ज़रूरत के हिसाब से होना चाहिए ताकि प्रशिक्षण के बाद युवाओं को आसानी से रोज़गार मिल सके। DM ने ज़िला समन्वयक कौशल विकास मिशन को निर्देश दिया कि योजनाओं का व्यापक प्रचार प्रसार किया जाए जिससे ज़्यादा से ज़्यादा युवा लाभ उठा सके। सो जिला अधिकारी ने संबंधित विभागों के अधिकारियों से विभिन्न सारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए बेहतर समन्वय स्थापित करने को कहा है। उन्होंने प्रशिक्षण के साथ युवाओं को रोजगार और स्वरोजगार से जोड़ने के लिए ठोस कार्य योजना तैयार करने और योजनाओं की नियमित समीक्षा और सतत मॉनिटरिंग पर विशेष जोर देने की बात कही है। सो फिलहाल ये कुछ अपडेट्स थी जो कि आप तक बताई गई और आप तक पहुंची। आई होप कि इसमें काफ़ी कुछ ऐसा था जिसको आपने भी जान लिया है। थैंक यू सो मच। सो फिलहाल बढ़ते हैं अगले म्यूजिकल ब्रेक की तरफ, लेकिन उससे पहले अजय जी भी मौजूद हैं चैट बॉक्स पर। आपका स्वागत है, वेलकम है, वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। और अब हम जब वापस से आएंगे तो कुछ नई बातों को अपने संग लाने वाले हैं। फिलहाल चलते हैं आपको गोंडा से सीधे लेकर के दिल्ली 6 यानी ओल्ड दिल्ली की तरफ लेकर के। तो क्या आप तैयार हैं आज फ्राइडे मॉर्निंग शो में दिल्ली चलने के लिए?

0: छूने दो बच्चों के हाथों को चांद सितारे, यही प्यारे बच्चे हैं भविष्य हमारे। प्रोफेसर डॉक्टर शेर बहादुर सिंह, पूर्व सदस्य उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग, प्रख्यात शिक्षाविद के सपनों का इंग्लिश मीडियम CBSE पैटर्न वाला मॉडर्न पब्लिक स्कूल एवं मॉडर्न किडीज प्ले ग्रुप से क्लास 9th। आपके बच्चों के लिए मिलने वाली सुविधाएं हैं क्रिएटिव प्लेवे मेथड से पढ़ाई, थीम बेस्ड क्लासरूम, ऑडियो वीडियो विजुअल्स, कंप्यूटर स्मार्ट क्लास, वाहन की सुविधा, CCTV कैमरे से लैस कैंपस और स्विमिंग पूल पूल डे की सुविधा उपलब्ध है। एडमिशन ओपन, पता है LIC कॉलोनी निकट गोंडा मेडिकल सेंटर, पटेल नगर गोंडा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9670931251 और 8840098123। मॉडर्न पब्लिक स्कूल, निखार रहे हैं आपके बच्चों का भविष्य।
1: सिर में लगातार दर्द, चक्कर आना, याददाश्त में कमी या हाथ पैर का सुन पड़ जाना, इन लक्षणों को नजरअंदाज ना करें।
0: आइए मंडल के एकमात्र न्यूरो हॉस्पिटल सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर, जहां दिमाग, नस, रीढ़, माइग्रेन, कमर दर्द, लकवा, ब्रेन हैमरेज व न्यूरो से संबंधित सभी बीमारियों का मंडल के जाने माने वरिष्ठ न्यूरो सर्जन डॉक्टर सुजीत कुमार शुक्ला द्वारा सफल इलाज 17 वर्ष के अनुभव के साथ, साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सुविधा उपलब्ध है। भरोसे का दूसरा नाम सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर। अभी कॉल करें 9838288386।
1: पता है सर्कुलर रोड, आवास विकास कॉलोनी, गोंडा।
2: इलाज होगा बेहतर, खुशहाल होगी जिंदगी।
0: अरे सुना
3: क्या,
0: यही कि गीता इंटरनेशनल स्कूल सेशन 2026-27 के लिए दे रहा पहले 100 एडमिशन्स पर एडमिशन फी पर 100% डिस्काउंट।
3: वाओ,
0: गीता इंटरनेशनल स्कूल फॉर अ बेटर टुमारो। एडमिशन्स ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। गीता इंटरनेशनल स्कूल, जहां आपको मिलता है साइंस एंड कॉमर्स स्ट्रीम, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, ट्वाइक्वांडो क्लासेस और वाहन की सुविधा उपलब्ध है। पता है गोंडा रेलवे स्टेशन से 1 किलोमीटर दूर, नगरा बलरामपुर रोड गोंडा। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 9545853546।
4: जब आप बच्चों के आसपास धूम्रपान करते हैं तो उन्हें हजारों ऐसे केमिकल से प्रभावित करते हैं जिनसे उनके जीवन को खतरा है। बीड़ी सिगरेट के धुएं में साइनाइड और कार्बन मोनोऑक्साइड जैसे कई जहरीले तत्व होते हैं जो स्वास्थ्य की गंभीर समस्याओं को जन्म देते हैं, जैसे कानों में दर्दनाक संक्रमण, गंभीर अस्थमा और जानलेवा निमोनिया। बच्चों का जन्म के समय कम वजन बीड़ी सिगरेट के धुएं की वजह से भी होता है और ये अचानक होने वाली शिशु मृत्यु के जोखिम को दुगना कर देता है। इसीलिए आज ही बीड़ी सिगरेट पीना छोड़ें।
5: स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।

भाइयो आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

0: भैया अभी हमने हाल में ही फादर्स डे सेलिब्रेट किया था, याद है कब किया था? 21 जून को। जी हाँ, सो फिलहाल इसी 21 जून को हमने अभी फादर्स डे सेलिब्रेट किया था और आज है 3 जुलाई। सो आज हम एक ऐसे फादर और एक ऐसी डॉटर यानी पिता और पुत्री की जोड़ी के बारे में बताने वाले हैं जो किसी हीरो वाले काम से कम नहीं। जी हाँ, यानी एक ऐसा स्टेप जिसे सुनकर आप कहने वाले हैं वाओ क्या बात है, ऐसे भी लोग हैं। सो यस ऑफ कोर्स ऐसे भी लोग हैं और हमारे बीच में ही हैं, हमारी सोसाइटी में हैं। बस फर्क ये है कि वो सोचते हैं जो वो करके भी दिखा देते हैं। आखिर क्या है पूरी कहानी, आइए आपको बताते हैं मैं यानी कि आरजे अदनान अपनी जुबानी।
1: Now you're listening. Good morning, Kota, with your favorite, आरजे अदनान।

बहुत कुछ होता है, बहुत कुछ आप सुनते हैं, लेकिन अब हम बताने वाले हैं ऐसे पिता पुत्री जो जंगल बचाने निकले हैं। अब आप सोचेंगे दो लोग जंगल बचाने, हाउ इज इट पॉसिबल? तो ये पॉसिबल हो रहा है। कैसे भाई? आपको फिलहाल हम बता दें कि स्टोरी की नौकरी से वापस गांव लौटे रविंद्र चौहान ने देखा कि जंगल खत्म हो रहे हैं, तो इन्होंने आगे की पीढ़ियों को बचाने के लिए ठान लिया। फिर क्या था, पूरे दिन जंगल में घूम घूम करके लोगों को समझाते कि अगर पशु चरेंगे लेकिन ना कुल्हाड़ी चलेगी ना शिकार होगा। उनके इस कदम में उनकी बेटी शिवांगी ने भी इनका साथ दिया। रविंद्र चौहान की कोशिश का असर दिखा, पेड़ उगने लगे, जंगल फिर सांस लेने लगा। आने वाली पीढ़ियों के लिए ऐसे कोशिश हम सभी को करने होंगे। जी हाँ, सो फिलहाल इन्होंने लोगों को जंगल का नियम समझाया, चारा या दाना देना प्रकृति के नियम के विपरीत है। जानवर और पक्षी अपना भोजन खुद तलाशते हैं, यानी अगर भाई जंगल होगा तो जाहिर है कि हम कहीं ना कहीं चारा जो देने की बात करते हैं या दाना देने की बात करते हैं, ये जो प्रकृति का नियम है, जो नेचर्स लॉ है, इसके अपोजिट है। सो इसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। कब? जब जंगल अपने आप होते हैं। यानी हम जो सोचते हैं कि भाई जानवरों को या पशु पक्षियों को इसलिए देना पड़ रहा है क्योंकि आज देखिए आपके बचपन में जितने आपके बगल वाले घर के आसपास पेड़ था, सामने था, पीछे था, अगल बगल कहीं पे भी था, या जहाँ से आप निकलते थे, जैसे ही शहर से थोड़ा बाहर जाते थे कई सारे पेड़ नज़र आते थे, शहर के बीच में ही कई पेड़ थे। तो जब जैसे जैसे पेड़ ख़त्म होते गए तो जाहिर सी बात है पक्षियों का जो आसरा है वो भी मिटता गया। अब जो बचे कुछ पक्षी हैं, इसलिए हम परिंडा लगाने की बातें करते हैं, इसलिए हम दाना देने की बात करते हैं। पर जिस जगह जंगल एरिया है जहाँ काटे जा रहे हैं अभी भी, वहाँ पर बचाने की पूरी कोशिश की जा सकती है। छोटे छोटे कदम ही जो है वो बहुत बड़े होते हैं। ऐसा लगता है कि दो लोगों ने अच्छा काम किया, लेकिन सोचिए यही काम जब आने वाली पीढ़ी के सामने होगा, जंगल हरा भरा होगा और उनको जीने के लिए ऑक्सीजन मिल रही होगी, जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो अवेलेबल होंगे, तो जाहिर है कि भाई ये इसकी कीमत तो बाद में पता चलेगी। सो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये ऐसी धरोहर हैं जो किसी भी हमारी पुरानी बिल्डिंग्स से ज़्यादा, हमारे किसी भी डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट से ज़्यादा ये पेड़, ये प्रकृति ज़रूरी है, क्योंकि इनसे ही हमारा सभी का अस्तित्व है। इसलिए कहीं ना कहीं ये जो पिता पुत्री का काम है, ये सच में किसी सुपर हीरो से कम नहीं है। सो ऐसे पिता पुत्री को रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM सराहता है और कहता है कि ये हैं हमारे रियल हीरोज़। सो ज़रा सोचिए कि भाई पिता पुत्री के बारे में कहा जाता है कि बड़ा प्यार होता है, जैसे माताओं को होते हैं अपने पुत्र से, उसी तरह पिता को होता है अपनी पुत्री से ज़्यादा प्यार। सो भाई ये प्यार जब पूरा जंगल बचाने निकल जाए और ये बॉन्डिंग सच में ऐसा कर दिखाए, तो जाहिर है ये और भी ज़्यादा बड़ा और भी ज़्यादा अहम हो जाता है ना? सो फिलहाल आपको कैसा लगा ये जान करके कि भाई एक पिता और एक पुत्री जो हैं मिल करके वो बचाने की कोशिश कर रहे हैं जंगल, और वो अपनी कोशिशों में कामयाब भी हो रहे हैं। सो भाई आपको इस बारे में सुनने के बाद कैसा लगा, आपकी अंदर की फीलिंग क्या है, और आपको क्या लगता है कि जिस दिन आप भी अगर चाहेंगे इस नेचर के लिए एक छोटा सा क्या स्टेप नहीं ले पाएंगे या ले लेंगे, सो फिर कैसा महसूस करेंगे उस पल, उस मोमेंट आपको कैसा लगने वाला है? फिलहाल आइए चलते हैं इस गाने की तरफ, वापस से लौट कर आएंगे तो कुछ और नई बातें हैं जो आप तक पहुंचानी हैं आरजे अतान को।

ज्ञान स्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन।

0: सो एक बार वापस से आपका वेलकम करते हैं आपके मॉर्निंग वाले शो में, आपके मॉर्निंग जॉक आरजे अदनान, सिर्फ और सिर्फ आपके रेडियो ज्ञानस्थल 89.6 एफएम के गुड मॉर्निंग गोंडा शो में।
1: नाउ यू आर लिसनिंग गुड मॉर्निंग गोंडा विद योर फेवरेट आरजे अदनान।

अक्सर लोग परेशान हो जाते हैं, कैसे, जब इंटरव्यू की बात सुनते हैं कि उनका इंटरव्यू होने वाला है, फला डेट में है, फला दिन में है, इस चीज़ के बाद उनका इंटरव्यू होगा। सो एक अजीब सी पैनिक करने वाली कई बार सिचुएशन आम लोगों को हो जाती है। हालांकि जो लोग एक्सपीरियंस्ड हो जाते हैं या जो लोग ज़्यादा प्रिपेयर होते हैं या जो लोग स्ट्रैटेजी से जाते हैं, वो चीज़ों को थोड़ा सा मैनेज कर पाते हैं। तो आइए बताते हैं क्या है। सो देखिए, इंटरव्यू के लेकर के कहा यही जाता है कि फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ द लास्ट इम्प्रेशन, यानी इंटरव्यू बोर्ड पर आप जो शुरुआती असर डालते हैं वही आपके लिए फैसला निर्णायक होता है। इसलिए जब भी आप किसी भी इंटरव्यू में शामिल हों तो समझ लें कि पहले के 90 सेकेंड्स आपके लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होने वाले हैं। इस दौरान इंटरव्यू बोर्ड के जो मेंबर्स हैं वो आपके एक्टिविटीज़, आपकी जो शारीरिक मुद्रा होती है, चेहरे के जो एक्सप्रेशंस होते हैं, कॉन्फिडेंस होता है, बोलने का तरीका होता है, या जो बहुत ही कॉमन से शिष्टाचार की बातें हैं, वो ध्यान रखना होता है। सो आपके अंदर आने से लेकर के बैठने और बातचीत शुरू करने तक हर छोटी से छोटी चीज़ों को नोटिस किया जाता है। इसके बाद ही सवाल जवाब का जो क्रम होता है वो शुरू किया जाता है, लेकिन तब तक आपका पहला प्रभाव पहले ही बन चुका होता है। आगे की बातचीत भी यहीं से तय होती है। सो शुरुआत जो है वो चुनौतियों को बता करके किया जा सकता है। जैसे इंटरव्यू में जब आपसे पूछा जाए कि अब तक आपने क्या किया, तो जवाब में आप उन चुनौतियों का जिक्र करें जिनका आपने सफलतापूर्वक सामना किया हो। इससे क्या होता है कि इंटरव्यू लेने वाले को तुरंत आपके काम की जो आप संदर्भ देना चाहते हैं वो समझ में आ जाता है। एक या दो बहुत ही क्लियर शब्दों में, सेंटेंसेस में बताएं कि प्रॉब्लम क्या थी और वो कितनी बड़ी या कितनी ज़्यादा मुश्किल थी और उसे वक्त पर हल करना क्यों ज़रूरी था। इससे आपके काम की जो गंभीरता है और ज़िम्मेदारी है दोनों साफ दिखाई देती है। जब आप शुरुआत में ही चुनौती को साफ और बहुत ही व्यवस्थित तरीके से बताते हैं तो आपका पूरा जवाब आसानी से समझ में आने वाला बन जाता है। अपना जो रोल होता है उसको बहुत ही क्लियरली दिखाना होता है। जी हाँ, सो चुनौती बताने के बाद विस्तार से समझाना होता है कि उस प्रॉब्लम को हल करने के लिए आपने क्या क्या कदम उठाए। अपने योगदान पर ज़्यादा ध्यान देना होता है कि हमने की जगह उचित होता है कि मैंने इस्तेमाल करें, ताकि आप अपनी स्पेसिफिक चीज़ों को बता पाए कि आपने इंडिविजुअल क्या किया, ताकि इंटरव्यू लेने वाले को आपकी जो भूमिका थी वो साफ दिखाई दे। ये भी बताइए कि आपने फैसले कैसे लिए, किन तरीक़ों से या किन स्किल्स का इस्तेमाल किया और आपकी सोच ने उस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन में क्या योगदान दिया। जब आप अपनी कार्रवाई को बहुत ही क्लियर, बहुत ही सीक्वेंस से और आत्मविश्वास के साथ बताते हैं तो इंटरव्यू लेने वाले को आपके जो लीडरशिप क्वालिटी है या जो प्रॉब्लम सॉल्विंग आपकी एबिलिटी है या जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो आसानी से समझ में आ जाती है। इसके अलावा नतीजों को संख्याओं में बताना होता है। आपने हर जवाब के आखिर में ये ज़रूर बताना होता है कि आपके काम का क्या नतीजा निकला। अगर हो सके तो आपके नतीजों का जो नंबर्स हैं उसमें आप बता सकते हैं। जब आपने अपने काम को, असर को आंकड़ों के साथ बताते हैं तो आपकी जो बातें हैं वो ज़्यादा भरोसेमंद और बहुत इफ़ेक्टिव होती है। इससे क्या होता है, इंटरव्यू लेने वाले को ये समझने में आसानी होती है कि आपके काम से सच में क्या बदलाव आया। बेवजह की लंबी कहानी बताने से आपको बचना होता है। इससे आपका जवाब छोटा, बहुत ही इफ़ेक्टिव और याद रखने के लिए बन जाता है। इसके साथ ही कोशिश करना होता है कि आपका जवाब बहुत क्लियर हो ताकि सामने वाला आसानी से समझ सके। हर आंसर में क्लैरिटी और कॉन्फिडेंस दिखाना आपके सिलेक्शन की संभावना को और भी ज़्यादा मजबूत बनाता है। सो ये ज़रूरी चीज़ है, जब भी आप इंटरव्यू के लिए जाएं उससे पहले इन बातों का ध्यान रखें, क्योंकि ये बातें अक्सर आपके बहुत काम आती है, राइट। इसके अलावा आपको हम बता दें कि भाई कुछ कुछ हाइलाइट्स है जो इन सारी बातों का निकल के आता है। उसमें क्या है कि आत्मविश्वास और चेहरे का भाव का ध्यान हमेशा रखें। शुरुआत में बताएं कि आप कौन हैं और क्या करते हैं। आपने एक दो सबसे मजबूत कौशल या फिर अपने अनुभव को आप हाईलाइट करके बताएं, यानी आपकी जो स्किल है
वो जो सबसे अच्छी स्किल है या फिर आपका जो अनुभव रहा है, जो एक्सपीरियंस रहा है, अपने फैसलों और अपने काम करने के तरीकों के बारे में बताइए। बात को नौकरी और भूमिका से जोड़ कर रखें, है ना। जो भी बातें हों वो कहीं ना कहीं आपके जॉब से, आपके काम से जुड़ी हुई हों। ये सारी बातों का अगर ख्याल रखते हैं तो कहीं ना कहीं एक अच्छा असर पड़ता है जो भी इंटरव्यू ले रहा होता है, और उससे आपके सिलेक्शन की संभावनाएं और भी ज़्यादा बढ़ जाती हैं। स्पेशली हम उन लोगों के लिए बता रहे हैं जो इंटरव्यू देने जा रहे हैं या जो अभी फ़िलहाल रोज़गार की तलाश में है। सो जाने से पहले अगर आप इन कुछ पॉइंट्स का ध्यान रखेंगे तो डेफिनेटली बहुत बेहतर कर पाएंगे, क्योंकि ये बिल्कुल प्रैक्टिकल बात है। जो ऑर्गेनाइजेशन आपको हायर करती है वो इन्हीं चीज़ों को बहुत ही क्लियरली जानना चाहती है जो कि हमने अभी जिक्र करके बताया। आप बस इन बातों का ध्यान रखिए, फिर देखिए आप बहुत अच्छा करेंगे। एंड ऑल द वेरी वेरी बेस्ट अगर आप जा रहे हैं ऐसे किसी भी इंटरव्यू में, ऐसे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट बनने, तो आपके लिए बहुत ढेरों शुभकामनाएं आरजे अदनान की तरफ से। फिलहाल आइए चलते हैं अगले म्यूजिकल ब्रेक की तरफ, और उसके बाद वापस से आकर के बातचीत जारी रखते हैं।

0: मुझे आर्किटेक्ट बनना है।
1: आई वॉन्ट टू बिकम अ साइंटिस्ट। आई वॉन्ट टू बी एन IAS ऑफिसर। रास्ते तो हर मोड़ पर बदल जाते हैं मगर दिशा नहीं। रवि चिल्ड्रंस एकेडमी, जहां आपके बच्चों की यूनिकनेस को मिलते हैं पंख। गोंडा का सबसे पुराना कॉन्वेंट स्कूल, अचीवर ऑफ द बेस्ट स्कूल सर्टिफिकेट एट नेशनल लेवल। एडमिशंस ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। स्पेसिफिकेशंस हैं 10+2 इन ऑल स्ट्रीम्स, साइंस, कॉमर्स एंड ह्यूमैनिटीज। एक्सलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, स्मार्ट क्लास एंड डिजिटल क्लास बोर्ड, कन्वीनियंस फैसिलिटीज, स्काउट गाइड, इवेंट्स, प्रोजेक्ट एंड एजुकेशनल टूर।
2: और सेशन 2026-27 में पहले 100 एडमिशंस पर एडमिशन फी बिल्कुल मुफ्त। एड्रेस है रवि चिल्ड्रंस एकेडमी, नियर दुखरन नाथ मंदिर, पटेल नगर, गोंडा। संपर्क करें 9450944999।
3: यार मेरी बहन की शादी फिक्स हो गई है और अब गोंडा में एक अच्छा सा वेडिंग हॉल ढूंढ रहा हूँ, कोई आइडिया है?
4: अरे हाँ, मैंने अभी पिछले हफ्ते ही मेरी गोल्ड लॉन्स में एक पार्टी अटेंड की थी और वो जगह शादियों के लिए एकदम परफेक्ट है।
3: सच में? क्या खास है वहाँ?
4: बहुत कुछ है। वहाँ एक रॉयल बैंकेट हॉल है जो अंदर से बहुत ही रॉयल लगता है और ओपन एयर सेटअप के लिए लश ग्रीन लॉन्स भी बहुत खूबसूरत है।
3: अच्छा, डेकोरेशन और खाने पीने की चीजों का क्या सीन था?
4: सब कुछ टॉप क्लास था। फ्लोरल डेकोर और लाइट्स की सेटिंग बहुत ही ड्रीमी थी। खाने में फाइन डाइनिंग और बुफे ब्रेकफास्ट दोनों का ऑप्शन है, साथ ही पेशियो डाइनिंग का भी मजा ले सकते हो। और वैसे भी खुली हवा में खाना खाने का एक अलग एक्सपीरियंस था। और सबसे अच्छी बात जो मुझे लगी, वहाँ कंप्लीट वेडिंग प्लानिंग सर्विस भी है, मतलब तुम्हें कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वो सब संभाल लेंगे।
3: और फोटोग्राफी वगैरह?
4: वहाँ तो ड्रोन फोटोग्राफी करवाते हैं जिससे सिनेमेटिक शूट भी हो सकता है। और हाँ, मेकअप और ड्रेसिंग सर्विसेज भी वहीं अवेलेबल है।
3: ये तो एकदम परफेक्ट लग रहा है। लोकेशन कहाँ है?
4: अवध नर्सिंग कॉलेज के सामने उतरौला रोड पर है और इनका कॉन्टेक्ट नंबर है 9839613949। बल्कि मुझे तो पूरा यकीन है कि तुम्हें जरूर पसंद आएगा।

0: की लड़कियों को सशक्त बनाने का हो पूरा मिशन।
1: तो देर किस बात की, आज ही कॉलेज विजिट करिए। पता है दुखरनाथ मंदिर के पीछे, नारी ज्ञान असली पीजी कॉलेज गोंडा।
2: बच्ची को आराम ही नहीं मिल रहा, क्या करें?
3: इसको तुरंत अल्टिस किप्स ले चलो।
4: राजधानी लखनऊ में बच्चों के पहले सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल अल्टिस किप्स में दिल, गुर्दे, दिमाग या पेट की हर बीमारी का होता है बेहतरीन इलाज।
5: यहाँ 120 बेड, ग्रेड 3 NICU, एडवांस PICU की सुविधा के साथ ही HFO, INO, वेंटिलेटर, फोटोथेरेपी, डायलिसिस के साथ साथ इमरजेंसी की सुविधा भी उपलब्ध है।
4: विजिट करें अल्टिस किप्स, IIM रोड, लखनऊ। संपर्क करें 0522 2711 827।

0: अच्छा तो नेताजी ये बताइए, आपके शहर में सड़कों की हालत इतनी खराब क्यों है?
1: क्योंकि भैया हम जनता को कठिनाइयों से लड़ना सिखाता हूँ।

0: एक टाइम पर समय रैना के पास सब था। जी हाँ, जैसे किसी भी कहते हैं आप मानते हैं कि सक्सेसफुल इंसान के पास सब है, उसी तरह से एक वक्त था जब समय रैना के पास सब कुछ था, लेकिन कुछ हफ्तों में सब बदल गया। क्या हो गया? आइए हम आपको बताते हैं कि ऐसा क्या हुआ समय रैना के जीवन में, जब सब कुछ चला गया तो कहीं कही हुई एक बात ने उनको वापस से जगाया और जिंदगी किसी और नए ढर्रे पर निकल गई।
1: Now you're listening. Good morning, Koda, with your favorite RJ Khan. RJ Khan.

सो मैंने कहा ना, एक टाइम पर समय रायना के पास सब था, फिर कुछ हफ्तों में सब बदल गया और शो हट गया, न्यूज़ चलने लगी, थिएटर्स आने लगे, थ्रेट्स आने लगे, इंटरनेट पलट गया। और सच कहें तो यहीं पर ज़्यादातर लोग जो होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं, क्योंकि लोग जो है वो फेल्योर से नहीं टूटते, यानी अपनी असफलता से नहीं टूटते। लोग जो टूटते हैं जब ख़ुद को सिर्फ अपने काम से जोड़ लेते हैं, तब टूटते हैं। लेकिन फिर उसके पापा ने, यानी कि समय रहना के पापा ने एक लाइन बोली, शो तुम्हारी वजह से था, तुम शो की वजह से नहीं थे। और शायद यही पूरी स्टोरी का सबसे बड़ा लेसन था। जी हाँ, जब कुछ टूटे तो ख़ुद को उसके साथ मत तोड़ देना, ये बहुत बड़ी बात है। जब आपकी लाइफ में कुछ भी टूटे तो आप ख़ुद को उसके साथ मत तोड़ देना। बिजनेस गया, तुम नहीं गए। जॉब गई, तुम नहीं गए। रिलेशनशिप गया, तुम नहीं गए। कुछ चीज़ें चैप्टर होती है, आइडेंटिटी नहीं। हारना कभी भी डेंजरस नहीं होता मेरे प्यारे दोस्तों, ये मान लेना डेंजरस होता है कि अब कुछ बचा नहीं। जी हाँ, हारना कभी इतना डेंजरस नहीं होता है, बस यही होता है कि अगर हम मान लेते हैं कि अब कुछ बचा नहीं है, दिस इज कॉल्ड वेरी डेंजरस थिंग्स। ये मान लेना बहुत डेंजर है, क्योंकि कहीं ना कहीं एक बात मुझे लगती है वो ये कि कभी कभी लाइफ पूछती है हमसे कि अगर सब ले लूं तो क्या तुम फिर से उठोगे। यही बात है कि अगर लाइफ ने हमसे हमारी जॉब ली, हमारा रिलेशन लिया, हमारी शॉप ली, हमारा बिजनेस लिया, कुछ भी ऐसा लिया, तो लाइफ दोबारा पूछ रही है कि अगर मैं तुमसे सब कुछ ले लूं तो क्या तुम दोबारा उठोगे। और इस बात को बहुत अच्छे से सोचिएगा, शायद आपको मिल ही जाएगा इसका भी जवाब कि अगर आपसे लाइफ मांग रही होगी तो क्या आप सच में उठेंगे दोबारा, क्या आप सच में चलेंगे दोबारा, क्या आप सच में आगे बढ़ेंगे दोबारा। ये लाइफ पूछ रही है आपसे, क्योंकि कहीं ना कहीं हो सकता है लाइफ ने आपके एक छोटे से पार्ट को ज़रूर लिया हो, और हो सकता है इसी वक्त सुन रहे हैं इसी शो में किसी की लाइफ का बहुत बड़ा पार्ट गया हो। लेकिन लाइफ पूछ रही है ना कि क्या तुम भी चले गए। नहीं, सिर्फ एक चीज़ कही है, आप नहीं।

अब आप भी अपना सपना पूरा कीजिए डिजिटल मास कम्युनिकेशन के साथ जुड़कर। एडमिशंस ओपन। जानकारी के लिए कॉल करें 8840339584 8840335484। अब सपने होंगे साकार।

0: गजल को मेरी जहां फकत गजल न समझ, एक आईना है जो हरदम तेरे मुकाबिल है। वो गुजरे जमाने की बातें, वो पुरानी यादें, गजल शेरो शायरी रात की महफिल, वाह क्या बात। तो अब आप भी बनिए ना इन महफिलों का हिस्सा, हर सैटरडे टू थर्सडे अपने आरजे मनु के साथ और फ्राइडे स्पेशल आरजे अदनान के साथ, ओनली ऑन रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM।
1: छूने दो बच्चों के हाथों को चांद सितारे, यही प्यारे बच्चे हैं भविष्य हमारे। प्रोफेसर डॉक्टर शेर बहादुर सिंह, पूर्व सदस्य उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग, प्रख्यात शिक्षाविद के सपनों का इंग्लिश मीडियम CBSE पैटर्न वाला मॉडर्न पब्लिक स्कूल एवं मॉडर्न किडीज प्ले ग्रुप से क्लास 9th। आपके बच्चों के लिए मिलने वाली सुविधाएं हैं क्रिएटिव प्लेवे मेथड से पढ़ाई, थीम बेस्ड क्लासरूम, ऑडियो वीडियो विजुअल्स, कंप्यूटर स्मार्ट क्लास, वाहन की सुविधा, सीसीटीवी कैमरे से लैस कैंपस और स्विमिंग पूल पूल डे की सुविधा उपलब्ध है। एडमिशन ओपन, पता है LIC कॉलोनी निकट गोंडा मेडिकल सेंटर, पटेल नगर गोंडा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9670931251 और 8840098123। मॉडर्न पब्लिक स्कूल, निखार रहे हैं आपके बच्चों का भविष्य।
2: जी हाँ बहनों और भाइयों, आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।
3: सुभैये सुनता रहिए और मुस्कुराते रहिए, ये तो हमेशा चलता ही रहेगा क्योंकि आपका मॉर्निंग वाला शो जो ठहरा। सो चलिए, कुछ चैट बॉक्स पे मैसेजेस आए और साथ ही साथ आपके भेजे गए कॉन्टेंट्स भी हमको मिल गए हैं, तो अब सीधे चलते हैं चैट बॉक्स की तरफ।
4: Now you're listening. Good morning, Koda, with your favorite, Ajay Khan.

सो भाई जो हमने मैसेज पढ़ा था उसके बाद नवीन राजपूत का आया है MPEB से। गुड मॉर्निंग सर जी। गुड मॉर्निंग नवीन जी, आपका स्वागत है, वेलकम है मॉर्निंग के स्पेशल शो में। प्रीति जी ने पिता पुत्री के कार्य पर बोला कि पिता पुत्री का कार्य अति प्रशंसनीय और सराहनीय है। हम सभी को इन पद चिन्हों पर चलना, इसके चलने का प्रयास करना चाहिए कि हमारी प्रकृति हरी भरी हो सके। बेशक सही है। दीपक फ्रॉम हथियागढ़ गोंडा से, नाइस सॉन्ग, थैंक यू सो मच सर जी। ब्यूटीफुल सॉन्ग, बहुत शुक्रिया धर्मेंद्र जी कि आपको भी सॉन्ग पसंद आया। महक का है, गुड मॉर्निंग सर कैसे हैं, बहुत बढ़िया। और ओके, आपका बर्थडे, आपको बर्थडे की बहुत बहुत मुबारकबाद महक। एंड रोशनी रावत, आपको भी अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू, आपका भी स्वागत है, वेलकम है मॉर्निंग के स्पेशल वाले शो में। सो फिलहाल आप सभी के मैसेजेस के साथ ही साथ कुछ आप ही की तरफ से भेजे गए कॉन्टेंट्स आए हैं। सबसे पहले चलते हैं प्रीति जी की तरफ। बहराइच से भेजा है आपने, खुद पर भरोसा रखना, मन के हारे हार है मन के जीते जीत, खुद पर तो विश्वास रख यही सृष्टि की रीत। जिसने तुझको गढ़ा है वो अद्भुत रचनाकार, तेरी हर एक सांस में छिपा उसका उपहार। तू मिट्टी का ढेर नहीं तो उसकी अनुपम कला, तेरी राहों में छिपा है जीवन का हर रास्ता भला। जब भी डगमगाए कदम बस इतना याद रखना, उस महान रचयिता का तू ही है एक आशीर्वाद, अपने आप पर विश्वास रख, तू ही है सबसे खास, तेरे भीतर ही छुपा है प्रभु का सच्चा वास। क्या बात है, बहुत ही उम्दा, थैंक यू सो मच प्रीति शुक्ल जी फ्रॉम बहराइच, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतना बेहतरीन कंटेंट न सिर्फ लिखा बल्कि हम तक भी पहुँचाया। और साथ ही कल चूँकि यामिनी चौहान जी का बर्थडे था और लास्ट में आया था देर से आकाश जी का मैसेज, तो कल मैं ले नहीं पाया था, लेकिन आज मैं कल को ही मान के ले रहा हूँ कि उन्होंने कहा यामिनी मैम का बर्थडे है, मेरी ओर से उन्हें जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, आप खुश रहो, हमेशा मुस्कुराती रहो। एक छोटी सी शायरी आज आपके बर्थडे के ऊपर कि हार नहीं हर एक ठोकर तुझे मजबूत बनाएगी। अर्ज़ है, हार नहीं हर एक ठोकर तुझे मजबूत बनाएगी, रात अंधेरी तो क्या हुआ यही रात नए सवेरे बुलाएगी। और आज दिन है फिर से खुद से वादा करने का, कि आज दिन है फिर से खुद से वादा करने का, देख तेरी मेहनत का रंग, किस्मत तेरे आगे झुकने पर मजबूर हो जाएगी। क्या बात है, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच मिस्टर आकाश फ्रॉम नवदीप वेस्ट बंगाल। यामिनी जी को डेडिकेटेड उनके बर्थडे पर ये आपने जो कंटेंट भेजा, थैंक यू। नरेंद्र छाव जी लिखते हैं, हर हिचकोले पे डोल रही थी दिल के कागज की नाव भारी, चंद सिक्कों ने खरीद ली दुनिया सारी, दो घूंट जल भी ना दिया भाया, कर एक मुट्ठी में बंद अरमानों को मेरे, नशाए मैं हो प्याला फिर कोई जैसे। क्या बात है, कम शब्दों में आप बहुत अच्छा लिखते हैं नरेंद्र छाव जी, थैंक यू सो मच। युद्ध और बेरंग इश्क लिखा है कुंदन राज दत्ता उर्फ निश्चल जी ने फ्रॉम पूर्णिया बिहार। युद्ध की आग में जलते रहे शहर तमाम, खामोश थी राहें गुम था हर पैगाम, बारूद की गंध से भर गया था आसमान, सपनों का हर रंग हो गया था वीरान, मगर उसी धुएं का एक चेहरा खिल गया, बिरंग इश्क का मौसम मिल गया, गोलियों की गूंज में धड़कनों ने गीत गाए, टूटते लम्हों में कुछ रिश्ते मुस्कुराए, जब हर तरफ नफरत का अंधेरा छा गया, प्रेम का एक दीपक चुपके से जल गया, युद्ध ने छीने कई घर कई अरमान, पर इश्क ने सिखाया जीने का सम्मान, बेरंग था इश्क फिर भी सबसे हसीन था, युद्ध के बीच जन्मा मगर अमन का यकीन था। क्या बात है, बहुत खूब, बहुत उम्दा, थैंक यू सो मच टू यू कुंदन राज दत्ता उर्फ निश्चल जी, बहुत उम्दा आपने भी लिखा है। और कई सारे ये जो कंटेंट्स आते हैं आपके ही ज़रिए लिखे हुए, बहुत अच्छे होते हैं। आप भी इवन लिखते हो या आपके कोई क्लोज में लिखता हो, कोई आपका फ्रेंड, कोई फैमिली मेम्बर, कोई कांटेक्ट में, तो भी आप हम तक भेज सकते हैं। भेजने की दो जगह हैं, एक तो इंस्टाग्राम है, दूसरा फेसबुक है। फेसबुक पर हम आपको मिलते हैं ADNAN space AHMAD अदनान अहमद के नाम से। मैसेंजर पर आकर के अपना कंटेंट और अपने स्थान का नाम आप बता सकते हैं।
इसके अलावा आप भेज सकते हैं हमको इंस्टाग्राम पर मैसेज पे, वहाँ पे भी आप अपना नाम और अपने स्थान का नाम या जिसने भी भेजा है उनका नाम और उनके स्थान का नाम ज़रूर बता दें। सो आपकी बात भी सभी लोगों तक पहुँच जाएगी। फिलहाल आज तो बहुत उम्दा लिखा एंड आज एक दिन हमने और यामिनी जी का बर्थडे मना लिया। सो भाई बहुत अच्छा लिखती हैं। साथ ही हमारे नरेंद्र छाव जी ने बहुत उम्दा लिखा, प्रीति जी आपका कंटेंट लाजवाब था, कुंदन राज दत्ता जी आप तो बहुत बढ़िया लिखते ही हैं, मिस्टर आकाश आप तो यूनिक हैं काफ़ी ज़्यादा। सो हमारे सभी लिखने वाले बहुत अलग अलग हैं, यानी कहीं ना कहीं उनके अंदर अपनी अपनी स्ट्रेंथ है और बहुत अच्छे सभी के अपने अपने कॉन्टेंट्स लगते हैं। सो चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और अब फिलहाल आरजे अदनान को दीजिए इजाज़त, वापस से मुलाकात होगी आज रात आपके बहारे गजल वाले शो में, सिर्फ और सिर्फ आपके रेडियो ज्ञानस्थल 89.6 FM पर।

0: जी हाँ बहनों और भाइयों, आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।
1: हे, क्या आप ढूंढ रहे हैं ऐसा कॉलेज जहाँ पढ़ाई के साथ साथ फन भी हो और जो लड़कियों को सशक्त बनाने के उद्देश्य से हो समर्पित, ताकि करियर बने मजबूत और सफल?
2: तो आइए NJPG कॉलेज, जहाँ 6 वोकेशनल कोर्सेज के साथ में GMC की तैयारी भी कराई जाती है, जो आपको बनाए फ्यूचर रेडी।
1: यहाँ होती है BA, MA और BCom की क्लासेस के साथ साथ रेडियो जॉकी की भी ट्रेनिंग। कॉलेज कैंपस में खेल का बड़ा मैदान, जहाँ सीखने का बिल्कुल ऑथेंटिक वे।
2: आधुनिक सुविधाओं से लैस कंप्यूटर रूम्स, ताकि लड़कियों को सशक्त बनाने का हो पूरा मिशन।
1: तो देर किस बात की, आज ही कॉलेज विजिट करिए। पता है दुखरनाथ मंदिर के पीछे, नारी ज्ञानस्थली PG कॉलेज गोंडा।
3: मुझे मिल गया है तुम्हारी घबराहट का समाधान।
4: मतलब
3: मानसिक समस्याएं होंगी दूर, जैसे नींद ना आना, घबराहट, काम में मन ना लगना, आत्महत्या के विचार आना, अत्यधिक गुस्सा, अत्यधिक साफ सफाई, भूत प्रेत, देवी देवता आदि की छाया का भ्रम होना, याददाश्त की कमी, घरेलू कलह, पढ़ाई में मन ना लगना, बिजनेस में लॉस होना, करियर की समस्या, किसी भी प्रकार का नशा एवं मिर्गी, बेहोशी के दौरे आना।
1: इन समस्याओं के लिए निशुल्क टेली मानस हेल्पलाइन नंबर है 14416 या 1800-8914416 पर कॉल करें। जरूर याद रखें 14416। जिला स्वास्थ्य समिति गोंडा द्वारा जनहित में जारी। मानसिक समस्याएं होंगी दूर, खुलकर जिंदगी जिए भरपूर।
5: छूने दो बच्चों के हाथों को चांद सितारे, यही प्यारे बच्चे हैं भविष्य हमारे। प्रोफेसर डॉक्टर शेर बहादुर सिंह, पूर्व सदस्य उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग, प्रख्यात शिक्षाविद के सपनों का इंग्लिश मीडियम CBSE पैटर्न वाला मॉडर्न पब्लिक स्कूल एवं मॉडर्न क्रीज प्ले ग्रुप से क्लास 9th। आपके बच्चों के लिए मिलने वाली सुविधाएं हैं क्रिएटिव प्लेवे मेथड से पढ़ाई, थीम बेस्ड क्लासरूम, ऑडियो वीडियो विजुअल्स, कंप्यूटर स्मार्ट क्लास, वाहन की सुविधा, CCTV कैमरे से लैस कैंपस और स्विमिंग पूल, पूल डे की सुविधा उपलब्ध है। एडमिशन ओपन, पता है LIC कॉलोनी निकट गोंडा मेडिकल सेंटर, पटेल नगर गोंडा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9670931251 और 8840098123। मॉडर्न पब्लिक स्कूल, निखार रहे हैं आपके बच्चों का भविष्य।
6: भाई जिंदगी में यूं तो बड़ी परेशानियां हैं, तो खुशियों के लिए है ना हर मौके अहम। अब हर मौके और हर मूड पर है ना ज्ञानस्थली 89.6 FM आपके संग। तो आप भी डाउनलोड कीजिए अपने ज्ञानस्थली 89.6 FM की एप्लीकेशन को अपनी अनइंटरप्टेड लिसनिंग के लिए। अगर आप एंड्रॉइड यूजर तो आपको जाना है प्ले स्टोर पर और टाइप करना है रेडियो स्पेस ज्ञानस्थली स्पेस 89.6 FM। और अगर आप हैं आईफोन यूजर तो आपको जाना है ऐप स्टोर पर और टाइप करना है रेडियो स्पेस ज्ञानस्थली स्पेस 89.6 FM। अब गुना सुनेगा अपना FM।

0: हेलो किरण दी, कैसे याद किया आज?
1: हेलो समता, अरे लाली बुआ को तो तुम जानती हो ना, वो गोंडा आने वाली थी। उनको 89.6 FM रेडियो ज्ञानस्थली में सुन सहेली प्रोग्राम के लिए बुलाया था श्वेता ने, पर उनकी भैंस बीमार हो गई। उन्होंने पूरी गांव की गूंज की टीम को सिद्धार्थ नगर अपने गांव पिपराहवा बुलाया है।
0: अरे फिर तो बहुत मजा आएगा, हम श्वेता जिम्मी को भी बोल देते हैं तैयार होने को। और ये तो बिल्कुल नेपाल के बॉर्डर पर ही है, इतनी ठंड में खूब मजा आएगा।
2: अरे समता दी बहुत खुश है, हम सबको भी बताइए क्या बात है। वैसे हम लोगों ने सुन लिया है चोरी चोरी आप लोगों की बातें कि हम लोग सिद्धार्थ नगर जा रहे हैं, जो 29 दिसंबर 1988 को बस्ती जनपद के उत्तरी भाग को अलग कर सिद्धार्थ नगर बनाया गया। इस जनपद का नामकरण गौतम बुद्ध के बचपन के नाम राजकुमार सिद्धार्थ के नाम पर हुआ।
3: वाह ज्ञानी बाबा, श्वेता की जय हो। मैं तो चली गाड़ी में बैठने, किरण दी आ गई हैं, उनके गाने की आवाज सुनाई दे रही है।
4: हमार राजा राखे दुई रनिया।
5: बड़े दुख की बात है,

0: वाह किरंदी, आप आती हैं और अपने गानों से जोश भर देती हैं। आज तो बहुत मजा आएगा, लाली बुआ के हाथ के पुलाव भी खाने को मिलेंगे।
1: हाँ सही कह रही हो, काला नमक सुगंधित चावल तो है ही और बहुत प्रसिद्ध है, ये तो विदेशों में भी एक्सपोर्ट होता है।
2: जब हम चावल खाते हैं तब कभी नहीं सोचते कि किसान भाई कितनी मेहनत से हमें चावल देते हैं, पर डाइनिंग टेबल पर बैठे हम लोग पुलाव या बिरयानी बनाने वाले की जमकर तारीफ करते हैं, पर ये चावल दिया किसने, उगाया किसने, ये कभी नहीं सोचते।
3: हाँ किरंदी, गांव की गूंज की टीम का उद्देश्य तो यही है, गांव की मिट्टी से फिर से सबको जोड़ने का, पर हम सब मिलकर कहते रहते हैं अरे गांव में क्या रखा है।
0: नए जोश के साथ शुरुआत करते हैं और एक बार फिर गांव की गूंज की पूरी टीम लोगों को बताते हैं कि गांव से दूर होकर के हमने क्या खोया है, पर जोश के लिए गाना तो बनता है भाई।

0: आइए आइए, आप सभी का स्वागत है सिद्धार्थ नगर में। मैं अपने फ्रेंड के साथ कपिलवस्तु घूमने गया था, पता चला आप लोग आ रहे हैं तो मैं रुक गया।
1: हरिओम, ये तो बहुत अच्छा हुआ। लाली बुआ तो शायद डॉक्टर के पास गई हैं अपनी भैंस के लिए।
2: अरे भैंस के भी डॉक्टर होते हैं? ये तो मैंने पहली बार सुना है।
3: वेटनरी डॉक्टर, गाय भैंस कुत्ते हर जानवर के डॉक्टर होते हैं। ये जानवर की भी वैक्सीन होती है।
0: सही बोला जिम्मी तुमने, जानवरों का भी बहुत ज्यादा ख्याल रखना होता है और जाड़े में उनको भी तो सर्दी जुकाम हो जाता है।
4: हरिओम भैया, फिर बताइए कैसे हम लोग जानवरों की देखभाल करें? जाड़े में चारों ओर पहाड़ी पहाड़ दिख रहे, कितना सुंदर है। पिहरवा गांव पर ठंड भी और ज्यादा पड़ती होगी।
2: पहले यह लाल रंग का आयुर्वेदिक पानी पियो। यह सप्पन वुड के पेड़ के छिलकों को पानी में उबाल करके और जब हल्का गुनगुना रहे तब इसको पियो, ये बहुत फायदा करता है।
3: स्वप्न वुड, इसे इंडियन रेड वुड भी कहते हैं। देखो यह पेड़ भी यहाँ लगा है। आयुर्वेदिक पानी हम लोग के यहाँ नहीं पॉपुलर है। किरण दी के गाने को देखो, कितने लोग वेट कर रहे हैं।

0: आप लोग को पिपराहा गांव घुमाने ले चलता हूँ, पर उससे पहले हम जानवरों को सर्दी से कैसे बचाएं इस पर बात कर लेते हैं। ठंडी के मौसम में अधिकतर जानवर कोल्ड स्ट्रोक से मरते हैं और काफी मात्रा में बीमार भी पड़ते हैं। इससे बचाव करने के लिए हमें जानवरों के आसपास अलाव जला के रखना होगा ताकि उनके पास नमी ना बने, और दूसरा उनको तिरपाल से या टाट के बोरे से ढक के रखना चाहिए ताकि उनको सर्दी ना लगे।
1: खाने पीने का विशेष ध्यान रखिए और कोशिश कीजिए ठंड में गुनगुना पानी पिएं और पिलाएं, जरूर पिलाएं, क्योंकि साफ सफाई का भी ध्यान रखें और गुनगुना पानी भी पिएं।
2: एक बात हमें भी पता है कि ठंड में गाय भैंस को रात के समय सूखा चारा खिलाना चाहिए और हरे चारे और मक्के का सेवन भी जरूर कराना चाहिए।
3: बहुत बहुत बहुत बड़ा वाला थैंक यू। दूध हम सभी पीते हैं और चाहते हैं कि बिल्कुल प्योर मिले, पर उन जानवरों की देखभाल के बारे में हम कभी नहीं सोचते।
4: बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन है, पर हरिओम भैया, अगली बार वैक्सीन और सभी बीमारियों के बारे में डिटेल में बता दीजिएगा।
0: ठीक है जिमी, चलो हम सब लोग यहाँ से पुरातात्विक स्थल को देखने चलते हैं जहाँ मठों के खंडहर के अवशेष मिले थे।
2: यहाँ देखो किरण दीदी के लोकगीत सुनने कितने लोग बैठे हैं। लो श्वेता, ढोलक लो और किरण दी को हारमोनियम भी दे दो।

0: कुछ विद्वान मानते हैं कि पिपराहवा गांव शाक्य साम्राज्य की राजधानी कपिलवस्तु के प्राचीन शहर की जगह है, जहां भगवान बुद्ध ने अपने जीवन काल के पहले 29 साल व्यतीत किए थे।
1: माना जाता है कि बुद्ध भगवान की मृत्यु के बाद राख का एक बड़ा हिस्सा यहां दफन हुआ था, जो उनके अपने शाक्य वंश को दिया गया था। एक बड़ा स्तूप और कई मठों के खंडहर है, साथ में एक संग्रहालय भी है। देखो कितना बड़ा स्तूप है यह।
2: चलिए, नहीं तो कोहरा गिरने लगेगा।
3: देखो देखो, लाली बुआ पुलाव और मूंग की दाल के कबाब भी ले आई हैं। आपकी भैंस कैसी है लाली बुआ?
1: वहाँ बहुत टेस्टी खाना है, स्पेशली टमाटर की चटनी रास्ते के लिए बुआ ने गर्म करके दी है और साथ में मूंगफली भी बांध के दी है।
0: अलाव के बगल में बैठ के खाना खाने का तो मजा ही कुछ और है। और वो देखो, किरण दीदी गुनगुनाने भी लगी।
4: अरे दीदी, गाना तो सुना ही दीजिए ना, अब तो पूरा माहौल बन गया है।

0: आप सभी को नमस्ते और बहुत प्यारे से ट्रिप के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। गांव के गूंज की टीम जल्दी ही फिर से वापस आएगी जानवरों के रख रखाव की पूरी जानकारी के साथ। सो टाटा बब बाय, फिर मिलेंगे।
1: बच्ची को आराम ही नहीं मिल रहा, क्या करें?
2: इसको तुरंत अल्टिस किप्स ले चलो।
3: राजधानी लखनऊ में बच्चों के पहले सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल अल्टिस किप्स में दिल, गुर्दे, दिमाग या पेट की हर बीमारी का होता है बेहतरीन इलाज।
4: यहाँ 120 बेड, ग्रेड 3 NICU, एडवांस PICU की सुविधा के साथ ही HFO, INO, वेंटिलेटर, फोटोथेरेपी, डायलिसिस के साथ साथ इमरजेंसी की सुविधा भी उपलब्ध है।
3: विजिट करें अल्टिस किप्स, IIM रोड, लखनऊ। संपर्क करें 0522-2711-827।
5: अरे सुना?
0: क्या?
5: यही कि गीता इंटरनेशनल स्कूल सेशन 2026-27 के लिए दे रहा पहले 100 एडमिशन्स पर एडमिशन फी पर 100% डिस्काउंट।
0: वाओ!
5: गीता इंटरनेशनल स्कूल फॉर अ बेटर टुमारो। एडमिशन्स ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। गीता इंटरनेशनल स्कूल, जहां आपको मिलता है साइंस एंड कॉमर्स स्ट्रीम, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, ट्वाइक्वांडो क्लासेस और वाहन की सुविधा उपलब्ध है। पता है गोंडा रेलवे स्टेशन से 1 किलोमीटर दूर जयनगरा बलरामपुर रोड गोंडा। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 945-583-5346।
6: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े बनता है।
7: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
6: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
7: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती है, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
6: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
7: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, तुरालो रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करें 888-100-9400।
4: सिर में लगातार दर्द, चक्कर आना, याददाश्त में कमी या हाथ पैर का सुन पड़ जाना, इन लक्षणों को नजरअंदाज ना करें।
8: आइए मंडल के एकमात्र न्यूरो हॉस्पिटल सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर, जहां दिमाग, नस, रीढ़, माइग्रेन, कमर दर्द, लकवा, ब्रेन हैमरेज व न्यूरो से संबंधित सभी बीमारियों का मंडल के जाने माने वरिष्ठ न्यूरो सर्जन डॉक्टर सुजीत कुमार शुक्ला द्वारा सफल इलाज 17 वर्ष के अनुभव के साथ, साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सुविधा उपलब्ध है। भरोसे का दूसरा नाम सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर। अभी कॉल करें 9838-288-386।
4: पता है सर्कुलर रोड, आवास विकास कॉलोनी, गोंडा।
9: इलाज होगा बेहतर, खुशहाल होगी जिंदगी।
10: हुक्कई से खेलन जइबो,

0: छूने दो बच्चों के हाथों को चांद सितारे, यही प्यारे बच्चे हैं भविष्य हमारे। प्रोफेसर डॉक्टर शेर बहादुर सिंह, पूर्व सदस्य उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग, प्रख्यात शिक्षाविद के सपनों का इंग्लिश मीडियम CBSE पैटर्न वाला मॉडर्न पब्लिक स्कूल एवं मॉडर्न किडीज प्ले ग्रुप से क्लास 9th। आपके बच्चों के लिए मिलने वाली सुविधाएं हैं क्रिएटिव प्लेवे मेथड से पढ़ाई, थीम बेस्ड क्लासरूम, ऑडियो वीडियो विजुअल्स, कंप्यूटर स्मार्ट क्लास, वाहन की सुविधा, CCTV कैमरे से लैस कैंपस और स्विमिंग पूल पूल डे की सुविधा उपलब्ध है। एडमिशन ओपन, पता है LIC कॉलोनी निकट गोंडा मेडिकल सेंटर, पटेल नगर गोंडा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9670931251 और 8840098123। मॉडर्न पब्लिक स्कूल, निखार रहे हैं आपके बच्चों का भविष्य।
1: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े बनता है।
2: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
1: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
2: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
1: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
2: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, तुरालो रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करें 888-100-9400।

गुड आफ्टरनून एवरीवन. भाई आ चुकी हूँ मैं आपकी होस्ट और दोस्त आपकी आरजे आयुषी लेके आपका अपना प्रोग्राम ज्ञानस्थी लाइव. आज है दिन फ्राइडे और आज के दिन हम फन करते हैं लेकिन कुछ इन्फॉर्मेशन के साथ. जी हाँ, आज बहुत सारी जानकारी आपके लिए मैं लाई हूँ लेकिन आज इस फ्राइडे को फन डे बना के जैसा कि हम हमेशा करते हैं कि आज के दिन हम इन्जॉय करते हैं धमाकेदार गानों को. आज भी हम दशकों पुराने, दशकों यानी बहुत ज़्यादा दशकों नहीं हुआ है, बस एक दशक पुराने कुछ ऐसे गाने जो हो चुके हैं दशकों पुराने लेकिन आज भी इनका क्रेज़ बहुत ज़्यादा है यंगस्टर और सभी के बीच. जब ये गाना बजता है ना तो हमारे दिल में ऐसा लगता है कि जैसे भाई किसी ने एनर्जी की पुड़िया फेंक दी. और ये एनर्जी ऐसी है कि भाई हमें हमारे दिन याद ले आती है, हमारे दिन मतलब कि भाई देखिए हमारे पुराने दिन, क्योंकि हम हमेशा कल ज़्यादा क्रेज़ी रहते थे, कल ज़्यादा ही एनर्जेटिक रहते थे. आज जैसे जैसे बड़े हो रहे हैं हमें ऐसा लग रहा है कि यार लाइफ में ऐसे बुढ़ापा थोड़ा जल्दी सा आ गया. लेकिन भाई बुढ़ापे को इतनी जल्दी ना आने दीजिए, जब तक हैं इस दुनिया में हम ऐसे ही यंग रहेंगे. साल देखिए कभी भी उम्र अंकों में नहीं नापी जाती है, हमेशा उम्र आपकी एनर्जी, आपके भाव, आपके बिहेवियर और आपकी बातों से नापी जाती है. अब अगर आप तब इसमें एनर्जी है आपके तो फिर नंबर कितने भी हो, हम तो भाई यंग ही यंग हैं. आप जैसा कि जानते हैं कि आज हम फ्राइडे को बात करते हैं कुछ ऐसे साइकोलॉजिकल फैक्ट्स की जो हमें जानना चाहिए, क्योंकि हमारी ज़िंदगी में थ्रू आउट द पीरियड, मतलब आप जब से जन्म लेते हैं तब से आपके अंत तक कुछ ना कुछ ऐसे चेंजेस होते हैं, कुछ ना कुछ ऐसे फैक्ट्स होते हैं जो कि हमारी रियल लाइफ से जुड़े होते हैं जो आपको नहीं पता है, इसीलिए आप थोड़े से कंफ्यूज रहते हैं. इसी को आगे बढ़ाते हुए आज भी मैं कुछ चीज़ें लाई हूँ. जैसे कि लास्ट फ्राइडे हमने बात की थी कि जन्म से लेकर के टीनेज तक हमारे बॉडी में जो चेंजेस होते हैं, जो हमारे बिहेवियर में, थॉट प्रोसेस में चेंजेस होते हैं, वो कैसे होते हैं, क्यों होते हैं और उसके पीछे का रीज़न क्या है. बिल्कुल ठीक उसी तरीके से आज इस टॉपिक को आगे बढ़ा के, क्योंकि लास्ट टाइम मैंने कहा था आज हम बात करेंगे टीनेज से लेकर के ओल्ड एज के बीच में होने वाले चेंजेस जिनके पीछे साइकोलॉजिकल रीज़न बहुत बड़ा है. आशा करती हूँ कि आपको ये समझ आएगा और आप इन्जॉय भी करेंगे. लेकिन सबसे पहले आपका हाल चाल कैसा है वो जल्दी से आके चैट बॉक्स में बता दीजिए. अब दोस्तों सबसे पहले अगर हम बात करें तो सबसे पहली चीज़ जो मैं आपको बताना चाहूँगी वो है टीनेज का तूफ़ान. अब देखिए टीनेज होता है हमारे 13 साल से 19 से 20 साल के बीच का सफ़र, ठीक है. और दोस्तों आपने देखा होगा कि टीनेज अचानक गाड़ी तेज़ चलाता है, बिना कुछ सोचे एग्ज़ाम के एक दिन पहले ही प्लान कैंसिल कर देता है, कभी कुछ, मतलब तुरंत तुरंत इनके जो प्लान्स हैं वो चेंज होते रहते हैं, इनके बिहेवियर चेंज होते रहते हैं. आपको पता है ऐसा क्यों होता है? नहीं पता, मैं बताती हूँ भाई. इससे ये पता चलता है कि ब्रेन का प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स अभी भी पूरी तरीके से डेवलप नहीं हुआ है. अब ये भाई जो ये जो प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स है ये 25 साल तक डेवलप होने के लिए टाइम लगता है. आपको लगता है कि बच्चा बड़ा हो गया है, हाइट में है, 20 साल हो गया है, 21 साल का हो गया, तो वो उसकी मानसिकता जो है उसकी पूरी तरीके से डेवलप हो चुकी है, उसकी बॉडी अच्छे से. लेकिन आपको बता दूँ कि बॉडी हमारी 25 साल तक फुल्ली डेवलप नहीं होती, स्पेशली हमारा ब्रेन तो बिल्कुल भी नहीं होता है. 25 साल तक का टाइम ये लेता है, इसीलिए इंपल्सिव डिसीजन आते रहते हैं. मैं आपको एग्जांपल से समझाती हूँ कि भाई अगर टीनेजर का कोई फ्रेंड उसे कहे कि चलो मूवी चलते हैं, ऐसा बोले तो वो फैमिली डिनर छोड़ के चला जाता है दोस्तों के साथ. ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इस एज में दोस्ती सबसे ज़्यादा मैटर करती है. और अगर मैं और आपको समझाऊँ तो जब टीनेजर बार बार पूछता है ना

मुझे क्या करना चाहिए, मैं बहुत कंफ्यूज हूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, ये होती है आइडेंटिटी क्राइसिस। ये बिल्कुल नॉर्मल है और 25 साल की उम्र तक, 25 से कई लोग 26 तक भी चले जाते हैं, तब तक लोग अपने आइडेंटिटी को बनाने के पीछे बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं और इसी में कंफ्यूज होके रहते हैं। लेकिन जैसे जैसे एज बढ़ती है क्लियरिटी और भी ज़्यादा बढ़ने लगती है। तो ये मैंने आपको इसलिए बताया क्योंकि भाई अगर आप अपने बच्चों को सोचते हो कि हाँ वो बहुत जल्दी डेवलप हो गए हैं या अभी तो वो बड़े हो गए, अब तो उन्हें अपना डिसीजन सही से ही ले लेना चाहिए, अभी तक क्यों कुछ नहीं कर रहे हैं 20-21 साल के हो गए, तो मैं बता दूं कि अभी वो उस उम्र में नहीं है कि वो किसी डिसीजन को बहुत सटीक तरीके से ले पाएं, सारी चीज़ों को प्रैक्टिकल सोच के जीवन में एक ऐसा फैसला लें जो उनकी उम्र भर उनका साथ निभाए। तो गलतियां इस उम्र में होती हैं और कहीं ना कहीं ये हम सभी जानते हैं कि इंसान गलतियों से ही सीखता है। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको जानना चाहिए। अब आपको पता है कि भाई जब इंसान यंग एज में होता है तो उसके अंदर जोश और जुनून कुछ ज़्यादा ही होता है। अब ये एज जो है टीनेज की, ये भी इस एज की ही कह सकते हैं, हमें जब भी हम टीनेज में होते हैं तो हमारे घर वाले जरूर कहते हैं अरे अब तुम बड़े हो रहे हो, तुम्हारे अंदर जोश आ रहा है, तुम्हारे अंदर जुनून आ रहा है। तो ये क्या होता है, क्यों होता है और इससे क्या क्या बदलाव होते हैं हमारी बॉडी में, ये अगर आपको जानना है तो हमारे साथ बने रहिए आज के हमारे शो में, क्योंकि फिलहाल ले रहे हैं एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक पर हम एक बहुत ही प्यारा सा गाना सुनेंगे, इन्जॉय करेंगे, लेकिन ब्रेक के बाद हम जानेंगे कि और क्या क्या चेंजेस होते हैं जिसके पीछे साइकोलॉजिकल रीज़न बहुत बड़ा है। स्टे ट्यून्ड।

वेलकम बैक एवरीवन, आ चुकी हूँ वापस। मैं आपकी होस्ट आयुषी लेके आपका अपना प्रोग्राम ज्ञानस्थी लाइव, जिसमें हम आज इंजॉय कर रहे हैं बहुत ही प्यारी सी प्लेलिस्ट, साथ ही साथ कुछ ऐसे इन्फॉर्मेशन जो हमें जानना बेहद ज़रूरी है। जी हाँ, इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हमें अभी ज़िंदगी को समझना है और ज़िंदगी इतनी लंबी है, इतने आंधी तूफान है, इतने रास्ते टेढ़े मेढ़े हैं कि सब समझने चलते ना हम खुद ही कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। लेकिन आपकी सभी कन्फ्यूजन को दूर करने और अपनी समझ से पूरी कोशिश करके आपको सारी चीज़ें समझाने आ चुकी हूं मैं, आपकी होस्ट और आपकी दोस्त आरजे आयुषी। चलते हैं हम हमारी नेक्स्ट इंफॉर्मेशन की तरफ, जो कि है एक ऐसी एज की जिसे हम जोश और जुनूनी एज कहते हैं। जी हाँ, एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको देती हूं कि टीनेजर को एग्जाम में एक नंबर कम मिले तो पूरा दिन वो उदास रहता है। ये हार्मोनल रोलर कोस्टर का रिजल्ट होता है दोस्तों। लेकिन जैसे ही वही इंसान 23 से 24 साल का हो जाता है, वो सेम सिचुएशन को कार्मली डील करने लग जाता है। बहुत ही शांति से वो उस पूरे सिचुएशन को डील करने लग जाता है। अब आपको पता है कि ऐसा क्यों होता है? मैं बताती हूँ भाई, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ब्रेन मैच्योर हो चुका होता है और इस एज में एक नया फीलिंग आता है, जिसे जैसे कोई कॉलेज में किसी दोस्त, मतलब किसी से दोस्ती करता है या धीरे धीरे उसे अपनी डीपेस्ट बातें शेयर करने लग जाता है, दिल की गहराई से जुड़े लगता है। इसी को इंटीमेसी कहते हैं और ये चीज़ कहीं ना कहीं 20 साल से लेकर 25 साल के बीच में डेवलप होती है। इसे हम क्लोजनेस और ट्रस्ट की एक कैपेसिटी के नाम से भी जानते हैं। आपने नोटिस किया होगा कि जब आप अगर अभी अपनी यंग एज में हैं, अभी आप कॉलेज में हैं, या फिर आप जब भी कॉलेज में थे, यंग एज में थे, तब आप अपने घर वालों से थोड़ा कटाव रहता था आपका, लेकिन आपके दोस्तों से आप बहुत ज़्यादा करीब रहते थे। उनसे आप अपनी सारी डिटेल शेयर करते थे, कौन सी सब्जी बनी है क्या नहीं से लेकर के जिंदगी के बड़े बड़े सुख दुख आप सब अपने दोस्तों से बांटते थे। लेकिन जब आपने वहां पे वो ट्रस्ट फील किया होगा, वो इंटीमेसी आपको मिली होगी, तभी आप आज उनके साथ दोस्त होंगे। ये भी एक चीज का फैक्ट है। देखिए, जब हम दोस्ती करने एक ऐसे उम्र के पड़ाव में होते हैं जहां पे दोस्ती बहुत ज्यादा होती है, लेकिन आपने नोटिस किया होगा स्कूल में हमारे खूब सारे दोस्त होते हैं, लेकिन कॉलेज में आते आते थोड़े से कम हो जाते हैं। लेकिन जब हम कॉलेज को पार करके अपनी जिंदगी को आगे अपने करियर में फोकस करते हैं, तो कहीं उन सभी दोस्तों में से एक या दो दोस्त हमारे साथ उम्र भर रहता है। वही एक ऐसा इंसान है जिससे आपको इंटीमेसी, क्लोजनेस और ट्रस्ट फील हुआ होगा। इसीलिए ये जो एज है, ये सिर्फ एक ऐसी एज है, कई लोगों को मैंने ये देखा है, कई माँ बाप को देखा है, बड़े भाई बहनों को देखा है, जो ये कहते हैं कि तुम मेरी लाइफ के एक्सपीरियंसेस सीखो। किसी भी बच्चे को अगर आप ये कहते हैं कि आप मेरी लाइफ के एक्सपीरियंसेस सीखो, तो मैं आपको बता दूँ कि ह्यूमन ब्रेन इन चीज़ों पर काम नहीं करता है। वो हमेशा खुद की लर्निंग पर काम करता है। जब तक वो खुद गिर के नहीं सीखेंगे, खुद चीज़ें एक्सप्लोर नहीं करेंगे, आप उन्हें कोई चीज़ लाख समझाएं, वो नहीं समझने वाले हैं। और ये एक बहुत बड़ा रीज़न है, क्योंकि ह्यूमन ब्रेन इस तरीके से वर्क करता है। इसीलिए स्कूल एंड कॉलेजेस में प्रैक्टिकल पे और प्रैक्टिकल बेस्ड चीज़ें ज़्यादा सिखाई जाती हैं और लोगों को समझ भी वो चीज़ ज़्यादा आती है। इसीलिए किसी पे फोर्स करने, किसी को बहुत ज़्यादा दबाने की या किसी पे प्रेशर बनाने की कि आप हमारे कहानी से सुनो, हमारे कहानी से सीखो, जो हम कह रहे हैं आप वो करो, ये करेंगे तो कहीं ना कहीं आपका बॉन्ड भी उनसे थोड़ा सा कमज़ोर हो जाएगा और वो अपनी लाइफ में उन्हें एक ट्रस्ट इशू, क्लोजनेस जो है वो आपसे वो दूर होने लग जाएगी और वो आपसे थोड़ा सा कटाव में रहने लग जाएंगे। अगर आप ये नहीं चाहते तो लेट देम एक्सप्लोर देयर लाइफ, उन्हें अब चीज़ों को एक्सप्लोर करने दीजिए, सीखने दीजिए। कहते हैं ना कि गिर के सीखना ज़्यादा अच्छा, और बादाम से अकल नहीं आती, हमेशा ठोकर खाने से आती। ये आपने हमेशा व्हाट्सएप स्टेटस में देखा ही होगा, तो ये कहीं ना कहीं ये भी एक बहुत बड़ा फैक्ट है, तो आपको इस पे प्रेशर नहीं बनाना चाहिए। उसके बाद दोस्तों, अगर हम टीनेज की बात कर ही रहे हैं, तो देखिए इस एज में करियर और कन्फ्यूजन, ये दोनों अपनी चरम सीमा पर होते हैं। हर इंसान रात को जब सोता है, खा पी के, लाइट बंद होती है, ठंडी हवा आती है, तो आपको पता है उसके बाद क्या आता है? नहीं पता? नींद? ना भाई, नींद तो बिल्कुल नहीं आती। उस वक्त आती है खूब सारी ओवरथिंकिंग। जी हाँ, ओवरथिंकिंग के फ्यूचर में क्या होगा, क्या नहीं होगा, अगर मैं कुछ नहीं कर पाया तो, अगर सब मेरे से आगे निकल गया और मैं बिल्कुल लो रह गया, मैं कैसे लोगों को फेस करूँगा, मेरा करियर क्या होगा, पैसे कहाँ से आएंगे, घर कैसे चलेगा, और ना जाने कितनी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे दिमाग में दौड़ती रहती है। आपको पता है कि इसके पीछे का क्या रीज़न है?
सिर्फ ओवरथिंकिंग ही नहीं है, बहुत बड़ी चीज़ें हैं जो हमारी लाइफ से जुड़ी हुई हैं, जो हमें जानना चाहिए। ये एक ऐसे लोगों के बीच में ज़्यादा होती है जो 20 से 25 साल के बीच में ये एकदम अपने पीक पे रहता है। इसके पीछे क्या चीज़ें हैं क्या नहीं है वो जानने के लिए आपको सुनना होगा हमारा आज का शो ज्ञानश्री लाइव, जिसमें आज हम समझ रहे हैं कुछ साइकोलॉजिकल फैक्ट्स की। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक पे जाने से पहले मैं आपको बता दूं कि आप सुनने जा रहे हैं एक बहुत ही प्यारा सा सॉन्ग, तुम्हें जो मैंने देखा चुकी है मूवी मैं हूं ना से। सुनते हैं ये बहुत ही प्यारा सा गाना, इस गाने के बाद आएंगे और आपसे बातें करेंगे और एक और फैक्ट को डिस्कस करेंगे। स्टे ट्यून्ड।

हाँ जी दोस्तों, आप अभी इंजॉय कर रहे हैं सोनी सोनी अखियों वाला सॉन्ग, जो कि है मोहब्बते मूवी से। जी हाँ, एक ऐसी मूवी जो कहीं ना कहीं रोमांस प्रेमी, प्यार प्रेमी, लव पगलूस के लिए बिल्कुल एक एग्जाम्पल है कि भाई आखिर प्यार होता क्या। और इसका जैसा नाम है मोहब्बतें, तो कहीं ना कहीं हमें मोहब्बत तो सिखाता ही है। फिलहाल आज हम मोहब्बत नहीं सीख रहे हैं, आज हम बात कर रहे हैं लॉजिक्स की और सबसे बड़ी बात फैक्ट्स की। जी हाँ, फैक्ट्स की हम बात कर रहे हैं आज। तो चलते हैं नेक्स्ट फैक्ट की तरफ, जो कि है हमारे करियर और कन्फ्यूजन से रिलेटेड, जो कि मोस्टली यंग एज में होता है। अब दोस्तों सोचिए कि एक 24 साल का लड़का अच्छी जॉब में है, सैलरी भी ठीक ठाक है, लेकिन फिर भी सोचता है कि क्या मैं इस फील्ड में क्या कर रहा हूँ, क्या ये मेरे लिए बनी है, क्या यही मेरी असली खुशी है। ये क्वार्टर लाइफ क्राइसिस है जो कि बहुत लोगों को होता है। ये बिल्कुल नॉर्मल है, लेकिन हमें इस कन्फ्यूजन में बिल्कुल नॉर्मल फील नहीं होता है। हमें ऐसा लगता है कि कोई हमें पुश कर रहा है, यानी कि हमें कह सकते हैं कि हम बहुत ज़्यादा हम कुछ करने जा रहे हैं और कोई हमें ढकेल रहा है कि बस इससे हम नीचे गिर जाए। हमें ऐसा लगता है कि कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए, कहीं कुछ गलत ना हो जाए हमारे साथ। और न जाने कितने ऐसे थॉट्स हैं जो इस एज में हमारे पास आते रहते हैं। इसी को हम क्वार्टर लाइफ क्राइसिस कहते हैं। अब एक और एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ कि जब वही इंसान 35 साल का हो जाता है, अपने बच्चों को होमवर्क कराता है या नए एम्प्लॉय

हैं, इन सबको जब आप गाइड करने लग जाते हैं तो ये आपकी जनरेटिविटी होती है। और इसी को कहीं ना कहीं हमारे बड़े बुजुर्ग कहते थे कि भैया अब बड़े हो रहे हैं, अब मैच्योर हो रहे हैं, इसी को हम कहते हैं बड़े होना नॉर्मल बोलचाल की भाषा में। इसी के साथ साथ अगर हम बात करें मिड लाइफ के मोड को, अब मैं आपको मिड लाइफ का मोड समझाती हूँ। देखिए एक एग्जाम्पल के साथ समझाती हूँ कि मान लीजिए 45 साल का इंसान अचानक पुरानी जॉब छोड़ के नया जॉब स्टार्ट करना चाहता है या पेंटिंग सीखने लगता है, बोलता है कि मुझे कुछ अलग करना है, इसी को हम मिड लाइफ क्राइसिस कहते हैं। ज़िंदगी को दोबारा से सोचना या फिर हम कहें दोबारा से जीने की जो चाह होती है। जी हाँ, इसी एज में कभी कार की चाबी रख के भूल जाना या फिर नाम याद ना आना, ये बिल्कुल कॉमन होता है। मेमोरी थोड़ी सी स्लो हो जाती है, लेकिन दूसरी तरफ एक प्रॉफिट और होता है हमारा कि हमारी क्रिएटिविटी भी जागने लगती है। वही इंसान जब छोटी बातों पर जो गुस्सा नहीं करता, जैसे पहले ट्रैफिक जाम पर चिड़चिड़ा हो जाता था, अब वो शांत रहने लग जाता है। जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती जाएगी, आपके अंदर कामनेस, शांति, ये सब बहुत ज़्यादा होने लग जाएगा। तभी आप नोटिस करिए कि जो कभी कोई ऐसे व्यक्ति होंगे जो बहुत ज़्यादा बड़े हैं, वही आपको सबसे ज़्यादा ऐसी बातें करेंगे जो उनकी लाइफ की सच्चाई होती है और कहीं ना कहीं आप उससे रिलेट कर पाते हैं। पर फिर भी आप अगर उनसे छोटी एज के हैं, उनसे यंग एज के हैं, छोटे हो जाते हैं, तो आपको ऐसा लगता है कि अरे ये तो बहुत बड़ों वाली बात कर रहे हैं। तो वो बड़ों वाली बात नहीं कर रहे हैं, वो अपनी एग्जैक्ट एज में जो उन्होंने सीखा है, जितनी शांति उन्होंने पाई है, उस कार्मनेस को आपको बता रहे होते हैं। लेकिन आप क्योंकि वो नहीं समझ पाते, क्योंकि आप उनसे भी छोटी एज के हैं, आप अपनी एज की चीज़ों को ज़्यादा समझ पाएंगे। यही एक बहुत बड़ा रीज़न है कि आप अपनी एज के जो दोस्त होते हैं उनके साथ ज़्यादा रहते हैं, और अधिकतर दोस्त जो होते हैं आपके, जो आपको समझते हैं, आपसे रिलेट कर पाते हैं, वो आपकी एज के होते हैं। और वहीं जो आपके मेंटर्स होते हैं, टीचर्स होते हैं, वो आपसे बड़ी एज के होते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें बुढ़ापे की, तो भाई आप में मुझे ऐसा लगता है कि आप सब में से कई लोग ऐसे होंगे जो अपनी ओल्ड एज पे पहुंच गए होंगे, लेकिन कुछ ज़्यादातर जो होंगे वो यंग एज में होंगे। लेकिन भाई बुढ़ापा तो हमें भी देखना है ना, आज ना कल हमें भी तो बूढ़े होना है ना। और कितने लोग तो ऐसे हैं जो 20 साल की उम्र में बुढ़ापों वाली चीज़ को अचीव करके बैठ गए। जी हाँ, कुछ लोगों ने इतना नाम रोशन किया है अपना कि वो 20 साल की उम्र में 60-65 वाली अचीवमेंट आज ही कर लिए। अरे भाई, वही कमर का दर्द, वही पीठ दर्द, वही घुटनों का दर्द, वो तो आज की जनरेशन के लोगों को भी होता है। लेकिन देखिए, ये जो ओल्ड एज के लोगों को होता है, ये तो उनकी एज के अकॉर्डिंग, एज के लिए होता है, एज की वजह से होता है। लेकिन जो यंगस्टर को ये प्रॉब्लम हो रही है, तो उनमें विटामिन डी की कमी होती है और विटामिन ई की भी कमी होती है, तो उसको पूरा करें। हालांकि ये सब मजाक था, अब हम बात करेंगे साइकोलॉजिकल फैक्ट्स की। लेकिन इसको जानने से पहले सुनते हैं ये बहुत ही प्यारा सा सॉन्ग, जिसको बीच में रोक के मैं आपके पास आ गई हूँ। लेकिन इस सॉन्ग के बाद आएंगे और बात करेंगे ओल्ड एज की।

वेलकम बैक एवरीवन आफ्टर अ वेरी वेरी वेरी ब्लॉकबस्टर ब्रेक. भाई अभी हम एंजॉय कर रहे हैं एक बहुत ही प्यारा सा सॉन्ग नगाड़ा नगाड़ा फ्रॉम द मूवी जब वी मेट. हम भी एंजॉय कर रहे थे और अब हम चलते हैं हमारे अगले फैक्ट की तरफ. भाई देखिए गाने सुनते हमारा मूड इतना फ्रेश हो जाता है, इतना एनर्जी वाला हो जाता है कि मन करता है भाई क्या ही कर डाला जाए. लेकिन भाई कुछ ज़्यादा नहीं करना है क्योंकि गर्मी भी ज़्यादा हो रही है. आपको फ़िलहाल तो इन्जॉय करना है ये प्यारा सा प्रोग्राम और साथ ही साथ अपनी ज़िंदगी में हर चीज़ बेहतर करनी है. चलते हैं जानते हैं नेक्स्ट फैक्ट. देखिए अगर हम बात करें फैक्ट नंबर 5 की, क्योंकि अभी तक हमने कई सारे फैक्ट कवर किए लेकिन अब 5वीं की तरफ चल रहे हैं जो कि बहुत बड़ा है. देखिए हम सभी को पता है कि जब हमारी दादी नानी जब बूढ़ी होने लग जाती हैं तो हम लोग कहते हैं अरे अब ये तो बूढ़ा गई हैं, अब इनकी कहाँ इतनी बुद्धि है, ख़त्म हो चुकी है बुद्धि, धीरे धीरे भूल रही हैं. लेकिन मैं आपको बता दूं दोस्तों कि जो इंटेलिजेंस होती है, बुद्धि जो होती है, ये बुद्धि बढ़ती रहती है, स्पीड नहीं. जी हाँ, मैं आपको एक एग्जांपल समझाती हूँ. देखिए एक 25 साल का बच्चा नया मोबाइल ऐप सीखने में 10 मिनट लेता है, लेकिन वहीं 60 साल का इंसान वही सीखने में ज़्यादा टाइम लेता है. ये होती है फ्लूइड इंटेलिजेंस, ये फ्लूइड इंटेलिजेंस का काम होता है. ठीक है, जब ये फ्लूइड इंटेलिजेंस कम होने लगती है तब हमें चीज़ों को सीखने में बहुत ज़्यादा टाइम लगने लग जाता है. लेकिन जब फैमिली में कोई बड़ा फैसला लेना हो, सब लोगों को एक ही चीज़ याद आती है, भाई कहाँ हैं हमारे घर के बड़े बुजुर्ग, यानी हमारे दादा दादी नाना नानी. अब भाई इनसे इसलिए पूछा जाता है क्योंकि उनका एक्सपीरियंस जो बेस्ड जो ज्ञान होता है, जिसे हम साइकोलॉजी की भाषा में क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस कहते हैं, वो सबसे ज़्यादा स्ट्रांग होता है. देखिए इसी चीज़ की मैं बात कर रही थी कि जो बुढ़ापे में जो मेमोरी होती है, जो समझ होती है, इंटेलिजेंस होती है, वो घटती कभी भी नहीं है, वो हमेशा पक्की और बढ़ने वाली हो जाती है. आपने दादा दादी नाना नानी को देखा होगा कि जो ये 60 साल 65 साल इन्होंने गुजारे हैं, ये ऐसे ही नहीं गुजार लिए. आपने वो डायलॉग तो सुना होगा ना कि भैया ये जो बाल हैं ये मैंने धूप में नहीं सफ़ेद किए हैं, ये इन्होंने एक्सपीरियंस से सीखे हैं. और जब हमें कोई घर का बहुत अहम फैसला लेना होता है, बहुत बड़ा फैसला लेना होता है, तब हमें याद आते हैं हमारे घर के बड़े बुजुर्ग, और इन्हीं के पास होती है क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस जो हमारी जिंदगी के बेहतर फैसले लेने में हेल्प करती है. वहीं अगर हमें कुछ सीखना हो तो हम अपने यंग एज में बहुत ही अच्छे से सीख सकते हैं, जिसमें काम आती है हमारी फ्लूइड इंटेलिजेंस जो कि हमारे यंग एज में हमारे पास होती है. एक एग्जांपल से समझिए कि दादी अपने बच्चों की अच्छी यादें ज़्यादा याद रखती हैं और बुरा काम याद रह जाता है. यानी कि हम जो हमारी जो दादी वादी होती हैं, जब भी कभी बात करती हैं तो हमेशा वो यही ज़्यादातर यही आपको बात करेंगी कि भैया जब छोटे थे तो इतना अच्छा काम किया था ये, क्योंकि उसे वो बार बार ऑन रिपीट याद करती है. लेकिन जो पुराने जो कोई बुरे किस्से होते हैं वो उन्हें याद करने नहीं पड़ते, वो अचानक से याद आ जाते हैं. इसे पॉजिटिविटी इफ़ेक्ट कहते हैं. दोस्ती कम हो जाती है और लेकिन जो हमारे पास बच जाता है वो गहरा हो जाता है. मैं आपको इसको बहुत सिंपल शब्दों में समझाती हूँ. जैसे कि अभी मैंने ब्रेक पे जाने से पहले आपको बताया कि जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती रहती है आपके दोस्त कम होने लगते हैं और आप फैमिली ओरिएंटेड ज़्यादा होने लगते हैं. हम अपनी दोस्ती से शिफ्ट होकर अपनी फैमिली पर ध्यान देने लगते हैं कि हमारी फैमिली कैसी हो, फैमिली की फ्यूचर कैसा हो, उसके लिए ज़्यादा सोचने लग जाते हैं. लेकिन जब हम अपनी यंग एज में होते हैं तो हमारी दोस्ती किन से हो किन से ना हो, दोस्त क्या सोचेंगे, उनके साथ कहाँ घूमना है, वीकेंड पे क्या दोस्तों के साथ प्लान है, इन सब पे हम कुछ ज़्यादा ही जोर देने लग जाते हैं. तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा कि हाँ ये पॉजिटिविटी इफेक्ट क्या होता है और बुद्धि बढ़ती है, घटती कभी भी नहीं है. उसके बाद अगर हम नेक्स्ट फैक्ट की बात करें तो वो भी थोड़ा सा चटपटा है. बताऊं कैसे, मैं बताती हूँ. भाई देखिए सोचो कि एक इंसान 20 साल का है, बहुत ज़्यादा खुश है, बहुत फ्रीडम में है. फिर वो 40 साल का हो जाएगा कुछ दिन बाद. जॉब प्रेशर, बच्चों की फ़ीस, EMI, फैमिली, करियर बिल्ड, ये काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं. खुशी थोड़ी सी कम हो जाती है और ये यू शेप का डिप हो जाता है. लेकिन जैसे ही वही इंसान 60 से 65 साल का होता है, रिटायरमेंट के बाद पोता पोती के साथ टाइम बिताता है, गार्डन में वॉक करने जाता है, खेलता है बैडमिंटन, लूडो, और हमेशा आपको घूमता और अपने दोस्तों के साथ चिल करता हुआ दिख जाएगा. आपने नोटिस किया होगा आपके घर के जो बड़े बुजुर्ग हैं, स्पेशली आपके दादा दादी जो हैं, वो कुछ ज़्यादा ही जब वो बूढ़े हो जाते हैं, स्पेशली रिटायरमेंट के बाद, ये 65 साल
के बाद की जो उम्र होती है इसमें वो लोग अपने बचपने को ज़्यादा जीने लगते हैं, और काफ़ी लोग इसको नेगेटिव वे में लेने लग जाते हैं कि भैया अब ये मरने वाले हैं या इनकी उम्र हो गई है इसीलिए इनको अपना बचपन ज़्यादा याद आता है। तो वो एक ऐसी एज होती है जब आप अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त हो जाते हैं, रिटायरमेंट की एज होती है। और जब अगर आप खुद सोचिए कि अगर आप किसी इंसान से जिम्मेदारी हटा दें तो सिर्फ और सिर्फ उसका बचपना ही उसके पास आएगा और वो वही पुरानी चीज़ें फिर से जीना चाहेगा जब वो खुल के हंस पाता था, खेल पाता था, जिम्मेदारियों से मुक्त अपनी ज़िंदगी जी पाता था। और यही कहीं ना कहीं ज़िंदगी का यू टर्न होता है जो हम 65 के बाद लेते हैं। खुशी वापस से बढ़ने लगती है और इस एज में विजडम सबसे ज़्यादा हो जाता है। और जब इंसान लाइफ को एक्सेप्ट कर लेता है जैसे वो है, मृत्यु का कोई डर नहीं रहता, अब बस ज़िंदगी जीनी है, इसी को इसी उम्र में आके हम अच्छी सलाह भी देने लग जाते हैं, हमारे पास ज़्यादा ज़िम्मेदारियाँ भी नहीं होती और हम अपनी लाइफ को पूरी तरीके से जी भी लेते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं यादों के खजाने की। जी हाँ, अब ये हम अपनी यंग एज से, टीन एज से उछल के आ चुके हैं अपनी ओल्ड एज पे। एक मैं आपको एग्जांपल देती हूँ कि दादा दादी अपनी शादी की पुरानी फ़ोटो देखकर मुस्कुराते हैं। बेशक आपके मम्मी पापा भी याद करते होंगे उसको, देख के ज़रूर उनके चेहरे पे एक प्यारी सी मुस्कान आ जाती होगी। पुराने गाने सुन के वापस अपनी जवानी में पहुंच जाते हैं, इसे हम नॉस्टैल्जिया कहते हैं। जी हाँ, ये और ये जो मन को सुकून देता है, आपके दिमाग को बिल्कुल रिलैक्स कर देता है। लेकिन अगर उनके बच्चे दूर रहें और कोई मिलने ना आता हो तो लोनलीनेस का भी खतरा इनके साथ बढ़ जाता है। और मैं आपको बता दूँ, ये जो अकेलापन है ना, ये हमें बस लगता है कि यार अकेले दोनों लोग, दोनों पति पत्नी अकेले रह रहे हैं, क्या ही दिक्कत है। लेकिन ये दिक्कत सबसे बड़ी होती है जब आप अपनी ओल्ड एज में पहुंच जाते हैं, जब आपको अकेले रहना पड़ता है। ये बात बिल्कुल सच है कि जो अकेलापन होता है वो इंसान को अंदर ही अंदर खाने लगता है। लेकिन जिन बुज़ुर्गों के पास कोई पर्पस होता है, जैसे रोज़ मंदिर जाना, स्कूल जाना, या पोते को स्कूल छोड़ना है, अगर वो कुछ एक्टिविटी करते हैं एक्स्ट्रा वो करना है, अगर वो अपने दोस्तों के साथ, जो बूढ़े हैं अपने दोस्त, जो भी एक आध दोस्त हैं पड़ोसियों के साथ चिल करते हैं, या अपना शौक पूरा करने के पीछे रहते हैं, उनकी ज़िंदगी में खुशी और संतुलन सबसे ज़्यादा रहता है, चाहे उम्र कितनी भी हो जाए। इसीलिए अगर आपके घर में कोई बूढ़ा बुज़ुर्ग है, कोई ऐसा इंसान है जो अपनी ओल्ड एज में है, तो उसके साथ अगर कोशिश करें कि आप टाइम बिताएं, अगर नहीं बिता पा रहे हैं तो उनको कुछ ना कुछ ऐसी एक्टिविटी करने के लिए मोटिवेट करें जो वो हमेशा से करना चाहते थे। क्योंकि जब हम कोई काम अपने जीवन यापन के लिए करते हैं तो वो हमें कहीं ना कहीं कुछ दिन बाद बोझ लगने लग जाता है, लेकिन जब हम कोई काम अपने शौक से करते हैं तो वो हमें बोझ कभी भी नहीं लगता। इसी के साथ लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद आएंगे और आपसे बातें करेंगे और भी ज़्यादा मज़ेदार, और भी ज़्यादा चटपटी, और भी ज़्यादा प्यारी। लेते हैं छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद मिलते हैं आपसे, स्टे ट्यून्ड।

वेलकम बैक लिसनर्स, आ चुके हूँ वापस मैं आपकी होस्ट और आपकी दोस्त आयुषी लेके आपका अपना प्रोग्राम ज्ञानस्थी लाइव। और आप अभी इंजॉय कर रहे थे सोनी दे नखरे सॉन्ग, जो कि एक बहुत ही प्यारा सा सॉन्ग है और कहीं कहीं आपको एक 10 साल 15 साल पीछे ले जाता है और आपकी यादों को ताज़ा कर देता है। भाई देखिए, आज कितना कोइंसिडेंटली आज मैंने प्लेलिस्ट लगाई थी जिससे कि आप इन्जॉय करें, और आज हम बात भी यादों पे कर रहे थे कि क्या याद होता है, क्या नहीं याद होता है, कैसे इंटेलिजेंस काम करती है, पर्सनैलिटी कैसे बनती है, और करियर कन्फ्यूजन, ऐसी काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में हमने बात की। लेकिन दोस्तों, वक्त इजाज़त दे रहा है, हमें जाना पड़ेगा। मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट शो जो कि होगा कल। कल शनिवार है और शनिवार के दिन आती हूँ मैं आपकी होस्ट आयुषी लेके आपका अपना प्रोग्राम स्वास्थ्य संगिनी, क्योंकि सैटरडे के दिन हम बात करते हैं आपकी हेल्थ की। मिलते हैं कल, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए और अपनी ज़िंदगी का बहुत ही बेहतर तरीके से लुफ्त उठाइए, क्योंकि ये ज़िंदगी है, ज़िंदगी कभी वापस नहीं आती, और जो जा रहा है वो वक्त नहीं, वो आपकी ज़िंदगी। इसी थॉट के साथ लेते हैं आपसे विदा। आशा करती हूँ कि आपको आज का शो अच्छा लगा होगा और आपने इन्जॉय भी किया होगा। Stay tuned.

0: सेहत सही लाभ कई शुरू होने जा रही एक नई कड़ी जो आपकी जिंदगी के साथ है जुड़ी। सेहतिया सिंह और टीकन देवी के संग बात करेंगे सेहत की, दूर करेंगे बहुत से भ्रम, सीखेंगे सिखाएंगे, पैसे भी अपने बचाएंगे, बेहतर स्वास्थ्य के लिए बदलेंगे अपना व्यवहार, टीबी हाथी पांव जैसी बीमारियों से अपने बचाएंगे, सरकारी अस्पतालों में मुफ्त इलाज करवाएंगे, बीमारी से सेफ रखेंगे अपना परिवार, रहेंगे रोग मुक्त, जीवन रहेगा खुशहाल। अब खत्म हुआ इंतजार, सेहत सही लाभ कई सिर्फ आपके अपने सामुदायिक रेडियो रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM पर।
1: साथियों, आप सुन रहे हैं आपका अपना कार्यक्रम सेहत सही लाभ कई और मैं हूं आपकी अपनी आरजे आकांक्षा। आज का कार्यक्रम कुछ खास है। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे हफ्ते की जिसका हर परिवार की खुशी से सीधा नाता है, नवजात सुरक्षा सप्ताह यानी न्यू बॉर्न केयर वीक, जो हर साल 15 से 21 नवंबर तक पूरे देश में मनाया जाता है। और आज जानकारी देने के लिए हमारे साथ है गांव-गांव की हेल्थ दूत, माताओं की सच्ची साथी और नवजात देखभाल की चैंपियन, हमारी शुभ चिंतक टीकन देवी जी। स्वागत है भाभी आपका।
2: बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। और क्या तारीफ कर रहे हो, इतने बड़े बड़े शब्द तो मैंने अपने ही बारे में कभी नहीं सुने।
1: क्यों नहीं भाभी, जब आप इतने बड़े बड़े काम करेंगी तो बड़े बड़े शब्द तो तारीफ में बनते हैं। टीकन भाभी, शुरुआत एकदम मूल बात से करते हैं। ये जो नवजात सुरक्षा सप्ताह मनाया जाता है, ये आखिर क्यों मनाया जाता है, इतना जोर क्यों दिया जाता है इस पर?
2: अरे दीदी, बात बहुत सीधी है। बच्चा जब पैदा होता है ना, तो उसके बाद के पहले 28 दिन उसके पूरे जीवन के लिए सबसे नाजुक समय होता है। इस समय को ही हम नवजात अवस्था कहते हैं। इस दौरान बच्चा इतना कमजोर होता है कि जरा सी लापरवाही भी उसे बीमार कर सकती है। यही वो समय है जब उसे संक्रमण लगने का खतरा सबसे ज्यादा होता है। शरीर का तापमान तुरंत बिगड़ जाता है। कई बार बच्चा समय से पहले जन्म ले लेता है तो उसके फेफड़े में ताकत कम होती है, सांस लेने में दिक्कत होती है। अगर जन्म के तुरंत बाद माँ का दूध ना मिले तो बच्चे बहुत जल्दी कमजोर पड़ जाते हैं। मतलब ये पूरे 28 दिन बच्चे के लिए जैसे इम्तिहान का होता है। ये सावधानी बहुत जरूरी है।
1: भाभी, ये सब सुनकर तो लगता है मामला बहुत गंभीर है। क्या हमारे देश में अभी भी नवजात बच्चों की मौत एक बड़ी समस्या है?
2: कहने में दुख होता है दीदी, लेकिन हाँ अभी भी है। SRS 2023 की रिपोर्ट बताती है कि भारत में अभी भी 18 नवजात बच्चे हर 1000 जन्मों में पहले ही महीने में दुनिया छोड़ देते हैं। अब सोचो ना, 18 परिवारों के घरों की रोशनी सिर्फ इसलिए बुझ जाती है क्योंकि थोड़ी सी सावधानी नहीं बरती गई।
1: ये बहुत बड़ा आंकड़ा है। और इसके कारण कौन कौन से होते हैं?
2: कारण साफ है दीदी। सबसे ज्यादा मौतें कम वजन के बच्चों और समय से पहले जन्मे बच्चों की होती है। ये लगभग 45% के करीब है। फिर आते हैं वे बच्चे जो जन्म के समय ठीक से सांस नहीं ले पाते, जिसे हम एस्फिक्सिया कहते हैं। ये लगभग 15% मामलों में होता है। नवजात निमोनिया 10% बच्चे की जान ले लेती है। सेप्सिस यानी इन्फेक्शन लगभग 6% का कारण बनता है। बाकी जो कारण है, जैसे जन्म के बाद दूध न लगना, साफ सफाई न रखना, नाभि का गलत तरीके से ख्याल रखना, जन्मजात समस्याएं, ये सब भी जिम्मेदार है। इसलिए ये पूरा सप्ताह मनाने का मकसद यही है कि सही जानकारी हर घर तक पहुंचे।
1: सही कहा आपने भाभी। और हर साल की थीम बहुत ही सुंदर है ना?
2: जी बिल्कुल दीदी, इस साल की थीम है न्यू बॉर्न सेफ्टी, एवरी टच एवरी टाइम एवरी बेबी। यानी कि हर बार जब भी हम बच्चे को छुएं, उसे उठाएं, दूध पिलाएं, नहलाएं, कपड़े बदलें, तो हर बार हमें पूरा ध्यान रखना है कि बच्चा सुरक्षित रहे। ये नहीं कि हर बार सावधानी बरती और दूसरी बार भूल गए। बच्चा चाहे लड़का हो या लड़की, हर बच्चा समान रूप से कीमती है और हर बच्चे की सुरक्षा जरूरी है।
1: बहुत बढ़िया। अब थोड़ी जानकारी लोगों को भी दे देते हैं कि बच्चे के पैदा होते ही क्या क्या करना जरूरी होता है। टीकन भाभी, जरा विस्तार में समझाइए कि जन्म के तुरंत बाद क्या करना चाहिए।
2: अरे दीदी, जन्म का पहला घंटा सबसे अहम होता है। इसको गोल्डन आवर्स भी कहते हैं। बच्चा जैसे ही पैदा होता है, सबसे पहले नाल काटने में थोड़ी देर की जाती है, 1 से 3 मिनट तक। इसे ही डिलेड कॉर्ड कटिंग कहते हैं। इससे बच्चे को माँ का खून और ऑक्सीजन अच्छे से मिल जाता है। इसके बाद बच्चे को तुरंत पूरी तरह से सुखाया जाता है। गीला शरीर बच्चा बर्दाश्त नहीं कर पाता, उसका तापमान एकदम से गिर जाता है। फिर बच्चे की सांस देखी जाती है, अगर सांस ठीक नहीं चल रही हो तो NSS के ट्रेंड स्टाफ तुरंत उसे सहारा देते हैं। इसके बाद बच्चा माँ की छाती पर स्किन टू स्किन रखा जाता है, यानी उसका शरीर माँ की गर्मी से सीधे जुड़ा रहता है। ये बच्चे के तापमान, सांस, धड़कन सबको स्थिर कर देता है। और दीदी, सबसे जरूरी बात ये है कि जन्म के एक घंटे के भीतर माँ का दूध पिलाने की शुरुआत की जाए। यही दूध बच्चे की पहली दवा है, पहली ढाल है। बच्चे को विटामिन के का टीका भी इसी समय दिया जाता है, ताकि आगे चलकर खून बहने की समस्या ना हो। और अंत में बच्चे का वजन, शरीर की जांच, और जरूरत हो तो आगे भी देखभाल शुरू और जरूरत हो तो आगे की देखभाल भी शुरू की जाती है।
3: ओह ठीक है भाभी, पर एक बात तो अक्सर लोग कहते ही रहते हैं कि नवजात बच्चा बहुत जल्दी ठंड से कांपने लगता है, यानी उसको बहुत जल्द ठंड पकड़ लेती है। ऐसा क्यों होता है, क्या वजह है इसकी?
2: दीदी, नवजात के शरीर में तापमान संभालने की ताकत बहुत कम होती है। हम बड़े लोग जैसे थोड़ी ठंड सह लेते हैं, बच्चा वैसा नहीं कर सकता है। उसका शरीर इतना नाजुक होता है कि जरा सी हवा या जरा सा गीला कपड़ा जरा सा देर भी उसके तापमान को गिरा देती, इसलिए बच्चे को ठंड बहुत जल्दी पकड़ लेता है। जैसे ही बच्चा पैदा हो उसे तुरंत अच्छी तरह से सुखाना जरूरी है। सिर पर छोटी सी टोपी डाल दो, कपड़ा लपेट दो, और कपड़ा भी थोड़ा गर्म रखा जाए। सबसे अच्छा तरीका तो है कि माँ की छाती से लगा रहे, यानी स्किन टू स्किन। इससे बच्चा सुरक्षित भी रहता है और उसका तापमान भी ठीक रहता है। ठंड नवजातों की सबसे बड़ी दुश्मन है दीदी, ये मैं पूरे अनुभव से कहती हूँ।
3: सही कहा आपने भाभी। अब बात करते हैं स्तनपान की। कई बार लोग इसे बहुत हल्के में लेते हैं, पर आप ही बताइए स्तनपान क्यों इतना जरूरी है?
2: दीदी, माँ का दूध नवजात के लिए भगवान का दिया हुआ वो खजाना है। जी, इसमें जितनी ताकत, जितना पोषण, जितनी दवा, ऑल इन वन है।
3: बिल्कुल,
2: माँ का दूध बच्चे को हर तरह के संक्रमण से बचाता है, उसे ताकत देता है, उसके दिमाग का विकास तेज करता है। और इसमें सबसे प्यारी बात ये है कि इससे माँ और बच्चे के बीच रिश्ता भी बहुत मजबूत होता है। जन्म के 6 महीने तक सिर्फ और सिर्फ माँ का दूध, ना पानी, ना शहद, ना घुट्टी, कुछ भी नहीं। बच्चे की पहली और असली दवा है माँ का दूध।
3: क्या बात है भाभी। लेकिन भाभी, हमारे गाँव में तो लोग बच्चे को छूते रहते हैं, चूम लेते हैं, हाथों में उठा लेते हैं, ये सब कितना सही है आखिर?
2: बस दीदी, यही सबसे खतरनाक चीज है,
3: है ना?
2: नवजात का शरीर इतना कमजोर होता है कि अगर कोई भी हाथ बिना धोए उसे पकड़े, चूम ले, या बहुत सारी भीड़ उसके पास आ जाए तो संक्रमण बहुत जल्दी फैलता है। नाभि को गंदे हाथों से छू दिया, समस्या। बिना हाथ धोए बच्चा उठा लिया, समस्या। घर में 10-20 लोग नया बच्चा दिखाओ, नया बच्चा दिखाओ कहकर इकट्ठा हो गए तो भी समस्या। हमेशा एक ही बात याद रखो, साफ हाथ, सुरक्षित बच्चा। बच्चे के लिए ये नियम सबसे बड़ा बचाव है।
3: ठीक है भाभी, बिल्कुल सही कहा आपने। अब लोग अक्सर पूछते हैं कि कौन कौन से खतरे के संकेत हमें तुरंत पहचान लेने चाहिए।
2: देखिए दीदी, अगर बच्चा दूध ना पिए, या उसकी सांसें तेज चल रही हो, या सीना धंसता हुआ दिखे, तो ये बड़े खतरे हो सकते हैं, संकेत होते हैं ये खतरों के। अगर बच्चा बहुत ज्यादा ठंडा या बहुत ज्यादा गर्म लगे, त्वचा पर दाने फोड़े हों, बच्चा बहुत रोए या बिल्कुल ना रोए, बिल्कुल चुप पड़ा रहे, तो तुरंत सतर्क हो जाना चाहिए। शरीर का पीला पड़ जाना, झटके आना, ये तो बिल्कुल भी इंतजार करने वाली चीजें नहीं है। ऐसा कुछ भी दिखे तो बिना देरी किए अस्पताल जाएं। नवजात के मामले में देर करना मतलब खतरा बढ़ाना है।
3: बिल्कुल सही बात है भाभी। अब एक और जरूरी बात, अस्पतालों में नवजात के लिए कौन कौन सी सुविधाएं होती हैं?
2: दीदी, सरकार ने आजकल हर स्तर पर नवजात बचाने की व्यवस्था की है। सबसे पहले आती है NBCC, यानी न्यू बॉर्न केयर कॉर्नर, जहाँ बच्चे को गर्म रखने के लिए वार्मर होता है, ऑक्सीजन सेक्शन। इसके बाद आती है NBSU यानी न्यू बॉर्न स्टेबिलाईजेशन यूनिट, जहाँ हल्के बीमार या कम वजन वाले बच्चे को संभाला जाता है। फिर आती है SNCU स्पेशल न्यू बॉर्न केयर यूनिट, ये तो बड़े अस्पतालों में होती है, 12 से 20 बेड वाली। यहाँ सांस की दिक्कत हो, कम वजन हो, पीलिया हो, संक्रमण हो या हर तरह की बीमारियों का इलाज होता है। और अब तो MNCU भी बन रहे हैं, जहाँ बच्चा और माँ साथ रहते हैं। बच्चा अस्पताल में भर्ती है तो माँ को अलग नहीं किया जाता, माँ ही उसके पास रहकर उसकी देखभाल करती है, और यही सही तरीका है।
3: गांव में आशा बहनें जो काम करती हैं उसके बारे में भी लोग जानना चाहते हैं, तो जरा इस पर भी बता दे।
2: हाँ दीदी, HBNC यानी होम बेस्ड न्यू बॉर्न केयर, ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है आशा बहनों की। जन्म के बाद आशा बहन 3रे, 7वें, 14वें, 21वें, 28वें और 42वें दिन घर घर जाकर बच्चे की जांच करती है। वो वजन देखती है, छाती का उतार चढ़ाव चेक करती है, बच्चे को दूध कैसे पिलाना है ये सब सिखाती है। अगर कोई खतरे का संकेत दिखे तो तुरंत रेफरल कराती है, साथ ही माँ की देखभाल करती है। खून की कमी, कमजोरी, तनाव, परिवार नियोजन, HBNC का मकसद है कि हर घर में सुरक्षित देखभाल पहुँचे।
3: और भाभी एक बहुत जरूरी बात, ये जो KMC यानी कंगारू मदर केयर है जिसकी खूब चर्चा होती है, ये आखिर क्या है?
2: अरे दीदी, KMC तो जादू जैसा है,
3: है ना?
2: हाँ, इसमें बच्चा सीधे माँ की छाती पर रखा जाता है, त्वचा से त्वचा यानी स्किन टू स्किन, कम से कम 1 घंटे, जितना लंबा हो सके उतना अच्छा है। कई दिन कई हफ्ते तक किया जाता है, अस्पताल में भी किया जाता है और घर पर भी। इससे बच्चे का तापमान स्थिर रहता है, वजन तेजी से बढ़ता है, संक्रमण कम होता है और माँ का दूध ज्यादा बनता है, बच्चा भी शांत रहता है। मेरी तो हमेशा यही सलाह है, KMC जितना लंबा उतना फायदा ज्यादा।
3: यानी कंगारू मदर केयर बहुत ही ज्यादा जरूरी है और जादुई भी।
2: बिल्कुल
3: भाभी, अब सरकार की कई योजनाएं चलती हैं नवजातों के लिए, उसके बारे में क्या कहना है आपका?
2: दीदी, सबसे पहले आता है NSSK यानी नवजात शिशु सुरक्षा कार्यक्रम। इसमें हर प्रसव केंद्र पर प्रशिक्षित स्टाफ होता है जो जन्म के समय सही देखभाल, सांस चलने पर रीससिटेशन, ठंड से बचाव, इन्फेक्शन से बचाव करते हैं। दूसरा है JSSK यानी जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम। इसमें बच्चे को 1 साल तक मुफ्त इलाज मिलता है, मुफ्त दवाइयाँ, मुफ्त जांच, मुफ्त खून और घर से अस्पताल तक और वापस पूरी तरह मुफ्त एम्बुलेंस सेवा। गरीब परिवारों के लिए तो ये सच में भगवान की कृपा जैसा है।
3: बिल्कुल सही कहा भाभी आपने। एक और बात कि विटामिन के का टीका क्यों लगवाया जाता है?
2: क्योंकि दीदी, नवजातों में विटामिन के बहुत कम होता है और इससे कई बार अचानक खून बहने का खतरा भी होता है, इसलिए जन्म के पहले घंटे में ही 1 mg का विटामिन के देना बहुत जरूरी है, ये बच्चे को गंभीर बीमारियों से बचाता है।
3: और आखिर में नवजात देखभाल में घर में कौन कौन लोग मदद कर सकते हैं, ये भी बता दीजिए।
2: ये तो सबको करना चाहिए। हाँ, भैया, पिता, दादी, नानी, चाची, बड़ी बहन, हर कोई। माँ को आराम मिले, सफाई रहे, सही समय पर दूध दिया जाए, ये सब परिवार की ही तो जिम्मेदारी है। नवजात सिर्फ माँ का नहीं, पूरे परिवार का बच्चा होता है।
3: बिल्कुल सही कहा भाभी आपने। और भाभी, कहीं ना कहीं आपने कुछ भ्रांतियाँ भी तो लोगों में मतलब होते हुए सुनी या देखी होंगी।
2: हाँ दीदी, और इन्हीं भ्रांतियों की वजह से बच्चे बीमार पड़ते हैं। जैसे कुछ लोग कहते हैं कि पहला दूध गंदा होता है। अरे दीदी, यही तो सबसे पौष्टिक होता है।
3: वही तो।
2: हाँ, कहते हैं कि बच्चे को जल्दी नहला दो। अरे 24 घंटे बाद ही नहलाना चाहिए, ज्यादा लोग देखने आएंगे तो अच्छा है। नहीं दीदी, ये तो संक्रमण का बड़ा खतरा है और सबसे खतरनाक भ्रांति। बच्चा थोड़ा ठंडा है, ठीक हो जाएगा।
3: अरे
2: नहीं, ठंड नवजात की जान भी ले सकती है। मेरे गांव की बहनों और भाइयों, एक बात जरा दिल में उतार लो, हर बच्चा अनमोल होता है और नवजात की सुरक्षा सिर्फ माँ की नहीं बल्कि पूरे घर की जिम्मेदारी होती है। देखिए, नवजात का ध्यान रखना कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन कुछ छोटी छोटी बातें हैं जिन्हें अगर सही रखा जाए तो बच्चा बिल्कुल सुरक्षित रहता है।
3: ठीक है भाभी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने कितनी सरल भाषा में इतनी जरूरी और इतनी महत्वपूर्ण बातों पर जरूरी बातें की। दोस्तों, जैसे टीकन भाभी ने कहा, नवजात सुरक्षा सप्ताह सिर्फ एक सरकारी कार्यक्रम नहीं है, ये हम सबकी जिम्मेदारी है। आइए आज मिलकर एक वादा करें, हर बच्चा सुरक्षित बच्चा। अगले कार्यक्रम में फिर मिलेंगे एक नई सेहत भरी बात के साथ, पर जाने से पहले बिल्कुल हम लेंगे आपकी और हमारी सुरक्षा की शपथ।
0: तो अब वक्त आ गया है शपथ लेने का, सभी खड़े हो जाएं और हमारे साथ शपथ लें। हम सब मिलकर ये शपथ लेते हैं कि हम अपने और अपने परिवार की जिम्मेदारी लेंगे, अपने और अपने परिवार के स्वास्थ्य को प्राथमिकता देंगे, क्योंकि सेहत ही असली धन है। सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं और योजनाओं का पूरा लाभ उठाएंगे और दूसरों को भी जागरूक करेंगे। साफ सफाई और स्वच्छता का पालन करेंगे ताकि बीमारियों से बचा जा सके। नियमित जांच और टीकाकरण करवाएंगे और अपने परिवार को भी इसके लिए प्रेरित करेंगे। संतुलित आहार और व्यायाम अपनाएंगे ताकि शरीर और मन दोनों स्वस्थ रहे। महिलाओं बच्चों और बुजुर्गों की सेहत का विशेष ध्यान रखेंगे। जब पूरा समाज स्वस्थ और सशक्त बनेगा तभी भारत समृद्ध बनेगा। सेहत सही तो लाभ कई।
4: फाइलेरिया एक गंभीर बीमारी है जो मच्छरों के काटने से फैलती है और इसका असर सालों तक रह सकता है।
5: पैरों में सूजन, बुखार, थकावट, ये हो सकते हैं फाइलेरिया के लक्षण, लेकिन घबराइए मत, बचाव मुमकिन है।
4: हर साल एक बार खाओ दवाई प्यार से, फाइलेरिया दूर भगाओ, स्वस्थ जीवन अपनाओ। फाइलेरिया की दवा सरकार की तरफ से बिल्कुल मुफ्त दी जाती है। ये दवा सुरक्षित है बच्चे बड़े बूढ़े सभी के लिए।
5: बस याद रखिए, जब आपके गांव या मोहल्ले में स्वास्थ्य कार्यकर्ता आए तो दवा जरूर लें और दूसरों को भी दिलवाएं।
4: फाइलेरिया से डरना नहीं, दवाई से लड़ना है। एक छोटी गोली सेहत में बड़ी जीत।
6: ज्ञानस्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन।
7: बीड़ी सिगरेट का हर कश आपको नुकसान पहुंचाता है। धूम्रपान की वजह से आपके दिल तक खून ले जाने वाली मुख्य नसों में जहरीले पदार्थ भर जाते हैं, जिससे दिल का दौरा पड़ सकता है। धूम्रपान करने वालों के दिल में इस जहरीले पदार्थ की लगभग एक चम्मच तक की मात्रा पाई गई है, वो भी सिर्फ 32 वर्ष की उम्र में। धूम्रपान जानलेवा है, इसे आज ही छोड़ें। भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
8: त्योहार त्योहार हो, शादी हो या कोई खास मौका, अगर चाहिए स्टाइल भी और आराम भी, तो याद रखिए एक ही नाम, कपड़ा फैक्ट्री गोंडा,
9: जहां लेडीज के लिए मिलती है लेटेस्ट और ट्रेंडी साड़ियां, सूट, कुर्तियां और हर बड़े ब्रांड के शानदार कलेक्शन।
8: और जेंट्स के लिए?
9: जेंट्स के लिए स्पेशल कस्टमाइज्ड आउटफिट्स, परफेक्ट फिटिंग के साथ, क्वालिटी, स्टाइल और बजट सब एक ही जगह।
8: तो आज ही विजिट करें विजय कॉम्प्लेक्स मेल्टिंग मोमेंट्स के सामने गोंडा, और हमारा दूसरा पता है रानीपुरवा नियर सिविल लाइंस गोंडा।
9: संपर्क करें 91-25-70-75-93 और 96-96-76-40-06। कपड़ा फैक्ट्री, फैशन जो बन जाए पहचान।
10: लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।

0: बीते साल 2023 में 1,73,000 लोगों ने रोड एक्सीडेंट में अपनी जान गंवाई है, यानी हर रोज 474 और हर मिनट एक मौत हो रही है। हर साल ये आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है। इस विषय में हम क्या कर सकते हैं? अगर हम यातायात नियमों का पालन करें तो सुरक्षित हर रोज घर वापस आएंगे। जैसे बाइक चलाते समय हेलमेट और कार चलाते समय सीट बेल्ट का इस्तेमाल जरूर करें। तेज रफ्तार से गाड़ी ना चलाएं, केवल दाईं ओर से ओवरटेक करें। चौराहे व मोड़ पर ओवरटेक करने से बचें। वाहन अपनी ही दिशा में चलाएं और गलत दिशा में ना जाएं। थके होने पर, बीमार होने पर शराब पीकर गाड़ी ना चलाएं। अपने वाहन में बैकलाइट, हेडलाइट एवं इंडिकेटर का इस्तेमाल जरूर करें। गाड़ी चलाते समय मोबाइल फोन का इस्तेमाल ना करें। छोटे बच्चों को वाहन चलाने के लिए बिल्कुल ना दें। साथ ही साथ सभी यातायात नियमों का पालन करें। याद रखें, घर पर आपका कोई इंतजार कर रहा है।
1: बच्ची को आराम ही नहीं मिल रहा, क्या करें?
2: इसको तुरंत अल्टिस किप्स ले चलो।
3: राजधानी लखनऊ में बच्चों के पहले सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल अल्टिस किप्स में दिल, गुर्दे, दिमाग या पेट की हर बीमारी का होता है बेहतरीन इलाज।
4: यहाँ 120 बेड ग्रेड 3 NICU एडवांस PICU की सुविधा के साथ ही HFO, INO, वेंटिलेटर, फोटोथेरेपी, डायलिसिस के साथ साथ इमरजेंसी की सुविधा भी उपलब्ध है।
3: विजिट करें अल्टिस किप्स, IIM रोड, लखनऊ। संपर्क करें 0522 2711 827।

0: छोड़ो,
1: देखो दिल न तोड़ो,
0: और छोड़ो हाथ छोड़ो,
1: छोड़ दिया तो हाथ मलोगे समझे,
0: अज समझे।

0: रेमेडी, ब्यूटी टिप्स, कुकिंग, वुमेन एम्पावरमेंट, मेकअप, मूवीज एंड मेनी मोर शोज।
1: और बता दूं कि 1:30 बजे से 3 बजे तक हम करते हैं ढेर सारी नॉलेजेबल बातें,
0: तो सुनना ना भूले। 89.6 FM, ये है गोंडा शहर के धड़कन।
2: आप सुन रहे हैं सुन सहेली विद आरजे समता एंड आरजे अंशिका।
1: नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। आ गई आपकी आज समता और साथ में आज अंशिका। चलिए भाई फटाफट शुरू करते हैं आज के शो को, यानी कि आपके पसंदीदा शो को, जिसका नाम है
2: सुन सहेली
1: विद आज समता एंड आज अंशिका। तो चलिए भाई फटाफट, आज तो ब्यूटीफुल सा डे है एंड अपने आप को और ब्यूटीफुल बनाने का सुपर से भी ऊपर वाला दिन है। तो भाई आज मतलब जैसा कि मॉनसून आ गया है और मॉनसून आने के बाद ही ये इतनी प्यारी वाली जो एक सुबह दिख रही है, शाम दिख रही है, लेकिन आज धूप है अंशिका
3: जी। मैम,
1: लेकिन धूप अभी नहीं है, मैं अभी बाहर गई थी तो धूप उतनी नहीं दिख रही है जितनी धूप होनी चाहिए। मतलब मई जून का जो हम लोगों ने इतना भयंकर वाला जो 2 महीने हम लोगों ने बिताए हैं, पर इधर 2 दिन से उतनी ज्यादा वो गर्मी नहीं है।
3: बिल्कुल, मौसम सुहाना है क्योंकि हवाएं आजकल काफी अच्छी चल रही हैं।
1: हाँ,
3: मौसम में मैम।
1: अच्छा, मौसम में हमें लगा हवाएं अच्छी चल रही हैं तो इसका कारण कुछ और भी हो सकता है।
3: बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि जब इंसान का मूड अच्छा होता है, उसके आसपास अच्छे लोग होते हैं, तो उसे सब कुछ अच्छा लगता है।
1: बिल्कुल अच्छा लगता है, और सबसे अच्छी बात है कि जब हेल्थ अच्छी होती है ना तो मूड अपने आप अच्छा हो ही जाता है। एग्जैक्टली, कहने का सेंस ये है कि जब मूड अच्छा होता है ना तो अपने आप से हेल्थ अच्छी होती है तो अपने आप से मूड अच्छा हो ही जाता है। हेल्थ से रिलेटेड याद आया कि आज है ब्यूटीफुल सा फ्राइडे, तो फ्राइडे के दिन हम लेकर के आते हैं अपने आप को और सुंदर बनाते हैं, अपने व्यक्तित्व को सुंदर बनाते हैं, अपनी हेल्थ के बारे में बात करते हैं। तो आज फ्राइडे सेक्शन में हम लोग बहुत कुछ लेकर के आए हैं, लेकिन उसके पहले आइए एक ही साथ एक ही फ्रेम में विश कर देते हैं शुभ दोपहरी। क्या अंशिका, सो रही हो क्या?
3: नहीं नहीं, जाग रही हूं।
1: आज बहुत दिनों के बाद मुझे लगा तुम सोई हो।
3: नहीं नहीं,
1: तो चले विश करें।
3: यस,
1: चलिए। तो दोस्तों एक साथ एक ही फ्रेम में क्या विश करेंगे?
3: शुभ दोपहरी। शुभ दोपहर। जब मैं कुछ सोचने लगी थी और सोच में जो है मैं खो गई थी, और खोने के लिए फिर मैं वापस आ गई जब मैम की आवाज मुझे सुनाई दी। तो क्या सोच रही थी ये भी अभी आपको बताऊंगी, लेकिन उससे पहले पहले पहले हमारा स्टार्टिंग सेगमेंट तो आप सभी को पता ही है, हम दोनों का, यानी कि जो प्यारी सी पोएम। तो प्यारी सी पोएम आज जैसा कि फ्राइडे है, ब्यूटीफुल है और भी ज्यादा ब्यूटीफुल है। और क्यों और भी ज्यादा ब्यूटीफुल?
1: क्या है आज?
3: क्योंकि आज जब मैं आई हूँ तो आते ही मैंने किसी की प्यारी सी आवाज सुनी।
1: क्या? अच्छा।
3: और उसके साथ साथ प्यारी सी स्माइल भी थी,
1: और ये बहुत ज्यादा डर भी गई थी कि अरे ये क्या, नीचे कहाँ से आवाज आ गई, कहाँ से।
3: हाँ, क्योंकि मैं अपने उसमें जा रही थी,
1: अपने में बिल्कुल खोई हुई थी, खड़ी हुई थी, और जब मैंने आवाज दी तो ये बिल्कुल चौंक गई कि अरे ये क्या हो गया भाई, मतलब क्या ही हो गया, है ना अंशिका? मुझे लगा ऐसा फील हुआ कि तुम चौंक गई हो।
3: मैं चौंक गई थी, हाँ ये सही है, क्योंकि थोड़ा सा कुछ ज्यादा ही अपने उसमें मैं कुछ देख रही थी और सडन जब आवाज आई तो मैं चौंक गई। लेकिन चौंक के जब मैंने मैम की फेस की तरफ देखा तो बहुत प्यारा लग रहा था।
1: थैंक यू सो मच।
3: इसलिए
1: थैंक यू,
3: अच्छी है ये, अच्छी बात है कि अब चीजें अच्छी होने लगी है।
1: हाँ, अच्छी होने लगी है ना।
3: Yes.
1: तो क्या क्या अच्छी होने लगी है वो सब बातें करेंगे, लेकिन इस समय जो कि टाइम हो गया है आज की पोयम का, तो आइए फटाफट शुरू कर देते हैं आज के पहले सेगमेंट की ओर चलते हैं, जो कि हमारा आज रिश्तों को बेहतर बनाने का भी दिन है। मैं भूल गई थी,
3: कोरे कोरे। अरे ऐसे थोड़ी रिश्ते बेहतर हो जाएंगे। हाँ, खाली खाली बेहतर नहीं करते हैं, तो चलिए कुछ शुरुआत के साथ बेहतर करते हैं।
1: जी बिल्कुल।
3: मौसम है सुहाना, ख्याल भी बड़े प्यारे दिलों में है, कुछ नया आगाज हुआ है, कुछ नए जज्बात दिलों में हैं, प्यारी सी मिठास, प्यारी सी मुस्कान किसी के चेहरे पे इन दिनों बड़ी खूबसूरत लग रही है। हम तो करते हैं बस यही दुआ, ये मुस्कुराहट यूं ही बनी रहे। हम तो करते हैं बस यही दुआ, ये मुस्कुराहट यूं ही बनी रहे और ये पंक्तियाँ उनके मुंह से हम यूं ही सुनते रहे।
1: थैंक यू।
3: तो चलिए सुनते हैं आरजे समता।
1: आज मैं भी कुछ लेके आई हूँ, जब ये रियल पिक्स ऑफ लाइफ बोलती है ना, तो आज मैंने भी कुछ सोचा है।

0: बहुत ही अच्छा सा। लेकिन सबसे पहले मैं बोल दूं आज के रिश्तों पे एक बहुत ही प्यारी सी पोयम जो कि आज की है। रिश्ते बनते भी हैं और बिगड़ते भी हैं, रिश्ते बनते भी हैं और बिगड़ते भी हैं, वक्त के थपेड़ों से ये बदलते भी हैं, पर जो नाजुक धागों को संभाल कर रखे वही रिश्ते, वही सच्चे रिश्ते उम्र भर चलते भी हैं। कभी छोटी सी बात पर दीवारें खिंच जाती हैं, अनकहीं शिकायतें दिलों को दूर ले जाती हैं, पर झुक जाने से अगर बचता हो कोई अपना, तो वो दूरियां फिर पल भर में मिट जाती हैं। सच्चा रिश्ता वो नहीं जिसमें कभी तकरार न हो, पर जहां रूठने के बाद भी गहरा सा प्यार हो। गलतियां तो इंसानों से ही होती हैं अक्सर, बड़प्पन उसी में है जहां माफी का अधिकार हो। कांच के बर्तनों की तरह होते हैं ये सारे प्यारे रिश्ते, एक बार जो टूटे तो चुभते हैं इनके गिले शिकवे। चलो आज मिलकर इन्हें फिर से संवारते हैं ताकि प्यार और भरोसे के गुलशन हमेशा खिले।
1: वाह, बहुत ही प्यारी और बहुत ही प्यारी लग भी रही थी मैम के प्यारे प्यारे आवाज
0: बिंदु से।
1: किससे?
0: मुखार बिंदु से।
1: ओके,
0: इतनी हिंदी शायद समझ नहीं होगी मुखार बिंदु से यानी मेरी वॉइस में। चलिए तो मैं आज अंशिका के लिए भी लेकर के आई हूँ कुछ बहुत ही बढ़िया सी दो लाइन की, जो मैंने रात में सोच के हम सोए थे।
1: अच्छा,
0: तो मैं अभी सोच रही थी कि मुझे मतलब जैसे कहते ना राइमिंग वर्ड्स में याद कर रही थी कि हाँ इसके बाद ये थी, इसके बाद ये था। ठीक है, तो भाई शुरू हो गया है हमारा और आपका शो यानी सुन सहेली शो, जिसमें हम करते हैं दोनों कभी छोटी मोटी सी फाइट। ठीक है, छोटी मोटी सी फाइट। तो आइए आरजे अंशिका के मुख से सुनते हैं आज का रियल फैक्ट्स ऑफ लाइफ।
1: वाह वाह वाह वाह वाह,
0: अच्छा है ना?
1: बहुत बहुत अच्छा।
0: आप शायद भूल रहे थे क्योंकि सास भी कभी बहू थी।
1: हाँ, वो आज वो अंदर से जो है वो
0: नहले पे दहला नहीं, नहले पे पता नहीं कौन सा वाला, वो मतलब अच्छा वाला है ना।
1: बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही अच्छा वाला मैम और बहुत ही प्यारा लगा। तो चलिए आज का रियल फैक्ट्स ऑफ लाइफ जब मैम ने पूछ लिया है तो फिर मुझे तो बताना ही है। तो बताते हैं कि रिश्तों में हमेशा अपनी जगह बनाना, क्योंकि दूसरों की जगह जब ली जाती है तो वो सिर्फ कुछ वक्त के लिए होती है, और जब अपनी बनाई जाती है तो वो हमेशा के लिए होती है। इसलिए रिश्तों में अपनी जगह हमेशा बनानी चाहिए, कभी दूसरों की जगह लेनी नहीं चाहिए, क्योंकि कभी आप किसी की जगह ले नहीं सकते, अपनी बना जरूर सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि रिश्तों में हम हमेशा कहते हैं ना, अरे उसकी जगह मुझे मिल जाएगी, ऐसा कभी नहीं होगा, क्योंकि किसी को किसी की जगह मिल ही नहीं सकती। हर किसी की अलग अलग इम्पोर्टेंस होती है, मम्मी पापा की अलग इम्पोर्टेंस होती है, फ्रेंड्स की अलग इम्पोर्टेंस होती है, टीचर की मेंटोर की अलग होती है एक इम्पोर्टेंस, और दोस्तों की तो बहुत ही अलग होती है, मतलब वो एक लेवल हो जाता है। तो उसी तरह हमेशा अपनी जगह बनाने की कोशिश करिए, क्योंकि वो अगर आप कामयाब हो जाएंगे ना तो फिर भले ही रिश्ता सालों तक ना रहे, लेकिन सालों बाद जब याद आएगी तो याद आएगा, अरे यार वो थे तो अच्छा था या वो थी तो अच्छा था।
0: एग्जैक्टली, लेकिन इस पर मैं एक बात कहना चाहती हूँ कि रिश्तों में जो जगह अपने आप से नहीं बनती है, स्वयं के या किसी सामने वाले के व्यवहार से, उनके व्यक्तित्व से, उनके प्यार से, उनके केयरपन से भी रिश्तों में जगह बनाई जा सकती है।
1: बिल्कुल, अगर किसी का दिल बहुत प्यारा सा हो तो खुद ब खुद हम जगह देने पर हो जाते हैं, धीरे धीरे वो अपनी जगह बना लेता है। किसी का दिल जब प्यारा होता है वो आपकी केयर करता है, आपके साथ रहता है। और सबसे बड़ी बात, अगर रिश्तों में आपको ये जानना है कि मुझे अगले की कंपनी सूट कर रही है या नहीं, वो अच्छा इंसान है या नहीं, तो ये सब जानने का एक तरीका होता
0: क्या?
1: है सिर्फ अपने दिल पे हाथ रख करके अपने आप से पूछिए कि क्या जितना भी टाइम आप उस इंसान के साथ रहते हैं, उससे बातें करते हैं, उसकी कंपनी इंजॉय करना तो एक दूसरी बात होती है, लेकिन क्या आपको दिल की खुशी मिलती है? क्या जब वो अपनी कोई बात बताता है या आप अपनी कोई बात बताते हो तो आपको ये महसूस होता है कि मेरा दिल हल्का हो गया? अगर ये दोनों चीजें महसूस होती हैं तो इसका मतलब रिश्ता जेन्युइन भी है और आगे चल करके बहुत मजबूत भी होगा। एक एडवाइस देती हूँ आज के दिन कि हर रिश्ते की नींव दोस्ती होनी चाहिए। कुछ हो या ना हो, रिश्ते में अगर सिर्फ दो लोग दोस्त हों तो वो बहुत आराम से पूरी लाइफ अच्छे से बिता सकते हैं। दोस्ती बहुत खूबसूरत होती है। आप किसी को पहले पहले जानेंगे, पहचानेंगे, फिर धीरे धीरे उसकी पसंद, नापसंद, फिर धीरे धीरे अच्छी वाली दोस्ती होती है, फिर वो आगे बढ़ते हैं और

0: लाइफ बेटर हो जाती है।
1: एग्जैक्टली तो रिश्तों में सबसे पहला जो कदम होता है वो दोस्ती का ही होता है, और दोस्ती को फिर अगर मतलब रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए, तो रिश्तों में फिर दोस्ती को प्यार में बदला जाता है और प्यार को फिर शादी में बदला जाता है। क्या मतलब क्या है? मतलब मुझे पता नहीं है क्या, मतलब इतना बड़ा गले में खिचखिच वाला हुआ तो विक्स की गोली दूं क्या?
0: नहीं नहीं, ये इसलिए था क्योंकि जिसके मुख से आज मैंने ये प्यारी सी बात सुनी है तो बहुत अच्छा लग रहा है।
1: मैंने क्या कहा था, हीलिंग प्रोसेस।
0: यस यस आई नो वेरी वेल, और कुछ मन में मैंने कह दिया है तो वो जो मन में कह दिया है वो यूनिवर्स तक पहुँच गया होगा और वो होगा जरूर, ऐसा मुझे लग रहा है। Time starts now.
1: बिल्कुल, खुदा करे और ईश्वर करे कि वो पूरा हो आपका जो आपने अभी सोचा है। तो चलिए हमने जो अभी सोचा है वो कर ले।
0: हाँ।
1: एक ब्रेक ले लेते हैं और ब्रेक में बहुत सारे जो भी अभी लिसनर्स हमारे नहीं आए हुए हैं जल्दी से आ भी जाएं, तब तक आइए सुनाते हैं इस प्यारे से नगमे को और फिर उसके बाद हम शुरू करेंगे अपने प्रोग्राम का नेक्स्ट सेगमेंट, यानी कि बहुत ही खूबसूरत सा रिश्तों पे वार्तालाप। तो बस हम यूं गए यूं आए, स्टे ट्यून।
2: आप हर समय थकान महसूस करते हैं? छोटे छोटे काम करने पर क्या आपकी सांसें फूलती हैं? चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है? ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिससे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है, बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें। संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जांच कराएं और सही उपचार लें।

छूने दो बच्चों के हाथों को चांद सितारे, यही प्यारे बच्चे हैं भविष्य हमारे। प्रोफेसर डॉक्टर शेर बहादुर सिंह, पूर्व सदस्य उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग, प्रख्यात शिक्षाविद के सपनों का इंग्लिश मीडियम CBSE पैटर्न वाला मॉडर्न पब्लिक स्कूल एवं मॉडर्न क्रीज प्ले ग्रुप से क्लास 9th। आपके बच्चों के लिए मिलने वाली सुविधाएं हैं क्रिएटिव प्लेवे मेथड से पढ़ाई, थीम बेस्ड क्लासरूम, ऑडियो वीडियो विजुअल्स, कंप्यूटर स्मार्ट क्लास, वाहन की सुविधा, CCTV कैमरे से लैस कैंपस और स्विमिंग पूल, पूल डे की सुविधा उपलब्ध है। एडमिशन ओपन, पता है LIC कॉलोनी निकट गोंडा मेडिकल सेंटर, पटेल नगर गोंडा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9670931251 और 8840098123। मॉडर्न पब्लिक स्कूल, निखार रहे हैं आपके बच्चों का भविष्य। अब आप भी अपना सपना पूरा कीजिए डिजिटल मास कम्युनिकेशन के साथ जुड़कर। एडमिशंस ओपन, जानकारी के लिए कॉल करें 8840339584, 8840335484। अब सपने होंगे साकार।

0: ज्ञान स्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन।
1: आप सुन रहे हैं सुन सहेली विद आरजे समता एंड आरजे अंशिका।
2: वेलकम बैक दोस्तों, आ गई आपकी आरजे समता और साथ में आरजे अंशिका। चलिए फटाफट शुरू करते हैं। भाई इस समय मैं देख रही हूँ कि मॉनसून के साथ साथ बारिश तो है, लेकिन सभी लोगों के घूमने फिरने का जो प्लान है वो और भी ज़्यादा अच्छा होता जा रहा है दिन ब दिन। पूछो क्यों?
3: क्यों?
2: क्योंकि भाई मन है घूमने का, जाएंगे घूमेंगे और क्या करेंगे। ये क्या मतलब, क्यों क्या होता है? मतलब मैंने बोला क्यों तो तुम पूछोगी क्यों।
3: अब आपने पूछने के लिए कहा था,
2: हम बोलेंगे दिन तो तुम बोलोगी रात, रात को बोलोगे दिन तो तुम बोलोगी दिन, और क्या। यही है ना, यही वाला गाना सुना होगा ना, मैं अगर तुमको बोलूं कि दिन को कहो दिन, दिन को कहो रात, तुम रात कहोगे। ये गाना एक है ना।
3: अच्छा,
2: याद आया। तो तुम वही कहोगी, है ना। लेकिन मैं बताऊं आपको कि इस समय घूमने फिरने का जो एक ट्रेंड हो गया है, मतलब एक ट्रेंडिंग चल रहा है घूमने फिरने का। कल मैंने एक रील देखी, उसमें साफ साफ मंदिरों के बाहर लिखा हुआ था, शायद वो नैनीताल के मंदिर के बाहर लिखा हुआ था, जो नैना देवी का मंदिर था।
3: जी जी।
2: तो मैं गई हूँ वहाँ, बस मैं वहीं गई हूँ केवल। ठीक है,
3: आप नैनीताल गई हैं?
2: मैं गई हूँ, मैं एक ही बार गई हूँ, मैं वहीं गई हूँ बस। ठीक है, तो वहाँ पर साफ साफ बड़े अक्षरों में लिखा हुआ है कि मंदिर परिसर में आप ऊटपटांग कपड़े पहन करके ना आए।
3: ओके।
2: आप शालीनता के कपड़े पहन करके ही मंदिर में, मंदिर के परिसर में आप प्रवेश कर सकते हैं। कई ऐसे बड़े मंदिरों में भी आपने देखा होगा साफ साफ अक्षरों में लिखा होता है कि यहाँ पर साड़ी सूट ही अलाउड है और कोई वेस्टर्न ड्रेसेस अलाउड नहीं है। तो मुझे ये समझ में नहीं आता है कि जो महिलाएं धार्मिक स्थलों पे जाती हैं घूमने के लिए, उन्हें ही वहाँ पर गोवा की ड्रेसेस पहनने का क्या शौक चढ़ जाता है।
3: ये तो सही बात है मैम।
2: मैंने कई रील्स में देखा है कि शॉर्ट्स पहन करके मंदिर चली जाती हैं, बिना दुपट्टे के आप मंदिर चले जाते हो। तो कहीं ना कहीं ये अपनी आस्था पे ही, तो हम अपनी खुद की क्या कहते हैं कि, जैसे कहते हैं ना कि रिलीजन्स पे हम अपना एक क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। कई क्या कहते हैं रिलीजन्स में आपने देखा होगा कि पूरा फुल ऊपर से लेकर के नीचे तक पूरा ढक करके ही महिलाएं जाती हैं, लेकिन हम अपने रिलीजन्स में ही खुद इतना ज्यादा इतना फ्रीपन कर देते हैं कि लोग ही हमारे खुद के लोग ही उस पे क्वेश्चन मार्क बनाकर बैठ जाते हैं।
3: बिल्कुल।
2: कई रील्स बन जाती हैं कि एक लड़की ने शॉर्ट्स पहना था, वो मंदिर में गई, मत्था टेक रही थी और उस वहां के पुरोहित ने बोला कि बेटा तुम खड़े होके मत्था टेक लो। मतलब ये कंडीशंस होती हैं। अब तो यही बात है कि अगर आपने धार्मिक स्थल पर घूमने का प्लान बनाया ही है तो आपने कपड़ों का चयन तो उस हिसाब से करना है, चाहे वो बुजुर्ग लेडी हो, चाहे वो लड़की हो, चाहे वो कोई भी हो।
3: बिल्कुल। क्यों ना कहीं, क्योंकि कहते हैं ना कि जैसे कपड़े जो होते हैं, कई बार आपकी पर्सनैलिटी कैसी है वो आपके कपड़ों से लोग अंदाजा लगाते हैं। ये हम तो कहते हैं ना कि अरे कपड़े कैसे भी हों उससे क्या फर्क पड़ता है, पर्सनैलिटी तो मतलब अंदरूनी है ना। लेकिन फिर भी लोग देख के एक अपने मन में आंकते हैं कि अरे यार ये ऐसी होगी, यही लड़की ऐसी है।
2: बिल्कुल।
3: तो कहीं ना कहीं देखिए जगह के हिसाब से कपड़े पहनने चाहिए हमेशा।
2: और पहले एक मैंने ये पहले भी इस बात पे टॉपिक उठाया है कि एक जो बुक का कवर होता है उससे हम नहीं आंक सकते हैं कि उस बुक में क्या है, पर आजकल ये इसका उल्टा हो गया है।
3: जी मैम।
2: अगर आपकी बुक का कवर अच्छा है, कवर पेज में बहुत सारी अच्छी सी अगर ऊपर से पिक्चर्स है ना, तो हम जान जाते हैं कि उसके अंदर भी मटेरियल
3: अच्छा ही होगा।
2: तो ये आज का युग है, ये पहले का युग था कि हम कवर बुक को देख करके नहीं क्या कहते हैं जज कर सकते हैं, ये पहले की बात थी। बट आज की बात में यही है कि अगर अपने व्यक्तित्व को, एक स्पेशली महिला को, अपने व्यक्तित्व को और अच्छे से अगर बनाना है तो मुझे लग रहा है कि उसको इस तरीके से करना चाहिए कि हाँ, मतलब एक अच्छे से कपड़ों को चयन करना चाहिए।
3: बिल्कुल। क्योंकि कहीं ना कहीं देखिए पर्सनालिटी जो, जैसे कहते हैं ना कि लड़कियां जो होती हैं वैसे तो सारे ड्रेसेस आप पहन सकते हैं, नो डाउट, लेकिन साड़ी में सूट में एक अलग सी खूबसूरती निखर करके आती है, लगता है कि हाँ पर्सनैलिटी है, एक शालीनता होती है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि वेस्टर्न ड्रेसेस खराब होती हैं, लेकिन वेस्टर्न ड्रेसेस आप मंदिर में या किसी, देखिए आपके यहाँ कोई पार्टी होती है, कोई फंक्शन होता है जब हमारे यहाँ, और हम जब हम ट्रेडिशनल थीम रखते हैं तो हम उसमें लिख देते हैं कि ओनली ट्रेडिशनल कपड़े अलाउड। अब आप सोचिए कि आपने ट्रेडिशनल थीम रखी है अपने घर की शादी में और कोई आ रहा है गेस्ट और उसने वेस्टर्न पहना है, तो 100 लोगों ने ट्रेडिशनल कपड़े पहने हैं, एक ने वेस्टर्न पहना है, तो वो उनमें क्या हो जाता है कि
2: एक अलग से आउटफिट में दिखाई
3: देता है। सब यही कहते हैं कि अरे ये इसने अलग क्यों पहना है यार, लगता है इसे नहीं पता था। या कहीं ना कहीं कई बार हम मजाक के भी पात्र बन जाते हैं और तब हम कहते हैं कि अरे उसने मेरे लिए कमेंट पास किया। तो आप ऐसे करें ही क्यों? और देखिए कहीं ना कहीं ट्रेडिशनल कपड़ों में अपनी बहुत प्यारी खूबसूरती होती है।
2: और दूसरी चीज मुझे लगता है, मतलब मेरा मानना ये है कि आजकल स्पेशली जो एक ट्रेंडिंग हो गया है कि सभी लोग ना मतलब एक धर्म स्थलों पर ही जा रहे हैं अपना, जैसे मई जून की गर्मियों में या कभी भी वो लोग गर्मियों में तो एक धर्म स्थल पर ही ज्यादा वो लोग कहते हैं घूमना पसंद कर रहे हैं। तो आप उस मतलब एक मंदिर के साथ साथ ऐसा नहीं कि सिर्फ आप मंदिर ही जा रहे हैं, आसपास की सिटीज में भी आप जा रहे हैं घूमने के लिए, तो एटलीस्ट मंदिरों में जा करके स्पेशली महिलाएं जो हैं वो अगर अपने कपड़ों का चयन ठीक ठाक से कर लेती हैं तो ये हमारे ही मतलब हमारी ही आस्था को वो और प्रदर्शित करती है।
3: बिल्कुल,
2: मतलब मेरा मानना ये है।
3: तो कहीं ना कहीं हमेशा जो है, जब भी जैसे कहते हैं ना कि जैसा देश वैसा भेस, तो वैसे ही है कि जब भी आप जाइए तो हमेशा अच्छे से सेटअप करके जाइए, अच्छे लगे, ताकि आपको भी प्रॉब्लम क्रिएट ना हो कि अरे कोई कुछ कह देगा ना, या मैंने इसके, कई बार हम बाहर जाते हैं जैसे मैम ने भी बताया, तो अगर आपने उसके अकॉर्डिंग कपड़े नहीं पहने हैं तो एक हेजिटेशन भी होती है कि अरे अभी मैं जाऊंगी तो मुझे कोई बोल देगा क्योंकि मैंने उस तरह नहीं पहने, तो क्यों हेजिटेशन करना? आप घूमने जा रहे हैं, खुशी से जाइए, मस्ती से जाइए, बढ़िया से रेडी होके जाइए, बढ़िया सेल्फीज खींचिए,
2: बिल्कुल,
3: और इंजॉय करिए।
2: एग्जैक्टली, तो कहने का सेंस आखिरी में यही है कि हम अपने व्यक्तित्व को, वो हमारे हाथ में होता है कि हम उसे किस तरीके से लोगों के सामने शो कर रहे हैं या फिर अपने आप के व्यक्तित्व को और निखारने के लिए ऐसा काम कर रहे हैं। तो भाई मेरे हिसाब से, हम दोनों के हिसाब से तो यही है कि अगर हम एक कहीं पर घूमने जाने का प्लान कर रहे हैं, स्पेशली मंदिरों में या फिर कभी धर्म स्थल पर, तो कपड़ों का चयन उस हिसाब से करना चाहिए। अब ऐसा तो हम लोग बिल्कुल नहीं कह रहे ना कि अगर आप मसूरी घूमने जा रहे हैं, आप गोवा घूमने जा रहे हैं, तो आप वहाँ पर क्या कहते हैं ट्रेडिशनल कपड़ों को ही आप वो करें। वहाँ तो आप कहते हैं ना जैसा देश वैसा बेस, तो वहाँ तो आपको जो भी आपका मन करे तो वो हम लोग, मैं खुद अगर कभी जाऊँ तो मुझे खुद लगेगा कि यार वहाँ साड़ी कौन पहनेगा,
3: मैम गोवा घूमने जाएंगे,
2: अरे मतलब एक सपनों में,
3: सपनों में नहीं असलियत में,
2: मतलब कहने में क्या खर्च हो रहा है क्या कुछ
3: नहीं, मैं सोच रही, मैंने कुछ सोच लिया
2: ना, तो ठीक है उस सोच को और आगे एक्सटेंड करती रहो। तो जैसे कभी मतलब जैसे जाना हुआ तो क्या हम वहाँ साड़ी, और हाँ अगर ये भी बात है अंशिका कि अगर आप गोवा बीच पे जाकर के आप साड़ी पहन रहे हैं तो आई थिंक वहाँ के जितने लोगों की जेनेट्री होगी ना वो आप पे क्या कहते हैं नजरें टिकेंगी।
3: बिल्कुल,
2: क्योंकि कहा जाता है कि खूबसूरती जो होती है ना वो दिखाने में नहीं वो छिपाने में ज्यादा अट्रैक्टिव होती है।
3: बिल्कुल,
2: मतलब मेरा थॉट तो ये है भाई। तो मतलब एंड ऑफ कंक्लूजन यही है कि अगर हम कभी भी धर्म स्थलों पर जा रहे हैं तो स्पेशली फॉर गर्ल्स वुमेन्स में होना चाहिए कि हम अपने आप के एक दायरे को समझें, उन कपड़ों को समझें और उन स्थानों को समझें कि हम कहाँ जा रहे हैं।
3: बिल्कुल, और आई होप कि समझदारी जो है वो हमने आपको दे दी है और अब आप इस पर सोचेंगे, थिंक करेंगे और जब भी प्लान बनाएंगे तो इन बातों को ध्यान रखेंगे। फिलहाल चलिए चलते हैं बहुत ही प्यारे से सॉन्ग की तरफ, सुनते हैं, एंजॉय करते हैं, बस यू गए और यू आए, स्टे ट्यून्ड।

0: डिलीशियस
1: है ना। लेट्स डाइन, कम एंड जॉइन लेट्स डाइन रेस्टोरेंट, जहां आपको मिलता है हर बाइट में यूनिक टेस्ट।
0: और क्या क्या है खास?
1: और आपको मिलता है आपके जायके के लिए मल्टी कजीन, लाइव बारबेक, मॉकटेल बार, आपके सुकून के लिए एस्थेटिक लश ग्रीन एम्बियंस, और साथ ही साथ वीकेंड कैरियोके, सोफी नाइट्स एंड ओपन माइक।
0: अब चिल करेगा शहर, खुशियों की आ गई लहर, खाना स्वादिष्ट हर पहर। कम फॉर फूड, स्टे फॉर द मैजिक। पता है अवध नर्सिंग कॉलेज के सामने, उतुराला रोड, गोंडा। कॉन्टेक्ट नंबर 9250 49 40 45। अरे सुना
1: क्या?
0: यही कि गीता इंटरनेशनल स्कूल सेशन 2026-27 के लिए दे रहा पहले 100 एडमिशन्स पर एडमिशन फी पर 100% डिस्काउंट।
1: वाओ!
0: गीता इंटरनेशनल स्कूल फॉर अ बेटर टुमारो। एडमिशन्स ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। गीता इंटरनेशनल स्कूल, जहां आपको मिलता है साइंस एंड कॉमर्स स्ट्रीम, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, ट्वाइक्वांडो क्लासेस और वाहन की सुविधा उपलब्ध है। पता है गोंडा रेलवे स्टेशन से 1 किलोमीटर दूर जयनगर बलरामपुर रोड गोंडा। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 9545583546।
2: ज्ञान स्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन।
3: गोंडा शहर की धड़कन।
4: आप सुन रहे हैं सुन सहेली विद आरजे समता एंड आरजे अंशिका।
5: वेलकम बैक दोस्तों, आ गई आपकी आज समता और साथ में आज अंशिका। तो चलिए चलते हैं फिर से एक नए अपने दौर में, यानी कि एक नए सेगमेंट में, और देखते हैं आज का टॉपिक क्या है।
6: तो आज का टॉपिक है कि मूड जो होता है वो हमारी कहीं ना कहीं पर्सनालिटी को बेहतर भी बनाता है और कई बार खराब भी कर देता है।
5: अच्छा, मेरे साथ तो यही है कि मेरी पर्सनालिटी को खराब कर देता है मेरा।
6: ऐसा किसने कहा?
5: अब तुम यही बोलोगी कि आप हर चीज अपने पे ही क्यों ले लेती हैं।
6: नहीं, वो तो मतलब है, वो तो
5: हम ले लेते हैं ना।
6: हाँ।
5: हर बात को ना।
6: हाँ।
5: नहीं लेना चाहिए ना।
6: नहीं, वो एक चीज तो है, बट आपसे ये किसने कहा कि आपको मूड खराब होता है तो मतलब
5: मेरा व्यक्तित्व खराब हो जाता है?
6: ये किसने कहा ऐसा?
5: मुझे कोई लोग कहते थे पहले।
6: अच्छा, तो मतलब जो लोग कहते थे वो पहले की बात थी, और पहले की बातें वो होनी चाहिए, भूल जानी चाहिए। नई बातों को बनाते हैं और नई बातों को याद करते हैं।
5: ठीक है,
6: तो चलिए, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि मूड जो है वो आपके व्यक्तित्व को खराब या सही करता है, क्योंकि कई बार हमारा जो मूड होता है ना वो कैसा हो जाएगा ये हमें भी पता नहीं होता। जैसे मैं हूँ, कभी मैं बहुत प्यार से, बहुत अच्छे से, बहुत स्वीटली बात करती हूँ, और जब कोई कुछ कह देता है तो कभी कभी बहुत मतलब मूड खराब भी हो जाता है, मुझे गुस्सा भी आ जाता है। और कई बार तो कुछ लोग ऐसी बातें कर देते हैं कि मुझे पता ही नहीं होता है, मतलब मैं जाती हूँ ये मन में एकदम सोच करके कि मैं नाराज़ नहीं होंगी, मैं कुछ नहीं बोलूँगी।

0: आराम से रहूंगी। लेकिन ऐसा कुछ हो जाता है कि वो ट्रिगर हो जाता है,
1: ट्रिगर हो जाता है,
0: और फिर जब ट्रिगर होता है तो सामने वाला 2 दिन 10 दिन 15 दिन महीने भर तक यही कहता है कि अब मुझे आपसे बात नहीं करनी, और 2 दिन 10 दिन 15 दिन महीने भर तक यही कहता है कि अब मुझे आपसे बात नहीं करनी, और दोबारा बहुत हिम्मत जुटा के वो मुझसे फिर बात करते हैं, क्योंकि उन्हें पता हो जाता है कि अब फिर दिक्कत
1: क्या होने वाला है, फिर आगे एक भूचाल आने वाला है, एक भूकंप आने वाला है ना?
0: बिल्कुल ऐसा ही होता है, क्योंकि जब हमारी कोई भी सिचुएशन हो, अगर ट्रिगर हो गया कुछ, जैसे कई बार हमारे इमोशंस ट्रिगर हो जाते हैं तो हम रोने लगते हैं, कोई आप मूवी देख रहे होते हो, सीन देख रहे होते हो और अचानक कोई इमोशनल सीन आता है तो वहाँ हमारे इमोशंस ट्रिगर हो जाते हैं और हम तुरंत रोने लगते हैं, तो वो एक इमोशनल वाला मूड हो जाता है मैम। लेकिन कई बार गुस्से वाला भी मूड होता है, और मेरा तो कोई ऐसे खास कुछ व्यक्ति हैं जिनके साथ जो है मेरा मूड खराब हो जाता है, लेकिन खैर वो बात नहीं करते
1: अंशिका। लेकिन हम ये जानना चाहते हैं कि मूड अगर खराब है तो वो आपके व्यक्तित्व पर कैसा असर डालता है?
0: अगर आपका मूड खराब है तो वो नेगेटिव असर डालता है, क्योंकि जब हमारा मूड खराब होता है तो हमें आसपास की सारी चीजें खराब
1: नेगेटिव लगती हैं।
0: चाहे वो आपके सामने रसमलाई भी रखी होगी ना, लेकिन आपका खाने का मन नहीं करेगा।
1: हाँ एग्जैक्टली ऐसा होता है।
0: यस मैम, मतलब मैं अगर अपनी बात करूं तो मुझे मम्मी के हाथ की, मेरी मम्मी जो बनाती हैं तहरी, उससे मुझे उससे ज्यादा कुछ पसंद नहीं है।
1: अच्छा?
0: आप मुझे को, हाँ
1: तो मुझे कब खिला रही हो?
0: जल्दी मम्मी बनाएंगी तो आपके लिए लाऊंगी,
1: पक्का वाला,
0: पक्का वाला। तो मुझे बहुत पसंद है, और अगर मैंने उसको ना किया कि मुझे
1: तो,
0: नहीं खाना है,
1: तो मतलब कि गुस्सा चरम सीमा पे है।
0: इट मींस कि मेरा मूड बहुत खराब है। कई बार ये तब होता है जब मैं टेंशन में होती हूँ, बहुत टेंशन में होती हूँ, किसी के साथ कोई बात हो जाती है तो मैं मना कर देती हूँ कि मम्मी अभी मन नहीं है, बाद में। तो मम्मी भी मेरी समझ जाती है कि मतलब आज ये बहुत कायदे वाला कुछ जो है कुछ हुआ है। तो इसी तरीके से कि मूड पे उन्हें आप खाओगे नहीं, आप दूसरे से बातचीत नहीं करोगे, और दूसरी चीज कि कई बार हम अपना गुस्सा खुद पे निकालते हैं। कई बार आपने देखा होगा कि वैसे तो ये लगता है लोगों को कहने में कि नहीं बहुत फिल्मों में होता है, लेकिन फिल्मों में नहीं होता, कई बार रियलिटी में भी होता है कि हम चीजें इधर उधर फेंकते हैं, दीवार पे हाथ मारते हैं, मतलब किसी न किसी तरह अपना
1: अपने गुस्से को किसी चीजों पे उतारना,
0: वो नेगेटिविटी हम निकालना चाहते हैं, और वो हमारे मूड को, हमारे व्यक्तित्व को पूरी तरीके से खराब कर देती है। क्योंकि सोचिए आप बहुत गुस्से में है, या गुस्से में नहीं भी है, इनके साथ आपका मूड बहुत ज्यादा खराब है, कोई आपके सामने आ गया, वो आया आपसे अच्छे से पोलाइटली बात करने, लेकिन जो कि आपका मूड खराब है तो आप उससे उसी लैंग्वेज में बात करो
1: 100%,
0: और फिर उसके मन में एक ही आता है कि अरे यार ये तो ऐसे ही है, या तो ये तो ऐसी ही है। मान लीजिए मैंने गुस्से में बात की, कोई मुझसे बहुत प्यार से बात करने आया था और मेरा मूड खराब था और मैंने उस चिड़चिड़ेपन में उसको कुछ भी बोल दिया, अब उसके मन में तो बन गया ना कि ये ऐसी ही है। वो ये नहीं देखेगा।
1: और एक चीज और होती है कि अगर हम फर्स्ट अटेम्प्ट में किसी के साथ अगर ऐसा बिहेव करते हैं तो वो भी बहुत बुरा असर पड़ता है,
0: बिल्कुल,
1: हमारे व्यक्तित्व पे।
0: तो मान लीजिए आप ऑफिस में हैं, ऑफिस में आपने अपने बॉस के साथ कर दिया, या कहीं भी हैं आप, घर में हैं, घर में किसी बड़े को कुछ उल्टा सीधा बोल दिया तो उनके मन में आ जाता है कि अरे ये तो ऐसे ही बोल रही है। तो कहीं ना कहीं नेगेटिविटी बहुत ज्यादा हो जाती है जब आपका मूड खराब होता है,
1: बिल्कुल।
0: इसलिए अपने मूड में चिड़चिड़ेपन को कभी नहीं आने देना चाहिए। और पता है जब गुस्सा आए तो क्या करना चाहिए?
1: क्या करना चाहिए?
0: सबसे अच्छा तरीका है, आपको लग रहा है कि पीक पे है, आप बर्दाश्त नहीं कर पाओगे, वहां से उठ जाइए, उस जगह से, और सीधा कहीं ऐसी जगह जाइए जो शांत हो। मतलब मैं तो, मुझे जब गुस्सा आती है तो मैं तो सीधा काम करती हूँ, वहां से उठती हूँ और बाहर जाके हवा में, ठंडी हवा में, गैलरी में या आंगन में कहीं जाके खड़ी हो जाती हूँ, क्योंकि तब मुझे रिलैक्स फील होता है। क्योंकि मुझे ये पता है कि 2 सेकंड, अगर 2 सेकंड मैं और वहाँ बैठूंगी तो मैं बोल दूंगी, और अगर मैं बोल दूंगी तो फिर वो चीजें बढ़ जाती हैं।
1: ये तो कहा ही गया है ना कि आप अपने गुस्से को कंट्रोल अगर आपने 1 से 1.5 मिनट कर लिया, मैक्स टू मैक्स 1 से 1.5 मिनट आपको अगर गुस्सा आ रहा है तो अगर आपने कंट्रोल कर लिया तो आप अपने गुस्से पर विजय प्राप्त कर सकते हैं।
0: तो कूल रहना चाहिए, क्योंकि कोशिश करनी चाहिए, मतलब हाँ मोस्टली टाइम नहीं हो पाता है, मतलब मैं भी यही कहूँगी, मोस्टली टाइम लोग आपको नहीं रहने देते, लेकिन फिर भी कोशिश करें, क्योंकि गुस्से में हम जो भी बोलते हैं वो हमेशा दिमाग से निकलता है, और जब उसके बाद शांत होने के बाद आप सोचते हैं तो रियलाइज होता है कि अरे ये नहीं कहना चाहिए था, ये क्यों कह दिया। तो सोचे थोड़ा और रिलैक्स करें,
1: थोड़ा सोचे विचारें, ताकि आगे आपकी जब भी कोई गुस्सा हो तो वो आपसे 4 कदम की दूरी पहले ही बना ले,
0: बिल्कुल। और इसे हम मॉनसून स्ट्रेस भी कहते हैं, क्योंकि मॉनसून शुरू हो गया है तो मॉनसून में ये चीजें हमारे बिहेवियर में होती रहती हैं। एक चीज और होती है जो मैम बहुत करती है।
1: क्या भाई, मैं क्या करती हूँ?
0: अपने हेल्थ की चिंता। और कई बार ये कहना तो नहीं चाहिए, बट कई बार बेवजह की चिंता।

0: बेवजह की चिंता इन द सेंस कि अगर हल्का सा पेट में पेन भी हो रहा है ना, तो हम सोचते हैं लीवर तो नहीं खराब हो गया, कहीं कुछ ज्यादा तो
1: अच्छा,
0: नहीं
1: तुम्हें होता है ये चीजें?
0: हाँ मुझे भी होती
1: तो
0: है।
1: फिर मुझे ही क्यों लिया, मतलब बोलना चाहिए था, हम दोनों लोग करते हैं।
0: दोनों लोग करते हैं।
1: और आई थिंक बहुत सारे लोगों को ये एक हैबिट है।
0: नहीं नहीं
1: कि जरा सा अगर सर में दर्द हुआ तो कहीं टेंशन होने लगती है, यार कहीं सर में तो कुछ नहीं हो गया, आंखों में कुछ होने लगता है, तो ऐसा तो नहीं कि हम लोग क्या कहते हैं आंखों में कुछ हो गया तो हम लोग ब्लाइंड हो जाएंगे?
0: नहीं नहीं ऐसा
1: नहीं है ना। और ऐसा ही खास करके, लेकिन मैंने ये भी देखा है कि आप जिस चीज के लिए ज्यादा सोचते हैं ना, उसमें उस दिन पूरा दिन कुछ ना कुछ होती
0: जरूर है।
1: कभी क्या कहते हैं कहाँ दर्द होगा तो कभी कहाँ दर्द होगा, और अगर आपने इग्नोर करना शुरू कर दिया तो आप बिल्कुल फिट ही मतलब रह सकते हैं।
0: राइट तो ये मैंने इसलिए, वैसे तो मैंने मजाक किया था, मतलब ऐसे ही कहा था, डोंट बी सीरियस। कहने का सेंस सिर्फ इतना था कि कई बार छोटी छोटी चीजों पे, जैसे मैम ने अभी बताया, इग्नोर करिए और आराम से उसको डील करिए। दूसरी चीज, थर्ड जो आता है वो ये आता है कि कई बार हमें थकान बहुत महसूस होने लगती है इस मौसम में
1: हाँ।
0: और सुस्ती भी लगती है,
1: हाँ।
0: मन करता है कि लेटो नहीं कि
1: तुरंत नींद आने लगती है,
0: नींद आ जाती है। तो इस थकान और सुस्ती के लिए आपको क्या करना चाहिए कि थोड़ा सा एनर्जेटिक रहने की कोशिश करें। एनर्जी का मतलब होता है नए नए कामों को करना इन द सेंस कि ऑफिस का कोई प्रेजेंटेशन आप बना रहे हैं मान लीजिए, तो आधा मत छोड़िए। जैसे कई बार हम कोई काम कर रहे हैं, सुस्ती लगती है तो थकान लगती है, तो हम क्या कहते हैं, अरे आधा रहने दो, आधा बाद में
1: कल कर लेंगे,
0: थोड़ा रिलैक्स हो जाएंगे, हाँ। फिर कर लेंगे। ये कभी ना करें, आप जो काम कर रहे हैं वो करते रहिए। दो मिनट आपको सुस्ती महसूस होगी और दो मिनट बाद जब आपका काम उस आपका मन उस काम में लग जाएगा, फिर आपको वो चीज नहीं होगी।
1: मतलब ये सब मौसम के कारण ही होता है,
0: हाँ।
1: और मतलब ये सब चीजें ना अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है।
0: बिल्कुल,
1: कहने का सेंस ये है कि अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है।
0: और हावी नहीं होने देने का बहुत अच्छा तरीका है, बताऊं मैं
1: क्या?
0: बहुत मस्ती वाला तरीका है, बहुत मजा आएगा।
1: डांस करना है, सॉन्ग सुनने हैं,
0: अरे वाह, ये दो कर सकते हैं,
1: मुझे पता है। और आजकल तो लोगों को क्या पता है, जब भी मूड थोड़ा सा इधर से उधर हुआ तो लोग क्या करते हैं, रील्स बनाने लगते हैं।
0: हाँ, ये भी कर सकते हैं।
1: मैं भी करती हूँ, मैं उसको पोस्ट नहीं करती हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि आ जाओ जी, हाँ चलो हम लोग रील बनाते हैं।
0: एक चीज और है जो आप कर सकते हैं, और वो होती है ऐसे गेम्स को खेलना, जैसे आउटडोर गेम्स खेलना। आउटडोर इन द सेंस कि आप खेलिए, गेम्स एंजॉय करिए, क्योंकि जब हम कोई भी गेम खेलते हैं, जैसे आप लूडो खेलते हो, क्रिकेट खेलते हो, मान लीजिए कई बार मॉनसून होता है तो हम कहते हैं कि चलो घर में ही बैठ के कुछ खेलते हैं, तो अगर आप खेल रहे हैं तो मान लीजिए लूडो खेल रहे हैं, लूडो बहुत पुराना है, मुझे सांप सीढ़ी बहुत अच्छी लगती है, तो अगर आप खेल रहे हैं मान लीजिए तो बहुत मजा आता है, क्योंकि ये हमारे हमारे दिमाग में कहीं ना कहीं हमारी बॉडी में पॉजिटिव जो हार्मोन्स होते हैं उनका श्राव सीधा शुरू हो जाता है अगर आप खेलते हो कोई भी स्पोर्ट्स।
1: सच्ची?
0: और हाँ, अगर वो आपकी पसंद का है तो।
1: हाँ, मुझे लूडो बहुत पसंद।
0: 10 मिनट खेलने के बाद आप देखोगे कि आपको इतनी पॉजिटिविटी फील होगी ना, इतनी एनर्जी आ जाएगी कि लगेगा कि अब तो 2 दिन का काम एक साथ होगा।
1: नहीं सच्ची में मुझे लूडो बहुत पसंद है,
0: मुझे सांप सीढ़ी
1: तो, और सांप सीढ़ी इसलिए नहीं पसंद क्योंकि बहुत टाइम लगा देता है, पता लगा जहाँ पर बिल्कुल पहुंचने वाला होता है
0: वहीं पे
1: और वहीं पर काट लिया सांप ने, फिर
0: सीधा
1: नीचे आ जाओ, तो थोड़ा सा टाइमिंग लगती है, बट हाँ पसंद है, गेम्स तो पसंद है, जो बात
0: तो खेलें और इंजॉय करें। और मैम ने अभी आपको 3 बहुत ही अच्छे तरीके बताए, पहला था डांस करना, दूसरा था म्यूजिक सुनना, और तीसरा था आज की जेनरेशन का सबसे फेवरेट,
1: चौथा एक और भी है,
0: क्या
1: हो सके तो आप अपने पसंदीदा इंसान या इंसानी से बात कर सकते हैं, तो आपका मूड झट से बिल्कुल, जैसे कहते हैं ना बीपी का जो लोअर होता है वो 80 और 120 होता है,
0: हाँ।
1: तो वो सीधे आपका बिल्कुल जर्र से ऊपर हो जाएगा।
0: अरे
1: अगर किसी का
0: ये अच्छा
1: 50-60 होता है ना नॉर्मल में, तो आपका सीधे आपका 89,
0: ये आपको बूस्टर डोज दे,
1: ये बूस्टर डोज दे,
0: अगर बूस्टर डोज चाहिए तो ये
1: आप अपने पसंदीदा इंसान या इंसानी से,
0: नहीं
1: मतलब लड़की से,
0: हाँ हाँ
1: बात कर सकते हैं, हाँ
0: ऑफ कोर्स लड़की।
1: तो इसी चर्चा को हम करते हैं यहाँ पर स्टॉप। लेकिन आ गए हैं अभी हमारे चैट बॉक्स में कमल नयन जी, प्रीति जी, अनुष्का जी, इट्स कुमार जी, आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है, आपका फेवरेट शो चल रहा है सुन सहेली। तो चलिए अब हो गया है टाइम ब्रेक का, और ब्रेक में गाना इतना बेहतरीन लगा दिया है कि मैं क्या बताऊं, कि मेरा तो मन ब्रेक के बीच में ही कर रहा था, लेकिन आप तक कोई अच्छी वाली इन्फॉर्मेशन भी पहुंचाना जरूरी होता है, तो बस हम यूं गए और यूं आए, आइए सुनते इस प्यारे से गाने को।

0: मुझे मिल गया है तुम्हारी घबराहट का समाधान।
1: मतलब?
0: मतलब मानसिक समस्याएं होंगी दूर, जैसे नींद न आना, घबराहट, काम में मन न लगना, आत्महत्या के विचार आना, अत्यधिक गुस्सा, अत्यधिक साफ सफाई, भूत प्रेत, देवी देवता आदि की छाया का भ्रम होना, याददाश्त की कमी, घरेलू कलह, पढ़ाई में मन ना लगना, बिजनेस में लॉस होना, करियर की समस्या, किसी भी प्रकार का नशा एवं मिर्गी, बेहोशी के दौरे आना।
1: इन समस्याओं के लिए निशुल्क टेली मानस हेल्पलाइन नंबर है 14416 या 1800-891-4416 पर कॉल करें। जरूर याद रखें 14416। जिला स्वास्थ्य समिति गोंडा द्वारा जनहित में जारी। मानसिक समस्याएं होंगी दूर, खुलकर जिंदगी जिए भरपूर।
2: सिर में लगातार दर्द, चक्कर आना, याददाश्त में कमी या हाथ पैर का सुन पड़ जाना, इन लक्षणों को नजरअंदाज ना करें।
3: आइए मंडल के एकमात्र न्यूरो हॉस्पिटल सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर, जहां दिमाग, नस, रीढ़, माइग्रेन, कमर दर्द, लकवा, ब्रेन हैमरेज व न्यूरो से संबंधित सभी बीमारियों का मंडल के जाने माने वरिष्ठ न्यूरो सर्जन डॉक्टर सुजीत कुमार शुक्ला द्वारा सफल इलाज 17 वर्ष के अनुभव के साथ, साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सुविधा उपलब्ध है। भरोसे का दूसरा नाम सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर। अभी कॉल करें 9838-288-386।
2: पता है सर्कुलर रोड, आवास विकास कॉलोनी, गोंडा।
4: इलाज होगा बेहतर, खुशहाल होगी जिंदगी।
5: ज्ञान स्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन।
6: गोंडा शहर की धड़कन।
7: आप सुन रहे हैं सुन सहेली विद आरजे समता एंड आरजे अंश।
8: वेलकम बैक दोस्तों, आगे आपकी आज समता। तो चलिए फटाफट चलते हैं आज के ब्यूटी टिप्स की ओर, एंड देन हम एक टॉपिक और लेकर के आए हैं, लेकिन सबसे पहले आज बताऊंगी आपको ब्यूटी टिप्स।
9: ब्यूटी, क्योंकि ब्यूटी होती है बहुत इम्पोर्टेंट। मतलब महिलाएं हों अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी, और अगर वो खूबसूरत ना दिखें या दिखना ना चाहें, तैयार ना होना चाहें, तो फिर क्या फायदा। हमारी मैम भी तैयार होती हैं तो बहुत खूबसूरत लगती हैं।
8: ऑलमोस्ट तो टाइम हम तैयार होते नहीं है,
9: जब आप होती है तब लगती।
8: मेरा ये एक्चुअली देखा जाए तो ये मेरा रियल लुक है।
9: हाँ, और आप रियल लुक में भी बहुत अच्छी लगती है।
8: चलो हो गया।
9: हाँ हो गया,
8: टॉफी दे रहे, चलो आगे बढ़ो।
9: टॉफी, सिर्फ टॉफी।
8: हाँ, जब बड़ी विश होगी तो बड़ा,
9: अरे तो फिर गिफ्ट लेंगे, फिर आपको ऐसे थोड़ा ही छोड़ देंगे।
8: बिल्कुल, फिर तो बड़ी चीज देंगे, बड़ी चीज।
9: फिर मुझे मैं लेने वाले, मेरे पास दो हो जाएंगे फिर।
8: नहीं, आप लेने वाले दो तो हो जाएंगे, लेकिन आप जिस चीज पे आप हाथ रख दोगे ना, वो चीज तुम्हारी।
9: ओ माय गुडनेस, आप मुस्कुरा दीजिए, और आप जो चाहती है वो आपकी लाइफ में हो जाए, मुझे उससे बड़ा गिफ्ट नहीं चाहिए, वो बहुत बड़ा गिफ्ट होगा।
8: ठीक है,
9: फिर तो हम देख लेंगे, हमारे ही घर की है मैम, कोई गैर तो है नहीं, फिर तो मैं कह सकती हूँ पूरे हक से कि मुझे ये चाहिए।
8: बिल्कुल बिल्कुल, चले तो, आगे बढ़े।
9: हाँ, फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं, क्योंकि अगर हमने ये बात यहाँ शुरू कर दी तो फिर लिसनर्स कहेंगे।
8: तो आप सभी को पता है कि दो सहेलियों में ना ये बातें कभी खत्म नहीं होंगी। हाँ, ये कहती रहेंगी, हम सुनते रहेंगे, इनको जो चाहिए ये मांगती रहेंगे, हम इनको देते रहेंगे, और हमारा शो यहीं पर
9: खत्म हो जाएगा। और लिसनर्स कहेंगे ये अपनी लेन देन में लग गई,
8: ये अपनी लेन देन में लग गई। देखो,
9: नहीं नहीं, तो ऐसा नहीं करते, फटाफट से आपको कुछ टिप्स और बढ़िया सी टेक्निक्स बताते हैं आपके फेस को अच्छी रखने के लिए।
8: ओके,
9: तो खूबसूरत है आपका प्यारा सा फेस, उसे और खूबसूरत अगर आप बनाना चाहते हैं तो मॉनसून केयर बहुत जरूरी होती है, क्योंकि बारिश शुरू हो गई है, और बारिश के मौसम में अगर अपने फेस को अच्छे से क्लीन ना किया जाए तो धीरे धीरे पिंपल आने लगते हैं।
8: हाँ, मुझे आ गया था कल।
9: बताइए, तो पिंपल आने लगते हैं, इसलिए बारिश के मौसम में सबसे ज्यादा ध्यान ये रखना चाहिए कि आपके चेहरे पे जो नेचुरल ऑयल होता है ना,

0: और फिर जो आपको देखेगा वो देखता रह जाएगा। वैसे देखता कौन है?
1: देखता वही है जिसको आप दिखाना चाहते हैं अपना चेहरा। जिसको नहीं दिखाना चाहते हैं उसको तो कहते हैं हट चल परे,
0: हटो, मूड नहीं है,
1: मूड नहीं है,
0: मूड फिर।
1: तो फटाफट शुरू करते हैं अंशिका, बहुत टाइम
0: जी मैम
1: नहीं है हमारे पास में।
0: या ऑफ कोर्स। और बस यही कहना चाहूंगी कि बहुत ज्यादा हैवी मेकअप इस मौसम में नहीं करना चाहिए, बहुत हल्का वाला कीजिए, बिल्कुल लाइट शेड का। अगर आप मेकअप यूज करते हैं तो, अगर नहीं यूज करते हैं तो बहुत बेटर है। पता है इस मौसम में ज्यादा देर मेकअप यूज करना ही नहीं चाहिए। हल्की सी क्रीम लगाइए आप, हल्की सी लिपस्टिक लगाइए, छोटी सी बिंदी लगाइए, बस उतने में लुक कंप्लीट। क्योंकि ज्यादा मेकअप जब हम इस मौसम में करते हैं तो कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जो आपकी बॉडी को नुकसान, आपकी फेस को, सॉरी बॉडी को नहीं, फेस को नुकसान कर जाते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि बारिश के मौसम में अगर आपने वाटरप्रूफ मेकअप किया है तो ठीक है, क्योंकि वो ख़राब नहीं होगा। लेकिन अगर आपने वाटरप्रूफ मेकअप नहीं किया है तो कई बार जब हम आईलाइनर लगाते हैं या आईलैशर का यूज़ करते हैं तो उसमें जो केमिकल्स होते हैं, जब उन पे जैसे मान लीजिए आप बरसात में जा रहे हैं, पानी आपका फेस भीग गया, तो वो धीरे धीरे रिस्क करके कई बार आंखों में चले जाते हैं,
1: खास करके मस्कारा और काजल में। इसलिए अगर आप मेकअप कर भी रहे हैं तो आप अच्छे ब्रांडेड का करें।
0: हाँ।
1: ताकि वाटरप्रूफ करें, एंड सबसे मेनली होता है ना ब्रांडेड करना, ताकि उसका जो केमिकल है वो अगर आपकी आंखों में जा भी रहा है तो उसका कोई साइड इफेक्ट ना हो।
0: बिल्कुल, क्योंकि साइड इफेक्ट जब कई बार हो जाते हैं तो फिर आंखों के लिए तो बहुत ज्यादा केयर की जरूरत पड़ती है। दूसरी बात ये आती है कि अपने फेस को बहुत ज्यादा वॉश नहीं करना चाहिए मानसून में। जितना हो सके 2 से 3 बार, जैसे आप सुबह वॉश करते हैं मान लीजिए, फिर शाम को करते हैं, दोपहर में करते हैं, तो दो बार ठीक है। लेकिन अगर हम ज़्यादा बार वॉश करते हैं तो धीरे धीरे हमारी फेस की नमी खो
1: अच्छा,
0: जाती है।
1: अच्छा मॉनसून की बात हो रही है और हमारा अगर ये बीजीएम लग जाए तो
0: कौन
1: सा, आप सुनिए कौन सा बीजीएम है, अगर बैकग्राउंड म्यूजिक में अगर ये बीजीएम चल रहा है

0: तो ये असर है. खैर बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि बहुत दिन बाद मैम का ऐसा मूड है, वरना तो मैम का वैसा वाला मूड रहता है. तो वैसे वाले मूड से ऐसा वाला मूड ज़्यादा अच्छा है. अब आप चेंज मत होइएगा.
1: ना ना बिल्कुल नहीं,
0: बिल्कुल नहीं. तो जैसे ही अभी हम बता रहे थे, राह भटक गए, इतना प्यारा सा सॉन्ग लगा दिया मैम ने कि कहीं और ही चले गए थे, वापस आना पड़ा.
1: जी
0: तो अपने फेस को क्लीन करें और सबसे ज्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट,
1: एक्चुअली मॉनसून पे बात हो रही है तो मुझे लगा मॉनसून में टिप टिप बरसा पानी एग्जैक्टली बिल्कुल सुटेबल है.
0: बिल्कुल. अब आते हैं हम, अभी तक हमने फेस की बात की, अब बात कर लेते हैं उनकी जिनके बिना कुछ नहीं हो सकता,
1: जिसके बिना नहीं रहा जा सकता.
0: नहीं बिल्कुल कोई सवाल नहीं. और वो होता है आपके सिर के ऊपर आपके बाल, जिनके बिना बिल्कुल नहीं रहा जा सकता.
1: हम तो कहीं और चले गए.
0: नहीं नहीं, आप कहाँ चली गई थी वो मुझे पता चल गया.
1: शुभ दोपहरिया दोनों मैम को. कैसी हैं महक जी, आप कैसी हैं?
0: महक तो रहे हैं महक जी, बहुत अच्छे.
1: हम लोग भी महक रहे हैं, चहक रहे हैं. प्रीति जी कैसी हैं? अनुष्का जी कैसी हैं? हमारी बैकग्राउंड म्यूजिक के बारे में जरूर से दो लाइन बताइएगा कि इस मॉनसून टिप्स के साथ में मॉनसून वाला गाना चला दिया है. इट्स फॉर ओनली माई लेडीज लिसनर्स. ठीक है, तो ज़रूर से बताइएगा. और इसमें येलो कलर की साड़ी पहनी है रवीना टंडन ने. एंड माई गॉड क्या लगती है यार, मज़ा आ जाता है उसको इस गाने में देख करके. आप भी मॉनसून में रील शील बनाओ येलो साड़ी में और अच्छा सा मेकअप.
0: मैम भी बना सकती हैं.
1: हाँ मैं भी बना सकती हूँ
0: येलो साड़ी में, तो प्यारी सी अच्छी सी क्यूट सी.
1: चलिए ठीक है, तो जरूर से बनाएंगे. कम टू द पॉइंट.
0: यस यस यस यस. और दूसरा है हेयर के लिए कुछ चीजें बता देते हैं. तो बालों के लिए ये है कि सबसे पहली बात, कभी भी मॉनसून में अपने बालों को गीला नहीं रखना चाहिए.
1: हाँ
0: ये बहुत बड़ी बात होती है. क्या पता है, हम बारिश में भीगते हैं, खूब सारा बारिश को एंजॉय करते हैं और फिर क्या करते हैं, फिर घर आकर के ना बाल आपने साफ किए, ना उसको ठीक से तौलिए से आपने वो किया, बस ऐसे ही आप लेट गए या बैठ गए, या हम कहते हैं अरे रहने दो क्यों साफ करना है, फैन में बैठ जाते हैं,
1: सुखा लिया, ऐसे सुखा लिया,
0: ऐसे सुखा लिया. लेकिन जो फंगस और जो नमी होती है वो आपके बालों में रह जाती है, जिससे बाल हो जाते हैं खराब और फिर हमें पड़ता है रोना. इसलिए जब भी बारिश में भीगिए तो हमेशा अपने बालों को आप साफ कर लीजिए अच्छे से उनको टॉवल से, क्योंकि इससे साफ करने के बाद में रूसी नहीं होती. अगर साफ नहीं करेंगे तो फिर रूसी हो जाती है.
1: बिल्कुल.
0: और हो सके तो आप शैम्पू से, किसी भी माइल्ड शैम्पू से वॉश कर लीजिए बालों को आराम से और

0: कंडीशनर का इस्तेमाल शैम्पू के बाद अपने बालों में ज़रूर करें, क्योंकि मानसून में ये बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। थर्ड आती है कि मानसून में खुले बाल ज़्यादा उलझते हैं और टूट जाते हैं, इसलिए हेयर स्टाइल करें, अच्छी सी करें और जहाँ तक हो सके अपने बालों को कम खोलें, उन्हें खुला ना छोड़ें।
1: और उसके बाद में अब मेरे पास अंशिका जो टिप्स हैं आप सुनेंगी ना तो आप अभी कुर्सी से उछल के कूद पड़ेंगी। मेरे अच्छा। पास है मॉनसून में इन्होंने बताया कि आपको ये करना है, लेकिन अब मैं आपको बताऊंगी कि मॉनसून रहते हुए आप अपने चेहरे पर कैसे ग्लो ला सकते।
0: बताइए।
1: रुक जाओ, ठारो अपने आप को ठारो। तो मॉनसून में अपने चेहरे पर ग्लो कैसे लाना है, तो ग्लो लाने के लिए सबसे पहले तो हमें ये गाना सुनना पड़ेगा, क्योंकि इस गाने को सुनने के बाद ही ऑलरेडी ग्लो आ जाएगा हमारी बॉडी पे और हमारे चेहरे पे। तो इस गाने को सुनते हैं और उसके बाद में हम आएंगे तुरंत और तुरंत इस प्यारे से टिप्स को जानने के लिए, क्योंकि मॉनसून में चेहरे पर ग्लो कैसे आता है। आइए सुनते हैं इस बेहतरीन से गाने को।

क्या आप भी गोंडा से हैं और गोंडा में ही तलाश रहे एक बेहतरीन करियर ऑप्शन, या आप ढूंढ रहे एक ऐसा हुनर जो आपको जोड़ दे रोजगार से, या फिर बदलते दौर में आप भी छा जाना चाहते हैं अपने टैलेंट से टीवी, रेडियो और सोशल मीडिया पर, तो अब गोंडा में ही रेडियो ज्ञानस्थली लाया है डिजिटल मास कम्युनिकेशन कोर्स, जिसमें एक्सपर्ट्स द्वारा टीवी एंकरिंग, रेडियो जॉकी, वीडियो पॉडकास्ट, वॉइस एक्टिंग, ऑडियो एडिटिंग, वीडियो एडिटिंग, एडवर्टीजमेंट प्रोडक्शन और कंटेंट राइटिंग की प्रोफेशनल ट्रेनिंग, और तो और कोर्स के आखिर में पूरे एक हफ्ते का रोजगार मेला यानी जॉब प्लेसमेंट की भी गारंटी। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 8840 3395 84। अब बारी है आपकी।

0: सिर में लगातार दर्द, चक्कर आना, याददाश्त में कमी या हाथ पैर का सुन पड़ जाना, इन लक्षणों को नजरअंदाज न करें।
1: आइए मंडल के एकमात्र न्यूरो हॉस्पिटल सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर, जहां दिमाग, नस, रीढ़, माइग्रेन, कमर दर्द, लकवा, ब्रेन हैमरेज व न्यूरो से संबंधित सभी बीमारियों का मंडल के जाने माने वरिष्ठ न्यूरो सर्जन डॉक्टर सुजीत कुमार शुक्ला द्वारा सफल इलाज 17 वर्ष के अनुभव के साथ साथ ही 2400 घंटे इमरजेंसी सुविधा उपलब्ध है। भरोसे का दूसरा नाम सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर। अभी कॉल करें 9838283886।
0: पता है सर्कुलर रोड, आवास विकास कॉलोनी, गोंडा।
2: इलाज होगा बेहतर, खुशहाल होगी जिंदगी।
3: ज्ञान स्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन।
4: गोंडा शहर की धड़कन।
0: आप सुन रहे हैं सुन सहेली विद आरजे समता एंड आरजे अंशिका। वेलकम बैक दोस्तों, आ गई आपकी आज समता। तो चलिए फटाफट शुरू कर देते हैं। कुछ कुछ ऐसा होने लगा है, कुछ कुछ क्या होने लगा है, आई डोंट नो मैं क्या फील करने लगी।
5: कुछ तो हो रहा है,
0: कुछ तो हुआ है,
5: क्या हो गया है
0: पता नहीं क्या हो गया।
5: तो अभी फिलहाल के लिए ये हो गया है कि चाहत को हमेशा चाहिए जताना, चाहत को हमेशा चाहिए जताना, और अब आपकी आज क्षमता को है ब्यूटी टिप्स बताना।
0: ओके,
5: सुनते हैं।
0: वाओ, तो चलिए, तो अंशिका आपको चेहरे पे ग्लो लाना है।
5: हाँ?
0: वो भी मॉनसून में,
5: बिल्कुल
0: ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आज मैं आपको 4 स्टेप बताऊंगी 1 by 1।
5: ओके।
0: जिसको अगर आपने कर लिया तो इस ये मॉनसून हो, कड़ी धूप हो, सर्दियां हो, उसमें आपके चेहरे का ग्लो मेरी तरह रहने वाला है, ठीक है।
5: यानी कि सुपर ग्लोइंग,
0: सुपर ग्लोइंग रहने वाला है, ठीक है। तो चलिए हम आपको बता देते हैं कि खूबसूरती नहीं अच्छी आदतें भी निखार लाती हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो क्या करना है कि आपको एक टमाटर का टुकड़ा उठाना है, यानी एक टमाटर ले लेना है, उसको आधा मतलब कट कर लेना है, ठीक है। हाँ, क्योंकि टमाटर अगर ज्यादा महंगे हैं तो अभी आप लोग अगर घर में फिर से उठाएंगे और मम्मी की डांट भी खा सकते हैं, तो इसीलिए आधा टमाटर आपने कट कर लेना और उस आधे से आपको 2 टुकड़े कर लेने हैं,
5: ओके,
0: ठीक है। उसके ऊपर से आपको हल्का सा ऊपर से छिड़क देना है चावल का आटा। अगर चावल का आटा नहीं है, मैं फिर से बता दे रही हूँ, अगर चावल का आटा नहीं है तो बेसन एक ऐसी चीज है जो हर घर में होती है, तो बेसन को भी आपने चुटकी में लेकर के ऊपर से उसमें टमाटर के ऊपर से उसमें छिड़क देना है, ठीक है
5: जी मैम।
0: अब उसको क्या करना है कि अपने चेहरे पर हल्की हल्की तब तक मालिश करनी है जब तक वो आपका जो क्या कहते हैं टमाटर लिया हुआ है वो पूरा गल ना जाए, ठीक है। नाक के पोर पर और क्या कहते हैं कि लिप्स के पास जहाँ पर वो पूरा ब्लैकिश हो जाती है, आपको ये 6 से 7 मिनट तक कंटिन्यूसली इसको आपने दोनों मतलब दो टुकड़े लेने हैं, दोनों हाथ में ले लेने, ठीक है
5: जी।
0: और दोनों मतलब एक इस गाल में और इस गाल में, मतलब दोनों हाथ से अपने फेस पर अच्छे से मसाज करनी है 7 से 8 मिनट तक, ठीक है
5: जी मैम।
0: आप जब मसाज करेंगे उसके बाद ही आप देखेंगे कि आपका जो चेहरा है वो मतलब 50% तो ग्लो करने ही लगेगा, लेकिन अभी 50% बाकी है, ठीक है। और ये टैनिंग को हटाने का एक गुड गुड गुड वाला स्रोत भी माना गया है। सेकंड क्या करना है, उसके बाद ही आपको टिश्यू पेपर लेना है और अपने फेस को पोंछ लेना है। अभी आपको फेस को धुलना नहीं है,
5: ओके,
0: टिश्यू से या फिर वाइप से आपको अपने फेस को क्लीन कर लेना है, मतलब जो टमाटर में लगा होगा उसके दाने
5: जी, जी,
0: या जो भी वो उसको साफ कर लेना है। उसके बाद में आपको उठाना है हाथ की हथेली पे ही आप ले लीजिएगा, 1 चम्मच आपको लेना है एलोवेरा जेल और 1 विटामिन E कैप्सूल, उसको कट करके उसे मिला देना है और अच्छे से उसको मिलाएंगे तो वो पूरा व्हाइट क्रीम बन जाएगी
5: जी मैम।
0: अब आपको 2 मिनट तक इससे आपको आपके फेस पे मसाज करनी है, फिर से, ठीक है। और अपर टू लोअर एंड लोअर टू अपर आपको मसाज करनी है, मतलब नीचे से ऊपर की ओर अपने फेस पे मसाज करिएगा, क्योंकि इससे क्या होता है कि आपके चेहरे पे झुर्रियां कम पड़ती हैं। थर्ड पॉइंट इज कि आपको क्या करना है कि गुलाब जल का आपको यूज करना है, मतलब सोने से पहले आपको गुलाब जल का यूज जरूर से जरूर करना है
5: जी,
0: मतलब ये जब हो जाएगा उसके बाद आपको अपने फेस पे गुलाब जल को स्प्रे कर देना है और थोड़ी देर के लिए वैसे ही इसको छोड़ देना है, ठीक है। अब उसके बाद में लास्ट बट नॉट लीस्ट एक पैक बनाना है, पैक क्या बनाना है, 2 चम्मच दही 1 चम्मच कॉफी को मिला करके आपको इसको पैक बना लेना है और आपको 5 से 6 मिनट तक इसको लगा के रखना है। हाथ की हथेली से आपको फिंगर से उसमें हवा करनी है ताकि वो सूख जाए। ज़्यादा मत सूखने दीजिएगा, हल्का सा वो जब ड्राई हो जाए तभी आपने जा करके अपने फेस को वॉश कर लेना है। जैसे ही आप वॉश करके अपने रूम में आएंगे, आपने हल्का सा कोई भी मॉइस्चराइजर क्रीम हो या फिर सीरम हो अपने फेस पे लगा लेना है, क्योंकि तब स्किन आपकी खिंची खिंची हो जाती है। काफ़ी लोगों की स्किन में ऐसा होता है कि जो धुल के आते हैं तो स्किन खिंच जाती है, तो आपने कोई भी सीरम यूज़ कर लेना है और उसके बाद अपने आप को शीशे में निहारना है।
5: और उसके बाद जो आपको देखेगा वो देखता ही रह जाएगा।
0: मतलब ये प्रोसेस इतना अच्छा है, इतना इफेक्टिव है कि मुझे लगता है कि बहुत सारी लेडीज जो है वो टमाटर का इस्तेमाल करती हैं।
5: हाँ।
0: और काफी लोगों को अच्छा भी लगता है कि उससे टैनिंग हटती है। हमको लगा मैडम जी टमाटर काट के बेसन लगा के डालकर पकौड़ी बनाना चाहती है, बिल्कुल, और वो पकौड़ी खाएंगे आप, ठीक है। चलिए, तो जो भी हमारी फीमेल लिसनर्स हैं वो ज़रूर से इसको आप क्या कहते हैं इस ये 4 प्रोसेस के क्लीन को आप अपने फेस क्लीन को ज़रूर अपनाइएगा एंड ज़रूर से इसका फीडबैक हम लोगों को दीजिए।
5: बिल्कुल। और चलिए, बातें करते हुए समय जो है वो बिल्कुल पता नहीं चलता है। हमने इतनी सारी बातें की, इतनी सारी मस्ती की और आपने अभी सुना, इतना प्यारे प्यारे इतने सारे सॉन्ग सुने और मैम ने हल्का सा गुनगुनाया वो भी सुना, उन्होंने कितने दिन बाद गुनगुनाया है। और गुनगुनाना पता है एक आपको कुछ हो जाता है उसका साइन भी होता है,
0: गुड वाला साइन है,
5: गुड वाला साइन।
0: हाँ एग्जैक्टली अंशिका, मैं काफी टाइम के बाद आज मैंने गाना गुनगुनाया, मतलब
5: बिल्कुल। आप ऐसे गुनगुनाती रहे और हम सुनते रहे
0: जी,
5: और आप सुनाती रहे,
0: मैं ऐसे गुनगुनाती रहूंगी, ऐसे आप सुनती रहेंगी और ऐसे हमारा शो चलता रहेगा। तो चलिए, आज के लिए हम लोग दोनों को दे इजाजत, कल मिलेंगे सेम प्लेस सेम टाइम पर। और कल हमारा वैसे भी सैटरडे सेक्शन होता है, आप सभी को पता है गानों की होती है भरमार, जिसमें हम लेकर के आते हैं बहुत सारा प्यार।
5: माय गॉड, वाह वाह वाह वाह वाह, देखा इसको कहते हैं कि जब मूड अच्छा होता है तो सब कुछ अच्छा होता है।
0: मुंह से ना फूल गिरते हैं, मोतियां
5: फूल गिरते हैं,
0: है ना।
5: चलिए, आज समता के मुंह से फूल गिर रहे हैं, बताइए।
0: हाँ, जो इतने क्रोधित अवस्था में,
5: नहीं नहीं ऐसा नहीं।
0: चलिए फटाफट आप ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के उस पार आएंगे, ठीक है। तो ब्रेक के उस पार आएंगे और सॉन्ग बजने की देरी है। टेक केयर, बाय
5: बाय दोस्तों।

0: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े बनता है।
1: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
0: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
1: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती है, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
0: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
1: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, तुरारो रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करें 888-100-9400। क्या आप भी गोंडा से हैं और गोंडा में ही तलाश रहे एक बेहतरीन करियर ऑप्शन? या आप ढूंढ रहे एक ऐसा हुनर जो आपको जोर दे रोजगार से? या फिर बदलते दौर में आप भी छा जाना चाहते हैं अपने टैलेंट से टीवी, रेडियो और सोशल मीडिया पर? तो अब गोंडा में ही रेडियो ज्ञानस्थली लाया है डिजिटल मास कम्युनिकेशन कोर्स, जिसमें एक्सपर्ट्स द्वारा टीवी एंकरिंग, रेडियो जॉकी, वीडियो पॉडकास्ट, वॉइस एक्टिंग, ऑडियो एडिटिंग, वीडियो एडिटिंग, एडवर्टीजमेंट प्रोडक्शन और कॉन्टेंट राइटिंग की प्रोफेशनल ट्रेनिंग, और तो और कोर्स के आखिर में पूरे एक हफ्ते का रोजगार मेला यानी जॉब प्लेसमेंट की भी गारंटी। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 88 40 35 95 84। अब बारी है आपकी। छूने दो बच्चों के हाथों को चांद सितारे, यही प्यारे बच्चे हैं भविष्य हमारे। प्रोफेसर डॉक्टर शेख बहादुर सिंह, पूर्व सदस्य उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग, प्रख्यात शिक्षाविद के सपनों का इंग्लिश मीडियम CBSE पैटर्न वाला मॉडर्न पब्लिक स्कूल एवं मॉडर्न किडीज प्ले ग्रुप से क्लास 9th। आपके बच्चों के लिए मिलने वाली सुविधाएं हैं क्रिएटिव प्लेवे मेथड से पढ़ाई, थीम बेस्ड क्लासरूम, ऑडियो वीडियो विजुअल्स, कंप्यूटर स्मार्ट क्लास, वाहन की सुविधा, CCTV कैमरे से लैस कैंपस और स्विमिंग पूल, पूल डे की सुविधा उपलब्ध है। एडमिशन ओपन, पता है LIC कॉलोनी, निकट गोंडा मेडिकल सेंटर, पटेल नगर, गोंडा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9670931251 और 88 40 98 123। मॉडर्न पब्लिक स्कूल, निखार रहे हैं आपके बच्चों का भविष्य।
2: मुझे मिल गया है तुम्हारी घबराहट का समाधान।
3: मतलब?
2: मतलब मानसिक समस्याएं होंगी दूर, जैसे नींद ना आना, घबराहट, काम में मन ना लगना, आत्महत्या के विचार आना, अत्यधिक गुस्सा, अत्यधिक साफ सफाई, भूत प्रेत, देवी देवता आदि की छाया का भ्रम होना, याददाश्त की कमी, घरेलू कलह, पढ़ाई में मन ना लगना, बिजनेस में लॉस होना, करियर की समस्या, किसी भी प्रकार का नशा एवं मिर्गी, बेहोशी के दौरे आना।
4: इन समस्याओं के लिए निशुल्क टेली मानस हेल्पलाइन नंबर है 14416 या 1800-8914416 पर कॉल करें। जरूर याद रखें 14416। जिला स्वास्थ्य समिति गोंडा द्वारा जनहित में जारी। मानसिक समस्याएं होंगी दूर, खुलकर जिंदगी जिए भरपूर।
5: बच्चे को आराम ही नहीं मिल रहा, क्या करें?
6: इसको तुरंत ऑल्टर्स किप्स ले चलो।
7: राजधानी लखनऊ में बच्चों के पहले सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एल्टिस किप्स में दिल, गुर्दे, दिमाग या पेट की हर बीमारी का होता है बेहतरीन इलाज।
8: यहाँ 120 बेड, ग्रेड 3 NICU, एडवांस PICU की सुविधा के साथ ही HFO, INO, वेंटिलेटर, फोटोथेरेपी, डायलिसिस के साथ साथ इमरजेंसी की सुविधा भी उपलब्ध है।
7: विजिट करें एल्टिस किप्स, IIM रोड, लखनऊ। संपर्क करें 0522-2711-827।
9: अरे सुना?
10: क्या?
9: यही कि गीता इंटरनेशनल स्कूल सेशन 2026-27 के लिए दे रहा पहले 100 एडमिशन्स पर एडमिशन फी पर 100% डिस्काउंट।
10: वाओ!
9: गीता इंटरनेशनल स्कूल फॉर अ बेटर टुमारो। एडमिशन्स ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। गीता इंटरनेशनल स्कूल, जहां आपको मिलता है साइंस एंड कॉमर्स स्ट्रीम, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, ट्वाइक्वांडो क्लासेस और वाहन की सुविधा उपलब्ध है। पता है गोंडा रेलवे स्टेशन से 1 किलोमीटर दूर, जयनगरा, बलरामपुर रोड, गोंडा। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 9545583546।
1: अब आप भी अपना सपना पूरा कीजिए डिजिटल मास कम्युनिकेशन के साथ जुड़कर। एडमिशंस ओपन। जानकारी के लिए कॉल करें 8840339584 8840339584 88 40 33 95 84। अब सपने होंगे साकार।

नमस्कार आदाब, गुड आफ्टरनून, हाय एंड हेलो, कैसे हैं आप सभी? आई होप बहुत ज्यादा अच्छे होंगे। खड़ी में वक्त हो चला है 3:06 बाद स्टूडियो क्लॉक, और आपने ट्यून कर लिया है 89.6 FM आपकी अपनी गुना शहर की धड़कन रेडियो ज्ञानस्तरी। मैं हूँ आपकी अपनी आरजी उन्नति, स्वागत करती हूँ आप सबका आपके अपने सुरों की महफिल कॉलर ट्यून गोना में, जहाँ आपके डिमांडेड प्रोग्राम्स होते हैं, यहाँ पे आपके डिमांडेड सॉन्ग्स होते हैं, डेडिकेटेड मैसेजेस, डेडिकेटेड गाने और आपके चैट बॉक्स वाले मैसेजेस। फिलहाल तो भैया जो चाहिए हमारे साथ, और जिन्होंने अभी तक अपनी फरमाइश हम तक नहीं भेजी है वो उठाएं अपना फोन, डायल करें 6393316429, क्योंकि ये है कॉलर ट्यून गोंडा, आपका अपना फरमाइशों का कार्यक्रम। और आइए चलते हैं हमारी पहली फरमाइश की तरफ, जो किसी और की नहीं, देवी प्रसाद जी की आई है। और देवी प्रसाद जी की फरमाइश आई थिंक आप लोग गेस कर सकते हैं, क्योंकि आते हमने भी गेस कर लिया था। तो एंजॉय कीजिए इस बेहतरीन से गाने को, इस बेहतरीन से सैड सॉन्ग को, जो अक्सर वो सुना करते हैं। अब आप मुझे बताइए, क्या आप इस गाने को गेस कर पा रहे हैं? और हम मिलते हैं इस गाने की इस फरमाइश के उस पार, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।

और आज की शुरुआत काफी उदास करते हुए आइए चलते हमारी अगली फरमाइश की तरफ, क्योंकि आप सुन रहे हैं कॉलर ट्यून गोंडा मेरे यानी उन्नति के साथ आपके अपने एफएम रेडियो 99.6 एफएम, यह गोंडा शहर की धड़कन पर। भैया आपकी कॉलर ट्यून गोंडा की पहली ही शर्त होती है कि करना पड़ेगा कॉल, और कॉलिंग नंबर है 6393316429 और मुझे आपके कॉल्स का रहता है काफी ज्यादा इंतजार, प्लस आपके गानों का भी इंतजार, और उनके साथ जब मिलते हैं कुछ डेडिकेटेड मैसेजेस तो ओहो क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, मतलब दिल खुश हो जाता है। तो ये इंतजार मत कीजिए, क्योंकि हफ्ते में सिर्फ एक दिन आपसे मेरी मुलाकात होती है कॉलर ट्यून गोंडा में, तो अपनी फरमाइशों की झड़ी लगाइए और इंजॉय करते रहिए कॉलर ट्यून गोंडा। आइए चलते अगली फरमाइश की तरफ। अगली फरमाइश आई है सुनील कुशवाहा जी की और वो सुनना चाहते हैं वो गाना जिसको हम बचपन में बड़ा गुनगुनाया करते थे, और वो गाना है कहीं और का नहीं, हीरो नंबर वन से आप सभी का पसंदीदा सॉन्ग मैं तुझको भगा लाया हूँ तेरे घर से तेरे बाप के डर से। हालांकि बता दें इस गाने में पिताजी तो है ही नहीं, वो तो उनके दादा थे, बट गाने में पिताजी का नाम जरूर आया है। कुमार सानू और अलका जी की आवाज में आप इस गाने को सुनने जा रहे हैं। संगीत है आनंद मिलिंद का और बोल लिखे हैं समीर साहब ने, जो कि बड़े खूबसूरत है, तो एंजॉय कीजिए। गोविंद और करिश्मा पे फिल्माया गया ये सॉन्ग।

सुनील कुशवाहा जी की फरमाइश पे आपने इस गाने को एंजॉय किया कुमार सानू और अलका जी की आवाज में। और भाई समीर साहब ने जब इस गाने के बोल लिखे थे तो डायरेक्टर साहब का कहना था उनसे कि इस फिल्म में तो पापा है ही नहीं, पिताजी है ही नहीं, किसके ऊपर ही गाना लिख रहे हो? तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, होने दो, दादा विलन है तो क्या होता है, मतलब पापा के ऊपर लिखेंगे और देखना ये गाना हिट जाएगा। और ये गाना सच में सुपर डुपर हिट गया है, काफ़ी लोग इस गाने को एंजॉय करते हैं, बहुत सारे लोग इस गाने को पसंद करते हैं और इसके पीछे की कहानी जिसको नहीं पता है वो भी इस गाने को बड़ा एंजॉय करते हैं। फिलहाल समीर साहब का अंदाज काफ़ी अलग होता है, काफ़ी बेहतरीन और काफ़ी उम्दा होता है, ये उनके हर गाने में आपको कहीं ना कहीं नज़र ज़रूर से आता है। फिलहाल आइए चलते हैं अगले गाने की तरफ, यानी कि अगली फरमाइश की तरफ, लेकिन उससे पहले चैट बॉक्स में जो आपके मैसेजेस आ चुके हैं, पैगाम आ चुके हैं, उनको देख लेते हैं। और मुस्तफा जी ने लिखा है सऊदी से कि गुड आफ्टरनून मैम जी, गुड आफ्टरनून टू यू, कैसे हैं आप, आपका स्वागत करते हैं हम क्वालिटी उन गुना में। कमल नैन जी हमारे साथ जुड़े हैं, आपका भी स्वागत करते हैं, लिख रहे हैं गुड आफ्टरनून रति मैम, गुड आफ्टरनून टू यू, कैसे हैं आप। एंड सबलू जी हमारे साथ जुड़े हैं जो सुन रहे हैं मुंबई से इस वक्त, और आपका भी स्वागत करते हैं। मनीष शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं जो लिख रहे हैं हाय हाय कैसे हैं आप। एंड राहुल तिवारी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं जो सिंचाई विभाग कॉलोनी गोंडा से हैं, आपका भी स्वागत करते हैं, इस्तकबाल करते हैं कॉलोनी ट्यून गोंडा में। एंड धर्मेंद्र मोहन जी जो मैं सुन रहे हैं आवास विकास से लिख रहे हैं, उन्नति जी नमस्ते, आप और हम कॉलोनी ट्यून में धूम मचाएंगे, ये डेफिनेटली मचाने वाले हैं, और कैसे हैं आप। आइए चलते हैं इसके बाद हमारी अगली फरमाइश की तरफ, और अगली फरमाइश आई है रविंद्र जी की, कर लो मेरा एतबार यारो, होगी प्यार की जीत, फिल्म का नाम अजय देवगन और काजोल पे फिल्माया गया गाना, उदित नारायण की आवाज में। आप सुनने जा रहे हैं 90s का सुपर डुपर हिट, बोल लिखे हैं समीर साहब ने और ऑफ कोर्स म्यूजिक है आनंद मलिंगा।

हाँ जी, तो आपने इस खूबसूरत से गाने को सुना। बोल थे समीर साहब की उदित नारायण की आवाज़ में, कर लो मेरा एतवार यारो। और अमित जी लिख रहे हैं, लव और गोल्ड इज अ चीपेस्ट और नॉट, इट इज डिपेंड अपॉन योर थिंकिंग, जो कि बहुत ही खूबसूरत बात है कि सोना महंगा है या मोहब्बत, ये आपकी सोच पर निर्भर करता है। बिल्कुल सही फरमाया आपने। कुमार जी लिख रहे हैं, जय माता दी आरजे मैम, आपका नाम भूल जाता हूँ कभी कभी। अजी कोई बात नहीं, मेरा नाम आपको याद रहे या ना रहे, लेकिन आपको ये याद रहना चाहिए कि आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञान 89.6 FM, यह गोंडा शहर की धड़कन, एंड मेरा नाम है उन्नति। ऑफ कोर्स फिलहाल आइए चलते हमारे अगले गाने की तरफ। मोहब्बत की बातें हमने कर ली, रोमांस की बातें हमने कर ली, और अब चलते हैं गहरा हुआ, जो कि धुरंधर फिल्म से काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर सॉन्ग रहा है। समरीन जी की फरमाइश आई है इस खूबसूरत से गाने को सुनने के लिए, तो आप इंजॉय करते रहिए और हम मिलेंगे अगले गाने की तरफ, अगले सॉन्ग को लेकर के, अगले डिमांडेड सॉन्ग को लेकर के, जो कि सभ्या जी के होने वाला है। अगर आपकी फरमाइश अब तक नहीं आई है तो इंतजार मत कीजिए, उठाइए अपना फोन, डायल कीजिए 6393316429 और सुनते रहिए कॉल ट्यून गुना मेरे यानी उनकी के साथ।

अंजी भैया आप सुन रहे हैं एक बेहतरीन सा सॉन्ग, गहरा हुआ धुरंधर फिल्म से रणवीर के ऊपर फिल्माया गया गाना है, अरिजीत सिंह की आवाज में है और इस गाने की फरमाइश की थी समरीन जी ने। फिलहाल एक बात है जो मुझे आपसे पूछनी है, जब भी हम कोई फिल्म देखते हैं और उसमें किसी का इश्क नया नया होता है तो वो अक्सर तोहफे में झुमके दिया करते हैं, ऐसा क्यों है भाई, हमको जरा बताइएगा। बड़ी चाहत है हमारी जानने की कि पहले इश्क में यानी कहे नए नए इश्क में अक्सर लोग झुमके क्यों तोहफे में दिया करते हैं। और इसी के साथ आइए चलते हमारे अगले गाने की तरफ। आपके अपने कॉलर ट्यून गोना में अगली फरमाइश आई है सभिया जी की और वो सुनना चाहती हैं एक्शन रीप्ले से ओ बेखबर ओ बेकदर, ऐश्वर्या और अक्षय कुमार के ऊपर फिल्माया गया गाना। और आज इतनी शांति क्यों है मेरे चैट बॉक्स में प्लस मेरे फोन के ऊपर, भैया शांति वांति मत बनाए रखिए, क्यों शांति और मेरा कोई रिश्ता है नहीं, इसलिए उठाइए अपना फोन, डायल करते रहिए 6933316429 और भेजते रहिए अपनी डिमांडेड सॉन्ग्स आपके अपने डिमांडेड वाले प्रोग्राम में।

हाँ जी, तो आपने सुन लिया इतने खूबसूरत से गाने को जो कि सभ्या जी की फरमाइश थी कॉरोट्यून कोंडा में, ओ बेखबर ओ बेकदर। और इस गाने के बाद आइए चलते हैं हमारी अगली फरमाइश की तरफ। अगली फरमाइश आई है स्पेशल उस इंसान के लिए जिसका गृह प्रवेश है आज, राम नरेश जी की तरफ से डेडिकेटेड सॉन्ग है क्षमा को, और मैं उनके लिए डेडिकेट करती हूँ ये वाला गाना उनके स्पेशल गृह प्रवेश के लिए, नवराई माछी। एंजॉय करते रहिए इंग्लिश में इंग्लिश से, बहुत ही खूबसूरत सा गाना, और हम मिलते हैं अगली फरमाइश पर। तब तक के लिए स्टे।

हां जी, तो आपने सुना राम नरेश जी की फरमाइश पर डेडिकेटेड सॉन्ग क्षमा के लिए। और आइए चलते हमारे अगले गाने की तरफ, अगली फरमाइश की तरफ। अगली फरमाइश आई है रीना शर्मा जी की, जो मिस सुन रही हैं उत्तराखंड से, और उन्होंने भेजा है अपना ऑल इज गोल्ड वाला सॉन्ग मन से मन की डोर। राजेश खन्ना पर फिल्माया गया गाना, राजेश खन्ना के साथ है इसमें शर्मिला टैगोर, और हमारे साथ मुस्तफा जी।

0: सोचती हैं आप?
1: मन से मन की डोर बंधी, जब डोर बंधी तो अमर प्रेम मुस्काया। तुम क्या सोच रही
0: थी? मैं सोच रही थी मन में प्रीतम आन बसे, जब आन बसे तो मन मंदिर कहलाया।

क्या बात है भाई, मन मंदिर कहलाया। ऑल दिस गोल्ड सॉन्ग आप एंजॉय कर रहे थे, राजेश खन्ना और शर्मिला टैगोर पर फिल्माया गया गाना आपने एंजॉय किया। खूबसूरत सी आवाज़ थी महेंद्र कपूर और लता जी की। और इसी के साथ आइए चलते हमारे अगले गाने की तरफ। अगली फरमाइश आई है आवाज़ विकास से, जो हमें भेज रहे हैं धर्मेंद्र मोहन जी, और ये गाना फिल्माया गया है अमिताभ बच्चन पर। अब आप सुन के बताइए इस गाने को आपने पार्टीज़ में, स्पेशली शादियों में ज़्यादातर ज़रूर सुना होगा। गाना कौन सा है, गेस कीजिए 10 सेकंड के अंदर, मुझे नाम बताइए आपके अपने चैट बॉक्स में।

कविता कृष्णमूर्ति और सुदेश भोसले की आवाज़ में आपने इस गाने को एंजॉय किया। हम फिल्म से आनंद बख्शी के बोल और लक्ष्मीकांत प्यारे लाल का संगीत। और इसी के साथ आइए चलते हैं अगली फरमाइश की तरफ। अगली फरमाइश आई है कुमार टेलर्स की और वो सुनना चाहते हैं भजन, वो भी शिव जी का। तो आइए आपको सुनाते हैं वो गाना जिसके पीछे हम काफ़ी दीवाने थे बचपन से, और वो गाना है ये खूबसूरत सा गाना, ये खूबसूरत सा भजन जो शंकर जी के लिए स्पेशल आने की स्पेशल था शिव जी के लिए, अनुराधा पौडवाल की आवाज़ में। वन ऑफ माय फेवरेट, बचपन से सुनते गुनगुनाते, और हर सुबह मेरी इसी गाने के साथ हुआ करती थी क्योंकि बगल में था भाई मंदिर, और मंदिर से जो आरती आती थी उसमें पहली आवाज़ ये होती थी। सुनते रहिए।

जी, तो आपने सुना अनुराधा पौडवाल की आवाज में मन मेरा मंदिर शिव मेरी पूजा, और ये गाना आया था कुमार टेलर्स की फरमाइश पर। इसी के साथ आइए चलते हैं अगली फरमाइश की तरफ, राजेश मीना जी की फरमाइश, तेरी गोरी गोरी बाहें बाहों में आ जाना। एंजॉय करते रहिए खूबसूरत से सॉन्ग को। आपके गोविंदा के ऊपर फिल्माया गया गाना और ब्यूटीफुल सॉन्ग लिखा है धर्मेंद्र मोहन जी ने, थैंक यू सो मच। और आपकी फरमाइशों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा आज 2 घंटे, तो अपनी फरमाइशें भेजते रहिए 6393316429। सुनते रहिए कॉल ट्यून गुड आपके अपने एफएम रेडियो 99.6 FM मेरे यानी रति के साथ।

राजेश मीना जी की फरमाइश पे आप सुन रहे हैं तेरी गोरी गोरी बाहें बाहों में आ जाना। और ये गाना लिखा है भाई समीर साहब ने, बनारसी बाबू 1997 में फिल्माया गया गाना है कुमार सानू अलका जी की आवाज में। और मनीष शर्मा जी हमारे साथ दोबारा छुटे हैं, जो लिख रहे हैं हाय हाय, आपका एक बार वापस स्वागत करते हैं। फिलहाल आगे चलते अगली फरमाइश की तरफ। अगली फरमाइश आई है रईस जी की और वो सुनना चाहते हैं झल्ला बल्ला। ये गाना आपको याद होगा इश्क ज़ादे फिल्म से है, परिणीति चोपड़ा और कुहार खान के ऊपर फिल्माया गया, श्रेया जी की आवाज़ में है। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए, गुनगुनाते रहिए। हम मिलते हैं अगले गाने अगली फरमाइश के साथ। अब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, और अपनी फरमाइशें आप भेज सकते हैं 6393316429।

हाँ जी, तो रही जी की फरमाइश भी आपने इस गाने को एंजॉय किया। और बारी हमारी अगली फरमाइश की जो कि आई है मिस्टर ऑप्टिकल जी की, और वो सुनना चाह रहे हैं लाल चुनरिया वाली पे दिल आया रे। क्या बात है ये लाल चुनरिया। और आई थिंक कुछ कलर हैं जो बॉलीवुड की ऑब्सेशन है, जिसमें गुलाबी रंग आता है, गुलाबी आंखें आती हैं, लाल कलर की चुनरी आती है और काला सूट आता है, काला चश्मा आता है। फिलहाल आप इंजॉय कीजिए इस बेहतरीन से गीत को। हम मिलते हैं अगली फरमाइश पर, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।

मिश्रा जी की फरमाइश पे आपने एंजॉय किया लाल चुनरिया वाली पे दिलाया रही जोड़ी नंबर वन से सोनू निगम और अलका जी की आवाज में गोविंदा और ट्विंकल खन्ना पर फिल्माया गया गाना। और आइए चलते हमारे अगले गाने की तरफ। अगली फरमाइश आई है सब लोग जी की और वो सुनना चाहते हैं जिंदगी को गुजारने, और इस गाने को एंजॉय कीजिए। हम मिलते हैं अगली फरमाइश पर, तब तक के लिए सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए, गुनगुनाते रहिए। आप सुन रहे कॉलर ट्यून को ना फ्राइडे का स्पेशल दो घंटे का फरमाइशों का कार्यक्रम आज नदी के साथ आपके अपने एफएम रेडियो कैनस्ली पर।

पंकज उदास की आवाज में आपने इस बेहतरीन उम्दा खूबसूरत गाने को एंजॉय किया, जो कि किसी और की नहीं सबलू जी की फरमाइश थी। आइए चलते हैं हमारी अगली फरमाइश की तरफ, लेकर के कॉलर ट्यून गोंडा का अगला फरमाइश आया है कमल नैन जी का। दिल तो खोया है यहीं पर कहीं पर, तू जरा बता। एंजॉय कीजिए इस बेहतरीन से खूबसूरत से प्यारे से गाने को, और हम मिलते हैं अगली फरमाइश पर। फ्राइडे स्पेशल कॉल ट्यून गोंडा, सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए। आप सुन रहे हैं मेरे यानी मृति के साथ।

वक्त हो गया है अपने अगली फरमाइश की तरफ चलने का। अगली फरमाइश आई है अभिनव जी की और वो सुनना चाहते हैं तीन पैंग। तो एंजॉय करते रहिए इस प्यारे से गाने को, थोड़े से हाई बीट सॉन्ग को, और हम मिलते हैं इस गाने के उस पार। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।

0: अभिनव की फरमाइश पे आप सुन रहे थे तीन पैग, और चलते हैं हमारी अगली फरमाइश की तरफ। अमित चौधरी जो सुन रहे हैं हमें महाराष्ट्र से, और उन्होंने फरमाइश की है आखिर तुम्हें आना है जरा देर लगेगी। उदित नारायण की आवाज में आप इस गाने को एंजॉय कीजिए। हम मिलते हैं अगली फरमाइश पर, तब तक के लिए सुनते रहिए कॉल ट्यून गोडा फ्राइडे का स्पेशल अपनी आयुष नदी के साथ, आपके अपने एफएम रेडियो ज्ञान स्लीपर स्टूडियो।
1: जिंदगी से भाग कर आया हूं,
2: बारिश हो रही है, ये बारिश ना होती तो भी ना आती।

आखिर तुम्हें आना है जरा देर लगेगी, अमित चौधरी की फरमाइश पे आप इस गाने को एंजॉय कर रहे थे। अगली फरमाइश की तरफ चलते हैं और सुनते हैं राकेश वर्मा जी की फरमाइश, पतली कमर लंबे बाल, हाय रे अल्लाह उस पे मेरी उम्र 16 साल। एंजॉय करते रहिए खूबसूरत गाना तोहा फिल्म से स्टूडियो में।

राकेश वर्मा जी की फरमाइश पे आप सुन रहे हैं बतली कमर लंबे बाल, और इसमें आवाज है अनुराधा पौडवाल कविता कृष्णमूर्ति की। मैं आपको बता दें म्यूजिक डायरेक्टर हैं लक्ष्मीकांत प्यारे लाल, और गीत कार्यालय की जिन्होंने बोल लिखे हैं वो हैं फारूक कैसर साहब। आइए चलते हमारे अगले गाने की तरफ, अगली फरमाइश की तरफ, और कमल नयन जी की तरफ से काफी सारे इमोजीज आ चुके हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। और मुकेश यादव जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, चले करें। गुड आफ्टरनून मैम ज्योति, गुड आफ्टरनून टू यू, कैसे हैं आप। अगली फरमाइश आई है रिंकी प्रजापति की, और वो सुनना चाहती हैं खूबसूरत सी गजल, और गजल है होश वालों को खबर क्या बेखुदी क्या चीज है। तो आइए भैया इस गाने को एंजॉय कीजिए, सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए। सरफरोश फिल्म से ये गाना है, 1999 में ये फिल्म आई थी, और जगदीश सिंह की।

यूं तो अक्सर हम गजलें सुना करते हैं रात में, लेकिन बीच दोपहर यानी कि होने वाली शाम, और इस बेहतरीन सी शाम में जब आपने इस बेहतरीन से गजल को सुना जो कि जगदीश सिंह की आवाज़ में था, रिंकी प्रजापति जी बहुत बहुत शुक्रिया इस प्यारी सी फरमाइश को करने के लिए। और आइए चलते हैं हमारी अगली फरमाइश की तरफ। अगली फरमाइश जो है वो किसी और की नहीं, मनीष शर्मा जी की है, इश्क की गली शाहिद कपूर का गाना। आई एंजॉय कीजिए और हम मिलेंगे अगली फरमाइश को लेकर के जो कि मुस्तफा जी की होने वाली है, उसके बाद शहनवाज की जो हमें अहमदाबाद से सुन रहे हैं, आसिफ जी की, राम सुंदर जी की, उस्मान खान की, अमरजीत तिवारी की और अनिल वर्मा की। तो आप लोग बने रहिए मेरे साथ, सुनते रहिए कॉल ऑफ गोंडा आपके अपने एफएम रेडियो कैनस्ली पर।

0: प्रिया तू इमी को भूल जा, निकाल दे उसे अपने दिल और दिमाग से।
1: यही करने के लिए तो मैं मुंबई जा रही हूँ, अगर मैं यहाँ रही तो वो मेरा पीछा करेगा और मैं।
0: लेकिन प्रिया वहां तू अकेली।
1: मेरी फिक्र मत कर दिव्या, मुझे अकेले रहने की आदत तो बचपन से है।
0: प्रिया प्लीज।
2: अफसोस तो मुझे इस बात का यार, उसने मुझे अपनी सफाई पेश करने का एक मौका भी नहीं दिया यार।
3: एमी अभी ये सब बात सोच के क्या फायदा यार। हाँ

मनीष शर्मा जी की बात आप सुन रहे हैं, मुस्तफा जी की फरमाइश जो कि सऊदी अरब से आई है, तो आप इंजॉय करते रहिए उनकी फरमाइश को और हम मिलेंगे शाहनवाज की फरमाइश को लेकर के, जो कि अहमदाबाद से है, दिल तो पागल है दिल तो दीवारा है स्टूडियो।

चेहरा क्या देखते हो, दिल में उतर कर देखो ना। मुस्तफा जी ने इस गाने की फरमाइश की थी, जो कि बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही खूबसूरत, और काफी दिनों के बाद ये फरमाइश हमारे पास आई है। आइए चलते हमारे अगले गाने की तरफ, अगली फरमाइश की तरफ। अहमदाबाद से आई है ये फरमाइश शाहनवाज जी की, दिल तो पागल है दिल तो दीवाना है। बहुत ही प्यारा गाना है और इसमें बेहतरीन से बेहतरीन एक्टर और एक्ट्रेसेस है, अक्षय कुमार, माधुरी दीक्षित। और माधुरी दीक्षित के साथ ना इस फिल्म में कोई काम करना नहीं चाह रहा था, क्योंकि मुझे लगता है माधुरी दीक्षित सबसे बेस्ट डांसर हैं और उनको कोई कम्पीट करना नहीं पसंद कर रहा था। उस वक्त करिश्मा कपूर ने कम्पीट किया, उनके अपोजिट में काम किया, और कमाल की बात यह है कि उन्होंने इस कैरेक्टर के लिए, इस अदाकारी के लिए अवार्ड भी जीता। आइए

हाँ जी, क्योंकि दिल तो पागल है, दिल तो दीवाना है, इसीलिए धीरे धीरे प्यार सिखाता भी है, रुलाता भी है, हंसाता भी है, गुदगुदाता भी है, और कभी कभी बेवजह की ओवरथिंकिंग कराता भी है। फिलहाल आइए चलते हैं अगली गानी की तरफ, अगली फरमाइश की तरफ। अगली फरमाइश है आसिफ जी की, जो सुनना चाहते हैं एक रोमांटिक सा गाना, और हम आपको सुनाते हैं उदित नारायण अलका जी की आवाज़ में कसूर फिल्म से जिंदगी बन गए हो तुम। स्टे ट्यून्ड।

जिंदगी बन गए हो तुम। आपने इस बेहतरीन से गीत को सुना जो कि रोमांटिक सॉन्ग था आसिफ जी के लिए, अदित नारायण और अलका जी की आवाज में कसूर फिल्म से आपने इस गाने को सुन रहे थे। आइए चलते हैं हमारे अगले गीत की तरफ। फिलहाल इस गीत के जो बोल थे वो लिखे थे समीर ने और संगीत दिया था नदीम श्रवण ने। अगला गाना राम सुंदर जी की फरमाइश पे आया है, मुझे प्यार की जिंदगी देने वाले। आइए एंजॉय करते हैं इस सॉन्ग को। कॉलर ट्यून गुंडा आप सुन रहे हैं अपनी आरजीनती के साथ, आपके अपने एफएम रेडियो कैनस 89.6 एफएम पर। नाइस सॉन्ग लिखा है अनिल जी ने, थैंक यू सो मच। और कमल नयन जी ने दिए हैं बहुत सारे दिल और बहुत सारे गुलाब, बहुत बहुत शुक्रिया।

मुझे प्यार की जिंदगी देने वाले। राम सुंदर जी की फरमाइश भी आपने सुना, और चलते हैं अगली फरमाइश की तरफ जो कि आई है उस्मान खान और मुकेश जी के, जिन्हें सुनना है 90s का कोई बेहतरीन सा गाना जो कि रोमांटिक हो। और हम आपके लिए पेश करते हैं वो सॉन्ग जिसको सुने बिना आपको भी चैन आता नहीं। तुझे ना देखूं तो चैन आता नहीं।

तो भाई हमने पेश किया था आपके लिए, यानी कि मुकेश जी और उस्मान खान के लिए, मेरी तरफ से तुझे ना देखूं तो चैन मुझे आता नहीं है। अनिल जी दिख रहे हैं अति की आज का जो प्लेलिस्ट है वास्तव में लाजवाब है। थैंक यू सो मच अर्जुन जी, नमस्ते नमस्ते एंड थैंक यू यूडी जी, लिखा है मुकेश जी ने, बहुत बहुत शुक्रिया। आइए चलते हैं हमारे अगले गाने की तरफ, अगली फरमाइश की तरफ। अमरजीत तिवारी की फरमाइश आई है लैला मजनू से, उनको सुनना है कोई भी एक बढ़िया सा गाना, तो आइए हम आपको सुनाते हैं इस रेशमी पैजाब की। और आप सुनिए रेशमी पैजाब यानी कि पाजेब और लैला मजनू 1976 का गाना, और हम मिलेंगे अगली फरमाइश को लेकर के। फिलहाल बहुत ही खूबसूरत सॉन्ग आप इंजॉय करने जा रहे हैं इस रेशमी पाजेब की छनकार के बाद।

इस रेशमी पाजेब के सदके आप सुन रहे थे लैला मजनू से इस बेहतरीन से गीत को अमरजीत तिवारी की फरमाइश पर। आइए चलते हैं अनिल वर्मा जी की फरमाइश की तरफ और वो सुनना चाहते हैं अगर हम कहें और वो मुस्कुरा दे। क्या बात है भाई साहब, आपने मेरी पसंदीदा गजलों को शामिल कर दिया है आज के इस कार्यक्रम में। एंजॉय करते रहिए सुरों के महफिल से आपका ये वाला गाना।

बहुत खूबसूरत फरमाइश आई थी ये अनिल वर्मा जी की, और इसी के साथ आइए चलते हैं हमारी आखिरी फरमाइश की तरफ, और इसी के बाद अब चाहेंगे आपसे इजाजत। आज का शो आपको पसंद आया हो तो इसका फीडबैक जरूर से दीजिएगा। सभी के बहुत खूबसूरत डिमांड्स थी, बहुत प्यारी फरमाइशें थी, और अगली फरमाइश यानी कि हमारी जो आखिरी फरमाइश है वो है हरिशरण शुक्ला जी की, और वो सुनना चाहते हैं क्योंकि इतना प्यार तुमको। ये गाना आप सबके लिए डेडिकेटेड है मेरी तरफ से, जिन्होंने अपनी फरमाइशें नहीं की हैं लेकिन हमारे साथ जुड़े हैं पिछले 2 घंटे से आपके अपने रेडियो ज्ञान असली के साथ। आप सुन रहे हैं कॉल ट्यून गोंडा मेरे यानी उत्ती के साथ, और आपका अगला कार्यक्रम कौतली। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट टाइम।

0: वेलकम टू योर फेवरेट प्रोग्राम गोधूली, जहां ट्यूसडे को हम लेकर आते हैं विज्ञान शाला। होती है विज्ञान से संबंधित ढेर सारी बातें, और हर थर्सडे को होता है खेत खलिहान, यानी कि गोधूली स्पेशल खेत खलिहान, जहां हम करते हैं खेती किसानी की बातें, वो भी गो ग्रीन वाले मोड में। और हर संडे को होती है चटपटी चाची की चटपट ढेर सार मसालेदार बातें, चटपटी चाची लेकर आती हैं। और बाकी दिन हम एंजॉय करते हैं इंटरेस्टिंग इंफोटेनमेंट से भरपूर टॉक शोज। सो आपका बहुत बहुत स्वागत है गोधूली में, स्टे ट्यून्ड।
1: अब आप भी अपना सपना पूरा कीजिए डिजिटल मास कम्युनिकेशन के साथ जुड़कर। एडमिशंस ओपन, जानकारी के लिए कॉल करें 8840339584, 8840339584। अब सपने होंगे साकार।

0: नमस्कार, आप सुन रहे रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 एफएम गोंडा शहर की धड़कन। मैं हूँ आई के श्रीवास्तव
1: और मैं आयुषी,
0: लेकर हाजिर हूँ गोंडा हलचल। गोंडा की छोटी बड़ी घटनाओं से आप सभी जनपद वासियों को कराते हैं रूबरू। कलेक्ट्रेट परिसर में संचारी रोग नियंत्रण अभियान की रैली का शुभारंभ, जिलाधिकारी प्रियंका निरंजन ने दिखाई हरी झंडी। बता दें कि जनपद में संचारी रोग नियंत्रण अभियान के तहत कलेक्ट्रेट परिसर में जन जागरूकता रैली का आयोजन किया गया है। इस रैली को जिलाधिकारी प्रियंका निरंजन ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। इस अवसर पर जनपद के मुख्य चिकित्साधिकारी SCPM कॉलेज के छात्र एवं छात्राएं, स्वास्थ्य विभाग व अन्य विभाग के अधिकारी कर्मचारी तथा बड़ी संख्या में आमजन उपस्थित रहे। रैली का शुभारंभ पहले जिलाधिकारी प्रियंका निरंजन ने वहां उपस्थित सभी लोगों को संचारी रोग के प्रति जागरूक रहने एवं स्वच्छता बनाए रखने, मच्छर से बचाव के उपाय अपनाने तथा अपने आसपास के वातावरण को साफ सुथरा रखने की शपथ दिलाई है। उन्होंने कहा कि संचारी रोग की रोकथाम में जन भागीदारी अत्यंत आवश्यक है। यदि हम सभी मिलकर स्वच्छता को अपने जीवन का हिस्सा बना लें तो इन रोगों से आसानी से बच सकते हैं।
1: गोंडा में बिजली के पोल में करंट से मवेशी की मौत। बता दें कि गोंडा बिजली विभाग की लापरवाही का एक और मामला सामने आया है। बुधवार सुबह 7:30 बजे आवास विकास द्वितीय के बिजली उपकेंद्र के पीछे एक मवेशी करंट लगने से मारा गया। पूरी घटना CCTV में कैद हो गई और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। वीडियो में दिख रहा है कि सुबह 7:30 बजे एक छोटा मवेशी सड़क पर जा रहा था। पोल से 1 फुट दूर उसका संतुलन बिगड़ गया और वो पोल से जाकर टकरा गया। करंट लगते ही उसकी मौत हो गई। लोगों ने तुरंत बिजली विभाग को बताया, तब सप्लाई बंद की गई। स्थानीय लोग ने JCB से मवेशी का अंतिम संस्कार किया। लोग अब अफसरों पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। शशांक मिश्रा ने बताया कि घटना के बाद JE को कई बार फोन किया लेकिन उन्होंने फोन नहीं उठाया।
0: जनपद गोंडा में नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग के तहत गोंडा में स्थापित होगा बायो इनपुट रिसोर्स सेंटर। 4 जुलाई तक मांगे गए आवेदन। बता दें कि उप कृषि निदेशक संतोष कुमार द्विवेदी ने बताया कि भारत सरकार की गाइडलाइन के अनुसार स्थापित होने वाला BRC प्राकृतिक खेती के लिए आवश्यक जैविक मिश्रण जैसे घन जीवामृत, जीवामृत, बीजामृत, दसपड़ी आदि के स्थानीय उत्पादन एवं उपलब्धता सुनिश्चित करेगा। इससे प्राकृतिक खेती अपनाने वाले किसानों को गुणवत्तापूर्ण जैविक इनपुट आसानी से उपलब्ध हो सकेंगे। उन्होंने बताया कि चयनित BRC संचालक को जैविक मिश्रण के निर्माण एवं भंडारण के लिए आवश्यक आधारभूत सुविधाएं जैसे स्टोरेज टैंक, रेफ्रिजरेटर, गौमूत्र संग्रहालय, क्यूड़न कक्ष तथा सुरक्षित भंडारण की व्यवस्था स्वयं विकसित करनी होगी। आवेदन करने वाले उद्यमी समूह या संस्था के पास प्राकृतिक की खेती का अनुभव होना जरूरी है। उन्होंने कहा कि सभी FPO उद्यमियों एवं इच्छुक संस्थाओं से अपील की गई है कि निर्धारित पात्रता के अनुसार अपना आवेदन उप कृषि निदेशक कार्यालय गोंडा में 4 जुलाई 2026 तक किसी भी कार्य दिवस में अवश्य प्रस्तुत करें।
1: तरबगंज में 5 किलोमीटर सड़क जर्जर, 8 साल से हालत खराब, गड्ढों में सड़क या सड़क में गड्ढे, इस पर बना सवाल। बता दें कि गोंडा तरबगंज ब्लॉक में काशीपुर महाराजगंज बाजार से रानीपुर बैंक तक जाने वाली 5 किलोमीटर लंबी सड़क बहुत ही ज्यादा खराब है। सड़क पर इतने गड्ढे हैं कि लोग कहते हैं कि पता नहीं चलता कि सड़क में गड्ढे हैं या गड्ढे में सड़क। एक हफ्ते से हो रही बारिश से गड्ढे में पानी भर गया। इसमें दर्जनों गांव प्रभावित हुए और लोगों को आने जाने में दिक्कत हो रही है। ग्रामीणों के अनुसार सड़क की हालत 8 साल से खराब है। बीच बीच में मरम्मत हुई लेकिन थोड़े ही दिन बाद सड़क फिर से उखड़ जाती है। पुलिया भी टूट चुकी है जिससे पानी नहीं निकल पा रहा है।
0: जनपद में महिला कल्याण विभाग द्वारा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कटरा बाजार में कन्या जन्म उत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आयोजित कार्यक्रम का शुभारंभ डॉक्टर अरुण कुमार सिंह ने केक काट कर किया। उन्होंने कहा कि ऐसे आयोजन से समाज में जागरूकता फैल रही है। डिस्ट्रिक्ट मिशन कोऑर्डिनेटर ने कहा कि शासन व निदेशालय के निर्देश पर कन्या जन्मोत्सव कार्यक्रम का आयोजन सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर किया जाना आवश्यक है। आज उक्त के क्रम में कन्या जन्मोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जहां बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना सरकार की महत्वाकांक्षी योजना मानी जा रही है।
1: गोंडा में 7340 राशन कार्ड रद्द करने की जांच को 10 अफसरों की टीम पहुंची। बता दें कि गोंडा में सितंबर 2025 से नवंबर 2025 के बीच रद्द किए गए 7340 राशन कार्ड आवेदन की जांच के लिए खाद्य विभाग की 10 अफसरों की टीम गोंडा पहुंची है। टीम बुधवार को 11 बजे से उपायुक्त खाद देवी पाटन मंडल कार्यालय पहुंची। टीम 5 कमेटियों में बांटी गई है। हर कमेटी के 2 अफसर हैं। ये जिला पूर्ति अधिकारी कुंवर निर्देश प्रताप सिंह और दूसरी पूर्ति निरीक्षकों से पूछताछ कर रहे हैं। जांच का मकसद ये पता लगाना है कि राशन कार्ड सही तरीके से रद्द हुए हैं या फिर नहीं। साथ ही ये भी देखा जा रहा है कि कुछ रद्द किए राशन कार्ड दोबारा कैसे जारी हो गए हैं।
0: जिलाधिकारी श्रीमती प्रियंका निरंजन की अध्यक्षता में मतदेय स्थलों के संभाजन रेशनलाइजेशन के संबंध में जनपद के विभिन्न मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के पदाधिकारियों के साथ एक बैठक आयोजित की गई। बैठक का उद्देश्य मतदाताओं की सुविधा, निर्वाचन प्रक्रिया की पारदर्शिता तथा निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देश के अनुरूप मतदेय स्थलों के संभाजन की कार्यवाही को प्रभावी ढंग से संपन्न कराना रहा। बता दें कि बैठक को संबोधित करते हुए जिलाधिकारी ने कहा कि निर्वाचन प्रक्रिया को निष्पक्ष, पारदर्शी एवं सुचारू रूप से संपन्न कराने के लिए मतदेय स्थलों का वैज्ञानिक एवं व्यवहारिक आधार पर संभाजन किया जाना आवश्यक है। उन्होंने कहा कि इस कार्यक्रम में निर्वाचन आयोग के सभी मानकों एवं निर्धारित दिशा निर्देश का पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा, जिससे प्रत्येक मतदाता को मतदान के लिए सुगम एवं सुविधाजनक वातावरण उपलब्ध हो सके। जिलाधिकारी ने उप जिलाधिकारी एवं संबंधित अधिकारियों को निर्देशित भी किया है मतदेय स्थलों को संभाजन की प्रक्रिया में भौगोलिक स्थित, मतदाताओं की संख्या, पहुंच मार्ग, भवन की उपलब्धता तथा अन्य आवश्यक मानकों का विशेष ध्यान रखा जाए।
1: गोंडा करनैलगंज में सरकारी चक मार्ग से बुलडोजर से हटाया गया अवैध कब्जा। बता दें कि गोंडा में सरकारी जमीन पर कब्जे के खिलाफ प्रशासन की कार्रवाई जारी है। करनैलगंज तहसील के नारायणपुर मर्दन ग्राम पंचायत के तिलकपुरवा में मंगलवार शाम 7 बजे बुलडोजर से अवैध निर्माण तोड़ा गया है। मेवालाल और कुछ लोगों ने सरकारी चक मार्ग पर व्यास गद्दी बनाकर कब्जा किया था। तहसील और राजस्व विभाग ने कई बार नोटिस जारी किया लेकिन कब्जा नहीं हटाया गया। इसके बाद प्रशासन ने बुलडोजर चलाकर अतिक्रमण हटा दिया।
0: गोंडा में वर्ष 1965 में स्थापित राजकीय पॉलिटेक्निक गोंडा का 61 साल बाद नई पहचान मिल रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संस्थान का नाम बदलने की घोषणा करते हुए इसे सरदार वल्लभ भाई पटेल राजकीय पॉलिटेक्निक नाम दिया है। मुख्यमंत्री की घोषणा के बाद जनपद में खुशी का माहौल है और जनप्रतिनिधियों ने इस निर्णय का स्वागत किया है। अब तक यह संस्थान राजकीय पॉलिटेक्निक के नाम से संचालित हो रहा था। नाम परिवर्तन के बाद शासन स्तर पर औपचारिक प्रक्रिया पूरी की गई है। विभागीय अभिलेख पत्राचार संस्थान के नाम पट एवं अन्य रिकॉर्ड में भी नाम दर्ज किए गए हैं। प्रभारी प्राचार्य पुनीत पांडे ने बताया कि अभी तक शासन की ओर से कोई आधिकारिक आदेश प्राप्त नहीं हुआ है। सोशल मीडिया के माध्यम से नाम परिवर्तन की जानकारियां मिली हैं। उन्होंने बताया कि संस्थान का नाम बदलने का प्रस्ताव पहले ही शासन को भेजा जा चुका था। शासन आदेश प्राप्त होते ही उसके अनुरूप औपचारिकताएं पूरी की जाएंगी।
1: गोंडा सरयू नदी में नहाते समय 17 साल के निशांत की डूबने से हुई मौत। बता दें कि गोंडा करनैलगंज के सरयू कटरा घाट पर बुधवार शाम 5 बजे 17 साल के निशांत तिवारी की नदी में डूबने से मौत हो गई। वो दोस्तों के साथ वहां पर नहाने गया था। पुलिस के अनुसार पानी ज्यादा था। नहाते समय निशांत गहरे पानी में चला गया और डूबने लग गया। उसे डूबता देख के दोस्त अभय दुबे, उत्तम अमर पांडे और शुभम जायसवाल मौके से भाग गए। लोगों की सूचना पर पुलिस वहां पे पहुंची और गोताखोरों ने तलाश शुरू की। 1 घंटे बाद भी शव नहीं मिला। तलाश अभी भी इसकी जारी है।
0: जनपद में हर्ष उल्लास के साथ मनाई गई सरयू जयंती। बता दें कि जेठ मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा पर सनातन धर्म परिषद और श्री तुलसी जन्मभूमि न्यास की तरफ से राजापुर सुकरखेत स्थित तुलसी घाट पर मां सरयू जयंती हर्ष उल्लास के साथ मनाई गई है एवं साधु संतों व श्रद्धालुओं ने जयकारे लगाते हुए मां सरयू की आरती उतारी और गोस्वामी तुलसीदास के मंदिर में मत्था टेक कर परिक्रमा की। न्यास अध्यक्ष डॉक्टर स्वामी भगवताचार्य के अनुसार पुराणों की वर्णित है कि 60,000 वर्ष तक गंगा स्नान से जो पुण्य मिलता है वह माँ सरयू के एक बार दर्शन से ही प्राप्त हो सकता है। सरयू को त्रेजा, रामगंगा और वरिष्ठी आदि अनेक नामों से भी जाना जाता है। इसका उद्गम मान सरोवर से हुआ है और गुरु वशिष्ठ इन्हें अयोध्या लाए थे।
1: गोंडा मेडिकल कॉलेज में MBBS छात्राओं के धरने पर डिप्टी CM सख्त। प्रिंसिपल को लगाई फटकार। बता दें कि गोंडा मेडिकल कॉलेज में MBBS छात्रों के प्रदर्शन पर उप मुख्यमंत्री बृजेश पाठक सख्त रुख अपनाया है। उन्होंने कार्यवाही में प्रिंसिपल और CMS को फटकार लगाते हुए कड़ी कार्रवाई करने की चेतावनी भी दी है। 30 जून की रात छात्रों ने कॉलेज के गेट पर धरना दिया। 48 घंटे से बिजली व पानी न मिलने से छात्र नाराज हो गए थे। उन्होंने प्रशासन के खिलाफ नारे लगाए। नगर मजिस्ट्रेट ने मौके पर पहुंचकर बंद जनरेटर में तेल डलवाया और बिजली चालू करवाई।
0: जनपद में 512 माध्यमिक स्कूलों में होगा शक्ति मंच का गठन। बता दें कि मिशन शक्ति अभियान के तहत जनपद के 512 माध्यमिक विद्यालयों में शक्ति मंच का गठन किया जाएगा। इसका उद्देश्य छात्राओं को सुरक्षा, स्वावलंबन, आत्मरक्षा और उनके कानूनी अधिकारों के प्रति जागरूक बनाना है। इसके लिए जिला विद्यालय निरीक्षक ने सभी विद्यालय को आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए हैं।
1: गोंडा में 3 दिन की UP टेट परीक्षा शुरू। 18 केंद्रों पर लगभग 40,000 छात्र देंगे पेपर। बता दें कि गोंडा जिले में बृहस्पतिवार से 3 दिन की उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा यूपी टेट शुरू हो गई है। जिले के 18 परीक्षा केंद्रों पर कड़ी सुरक्षा के बीच परीक्षा हो रही है। 3 दिन में कुल 5 पालियों में लगभग 40,000 परीक्षार्थी शामिल होंगे।
0: जनपद गोंडा में कोचिंग संचालकों ने नियमों में मांगी छूट। बता दें कि जनपद के कोचिंग व लाइब्रेरी संचालक ने सोमवार को जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपकर शासन की ओर से जारी नए नियमों में कुछ छूट देने की मांग की ज्ञापन दिया है। उन्होंने कहा है कि जनपद के अधिकांश छात्र एवं उच्च शिक्षा के लिए लखनऊ, प्रयागराज, कोटा और दिल्ली जैसे शहरों का रुख करते हैं। आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के बच्चों को कम शुल्क गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने में छोटे कोचिंग संस्थानों की महत्वपूर्ण भूमिका है। ऐसे में बड़े शहरों के मानकों को ज्यों का त्यों लागू करना छोटे संस्थानों के लिए मुश्किल साबित हो रहा है। संचालकों का कहना है कि अधिकांश कोचिंग एवं लाइब्रेरी किराए के छोटे भवनों में संचालित होती हैं, जहां बड़े परिसर और निर्धारित मानकों के अनुरूप ढांचा उपलब्ध कराना संभव नहीं है। इसके बावजूद छात्र एवं छात्राओं की सुरक्षा का पूरा ध्यान रखा जाता है और खुले कमरों में कक्षाएं संचालित की जाती हैं। यदि नए नियमों में व्यवहारिक राहत नहीं दी गई तो कई छोटे कोचिंग संस्थानों का संचालन बंद हो सकता है। इससे हजारों शिक्षकों और कर्मचारियों की आजीविका प्रभावित होगी। वहीं आर्थिक रूप से कमजोर छात्राओं की पढ़ाई भी बाधित होगी। जनपद में किसानों को समय पर और निर्धारित मूल्य पर उर्वरक उपलब्ध कराने के उद्देश्य से जिलाधिकारी प्रियंका निरंजन की अध्यक्षता में कृषि विभाग के अधिकारियों, थोक उर्वरक विक्रेताओं तथा उर्वरक आपूर्ति करने वाली 13 कंपनियों के प्रतिनिधियों के साथ समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिलाधिकारी ने उर्वरक की आपूर्ति में लापरवाही, निर्धारित मूल्य से अधिक असूली व DAP यूरिया के साथ अन्य सामग्री की जबरन बिक्री पर कड़ी नाराजगी जताई है। जिलाधिकारी ने निजी कंपनियों के द्वारा समय पर उर्वरक आपूर्ति विवरण उपलब्ध न कराने तथा टैगिंग की सुविधाओं एवं शिकायतों पर संबंधित कंपनियों को कारण बताओ नोटिस जारी करने के लिए निर्देशित किया है। उन्होंने स्पष्ट कहा है कि किसानों को निर्धारित मूल्य पर पर्याप्त मात्रा में उर्वरक उपलब्ध कराया जाए और किसी भी प्रकार की टैगिंग नहीं होगी तथा शिकायत मिली तो संबंधित कंपनियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराकर उन्हें ब्लैक लिस्ट कर दिया जाएगा।
1: गोंडा के एयरफोर्स कर्मी मोहन लाल की हार्ट अटैक से मौत। राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार। बता दें कि गोंडा कस्बे में रहने वाले एक भारतीय वायुसेना में कार्यरत 60 साल के मोहन लाल का पंजाब के लुधियाना स्थित हलवारा एयरफोर्स स्टेशन पर ड्यूटी के दौरान हार्ट अटैक से निधन हो गया। बुधवार को पूरे राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार भी कर दिया गया। परिवार के अनुसार मोहन लाल हलवारा एयरफोर्स स्टेशन पर चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी थे। 29 जून की सुबह जब उन्हें ड्यूटी पर देखा गया तो वो मृत मिले। डॉक्टर ने मौत का कारण हार्ट अटैक बताया है। मूल रूप से गोंडा के कालीचरण के बेटे मोहन लाल ने 3 जुलाई 1993 को वायुसेना ज्वाइन की थी। वे सेवा के अंतिम पड़ाव पर थे और 31 जनवरी 2027 को रिटायर होने वाले थे। उनके परिवार में 2 बेटे हैं और 1 बेटी भी है। अंतिम संस्कार में वायुसेना की आगरा यूनिट के गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया है। इस मौके पर इगलास के क्षेत्राधिकारी, नायब तहसीलदार, गोंडा थाना प्रभारी, पुलिस बल और बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे।
0: आज 2 जुलाई से BVG रामजी से मिलेगा रोजगार। बता दें कि ग्रामीण विकास मंत्रालय की नई विकसित भारत रोजगार एवं आजीविका मिशन ग्रामीण बीबीजी रामजी योजना के तहत कार्य 2 जुलाई यानी कि आज से शुरू हो चुकी है। इसके लिए जनपद के सभी 16 विकास खंडों की 11-11 ग्राम पंचायतों का चयन किया गया है।
1: गोंडा के गड़सर में बीजेपी की शक्ति केंद्र बैठक, योजना को घर घर पहुंचाने पर जोर दिया गया। बता दें कि गोंडा वजीरगंज थाना क्षेत्र के ग्राम सभा गड़सर के बीजेपी की शक्ति केंद्र में बैठक हुई। बैठक जिलाधिकारी सदस्य रामचंद्र प्रजापति की अध्यक्षता में हुई। इसमें बूथ अध्यक्ष राहुल तिवारी, अवनीश मिश्रा, रविंद्र दुबे, सौरभ तिवारी, पंकज कुमार तिवारी और एडवोकेट नवीन कुमार तिवारी समेत कई कार्यकर्ता शामिल रहे। कार्यक्रम की शुरुआत रामचंद्र प्रजापति ने दीप जलाकर, उन्होंने कार्यकर्ताओं को समाज सेवा के लिए हमेशा तैयार रहने को भी कहा। प्रजापति ने कहा कि सरकार की सभी योजनाओं की जानकारी नीचे तक पहुंचनी चाहिए। उन्होंने बताया कि अक्सर गांव के लोगों तक योजना की जानकारी पूरी तरीके से नहीं पहुंच पाती, जिससे वो फायदा भी नहीं उठा पाते। बीजेपी कार्यकर्ताओं का काम है कि वे सरकार की योजना हर घर तक पहुंचाएं और लोगों की राय भी लें। इस मौके पर लोकेश कुमार, मुकेश कुमार, मनीष कुमार, प्रभु दया समेत कई ग्रामीण भी मौजूद रहे।
0: जनपद में राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान को लेकर जिला महिला अस्पताल गोंडा में 0 से 5 वर्ष तक के बच्चों को दवा पिलाकर जिलाधिकारी श्रीमती प्रियंका निरंजन ने की शुरुआत। उन्होंने बताया कि इस अभियान के तहत जनपद के 0 से 5 वर्ष तक के 5,77,000 बच्चों को पोलियोरोधी दवा पिलाई जाएगी। जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग ने अभियान को सफल बनाने के लिए व्यापक कार्य योजना तैयार किया है। जिलाधिकारी ने निर्देश दिए हैं कि अभियान के दौरान कोई भी पात्र बच्चा दवा पीने से वंचित न रहे। CMO डॉक्टर संतलाल पटेल ने बताया कि अभियान के सफल संचालन के लिए सभी आवश्यक तैयारियां पूर्ण कर ली गई हैं। बूथ संचालन, घर घर भ्रमण, पर्यवेक्षण और निगरानी के लिए विस्तृत माइक्रो प्लान तैयार किया गया है। अभियान की निगरानी के लिए 365 सुपरवाइजर तैनात किए गए हैं।
1: मनकापुर कहोबा मार्ग पर रविवार सुबह तेज रफ्तार से पिकअप चालक को नींद की झपकी आने के कारण बड़ा हादसा हो गया। गोंडा के सोनार बिरादरी के लिए तिजोरियां ले जा रहे मनकापुर से आ रही एक पिकअप अनियंत्रित होकर पहले बिजली के पोल, फिर एक पेड़ से टकराई और सड़क किनारे बने एक मकान में जा घुसी। हादसे में चालक समेत 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। वाहन का दरवाजा भी जाम हो गया और लोग अंदर ही फंसे रह गए, जिन्हें पुलिस ने गैस कटर से वाहन काटकर बाहर निकाला। हादसा जिलाही बाजार के पास हुआ है तथा टक्कर इतनी भीषण थी कि वाहन का अगला हिस्सा पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त और दोनों दरवाजे भी जाम हो गए हैं।
0: जनपद में वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में ARTO प्रशासन, CO ट्रैफिक गोंडा, TI गोंडा एवं अन ट्रैफिक पुलिस कर्मचारियों की संयुक्त टीम द्वारा जनपद गोंडा के प्रमुख चौराहा मुन्नन खां चौराहा, गुरु नानक चौक तथा स्थानों पर सड़क सुरक्षा एवं यातायात नियमों के प्रभावी अनुपालन हेतु व्यापक परिवर्तन अभियान चलाया गया। अभियान का उद्देश्य आम जन को यातायात नियमों के प्रति जागरूक करना तथा नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित करना था। तो आज की हलचल में बस इतना ही। आप सुनते रहे रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा, शहर की धड़कन।
2: छूने दो बच्चों के हाथों को चांद सितारे, यही प्यारे बच्चे हैं भविष्य हमारे। प्रोफेसर डॉक्टर शेर बहादुर सिंह, पूर्व सदस्य उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग, प्रख्यात शिक्षाविद के सपनों का इंग्लिश मीडियम CBSE पैटर्न वाला मॉडर्न पब्लिक स्कूल एवं मॉडर्न किडीज प्ले ग्रुप से क्लास 9th। आपके बच्चों के लिए मिलने वाली सुविधाएं हैं क्रिएटिव प्लेवे मेथड से पढ़ाई, थीम बेस्ड क्लासरूम, ऑडियो वीडियो विजुअल्स, कंप्यूटर स्मार्ट क्लास, वाहन की सुविधा, CCTV कैमरे से लैस कैंपस और स्विमिंग पूल, पूल डे की सुविधा उपलब्ध है। एडमिशन ओपन, पता है LIC कॉलोनी निकट गोंडा मेडिकल सेंटर, पटेल नगर गोंडा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9670931251 और 8840098123। मॉडर्न पब्लिक स्कूल, निखार रहे हैं आपके बच्चों का भविष्य।
1: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े बनता है।
3: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
1: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
3: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती। है जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
1: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
3: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल नियर न्यू सब्जी मंडी तुरारो रोड गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करें 888-100-9400।
4: ज्ञान स्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन।

0: सिर में लगातार दर्द, चक्कर आना, याददाश्त में कमी या हाथ पैर का सुन पड़ जाना, इन लक्षणों को नजरअंदाज न करें।
1: आइए मंडल के एकमात्र न्यूरो हॉस्पिटल सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर, जहां दिमाग, नस, रीढ़, माइग्रेन, कमर दर्द, लकवा, ब्रेन हैमरेज व न्यूरो से संबंधित सभी बीमारियों का मंडल के जाने माने वरिष्ठ न्यूरो सर्जन डॉक्टर सुजीत कुमार शुक्ला द्वारा सफल इलाज 17 वर्ष के अनुभव के साथ साथ ही 2400 घंटे इमरजेंसी सुविधा उपलब्ध है। भरोसे का दूसरा नाम सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर। अभी कॉल करें 9838 288 386।
0: पता है सर्कुलर रोड, आवास विकास कॉलोनी, गोंडा।
2: इलाज होगा बेहतर, खुशहाल होगी जिंदगी।
3: मुझे आर्किटेक्ट बनना है।
4: आई वॉन्ट टू बिकम अ साइंटिस्ट।
5: आई वॉन्ट टू बी एन IAS ऑफिसर।
6: रास्ते तो हर मोड़ पर बदल जाते हैं, मगर दिशा नहीं। रवि चिल्ड्रेंस एकेडमी, जहां आपके बच्चों की यूनिकनेस को मिलते हैं पंख। गोंडा का सबसे पुराना कॉन्वेंट स्कूल, अचीवर ऑफ द बेस्ट स्कूल सर्टिफिकेट एट नेशनल लेवल। एडमिशन्स ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। स्पेसिफिकेशंस हैं 10+2 इन ऑल स्ट्रीम्स, साइंस, कॉमर्स एंड ह्यूमैनिटीज। एक्सलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, स्मार्ट क्लास एंड डिजिटल क्लास बोर्ड, कन्वीनियंस फैसिलिटीज, स्काउट गाइड, इवेंट्स, प्रोजेक्ट एंड एजुकेशनल टूर।
7: और सेशन 2026-27 में पहले 100 एडमिशंस पर एडमिशन फी बिल्कुल मुफ्त। एड्रेस है रवि चिल्ड्रंस एकेडमी, नियर दुखरननाथ मंदिर, पटेल नगर, गोंडा। संपर्क करें 9450 944 999।

0: अरे सुना
1: क्या?
0: यही कि गीता इंटरनेशनल स्कूल सेशन 2026-27 के लिए दे रहा पहले 100 एडमिशंस पर एडमिशन फी पर 100% डिस्काउंट।
1: वाओ!
0: गीता इंटरनेशनल स्कूल फॉर अ बेटर टुमारो। एडमिशंस ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। गीता इंटरनेशनल स्कूल, जहां आपको मिलता है साइंस एंड कॉमर्स स्ट्रीम, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, ट्वाइक्वांडो क्लासेस और वाहन की सुविधा उपलब्ध है। पता है गोंडा रेलवे स्टेशन से 1 किलोमीटर दूर, जयनगरा बलरामपुर रोड गोंडा। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 9545583346।

बीते साल 2023 में 1,73,000 लोगों ने रोड एक्सीडेंट में अपनी जान गंवाई है, यानी हर रोज 474 और हर मिनट एक मौत हो रही है। हर साल ये आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है। इस विषय में हम क्या कर सकते हैं? अगर हम यातायात नियमों का पालन करें तो सुरक्षित हर रोज घर वापस आएंगे। जैसे बाइक चलाते समय हेलमेट और कार चलाते समय सीट बेल्ट का इस्तेमाल जरूर करें। तेज रफ्तार से गाड़ी ना चलाएं, केवल दाईं ओर से ओवरटेक करें। चौराहे व मोड़ पर ओवरटेक करने से बचें। वाहन अपनी ही दिशा में चलाएं और गलत दिशा में ना जाएं। थके होने पर, बीमार होने पर, शराब पीकर गाड़ी

0: ना चलाएं, अपने वाहन में बैकलाइट, हेडलाइट एवं इंडिकेटर का इस्तेमाल जरूर करें। गाड़ी चलाते समय मोबाइल फोन का इस्तेमाल ना करें। छोटे बच्चों को वाहन चलाने के लिए बिल्कुल ना दें। साथ ही साथ सभी यातायात नियमों का पालन करें। याद रखें, घर पर आपका कोई इंतजार कर रहा है।
1: Delicious
2: है ना, लेट्स डाइन, कम एंड जॉइन लेट्स डाइन रेस्टोरेंट, जहां आपको मिलता है हर बाइट में यूनिक टेस्ट।
1: और क्या क्या है खास?
2: और आपको मिलता है आपके जायके के लिए मल्टी कजीन, लाइव बारबेक, मॉकटेल बार, आपके सुकून के लिए एस्थेटिक लश ग्रीन एम्बियंस, और साथ ही साथ वीकेंड कैरियोके, सोफी नाइट्स एंड ओपन माइक।
1: अब चिल करेगा शहर, खुशियों की आ गई लहर, खाना स्वादिष्ट हर पहर। कम फॉर फूड, स्टे फॉर द मैजिक। पता है अवध नर्सिंग कॉलेज के सामने, उतुराला रोड, गोंडा। कॉन्टेक्ट नंबर 9250 49 40 45।

0: बच्ची को आराम ही नहीं मिल रहा, क्या करें?
1: इसको तुरंत अल्टिस किप्स ले चलो।
2: राजधानी लखनऊ में बच्चों के पहले सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल अल्टिस किप्स में दिल, गुर्दे, दिमाग या पेट की हर बीमारी का होता है बेहतरीन इलाज।
3: यहाँ 120 बेड ग्रेड 3 NICU एडवांस PICU की सुविधा के साथ ही HFO, INO, वेंटिलेटर, फोटोथेरेपी, डायलिसिस के साथ साथ इमरजेंसी की सुविधा भी उपलब्ध है।
2: विजिट करें अल्टिस किप्स, IIM रोड, लखनऊ। संपर्क करें 0522 2711 827। अब आप भी अपना सपना पूरा कीजिए डिजिटल मास कम्युनिकेशन के साथ जुड़कर। एडमिशंस ओपन। जानकारी के लिए कॉल करें 8840339584, 8840339584। अब सपने होंगे साकार।

0: बच्ची को आराम ही नहीं मिल रहा, क्या करें?
1: इसको तुरंत ऑल्टस किप्स ले चलो।
2: राजधानी लखनऊ में बच्चों के पहले सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एल्टिस किप्स में दिल, गुर्दे, दिमाग या पेट की हर बीमारी का होता है बेहतरीन इलाज।
3: यहाँ 120 बेड, ग्रेड 3 NICU, एडवांस PICU की सुविधा के साथ ही HFO, INO, वेंटिलेटर, फोटोथेरेपी, डायलिसिस के साथ साथ इमरजेंसी की सुविधा भी उपलब्ध है।
2: विजिट करें एल्टिस किप्स, IIM रोड, लखनऊ। संपर्क करें 0522-2711-827।
4: डिलीशियस
5: है ना, लेट्स डाइन, कम एंड जॉइन लेट्स डाइन रेस्टोरेंट, जहां आपको मिलता है हर बाइट में यूनिक टेस्ट।
4: और क्या क्या है खास?
5: और आपको मिलता है आपके जायके के लिए मल्टी कजीन, लाइव बारबेक, मॉकटेल बार, आपके सुकून के लिए एस्थेटिक लश ग्रीन एम्बियंस, और साथ ही साथ वीकेंड कैरियोके, सोफी नाइट्स एंड ओपन माइक।
4: अब चिल करेगा शहर, खुशियों की आ गई लहर, खाना स्वादिष्ट हर पहर। कम फॉर फूड, स्टे फॉर द मैजिक। पता है अवध नर्सिंग कॉलेज के सामने, उतुराला रोड, गोंडा। कॉन्टेक्ट नंबर 9250 49 40 45।

हर साल लाखों लोग जलजनित बीमारियों से बीमार पड़ते हैं। क्या आप महफूज हैं? जलजनित बीमारियां यानी पानी से होने वाली बीमारियां, जिन्हें वाटर बोन डिजीज कहते हैं। ये बीमारियां वायरस, बैक्टीरिया, पैरासाइट जैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म से दूषित पानी के संपर्क में आने से या पीने से होती हैं। कुछ जलजनित बीमारियां हैं कॉलेरा, टाइफाइड, हेपेटाइटिस, डायप्थीरिया, डायरिया आदि। इन रोगों से बचने के लिए अच्छी आदतें अपनाएं। हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी का टीकाकरण करवाएं। दूषित भोजन और पानी से बचें। कुछ भी खाने या पीने से पहले अपने हाथ जरूर धोएं। छत पर रखी टंकी को नियमित रूप से साफ करते रहें। पानी को गर्म करके पिएं। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें।

0: मुझे आर्किटेक्ट बनना है।
1: आई वॉन्ट टू बिकम अ साइंटिस्ट। आई वॉन्ट टू बी एन IAS ऑफिसर। रास्ते तो हर मोड़ पर बदल जाते हैं मगर दिशा नहीं। रवि चिल्ड्रंस एकेडमी, जहां आपके बच्चों की यूनिकनेस को मिलते हैं पंख। गोंडा का सबसे पुराना कॉन्वेंट स्कूल, अचीवर ऑफ द बेस्ट स्कूल सर्टिफिकेट एट नेशनल लेवल। एडमिशंस ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। स्पेसिफिकेशंस हैं 10+2 इन ऑल स्ट्रीम्स, साइंस, कॉमर्स एंड ह्यूमैनिटीज। एक्सीलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, स्मार्ट क्लास एंड डिजिटल क्लास बोर्ड, कन्वीनियंस फैसिलिटीज, स्काउट गाइड, इवेंट्स, प्रोजेक्ट एंड एजुकेशनल टूर।
2: और सेशन 2026-27 में पहले 100 एडमिशंस पर एडमिशन फी बिल्कुल मुफ्त। एड्रेस है रवि चिल्ड्रंस एकेडमी, नियर दुखरननाथ मंदिर, पटेल नगर, गोंडा। संपर्क करें 9450-944-999।

देखिए तो कैसी हमारी परवाज हो गई, हमारी आवाज से मिली आपकी आवाज, दुनिया की आवाज हो गई। जी हाँ, हम है आपके गोंडा मैसेज मसाला में, जो की है कार्यक्रम कविताओं का, जो कार्यक्रम आपकी संवेदनाओं का, जो कार्यक्रम मस्ती का, जो कार्यक्रम चाय की मिठास का, जो है कार्यक्रम आपकी जिंदगी की नए उमंगों का, नए आयाम का, नए आसमान का, जो कार्यक्रम है धुनों का और संगीत का, जो कार्यक्रम है देश की धड़कन का, तो ऐसी धड़कन जो गोंडा शहर की धड़कन भी है। तो आइए शुरू करते हैं गोंडा मैसेज मसाला, आपका फेवरेट शो, आपकी फेवरेट आरजे प्रीना के साथ।

अब तो कॉल का भी इंतजार भी नहीं है। जी हाँ, अगर ऐसी सिचुएशन आपके पास आ गई है तो बिल्कुल साधु बनने की जरूरत नहीं है, अभी भी आपके पास मौका है और आप जाग सकते हैं। वेलकम ऑन एंड ऑल प्रेजेंट हियर, आपके साथ आरजू मीना मौजूद है आपके शो गोंडा मैसेज मसाला में। कई बार ऐसी सिचुएशन आती है, लगता है कि अब संन्यास ले ही लेना चाहिए, लाइफ तो हमारे अकॉर्डिंग चल ही नहीं रही है। और कहते हैं ना, तुम बिन सुनी है ये राहें, तुम बिन अधूरा है ये संसार, तुम्हारी इन आंखों के दर्पण में देखा था मैंने थोड़ा सा प्यार। जब तुम साथ होते हो तो थम जाता है वक्त, हर धड़कन में बसता है कोई मीठा सा संगीत। तुम मेरे जीवन की वो सुंदर कविता हो जो मैंने लिखी और बन गई वो प्रीत। माना कि लफ्ज कम पड़ जाते हैं कभी कभी, पर हमारी आंखों की भाषा तुम कब समझोगे। यही तो मैंने सुना था प्रेम है, पर मेरी खामोशियों के तुम कब समझोगे। तो कब समझेगा नहीं समझेगा, देखिए अब इंतज़ार करने का कोई मामला नहीं है जब तक कि डायग्नोज ना हो। देखिए, हम किसी भी समस्या को ज़्यादा दिन तक छोड़ नहीं सकते। अगर हम किसी समस्या को ज़्यादा दिन तक छोड़ देंगे ना, तो ये मान लीजिए कि वो समस्या हमारी आने वाले समय में एक बड़ी प्रॉब्लम बन के सामने आ सकती है। तो सबसे पहले तो ये वाला गाना सुनना शुरू कर दिया है तो समझ लीजिए आपकी लाइफ में एम्प्टीनेस ने कहीं ना कहीं जगह बना ली है। तो फिलहाल उस एम्प्टीनेस को दूर करने के लिए आरजू बीना आ चुकी है आपके दिलों में, आपके धड़कनों में, क्योंकि मैं आऊं और आपकी एम्प्टीनेस को दूर ना करूं तो फिर मेरे आने का फ़ायदा ही क्या है। तो चलिए इस म्यूज़िकल एम्प्टीनेस को दूर करते हैं और आपके साथ डॉक्टर लव से आज ही बात करेंगे आपकी एम्प्टीनेस के बारे में। तो जो जो जहाँ जहाँ से अपनी अलोन फीलिंग हमसे शेयर करना चाहता है वो बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल कर सकता है, क्योंकि आपके अलोननेस को ही तो दूर करना हमारा काम है। और आज तो मैं एक और आपके लिए ऑफ़र लेके आई हूँ जो कि सीधे डॉक्टर लव की तरफ से है। क्या आप सोच रहे होंगे ना, क्या? नहीं नहीं नहीं, वो ऑफ़र कुछ ऐसा है कि कल यानी कि कल शनिवार को हम आपके साथ लाइव हो के एक आपके लिए प्रपोज़ल शेयर करेंगे, वो प्रपोज़ल जो आपको आपके बिछड़े हुए प्यार को भुला देगा और आपकी लाइफ में एक नया म्यूज़िक प्ले कर देगा। फिलहाल लाइफ को जिंगल आला करने के लिए आरजू बीना आ चुकी है और आज होगी कई सारी बातें, कोई नई पुरानी मूवीज़ की बातें, लेकिन आज कुछ सस्पेंस थ्रिलर वाली मूवीज़ लेके आई हूँ मैं आप लोग के लिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों की आदत होती है क्राइम पेट्रोल ये सारी चीज़ें देखने की, तो वो चाहते हैं कि कुछ ऐसा दिखे सस्पेंस थ्रिलर टाइप का जिसको देख के आहा मज़ा जाए। तो फिलहाल आपका वीकेंड शुरू होने को है, पहले ये गाना सुनते हैं, खुद को थोड़ा शांत करते हैं, फिर आगे बात करते हैं। तो कल मिलेंगे डॉक्टर लव के साथ, आप लोग याद रखिएगा अभी तो आरजे बीना आपके साथ है और आपको आपके प्यार के तरफ करीब करने के लिए बहुत सारी मूवीज दिखाने वाली है। तो चलिए हम भी घूमते हैं आपके साथ देश दुनिया और देख के आते हैं कौन सी फिल्म ने हमारे दिलों में जगह बनाई है।

0: बच्ची को आराम ही नहीं मिल रहा, क्या करें?
1: इसको तुरंत अल्टिस किप्स ले चलो।
2: राजधानी लखनऊ में बच्चों के पहले सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल अल्टिस किप्स में दिल, गुर्दे, दिमाग या पेट की हर बीमारी का होता है बेहतरीन इलाज।
3: यहाँ 120 बेड, ग्रेड 3 NICU, एडवांस PICU की सुविधा के साथ ही HFO, INO, वेंटिलेटर, फोटोथेरेपी, डायलिसिस के साथ साथ इमरजेंसी की सुविधा भी उपलब्ध है।
2: विजिट करें अल्टिस किप्स, IIM रोड, लखनऊ। संपर्क करें 0522 2711 827।
4: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े बनता है।
5: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
4: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
5: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती है, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
4: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
5: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, उतराल रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करें 888-100-9400।
6: छूने दो बच्चों के हाथों को चांद सितारे, यही प्यारे बच्चे हैं भविष्य हमारे। प्रोफेसर डॉक्टर शेर बहादुर सिंह, पूर्व सदस्य उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग, प्रख्यात शिक्षाविद के सपनों का इंग्लिश मीडियम CBSE पैटर्न वाला मॉडर्न पब्लिक स्कूल एवं मॉडर्न किडीज प्ले ग्रुप से क्लास 9th। आपके बच्चों के लिए मिलने वाली सुविधाएं हैं क्रिएटिव प्लेवे मेथड से पढ़ाई, थीम बेस्ड क्लासरूम, ऑडियो वीडियो विजुअल्स, कंप्यूटर स्मार्ट क्लास, वाहन की सुविधा, CCTV कैमरे से लैस कैंपस और स्विमिंग पूल, पूल डे की सुविधा उपलब्ध है। एडमिशन ओपन, पता है LIC कॉलोनी, निकट गोंडा मेडिकल सेंटर, पटेल नगर, गोंडा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9670931251 और 8840098123। मॉडर्न पब्लिक स्कूल, निखार रहे हैं आपके बच्चों का भविष्य।
7: क्या आप भी गोंडा से हैं और गोंडा में ही तलाश रहे एक बेहतरीन करियर ऑप्शन? या आप ढूंढ रहे एक ऐसा हुनर जो आपको जोड़ दे रोजगार से? या फिर बदलते दौर में आप भी छा जाना चाहते हैं अपने टैलेंट से टीवी, रेडियो और सोशल मीडिया पर? तो अब गोंडा में ही रेडियो ज्ञानस्थली लाया है डिजिटल मास कम्युनिकेशन कोर्स, जिसमें एक्सपर्ट्स द्वारा टीवी एंकरिंग, रेडियो जॉकी, वीडियो पॉडकास्ट, वॉइस एक्टिंग, ऑडियो एडिटिंग, वीडियो एडिटिंग, एडवर्टाइजमेंट प्रोडक्शन और कंटेंट राइटिंग की प्रोफेशनल ट्रेनिंग, और तो और कोर्स के आखिर में पूरे एक हफ्ते का रोजगार मेला यानी जॉब प्लेसमेंट की भी गारंटी। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 8840-3395-84। अब बारी है आपकी।
8: सिर में लगातार दर्द, चक्कर आना, याददाश्त में कमी या हाथ पैर का सुन पड़ जाना, इन लक्षणों को नजरअंदाज ना करें।
9: आइए मंडल के एक मात्र न्यूरो हॉस्पिटल सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर, जहां दिमाग, नस, रीढ़, माइग्रेन, कमर दर्द, लकवा, ब्रेन हैमरेज व न्यूरो से संबंधित सभी बीमारियों का मंडल के जाने माने वरिष्ठ न्यूरो सर्जन डॉक्टर सुजीत कुमार शुक्ला द्वारा सफल इलाज 17 वर्ष के अनुभव के साथ, साथ ही 2400 घंटे इमरजेंसी सुविधा उपलब्ध है। भरोसे का दूसरा नाम सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर। अभी कॉल करें 9838-288-386।
8: पता है सर्कुलर रोड, आवास विकास कॉलोनी, गोंडा।
10: इलाज होगा बेहतर, खुशहाल होगी जिंदगी।
4: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े बनता है।
5: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
4: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
5: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती है,
11: होती है जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
4: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
11: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल नियर न्यू सब्जी मंडी तुरारो रोड गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करें 888-100-9400।
12: ज्ञान स्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। गोंडा शहर की

वेलकम बैक टू द बॉलीवुडिया इवनिंग एंड यस, आज आपके साथ आरजुबीना लाइव है। और जैसा कि आप सभी को पता है कि आज हम डिस्कस करेंगे बहुत सारी मूवीज़ के बारे में, और ख़ास तौर पे तो मैंने पहले ही आपको अपडेट दे दिया है कि आज कुछ सस्पेंस एंड थ्रिलर वाली मूवीज़ ना सिर्फ हमारे इधर की यानी कि बॉलीवुड की, बल्कि टॉलीवुड और आपके आस पास हॉलीवुड में भी जो सस्पेंस और थ्रिलर से भरी हैं वो आपके सामने लेके आऊँगी। और आपका वीकेंड इम्पॉर्टेंटली काफ़ी ज़्यादा एंटरटेनिंग बनाऊंगी। तो चलिए आज सबसे पहले बता दूं, आज 3 जुलाई है यार, जुलाई शुरू हो गया है और मौसम तो अगेन वैसा ही है। तो सबसे पहले आज एक आपके मेरे पसंदीदा मतलब एक्ट्रेस का बर्थडे है, सो उनको विश कर देते हैं। और भारती सिंह को तो आप सभी जानते हैं, कौन नहीं जानता है भारती सिंह, एक ऐसी पहचान जिसने अपनी कह सकते हैं कि ब्लैक पहचान जिसको कोई नहीं जानता है उससे एक ब्राइट पहचान बना रही है। एंड पर्सनली भारती सिंह का जो व्यक्तित्व है काफ़ी अच्छा है, हम सभी जानते हैं। तो थोड़ा बहुत भारती सिंह के बारे में बता देती हूँ, और ऑफ कोर्स इनके बारे में बताना चाहिए, आजकल इतने सारे रियलिटी शोज़ वगैरह कर रही हैं, और सच्ची बताऊँ शी इज़ वन ऑफ द बेस्ट पर्सनैलिटी जो कि मुझे कॉमेडी सिनेमा या कॉमेडी की दुनिया में लगती हैं। हमेशा से भारती सिंह ने एक मतलब अपनी पहचान बनाई है, और मैं कहूँ कि कम ट्रोल होने वाली पर्सनैलिटीज़ में से वो एक हैं। उनको शायद ही कोई ट्रोल करता होगा उनकी मतलब हाँ देखिए, फ़नी बातें तो करने के ही उन्हें पैसे मिलते हैं तो वो तो वो करेंगी, लेकिन शायद ही उनको किसी चीज़ से मतलब ट्रोल किया गया होगा, बिकॉज शी इज़ पर्सनैलिटी टू गुड। एंड ख़ास तौर पे उन्होंने कॉमेडी और रियलिटी शोज़ में ही अपनी पहचान बनाई है। इन्हें कॉमेडी क्वीन भी कहते हैं, और इनका जन्म हुआ था अमृतसर पंजाब में, जहाँ मेरा हुआ था, सो 8 जुलाई 1984 में। ठीक है, स्ट्रगल की कहानी तो हम सभी ने टीवी में सुनी है, कई बार सुनी है, मतलब बहुत ही नाजुक परिवार से बिलोंग करती थी, फैमिली बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर थी, और मतलब खाने पीने की भी चीज़ों की इनको अच्छी खासी दिक्कत होती थी, पर मतलब इन्होंने हार नहीं मानी, लोगों से बहुत सारे ताने सुने, बहुत ज़्यादा इन्होंने मतलब कह सकते हैं रिजेक्शन सा, लेकिन आज एक पहचान बना रही है। तो ये सब कहानियाँ जान के हमें एक मोटिवेशन तो ज़रूर मिलनी चाहिए कि यार लाइफ में अगर बार बार हमें रिजेक्शन मिल रहा है तो कहीं ना कहीं हमारा सिलेक्शन ज़रूर पक्का है। तो भारती की लाइफ से तो यही मुझे मतलब सीखने को हमेशा मिलता है कि मतलब जैसे लोग बॉडी शेमिंग वगैरह या कहते हैं पढ़ाई लिखाई बहुत करनी चाहिए, सारी चीज़ों को एक पैमाने पे रखते हैं, पर देखिए ना तो वो बहुत ज़्यादा मतलब मुझे जहाँ तक पता है उन्होंने PhD ऐसा कुछ किया है, हाँ एक नॉर्मल पढ़ाई होगी उनकी, और इसके बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी मुझे नहीं है, पर हाँ ये है कि नॉर्मल एजुकेशन है उनकी। और बॉडी शेमिंग को लेके भी उन्होंने बहुत कुछ सहा, लेकिन आज देखिए लोग उन्हें फॉलो कर रहे हैं, उनकी फूडिंग हैबिट, उनकी डेली लाइफ मतलब अच्छे से देख रहे हैं, उनके सारे व्लॉग्स लाखों लोग देख रहे हैं, तो मतलब लोग इंस्पायर हैं। और अगर मैं बात करूँ तो साल 2008 में उन्होंने द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज से अपनी करियर की शुरुआत की थी, फिर इसके बाद कॉमेडी नाइट्स, बचाओ, झलक दिखला जा, खतरा जैसे बड़े बड़े शोज़ किए। ठीक है, तो लोगों ने बहुत ज़्यादा पसंद किया। इसी के साथ इनको 2017 में एक राइटर और प्रोड्यूसर आपके हर्ष लिम्बाचिया से प्यार हो गया और शादी भी कर ली। अच्छा है यार, मतलब देखो किसी के साथ ज़बरदस्ती किसी के से जुड़ने का अच्छा है कि आप दोनों विलिंगली एक दूसरे को एक्सेप्ट करो। और फिलहाल इन्होंने ये भी मतलब अपना सफ़र तय किया वज़न घटाने का, और काफ़ी बदलाव में दिख रही हैं आजकल भारती। 15 kg उन्होंने अपना वज़न घटाया, तो मतलब आप चाह लें तो क्या ना कर लें, स्टार्टिंग में तो बहुत ज़्यादा मतलब हेल्दी थी, पर मुझे लगता है कि अगर आप सोच बना लें तो आप दुनिया इधर से उधर कर सकते हैं, सच्ची बता रही हूँ, सब कुछ कर सकते हैं। इसीलिए तो भगवान ने सबसे इंटेलिजेंट इंसान बना के हमें भेजा है यार, मतलब ऐसे ऐसे लोग हमारे आसपास जिनके पास जिनकी पूरी बॉडी पैरालाइज्ड है, जिनके एग्जांपल्स भी अगर मैं लेने लगूँ तो आप सोचोगे यार कैसे कैसे एग्जांपल्स आरजेबीना ले रही हैं। और मतलब हैड्स ऑफ टू दोज पीपल्स जो अपने लाइफ में एकदम ना की सिचुएशन में सब कुछ कर लेते हैं, ठीक है ना। तो इन सारी चीज़ों को हमको याद रखना चाहिए, और इफ़ हमारे अंदर जज्बा है देन वी कैन गेट एनी थिंग।
तो चलिए आगे हम लोग हंसते मुस्कुराते हुए आगे चलेंगे और इनके लाइफ से बहुत कुछ सीखेंगे। एंड वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे टू यू भारती। एंड आप ऐसे ही ग्रो करें, ऐसे ही सबको हंसने और मुस्कुराने पे मजबूर करें। आपके फ़िलहाल दो बेटे हैं, गोला और पता नहीं दूसरे का नाम भी कुछ अजीब सा रखा है, बट योर फैमिली इज़ वेरी परफेक्ट। हाँ, मज़ा आया आपके बारे में डिस्कस करके। आप लोग बताइए आपको कैसा लगा। और हमारे साथ नगेश्वर हैं। नगेश्वर लिखते हैं, ना रुकी वक्त की गर्दिशें, ना ज़माना बदला, पेड़ सूखा तो परिंदों ने ठिकाना बदला। वाह वाह क्या बात है, बारिश आ गई, पेड़ वापस अपने ठिकाने पे आ गए होंगे। मेरा बच्चा, ओके आपका बच्चा जाएगा, बिल्कुल जाना चाहिए। साल के आधे महीने तो निकल गए, ऑब्वियसली निकल जाएंगे। छः महीने आपने पूरी तारीखें मतलब बदली हैं, तारीख बदली है, ऐसा तो नहीं एक भी दिन का घपला हुआ है, नहीं सारी चीज़ें अच्छी है। भारती का दो बच्चे हैं, एक नहीं है। तो चलिए अब मूवीज़ के बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं, बहुत सारी चीज़ें भारती के बारे में डिस्कस की। तो एक फ़नी सॉन्ग सुन लेते हैं, किसके लिए, भारती के लिए। तो भारती के लिए हम सुनेंगे एक चतुर नार कर के सिंगार। तो चलिए हम सुनते हैं हमारी चतुर नार के लिए एक चतुर सा गाना, जिसे सुन के आ जाएगा मज़ा और भी ज़्यादा। लेट्स एंजॉय एक पुराना फनी सॉन्ग, जिसको सुन के हमारे चेहरे पे गुदगुदी तो आ जाएगी।

0: गारे गारे गारे गारे
1: सूर बदल
0: गारे गारे
1: गारे सूर की तरह जी ये सूर इन्ना आया है तो।

0: घोड़ा चतुरा
1: एक पैर है ना, या घोड़ा बोलना या चतुर बोलना।
2: एक चतुर नार

0: अब कोई इतना क्लासिकल भी फनी सॉन्ग गा सकता है। जी हाँ, ये मन्ना डे और किशोर दा के ही बस का है, हमारे आपके बस का तो नहीं है कि फनी सॉन्ग भी इतना क्लासिकल हो। सो वेलकम वन एंड ऑल प्रेजेंट हियर, कमल नयन हमारे साथ हैं और बाकी सारे लोग भी जो म्यूजिक की दुनिया के दीवाने हैं और हाँ प्यार की दुनिया में भी एकदम खिलाड़ी हैं। तो चलिए आगे बात करेंगे, आपके साथ मौजूद है आपकी अपनी आरजे बीना, आपके शो गोंडा मैसी मसाला आरजे बीना वाला के साथ। और आज की जो पहली मूवी जिसके बारे में मैं आपको बताने वाली हूँ वो है हुमा कुरैशी, सिकंदर खेर, चंकी पांडे। ओ माय गॉड, चंकी पांडे तो जैसे लगता है कि एक्टिंग की दुनिया में कभी कभी ऐसे चक्कर लगाने आ जाते हैं, फिलहाल आते हैं तो कुछ ना कुछ नंबर बना के जाते हैं। सो एक्शन कॉमेडी मिस्ट्री थ्रिलर, मतलब मैंने मिस्ट्री और थ्रिलर की बात की थी लेकिन इसके साथ मैं एक्शन और कॉमेडी भी लेके आई हूँ। तो इसमें आपके साथ होंगे इतने सारे कलाकार जो आपको कर देंगे शॉक, क्योंकि फिलहाल बॉलीवुड की जो कहते हैं ना स्क्रीन पे ये मूवी छाई हुई है, आज ही रिलीज हुई है लेकिन दिलों पे राज कर रही है। मूवी का नाम है बेबी डू डाई डू, क्या बात है, बेबी डू डाई डू, ये क्या भाई, मूवी के नाम भी इतने खतरनाक होते हैं कि मेरे लिसनर्स कुछ दिन तक भूल ही जाएं। तो फिलहाल बेबी डू डाई डू, बेबी डू डाई डू ये है मूवी का नाम। और सबसे पहले तो मूवी के बारे में बता दूं कि यार मुझे हुमा कुरैशी की एक्टिंग अच्छी लगती है। अगर आप सोच रहे हो कि हुमा कुरैशी कौन है, बहुत ज़्यादा नहीं देखा है, तो आपने जॉली एलएलबी 2 में अक्षय कुमार की पत्नी को देखा है ना, तो समझ लो कि आपने हुमा कुरैशी को देखा है। तो मुझे हुमा कुरैशी की एक्टिंग इसलिए अच्छी लगती है कि बहुत सिंसियर सी रहती है और बहुत नेचुरल एक्टिंग करती हैं, ये ओवर एक्टिंग तो बिल्कुल भी नहीं करती जैसे कि कुछ एक्टर्स और एक्ट्रेस में हमने देखा है कि वो नए होने के साथ साथ ओवर एक्टिंग करके पुरानों की जगह लेने की कोशिश करते हैं। पर इस मतलब इनके अंदर ये कलाकारी नहीं है, ये काफ़ी प्योरिटी के साथ अपना जो रोल है उसको निभाती है। तो चलिए इसके इनकी मूवी के बारे में जान लेते हैं कैसा है इनकी मूवी में, और मुझे तो लगता है कि ये मूवी हम लोग को देखनी चाहिए। और जिसको लोग इतना ज़्यादा इस मूवी को जो रेटिंग मिली है 5/4.5 मिली है, मतलब 4.5 स्टार्स मिले हैं, तो मतलब लोगों ने कुछ ज़्यादा ही पसंद किया होगा ऑफ कोर्स। तो चलिए रिव्यू कर देती हूँ मैं आप लोग को इस मूवी की, मतलब कहानी कैसी है, क्या होने वाली है। तो मूवी जो है वो फिलहाल मुंबई की गलियों में ही आपको घुमाएगी, मुंबई नहीं गए हैं तो ये मूवी देख लीजिए, आप अच्छा खासा घूम लेंगे। वैसे बहुत सारी ऐसी मूवीज़ हैं जिन्होंने हमें मुंबई की गलियों के एक एक, मतलब हम लोग मुंबई नहीं गए होंगे लेकिन हाँ आधे ज़्यादा एड्रेस हम लोग को याद होंगे, बोरीवली और क्या कहते हैं कौन कौन सा है मीरा रोड, आधे ज़्यादा एड्रेस ना मुझे इससे क्राइम पेट्रोल वगैरह से याद हुए हैं, मतलब बहुत सारे एरिया के जैसे ये पनवेल हो गया और कौन सा है, दो चार जगह ऐसी हैं जहाँ पे वलसाड, और जो लोग वहाँ के होंगे वो लोग जानते होंगे, मैं फ़िलहाल मुंबई गई नहीं हूँ लेकिन हाँ मुझे बहुत सारी चीज़ों के बारे में वहाँ के पता है। तो चलिए, वैसे आजकल मैंने जैसा कि कहा कि लोगों को थ्रिलर मूवीज़ ज़्यादा पसंद है, गोलियाँ हों, गैंगस्टर हो और बदले की कहानियाँ ये सब ना हो लेकिन थ्रिलर हो, मतलब बदले की कहानी आजकल लोगों को कम पसंद आती है क्योंकि यार ये सारी चीज़ें ना एक तरह से हमें मोटिवेट करती है बदला लेने के लिए। लेकिन इसमें जो बेबी डू डाई डू जो मूवी आई है ये थोड़ा अलग हमें ले जाएगी, मतलब यहाँ पे एक ऐसे सुपारी किलर की कहानी है जो ना बोल सकती है, मतलब एक सुपारी किलर है जो ना बोल सकती है और ना सुन सकती है लेकिन मिशन को बिना शोर किए अंजाम देती है। ओके, बात हुमा कुरैशी की हो रही है, मतलब शी इज़ द सुपारी किलर, इनको आप सुपारी दे सकते हो कि फलाने को मारना है लेकिन बताएंगे कैसे, ना तो सुन सकती है ना पढ़ सकती है देख सकती है। लेकिन निर्देशक ने जो है इस कहानी को एक्शन फिल्म ना बना करके थोड़ी सी फ़नी फिल्म बना दी है, और अगर आपने अंधाधुन फिल्म देखी होगी तो आपको ये फिल्म ज़रूर पसंद आई है। आयुष्मान खुराना की आई थी एक फिल्म अंधाधुन जिसमें वो अंधा बनने की एक्टिंग करता है लेकिन फाइनली फिर अंधा ही हो जाता है, तब्बू है साथ में, यार बहुत अच्छी मूवी है, एक बार तो देखोगे तो मज़ा ही आ जाएगा। अगर आपको थोड़ी फ़नी और थ्रिलर वाली मूवी पसंद है तो वो मूवी आपके लिए बनी है, ठीक है। चलिए हम कहानी की बात कर लेते हैं, मुंबई शहर की बदलती तस्वीर, उसके अंधेरे चेहरे, और यही कहानी का किस्सा है। मतलब मुंबई जितना ज़्यादा डेवलप हो गया वहाँ पे अंधेरे भी बहुत ज़्यादा, अंधेरे मतलब रहस्य टाइप की चीज़ें ये बहुत सारी हैं। सो फिल्म हर मोड़ पे आपको शॉक करेगी लेकिन स्टाइल, माहौल, एक्टिंग ये सारी चीज़ें आपको 2 घंटे 5 मिनट तक एकदम हिलने नहीं देंगी, कि जाओ भाई चले जाओ थोड़ी देर के हल्के हो आओ, ये नहीं हो पाएगा। 2 घंटे 5 मिनट आप अपनी कुर्सी नहीं छोड़ोगे क्योंकि आपको मजा आएगा। आप ब्रेक में भी नहीं हिलोगे क्योंकि आप मूवी के बारे में सोचोगे आगे क्या होगा, ठीक है। और लोगों ने बहुत पसंद किया है। और कहानी मतलब जैसे एवरेज सी मूवी जिसमें बहुत खर्चा ना हुआ हो उसको लोग जब बहुत ज़्यादा प्यार देते हैं तो फिर लगता है कि हाँ सक्सेस अपनी है। बाकी बहुत पैसा लगाएंगे तो बहुत अच्छा तो फेम मिलेगा ही, लेकिन इस मूवी में उस हिसाब से मुझे खर्चा कम दिख रहा है लेकिन लोग ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। कहानी की शुरुआत जो है वो होती है 2 जुड़वा बहनों से जो बचपन में एक बंद पड़े होटल में पहुँच जाती हैं। वहाँ वो लोग एक हत्या की गवाह बन जाती हैं। इसी घटना में एक बहन की मौत हो जाती है जबकि दूसरी की ज़िंदगी हमेशा के लिए बदल जाती है। सालों बाद वही लड़की बेबी करमरकर यानी कि हुमा कुरैशी बनके मुंबई में सबसे ख़तरनाक कॉन्ट्रैक्ट किलर बन जाती है। वो गूंगी और बैरी है लेकिन अपने हर मिशन को बेहद सटीक तरीके से पूरा करती है। उसकी पहचान उसकी छतरी है जो ज़रूरत पड़ने पर जानलेवा हथियार बन जाती है। बेबी का पालन पोषण पापा यानी कि चंकी पांडे ने किया है जो उसे एक के बाद एक मिशन सौंपते रहते हैं। मतलब फिलहाल यहाँ पे उसके पापा ही उसको मर्डर वगैरह के मिशन ला के देते हैं, ना फनी कहानी। लेकिन हर सुपारी के पीछे बेबी ने अपनी एक तलाश भी छिपा के रखी है। वो अपनी जुड़वा बहन के हत्यारे तक पहुँचना चाहती है। मतलब थोड़ा तो पुराना वाला अंदाज रहेगा ही ना कि थोड़ा बदला टाइप का, लेकिन थोड़ा ज़्यादा नहीं। इसी बीच उसकी ज़िंदगी में सिद्धू आ जाता है, रचित सिंह आ जाता है और पहली बार उसे इस खून खराबे वाले दुनिया से बाहर निकालने की उम्मीद दिखाई देती है। मतलब उसे लगता है कि मैं बाहर आ सकती हूँ और ये रचित भी सोचता है कि इसको बाहर निकाल लिया जाए। लेकिन कहानी में ट्विस्ट ये है कि क्या वो इस खून खराबे वाली दुनिया से बाहर निकलेगी, क्या उसको उसकी बहन का जो मतलब हत्यारा है वो मिलेगा, ये तो देखने के लिए आपको मूवी देखनी पड़ेगी। जगह जगह आपको कॉमेडी के अच्छे अच्छे सीन्स देखने को मिल जाएंगे और बड़े लंबी चौड़ी कहानियाँ नहीं है, बहुत सारे कॉन्वर्जेशन नहीं है, टू द पॉइंट इस मूवी में बात हुई है। और चेहरे और हर चीज़ की मतलब एक्सप्रेशन इतने ख़तरनाक हैं कि आपको हंसी भी आएगी और आप सीरियस भी हो जाएंगे जगह जगह। तो मतलब फ़िलहाल के लिए मेरी तरफ से इस मूवी को मैं तो देखने वाली हूँ इस वीकेंड। मैंने तो देखा नहीं है फ़िलहाल इस मूवी को भी, पर हाँ मैंने जितना पढ़ लिया इस मूवी के बारे में मुझे ऐसा लग रहा है कि मूवी है तो ख़तरनाक मज़ेदार है। और आपने बताइए मैं वापस आऊँगा देखी कि नहीं देखी। मैं तो दूसरी बार देख चुकी हूँ और तीसरी बार देखने की तैयारी है। आई लव दिस मूवी। तो चलिए हम लोग सुनते हैं हमारी हुमा कुरैशी वाला गाना, लेकिन पुराना नए अंदाज में। आपने बोला गाना सुना है, कर दे मुश्किल जीना इश्क कमीना। वैसे अब मुझे ये पता चल गया इश्क का जेंडर मेल है। फिलहाल चलिए सुनते हैं ये गाना नए अंदाज में फ्रॉम द मूवी बेबी डू और डाई।
1: कत्ल करती है निगाहें कि दिल को खबर ना हो, जख्म देती है ऐसा कि दर्द का असर ना हो। हमने समझा था इश्क मोहब्बत को ही ख्याले दिल, लगता है डर बस इतना वो मेरा हम शक्ल ना हो।

0: और उसकी साइलेंट लव स्टोरी।
1: आप सोचेंगे कि सारे गाने लगता है ऐसे ही हैं, मतलब फास्ट, पर ये गाना बहुत स्लो लेकिन दिल के करीब।

0: ज्ञान स्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन,
1: गोंडा शहर की धड़कन।
2: क्या आप भी गोंडा से हैं और गोंडा में ही तलाश रहे एक बेहतरीन करियर ऑप्शन, या आप ढूंढ रहे एक ऐसा हुनर जो आपको जोर दे रोजगार से, या फिर बदलते दौर में आप भी छा जाना चाहते हैं अपने टैलेंट से टीवी, रेडियो और सोशल मीडिया पर, तो अब गोंडा में ही रेडियो ज्ञानस्थली लाया है डिजिटल मास कम्युनिकेशन कोर्स, जिसमें एक्सपर्ट्स द्वारा टीवी एंकरिंग, रेडियो जॉकी, वीडियो पॉडकास्ट, वॉइस एक्टिंग, ऑडियो एडिटिंग, वीडियो एडिटिंग, एडवर्टाइजमेंट प्रोडक्शन और कंटेंट राइटिंग की प्रोफेशनल ट्रेनिंग, और तो और कोर्स के आखिर में पूरे एक हफ्ते का रोजगार मेला यानी जॉब प्लेसमेंट की भी गारंटी। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 88 40 33 95 84। अब बारी है आपकी।
3: यार मेरी बहन की शादी फिक्स हो गई है और अब गोंडा में एक अच्छा सा वेडिंग हॉल ढूंढ रहा हूँ, कोई आइडिया है?
4: अरे हाँ, मैंने अभी पिछले हफ्ते ही मेरी गोल्ड लॉन्स में एक पार्टी अटेंड की थी और वो जगह शादियों के लिए एकदम परफेक्ट है।
3: सच में? क्या खास है वहाँ?
4: बहुत कुछ है। वहाँ एक रॉयल बैंकेट हॉल है जो अंदर से बहुत ही रॉयल लगता है, और ओपन एयर सेटअप के लिए लश ग्रीन लॉन्स भी बहुत खूबसूरत है।
3: अच्छा, डेकोरेशन और खाने पीने की चीजों का क्या सीन था?
4: सब कुछ टॉप क्लास था। फ्लोरल डेकोर और लाइट्स की सेटिंग बहुत ही ड्रीमी थी। खाने में फाइन डाइनिंग और बुफे ब्रेकफास्ट दोनों का ऑप्शन है, साथ ही पेशियो डाइनिंग का भी मजा ले सकते हो। और वैसे भी खुली हवा में खाना खाने का एक अलग एक्सपीरियंस था। और सबसे अच्छी बात जो मुझे लगी, वहाँ कंप्लीट वेडिंग प्लानिंग सर्विस भी है, मतलब तुम्हें कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वो सब संभाल लेंगे।
3: और फोटोग्राफी वगैरह?
4: वहाँ तो ड्रोन फोटोग्राफी करवाते हैं जिससे सिनेमेटिक शूट भी हो सकता है, और हाँ, मेकअप और ड्रेसिंग सर्विसेज भी वहीं अवेलेबल है।
3: ये तो एकदम परफेक्ट लग रहा है। लोकेशन कहाँ है?
4: अवध नर्सिंग कॉलेज के सामने उतरौला रोड पर है, और इनका कॉन्टेक्ट नंबर है 9839613949। बल्कि मुझे तो पूरा यकीन है कि तुम्हें जरूर पसंद आएगा।
3: वाह, तुमने तो मेरी आधी टेंशन ही खत्म कर दी।
5: वैसे आप लोग सोच रहे होंगे कि अब एक और थ्रिलर मूवी के बारे में आरजू बिना बताएंगी, वो कौन सी होगी? तो एक मैं कन्नड़ मूवी के बारे में आपको बताऊंगी जो कि हिंदी डब अवेलेबल है, आप प्राइम पे देख सकते हैं। और सच्ची बताऊं, इस मूवी को देखने के बाद आपको भरोसा उड़ जाएगा, यार इतनी खतरनाक मूवीज़ कैसे बन सकती हैं। मूवी का नाम है सेकेंड केस ऑफ सीताराम, सीताराम का सेकेंड केस। सीताराम ऑफ कोर्स कोई पुलिस वाला होगा, तभी तो उसका सेकंड केस की बात हो रही है। तो चलो मैं बताती हूँ कि क्या है कहानी इस मूवी की। तो सबसे पहले तो एक पुलिस वाला होता है, मूवी की स्टार्टिंग आपको दिखेगी कि उसमें एक पुलिस वाला है, उसकी मतलब फैमिली है छोटी सी, पापा है उसकी, बहन है, लेकिन मतलब वो अपनी बहन को बहुत सपोर्ट करता था हर चीज़ में, वो उसकी बहन भी उसको बहुत सपोर्ट करती थी। लेकिन क्या होता है कि उसकी बहन को एक लड़के से प्यार हो जाता है, वो एक लव लेटर लिख रही होती है और उस लव लेटर को उसके पापा पढ़ लेते हैं। फिर उसके पापा उस लड़की को बाहर निकाल देते हैं कि भाई तुम घर से जाओ, तुमको यही सब करना है। तो वो रोकने की कोशिश करता है, लेकिन भाई छोटा था अपने घर में, तो अपने पापा के खिलाफ जा भी नहीं पाता है। तो इसी चक्कर में उसकी बहन को बाहर निकाल दिया जाता है। फिर कुछ दिन बाद उसकी बहन जो होती है वो शादी वगैरह करके घर आती है। फिर उसके बाद उसके पापा बोलते हैं कि अगर तुमको जाना है तो इसके साथ तुम जाओ, नहीं मैं तुम दोनों का अंतिम संस्कार कर दूँ। जैसे पहले के पेरेंट्स बहुत थोड़े स्ट्रिक्ट होते थे ना, कि बच्चे कोई गलती करते थे तो तुरंत शादी करने लगते, जाओ मैं तुम्हारा श्राद्ध कर दूंगा, लाइक दैट। तो बहुत स्ट्रिक्ट थे उसके पापा, तो नहीं वो नहीं गया, उसने अपनी दीदी को भेज दिया कि दीदी मैं नहीं जा सकता आपके साथ। तो दीदी उसकी बहुत नाराज़ होती है कि मेरे भाई ने भी मेरा साथ नहीं दिया, उसको मैं हमेशा सपोर्ट करती। चलो कहानी शिफ्ट होती है प्रेजेंट टाइम में, और वो पुलिस वाला बन गया होता है और अच्छे खासे मतलब केसेस सॉल्व करता है। तो बहुत सारे केसेस उसने सॉल्व किए होते हैं, लेकिन अभी कुछ केसेस सिटी में कुछ मर्डर ऐसे होने लगते हैं जैसे लगता है कि कोई साइको किलर है। मतलब वो लोहे की जंजीरों से बांध के, वो जो कांटे वाली नहीं होती जो बाउंड्री फेंसिंग बनाने के लिए यूज़ होती हैं, उसमें बांध के बहुत बेरहमी से मारा जा रहा होता है लोगों को। तो ये सारी चीज़ें मतलब होती हैं, और मूवी के अंदर कुल मिला के दिखाया जाता है कि जब भी उसे लगता है कि ये वाला बंदा फाइनल मुझे मिल गया कल्प्रिट, लेकिन फिर आंसर बाद में आता है कि अरे यार ये नहीं है, दूसरा है। तो मतलब यू टर्न ऐसा शार्प आएगा जैसे लगेगा कि अरे अब तो कहानी में आंसर मिल गया, मतलब सॉल्व हो गई केस मिस्ट्री, पर लास्ट में ये होता है कि नहीं अभी तो आगे बाकी है। तो ये मूवी आपको पूरे टाइम बांध के रखेगी। और कहानी जैसा कि मैंने आपको बताया कि छोटे सी कहानी है जो कि एक छोटे से गांव की अनगाड़े और वहाँ भयानक जो हत्याएं हो रही होती हैं और उनका जब पोस्टमार्टम होता है तो उसे पता चलता है कि जैसा कि किलर जो है वो साइको है। और मूवी में जो पुलिस वाला है वो बना है हमारे विजय राघवेंद्र, उन्होंने बहुत अच्छी एक्टिंग की है और कातिल तक पहुंचने का पूरा प्रयास किया है। और ख़ास तौर पे जो सीताराम की बहन है वो एक भावनात्मक उलझन की तरह पूरी मूवी में दिखती रहेगी आपको, और ऐसा लगेगा कि उससे जुड़ी है पूरी की पूरी जो सस्पेंस स्टोरी है, पर लास्ट में आपको बहुत ज़्यादा सस्पेंस दिखेगा मूवी में। तो मैं सारी चीज़ें अभी डिस्क्लोज नहीं करूँगी, मैंने देख ली है मूवी, मुझे बहुत अच्छी लगी है। और जैसे कहते हैं ना कि खतरनाक सस्पेंस, अगर आपने ये मूवी नहीं देखी तो आपने कोई नहीं देखी। और हाँ, ये सब इसमें इमोशनल ड्रामा ये सब बिल्कुल भी नहीं मिलेगा आपको, सिर्फ सस्पेंस ही सस्पेंस दिखेगा। और आप मूवी बहुत देखती हैं, मूवी नहीं देखूंगी तो बताऊंगी कैसे आपको और आपका वीकेंड कैसे अच्छा जाएगा। तो आप लोग मेरी तरफ से इस मूवी को ज़रूर देखिए, सेकेंड केस ऑफ सीताराम, ठीक है? आप एक बार देखना और फिर बताना कि मूवी कैसी लगी। मुझे तो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी, आप लोग को भी बहुत अच्छी लगी, और मतलब आपका वीकेंड जो है ना वो ये सोचने में बीत जाएगा, यार ये ऐसी मूवीज़ बनाते कैसे हैं, इतना दिमाग लाते कैसे हैं, इतने ख़तरनाक सस्पेंस। और ऐसी एक ही नहीं, बहुत सारी मूवीज़ जिनमें सस्पेंस ऐसा है। एक तो मैंने देखा था टाइम लूप की एक मूवी थी, अभी उसका नाम मुझे नहीं याद आ रहा है, उसमें ये था ना कि 5-6 साल एक में कनेक्ट हो जाते हैं, जैसे 1994 और 2005, 2026, 4 टाइम लूप होते हैं जो कि एक ही जगह कनेक्ट हो जाते हैं। और उसमें ये होता है कि अगर गोली की साउंड होगी, मतलब गोली फायर होगा, तो वो फिर से किसी नए साल में चले जाएंगे। तो अगर आपको साउंड, अगर आपको किसी नए लूप में नहीं जाना, जैसे आप हो, आप बैठे बैठे अभी पता चलेगा कि आप 1994 में पहुंच गए, फिर साउंड हुई, फिर पता चला आप 2006 में पहुंच गए, फिर साउंड हुई, पता चला कि आप अंग्रेजों के काल में पहुंच गए, ऐसा करके। बड़ी मस्त मूवी, वो भी मुझे बड़ी अच्छी लगी, उसके बारे में फिर किसी दिन बताऊंगी। लेकिन हाँ, स्टोरी कुछ ऐसी थी, अगर आपने देखी हो, नाम पता हो तो मुझे बताइएगा कि मूवी का नाम क्या है उसका। तो फिलहाल के लिए चलिए एक और गाना सुनते हैं, और भाई 7 बजे हम क्वेश्चनर शुरू कर देंगे, यानी कि कुछ क्विज और कुछ गाने आपके वाले और हमारे वाले, जो कर देंगे सभी को दीवाने। तो लेट्स एंजॉय द ब्यूटीफुल सॉन्ग और थोड़ा सा और तड़का डालते हैं आज की शाम में और एंजॉय करते हैं ये ब्रेक।

मैं सोच रही हूँ एक और आपको मूवी रिव्यू कर दूँ, जिसको आप सुन के थोड़ा सा और खुश हो जाएंगे, क्योंकि वीकेंड है तो हो सकता है आप एक से ज़्यादा मूवीज़ देखना पसंद करें, तो क्यों ना एक दो मूवीज़ के बारे में और हम लोग बात कर लेते हैं, वो भी लेटेस्ट वाली, बॉलीवुड वाली, और मतलब मज़ेदार वाली। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि अल्फ़ा भी आ रही है, और अल्फ़ा के बारे में तो अभी मैं ज़्यादा कुछ नहीं बताऊँगी, क्योंकि ये मूवी जो है थोड़ा सा मतलब थ्रिलर वाली है, और थ्रिलर के साथ साथ इसमें आपको आपके अपने मतलब कौन मिल जाएंगे बॉबी देओल, अनिल कपूर, और साथ ही में आपकी आलिया भट्ट, ठीक है, शर्वरी मिल जाएंगी, और मूवी का नाम अल्फा है, और ये बेसिकली थ्रिलर स्पाई मूवी है, और मज़ा आएगा आपको देखने के बाद। और चलिए अल्फा को ही रिव्यू कर देती हूँ, आप लोग क्यों ही परेशान हो और इसके ऊपर लोगों का क्या ओपिनियन है। आज ही रिलीज़ हुई है, लेकिन ये मूवी हुमा कुरैशी की मूवी के आगे ज़्यादा नहीं टिक पाई, और इसी वजह से लोगों ने अभी इसको ज़्यादा, मतलब मुझे ऐसा लगता है ना कि लोग क्या सोचते हैं ना कि एक एक करके मूवी देखें, एक साथ तो कोई भी सारी मूवीज़ नहीं देख सकता है, एंड मुझे भी ऐसा लगता है कि मैं भी एक साथ बहुत सारी मूवीज़ को रिव्यू नहीं कर सकती, क्योंकि एट अ टाइम तो मैं एक ही मूवी देखूँगी। तो फिलहाल के लिए चलिए इस मूवी की कहानी थोड़ी बहुत बता देती हूँ, क्योंकि स्पाई वाली मूवी है तो ऑब्वियसली आपकी और मेरी सभी की फेवरेट होगी, और आप किस में बॉबी देओल दिख रहे हैं, तो मुझे तो, और सच्ची बताऊँ ना, शर्वरी इसमें बहुत ज़्यादा फेमस हो गई है, और ख़ास तौर पे इस मूवी से, मतलब इसके पहले भी इनकी मूवीज़ आई थी, पर इन्होंने जैसा काम मैं वापस आऊँगा मैं किया है, इसके बाद मुझे लगता है कि इनके पास मूवीज़ की लाइन लग गई होगी। अल्फा को ज़्यादा लोगों ने भी पसंद नहीं किया है, आलिया भट्ट हैं, शर्वरी, अनिल कपूर हैं, बॉबी देओल हैं, देवेंद्र भट्टाचार्य हैं, ऋतिक रोशन हैं, पर जैसे कहते हैं ना कि कोई पुराना हीरो आ जाएगा तो ऐसा नहीं कि मूवी एकदम चली जाएगी, मूवी का कंटेंट भी अच्छा होना चाहिए, स्क्रीन प्ले भी अच्छा होना चाहिए, म्यूज़िक भी अच्छा होना चाहिए। फिलहाल धुरंधर की तरह बनाने का इस मूवी को सोचा गया है, और ऑब्वियसली यशराज जैसे बड़े बैनर का जो नाम होगा तो मूवी ऑब्वियसली सबको पसंद आने वाली होगी, तो यशराज बैनर्स के नीचे ये मूवी बनी, तो तहलका मचाने वाली मूवी है, लेकिन तहलका मचा नहीं पाई क्योंकि स्टोरी उतनी खास नहीं है। फिल्म की शुरुआत ये हो जाती है कुछ साल पहले से, यानी कि 24 जुलाई 1999 से, कारगिल युद्ध में कर्नल विक्रांत कौल यानी कि अनिल कपूर ने अपनी कई फौजी खोए थे, और उनके साथी कर्नल फतेह सिंह लखावत, बॉबी देओल अपने खोए हुए साथियों का बदला लेने के लिए जो है ना विक्रांत को अपने सीक्रेट प्रोग्राम अल्फा के बारे में बताते हैं। फतेह विक्रांत से कहता है कि भारत सरकार से इस प्रोग्राम को पास करवाने में उसकी मदद करें। अल्फा एक ऐसा प्रोग्राम होता है जिसमें फौजियों को ताकतवर बनाने के लिए उनकी बॉडी में अल्फा सीरम डाला जाता है। ये सीरम उनके शरीर में रिएक्ट करने की क्षमता बढ़ जाती है, घाव खुद ब खुद सही हो जाते हैं, और फतेह का मानना है कि इस सीरम की मदद से भारतीय फौजियों का जो कहते हैं ना हारने वाली जो है वो कैपेसिटी ना के बराबर हो जाएगी, उनको जख्म होंगे तो वो छोटे मोटे जख्म से खुद को सही कर लेंगे। इसी बीच विक्रांत को पता चलता है कि उसकी पत्नी दिया मिर्ज़ा प्रेग्नेंट है और उनका ज़िंदा बचना मुश्किल है। विक्रांत चुपके से अपनी पत्नी को अल्फा सीरम दे देता है, इससे वो बच तो जाती है पर बेटी के पैदा होने के बाद वह दम तोड़ देती है। जब फतेह को इस बारे में पता चलता है तो वह विक्रांत से कहता है कि सीरम अपने देश के लिए बनाया था ना, तो व्यक्तिगत इस्तेमाल क्यों किया। फतेह विक्रांत से उसकी बेटी सीता जो कि आलिया भट्ट है छीन कर देश के नाम कर देता है। वह विक्रांत को झूठ बोलकर यकीन दिलाता है कि उसकी बेटी मर गई और चुपके से उसे ट्रेनिंग देकर तैयार करता है। दूसरी तरफ उसका अल्फा प्रोग्राम फेल हो जाता है और भारतीय सेना उसे चेरापूंजी में पोस्टिंग दे देती है। फिर इसके आगे सीता कभी अपने पिता विक्रांत से मिल ही नहीं पाती है, और वहीं एक लड़की और है जिसका नाम है दुर्गा, यानी कि शर्वरी जो है दुर्गा बनी हुई है, उसकी मदद से वो सब कुछ जानने की कोशिश करती है। मूवी में मिलाल मतलब दोनों आमने सामने होती हैं लेकिन दोनों एक दूसरे के बारे में नहीं जानती। 2 घंटे 20 मिनट की मूवी है, मूवी बहुत स्लो चलती है स्टार्टिंग में यार, मतलब ऐसी
मतलब ऐसी इम्पॉसिबल चीज़ें बताई जाती हैं जिनका मतलब कोई ताल्लुक नहीं होता है हकीकत वाली ज़िंदगी से, तो इसीलिए लोगों को कम पसंद है और मुझे भी थोड़ी कमी पसंद आई। लेकिन हाँ, जो भारतीय सेना से जुड़ी है इसलिए तो देखने का मन कर रहा है मेरा, तो मैं तो देखूँगी इस मूवी को, और आप लोग भी अगर देखना चाहें तो बिल्कुल देख सकते हैं। और इसी मूवी का एक गाना भी मैं आपको सुनाना चाहूँगी, क्योंकि अब भाई इसमें बड़े दिग्गज आपके मतलब एक्टर्स हैं, आपके फेवरेट ऋतिक हैं, आपके फेवरेट बॉबी देओल हैं, तो गाना सुनना भी बनता है। तो चलिए सुनते हैं पहला गाना अल्फा से, बम बम।

तो इसी म्यूजिकल ब्रेक के साथ आप अपने सवाल के लिए भी तैयार हो जाइए। पढ़ते लिखते तो आप लोग बहुत ही हैं, और इसी पढ़ाई लिखाई से जुड़ा बॉलीवुड वाला क्वेश्चन आप लोगों से पूछूंगी। एंड देखिए, इन्होंने लिखा है नागेश्वर ने कि ज़्यादातर महिलाएं 3 बार शॉपिंग करने जाती हैं, 1 बार देखने जाती हैं, 2 बार खरीदने जाती हैं और 3 बार बदलने जाती हैं। ऐसा नहीं है, लड़के भी यही काम करते हैं, सिर्फ लड़कियां ही नहीं इतनी बार शॉपिंग करती। गुड इवनिंग सब लोग, कैसे हैं? मुंबई बोरीवली से धर्मेंद्र मोहन आवाज़ विकास से गुड इवनिंग, कैसे हैं आप? प्रमुख फ्रॉम लुधियाना लिखते हैं, आरजबीना मैम आपकी प्रस्तुति बड़ी निराली लगती है, हर शब्द में अपनापन, हर बात मतवाली लगती है, आपकी मीठी आवाज़ दिल को सुकून दे जाती है, हर सुबह हर शाम मुस्कान सी बिखर जाती है, जब आप बोलती हैं माहौल महक उठता है, हर श्रोता का मन खुशी से चहक उठता है, यूं ही अपनी आवाज़ का जादू बिखेरते रहिए, हम सबके दिल में हमेशा यूं ही बसते रहिए। क्या बात है, फिलहाल गुड इवनिंग चल रही है, मॉर्निंग नहीं, वैसे जब जागो तभी सवेरा। तो आप लोग भी जाग चुके हैं, तो अपने सवाल के लिए तैयार रहिए। सवाल है आपका, आपके लिए मतलब थोड़ा सा आपके दिमाग पे जोर डालेगा, लेकिन आपने अगर थोड़ा भी न्यूज़ सुना होगा आजकल तो आपको पता होगा कि इसका आंसर क्या है। सवाल है कि अभी जल्दी ही भारतीय चुनाव आयोग यानी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने किस बॉलीवुड अभिनेता को नेशनल आइकन घोषित किया है? दिमाग लगाइए कि किसने, मतलब किस बॉलीवुड अभिनेता को ECI द्वारा नेशनल आइकन की उपाधि दी गई है। ठीक है, ECI यानी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, भारतीय चुनाव आयोग। आंसर दीजिए और अपनी पसंद का गाना सुनिए। क्वेश्चन थोड़ा लॉजिकल है, लेकिन दिमाग लगाएंगे तो आंसर पता चल जाएगा। लेट्स एंजॉय द नेक्स्ट सॉन्ग जिसको मैं बहुत ज़्यादा पसंद करती हूँ आप लोग के साथ।

सो गीता जी ने और आशु जी ने पढ़ाई अभी भी नहीं छोड़ी है और आंसर लगातार दे रही हैं, मतलब क्लास में भी तेज और यहाँ घर पे भी थोड़ा कम पढ़ा करिए, बाकियों को भी मौका दीजिए। गुड इवनिंग अनिल जी, कैसे हैं आप? और चलिए हम फरमाइश सुनेंगे दोनों की, यानी कि गीता जी की और आशु जी की, दोनों ने एकदम करेक्ट आंसर दिया वो भी सेम टाइम पे। सो आप दोनों की फरमाइश का गाना सुनेंगे, फटाफट से फरमाइश करें और अगले क्वेश्चन के लिए भी तैयार रहें। अगला क्वेश्चन आप लोग के लिए ये है कि भारतीय सिनेमा के इतिहास में 2023 में रिलीज हुई किस फिल्म ने वैश्विक स्तर पर 1000 करोड़ से अधिक कमाई करने वाली पहली फिल्म बनकर इतिहास रच दिया। अब सोचिए कौन सी फिल्म है, 2023 में आई थी और वैश्विक स्तर पे उसने 1000 करोड़ रुपए कमाए थे और ये पहली फिल्म बनी थी, दुनिया की पहली फिल्म बनी थी और इतिहास रचा था। मूवी का नाम आपको बताना है, इंडियन मूवी है, बॉलीवुड की मूवी है, कौन सी आप बताइए।

अभी तक जितने भी आंसर दिए हैं सारे गलत हैं, और ना तो जवान है, ना ही पुष्पा है, ना ही बाहुबली है। आप लोग थोड़ा दिमाग लगाइए, आप लोग करीब हैं, आंसर आपको मिल जाएगा। और अनिल जी, आपने आंसर लेट में दिया इसलिए आपका गाना भी प्ले नहीं होगा। जवान नहीं है आंसर, आप लोग थोड़ा सा दिमाग लगाइए, काफ़ी मिलता जुलता ही आंसर है, आपको पता चल जाएगा। फिलहाल सुनिए ये गाना गीता जी की फरमाइश का, इससे पहले हमने सुना गाना आशु जी की फरमाइश का। गुड इवनिंग एवरीवन अगेन।

गेस करने वाले एक लिसनर को नाम मैं अनाउंस करना चाहूंगी। आंसर है गीता जी का, जिन्होंने सही गेस किया। पठान मूवी ने 1,000 करोड़ कमाई करके अपना नाम कमा लिया था और गदर भी नहीं है, आंसर पठान है और बिल्कुल सही आंसर है। एंड गीता जी, आज मतलब आपको देख के ये महसूस हो रहा है कि आप टॉपर रही होंगी अपने क्लास की। ठीक है, तो अगला सवाल आप लोग के लिए ये है कि थोड़ा सा आसान पूछती हूँ कि अभी जो स्त्री 2 आई थी, इसमें लीड कैरेक्टर्स कौन थे? स्त्री 2 में लीड कैरेक्टर्स कौन थे? जल्दी से सोच के समझ के नाम बताइए। और इसी के साथ अगला गाना भी मुझे लगता है गीता जी का ही पसंद का प्ले करना पड़ेगा। कोई बात नहीं आशु जी, कोई बात नहीं। तो चलिए हम अगले गाने की तरफ रुख करते हैं, जो कि मेरी तरफ से आप लोग के लिए है। एंड थोड़ा सा आप लोग मूवीज़ के बारे में थोड़ा डीप में पढ़ा करिए, कौन सी मूवी क्या कितना मतलब नॉलेज होनी चाहिए हमें, और ऑक्सफर्ड और हर चीज़ से जुड़ी हुई, जिससे हमें पता चले। और इसी के साथ हमारे जो मूवीज़ ने नेशनल अवार्ड जीते हैं, ये सारी चीज़ें भी हमें पता होनी चाहिए। तो चलिए एक गाना और सुनते हैं हम लोग एक साथ, और अगले क्वेश्चन का आंसर देखते हैं कौन देता है।

फिलहाल के लिए देखिए हम सुनने आ रहे गीता जी की पसंद का गाना, लेकिन आंसर तो दोनों ही सखियों ने सही दिया है, लेकिन अब दोनों ही सखियों का गाना नहीं प्ले होगा, अब प्ले होगा उन लोगों का गाना जिन्होंने अभी तक नहीं सुना है अपना कोई गाना। फिलहाल इस क्वेश्चन को ही मैं कैंसिल करती हूँ, क्वेश्चन का आंसर बहुत आसान था। और अब अगला जो क्वेश्चन है वो ये है कि ऑस्कर 2025 में 97th एकेडमी पुरस्कार में भारत की कौन सी आधिकारिक प्रविष्टि के लिए चुनी गई फिल्म बनी है? 97th एकेडमी पुरस्कार में ऑस्कर 2025 में हमारे यहाँ की कौन सी मूवी को नॉमिनेट किया गया है? मूवी का नाम बस बताना है, चलिए सोच के बताइए। और अभी आप सुन रहे हैं गीता जी की पसंद का गाना और बाकियों के आंसर अब सुनेंगे, और ये वाला क्वेश्चन कैंसिल क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत आसान था, 3-2 के बारे में सबको पता है कौन था उसमें।

तुम, हम, तुम, क्या बात है। और देखिए आंसर देने वाले लोग वही बरकरार हैं, और आंसर दिया गीता जी ने, लापता लेडीज। और देखिए अब गीता जी का अगला गाना तो प्ले ही होगा क्योंकि लगातार ये लोग आंसर्स दे रहे हैं। और मैं सोच रही हूँ कि नेक्स्ट राउंड के लिए मैं आपको एक इंस्ट्रूमेंटल सुनाती हूँ जिसे आप गेस करेंगे, तो जो सबसे पहले गेस करेगा उसी को, इंस्ट्रूमेंटल नहीं, मैं एक एक्टर की आवाज़ सुनाऊंगी, उस एक्टर की आवाज़ को आपको गेस करना है कि वो एक्टर कौन है। ठीक है, तो चलिए आप अक्षय कुमार को जानते हैं, अक्षय खन्ना को जानते हैं, पूरी मतलब बॉलीवुड की पूरी मतलब फिल्म इंडस्ट्री के एक एक एक्टर एक्ट्रेस को जानते हैं। तो फिलहाल जिस एक्टर की आवाज़ में सुनाने वाली हूँ, अगर आपने गेस कर लिया तो मैं समझूंगी कि आप भी धुरंधर हैं। फिलहाल धुरंधर वाले स्टाइल में मैं आपको एक बढ़िया से मतलब एक्टर की जो डायलॉग है वो सुनाऊँगी और आपको गेस करना है कि वो कौन है। आर यू रेडी? अगर रेडी हैं तो यस यस जल्दी से लिखिए, तभी तो मैं सुना पाऊँगी आपको।

0: पता है जब भी मैं किसी से उधार मांगता हूँ ना, कोई मुड़ के पैसे वापस ही नहीं मांगता। इसलिए नहीं कि वो मुझे बहुत पसंद करते हैं, उनको यकीन है कि मैंने पता है जब भी मैं किसी से उधार मांगता हूँ ना, कोई मुड़ के पैसे वापस ही नहीं मांगता। इसलिए नहीं कि वो मुझे बहुत पसंद करते हैं, उनको यकीन है कि मैंने।
1: तो आपके पास भी ऐसा कोई इंसान है जो आपसे पैसे दे के आपसे वापस ना मांगता हो? है कोई ऐसा? तो जल्दी से बताइए ये डायलॉग किसका था, और अगर आपने गेस कर लिया तो अपनी पसंद का गाना सुन सकते हैं। तो अब आपके दिमागी खेल शुरू हो चुके हैं और आपके सुनने समझने की क्षमता
2: शाहिद कपूर के
0: पता है जब भी मैं किसी
1: आपके सुनने समझने की क्षमता को यहाँ पे इवैल्यूएट किया जाएगा। तो होपफुली अगर आपने गेस कर लिया हो तो जल्दी से बता दीजिए और हम सुन लेते हैं अगला वाला गाना किसका है। मैम गाना किसी का बजा सकती हैं, मैं बस खेल रही हूँ। ओके, गाना फ़िलहाल किसी का भी बजा नहीं सकते क्योंकि आप पसंद आपकी फरमाइश हम सुनेंगे, क्योंकि आपने कंटिन्यूअसली आंसर्स दिए हैं और जो आंसर देगा
0: कि वो मुझे बहुत पसंद करते हैं।
1: आंसर दिए हैं और आंसर देने के साथ साथ टाइम पे आंसर दिए हैं, ना सिर्फ आंसर दिए बल्कि टाइम पे आंसर दिए। तो अगर आपने गेस कर लिया है तो फटाफट से बताइए कौन एक्टर आपके साथ है और किसकी आवाज़ आपने सुनी है।

हमारे एक लिसनर अमित ने आंसर दिया और अब उनकी पसंद का हम लोग गाना सुनेंगे। तो आप लोग अगर आंसर देना चाहते हैं तो आप आंसर कॉल करके भी दे सकते हैं। और फिलहाल चैट रूम में भी हमारे एक लिसनर ने आंसर दे दिया है और आंसर किसका आया है, मुस्तफ़ा से। मुस्तफ़ा ने आंसर दिया, बिल्कुल सही आंसर है मुस्तफ़ा, शाहिद कपूर की आवाज़ है। और अमित ने भी आंसर दिया है, शाहिद कपूर आंसर है। तो इनकी फरमाइश पे हम लोग सुनेंगे उच्चा लम्मा कद, और वो भी नई वाली मूवी यानी कि वेलकम टू द जंगल, यहाँ से हम लोग गाना सुनेंगे उच्चा लम्मा कद। और वैसे तो आपने बहुत सारे मतलब वर्जन सुनेंगे, लेकिन इसका नया वाला वर्जन जो है आपको शॉक कर देगा। लेट्स एन्जॉय द न्यू वर्जन ऑफ उच्चा लम्मा कद। मुश्तबा जी आप भी विनर हैं, आप जल्दी से अपनी फरमाइश कर सकते हैं और अपनी पसंद का कोई भी गाना सुन सकते हैं।

चलिए मुस्तफा की फरमाइश का गाना हम लोग सुनते हैं, छैला बाबू तू कैसा दिलदार। कर्तव्य फिल्म से लता मंगेशकर की आवाज़ में ये प्यारा सा गाना, जिसमें आपको दिख जाएंगे धर्मेंद्र और रेखा।

0: को हमने क्या समझा और क्या निकला। तो चलिए सुनते हैं अगला डायलॉग, देखते हैं आप लोग गेस कर पाते हैं कि नहीं। आपके गेस करने की बारी आ चुकी है।
1: तो क्या ये मेरी गलती है कि मैं वहां जाके सक्सेसफुल हो गई और तुम नहीं हो पाए?
2: ये जो तुम करती हो ना, तुम मुझे एहसास दिलाती हो कि मैं कितना बड़ा फेलियर हूं। तुम्हें एक मौका नहीं छोड़ती हो ये दिखाने के लिए कि नैना शर्मा कितनी सक्सेसफुल है और कुकू कितना बड़ा फेलियर।
1: हाँ तो तुम हो फेलियर और मैं भी। लुक एट अस कुकू, I failed as a wife, you failed as a husband, and you know what? You're about to go and fail as a son now. तो क्या ये मेरी गलती है कि मैं वहां जाके सक्सेसफुल हो गई और तुम नहीं हो पाए?
2: ये जो तुम करती हो ना, तुम मुझे एहसास दिलाती हो कि मैं कितना बड़ा फेलियर हूं।
0: अभी आपको एक साथ दो एक्टर और एक्ट्रेस की आवाज़ सुनाई गई, मतलब एक एक्टर और एक एक्ट्रेस। अब दोनों की आवाज़ अगर आप लोग गेस कर लेते हैं तो आपको अपना गाना सुनने को मिलेगा। दो गाने नहीं सुनने को मिलेंगे, एक ही गाना सुनने को मिलेगा, लेकिन आपको दोनों की आवाज़। वैसे अगर आप एक को भी गेस कर लेंगे तो भी आपको गाना सुनने को मिलेगा। तब तक के लिए हम लोग छैला बाबू को कंटिन्यू करते हैं, बड़ा प्यारा गाना। गाना एंजॉय करते रहिए, नहीं आपको अपनी पसंद का गाना सुनने को नहीं मिलेगा। चलिए हम लोग सुन लेते हैं नागेश्वर जी की पसंद का गाना, क्योंकि गीता जी ने कहा था कि मेरी जगह किसी का गाना आप प्ले कर सकती हैं। तो अभी हम सुनेंगे नागेश्वर की पसंद का गाना, और तब तक के लिए आप लोग गेस करिए किसकी आवाज़ सुनी आपने। करिश्मा कपूर आंसर नहीं है।

भाई सारे फरमाइश करने लग गए हो, आंसर किसी ने अभी तक नहीं दिया। कौन आंसर दे रहा है भाई, कौन आंसर दे रहा है? बॉबी देओल की आवाज़ भी नहीं है, करिश्मा की आवाज़ नहीं है। गुड इवनिंग मुकेश, कैसे हैं आप? और भाई देखिए, आप लोगों ने गाना गेस नहीं किया सही सही। फिलहाल गाना जो मतलब गाना नहीं, डायलॉग नहीं गेस किया सही। डायलॉग था कियारा आडवाणी का और वरुण धवन का, और बड़ी अच्छी सी फिल्म थी। इन लोगों ने बहुत अच्छी एक्टिंग की थी, और मूवी का नाम था जुग जुग जियो एंड जुग जुग जियो में दोनों ने बहुत अच्छी एक्टिंग की थी, और उसी फिल्म का ये डायलॉग है। वरुण एंड कियारा दोनों की आवाज़ है। आप लोगों ने बहुत ध्यान से नहीं सुना होगा, इसलिए आप लोग गैस नहीं कर पाए होंगे। फिलहाल के लिए भाई सबको बहुत सारी मुबारक, बहुत अच्छा आप लोगों ने खेला, बहुत अच्छे आंसर्स भी दिए। गुड इवनिंग राजू कश्यप गोंडा सिटी, आपने तो पूरी पिक्चर का मतलब पूरा ब्योरा लिख के दे दिया है। और महके हुए तेरे, ओह क्या बात है, जैसी करनी वैसी भरनी, 1989 फिल्म का, म्यूज़िक डायरेक्टर राजेश रोशन, सिंगर मोहम्मद अजीज़ एंड साधना। भाई ऐसे तो भाई रेयर लोग फरमाइश करते हैं, लेकिन फरमाइश करने का अंदाज़ बहुत अच्छा है। इसीलिए गीता जी का एक पेंडिंग आंसर बाकी था, तो उसी के लिए गाना सुना देती हूँ। चलिए सुनते हैं। और कोई बात नहीं आशु जी, मैंने दो बार प्ले किया था और इसीलिए आप लोग सुन नहीं पाए, लेकिन कोई बात नहीं, मतलब इसीलिए नहीं, आप लोगों ने ध्यान से सुना नहीं, दो बार प्ले हुआ था डायलॉग, आप लोग सुन नहीं पाए। तो चलिए हम लोग सुनते हैं गाना महके हुए तेरे, गोविंदा और किमी कक्कड़ की ये फिल्म है, और मूवी का नाम है जैसी करनी वैसी भरनी।

मूवी के लिए कोई मतलब क्वेश्चन नहीं था, क्वेश्चन सिर्फ आपको आवाज़ पहचानने का था। फिलहाल आप लोग का टाइम भी हो चला है, तो ये लास्ट गाना प्ले करके अब मैं आप लोगों से लेती हूँ विदाई। कल फिर मिलेंगे इसी अंदाज में, इसी एनर्जी के साथ, और करेंगे बहुत सारी म्यूज़िकल बातें। और कल डॉक्टर लव के साथ अपनी बात कहने के लिए तैयार रहिएगा, क्योंकि फिर आप भी ऐसे गाते फिरेंगे, अब तो पहले वाली बात ही नहीं है, बातों में वो जज्बात ही नहीं है, जिसको समझा था मैंने अपना, वो तो मेरा अपना बनने को तैयार ही नहीं है। तो ऐसा गाने से अच्छा है कि आप अपना वाला अपने पास ही रखें और ये गाना एंजॉय करें। लेट्स एंजॉय एंड स्टे ट्यून, कल फिर मिलेंगे और होगी बहुत सारी बात, प्यार की बात, सवालात की बात, मुलाकात की बात, टकरार की बात, क्योंकि होंगे डॉक्टर लव आपके साथ। आप सुन रहे थे शो गोंडा मैसे मसाला, आरजे बीना वाला विद योर आरजे बीना ऑन योर फेवरेट फ्रिक्वेंसी गैन 39.6 एफएम। ये है गोंडा शहर की धड़कन, जो धड़कन म्यूजिकल हो और आपके साथ हो।

0: क्या आप भी गोंडा से हैं और गोंडा में ही तलाश रहे एक बेहतरीन करियर ऑप्शन? या आप ढूंढ रहे एक ऐसा हुनर जो आपको जोर दे रोजगार से? या फिर बदलते दौर में आप भी छा जाना चाहते हैं अपने टैलेंट से टीवी, रेडियो और सोशल मीडिया पर? तो अब गोंडा में ही रेडियो ज्ञानस्थली लाया है डिजिटल मास कम्युनिकेशन कोर्स, जिसमें एक्सपर्ट्स द्वारा टीवी एंकरिंग, रेडियो जॉकी, वीडियो पॉडकास्ट, वॉइस एक्टिंग, ऑडियो एडिटिंग, वीडियो एडिटिंग, एडवर्टीजमेंट प्रोडक्शन और कॉन्टेंट राइटिंग की प्रोफेशनल ट्रेनिंग, और तो और कोर्स के आखिर में पूरे एक हफ्ते का रोजगार मेला यानी जॉब प्लेसमेंट की भी गारंटी। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 8840-3395-84। अब बारी है आपकी।
1: यार मेरी बहन की शादी फिक्स हो गई है और अब गोंडा में एक अच्छा सा वेडिंग हॉल ढूंढ रहा हूँ, कोई आइडिया है?
2: अरे हाँ, मैंने अभी पिछले हफ्ते ही मेरी गोल्ड लॉन्स में एक पार्टी अटेंड की थी और वो जगह शादियों के लिए एकदम परफेक्ट है।
1: सच में? क्या खास है वहाँ?
2: बहुत कुछ है। वहाँ एक रॉयल बैंकेट हॉल है जो अंदर से बहुत ही रॉयल लगता है, और ओपन एयर सेटअप के लिए लश ग्रीन लॉन्स भी बहुत खूबसूरत है।
1: अच्छा, डेकोरेशन और खाने पीने की चीजों का क्या सीन था?
2: सब कुछ टॉप क्लास था। फ्लोरल डेकोर और लाइट्स की सेटिंग बहुत ही ड्रीमी थी। खाने में फाइन डाइनिंग और बुफे ब्रेकफास्ट दोनों का ऑप्शन है, साथ ही पेशियो डाइनिंग का भी मजा ले सकते हो। और वैसे भी खुली हवा में खाना खाने का एक अलग एक्सपीरियंस था। और सबसे अच्छी बात जो मुझे लगी, वहाँ कंप्लीट वेडिंग प्लानिंग सर्विस भी है, मतलब तुम्हें कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वो सब संभाल लेंगे।
1: और फोटोग्राफी वगैरह?
2: वहाँ तो ड्रोन फोटोग्राफी करवाते हैं जिससे सिनेमेटिक शूट भी हो सकता है। और हाँ, मेकअप और ड्रेसिंग सर्विसेज भी वहीं अवेलेबल है।
1: ये तो एकदम परफेक्ट लग रहा है। लोकेशन कहाँ है?
2: अवध नर्सिंग कॉलेज के सामने उतराला रोड पर है, और इनका कॉन्टेक्ट नंबर है 9839613-949। बल्कि मुझे तो पूरा यकीन है कि तुम्हें जरूर पसंद आएगा।
1: वाह, तुमने तो मेरी आधी टेंशन ही खत्म कर दी।

जाना मौसम की तरह, मेरे यार बदलना जाना मौसम की तरह। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने शो फरमाइशी में, आपके अपनी आज सिंपल नॉट से सिंपल के साथ में, और आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञान स्थल 89.6 FM। सो दोस्तों, जिन लोगों ने अपनी फरमाइशी की गठरी को नहीं खोली है, फटाफट से अपनी फरमाइशी की गठरी को खोल लीजिए। उसमें से बहुत ही खूबसूरत सा, बहुत ही प्यारा सा, बहुत ही सुनहरा सा गाना टटोल लीजिए, उस गाने को लाके हमारी आज की फरमाइशी की प्लेलिस्ट में ऐड कर दीजिए और लगा दीजिए जितने चांद आप लगाना चाहते हैं। हजारों लाखों करोड़ों अनगिनत शो, आपका गीत, आपके जज्बात, आपके और ये आपकी आरजे सिंपल, नॉट सो सिंपल, तो हमेशा हमेशा के लिए आपकी है ही ना दोस्तों। तो स्वागत और इस्तकबाल करती है आपके अपनी आरजे सिंपल आशा मिश्रा जी लखनऊ से, मुस्तफ़ा सऊदी से, नीना जुगल, किशोर वर्मा जी एमपी से, सबलू सावंत मुंबई से, गीता श्रीवास्तव जी गोंडा से, जग्गू दादा मीन्स जुगल, किशोर वर्मा जी एमपी से, नागेश्वर धाकड़ एंड उदालक शर्मा मनकापुर से आपका भी स्वागत है, धर्मेंद्र मोहन आवास विकास गोंडा से, सुरेश कुमार जी चौक से, आसिफ खान मुंबई से, मुमताज अंसारी गोंडा से, निब्बर जी रानी बाजार सुनार गली गोंडा से, सबीहा गोंडा से, चांदनी गोंडा से, निशा पटेल नगर गोंडा से आप सभी का स्वागत है। सो एंजॉय करते हैं अगली फरमाइश। आरजे बीना ने तो कहा है कि उन्होंने दो दो फरमाइशें प्ले कर दी हैं, अब उन्होंने ये तो नहीं बताया कि उन्होंने किसकी फरमाइशें प्ले की हैं। सो नाउ बी ऑनेस्ट, और आप लोग फटाफट से बता देना कि आप लोगों में से किन किन की फरमाइशें प्ले हो चुकी हैं। इंजॉय करते हैं हमारी आज की अगली फरमाइश। अगली फरमाइश हमारे पास में है दोस्तों मुस्तफा जी की सऊदी से, और उनको सुनना है गाना, किताबें बहुत सी पढ़ी होगी तुमने, मगर कोई चेहरा क्या तुमने पढ़ा है। कुछ ऐसी लिरिक्स हैं इस गाने की। सो एंजॉय करते हैं विनोद राठौड़ और आशा जी की आवाज़ में ये हाउ रोमांटिक वाला नगमा, बाजीगर मूवी का, हमारे मुस्तफ़ा जी की फरमाइश पर। और ऐसे अपने पसंदीदा गीतों को एंजॉय करने के लिए और अपनी आरजे सिंपल नॉट सो सिंपल की खट्टी मीठी कड़वी बातों को एंजॉय करने के लिए सुनते रहिए रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। स्टे ट्यून्ड एवरीवन।

उमंगे लिखी है, जवानी लिखी है और तेरे दिल की सारी कहानी लिखी है। हमने एंजॉय किया है आशा जी की और विनोद राठौर की आवाज में ये हाउ रोमांटिक वाला नगमा। नाउ लेट्स गो टू अगले वाले डिमांड की तरफ। अगली फरमाइश हमारे पास में है नीना की और नीना को सुनना है गाना, शाम तेरी बंसी पुकारे राधा नाम, और शायद लोग करे मीरा को यूं ही बदनाम। तो एंजॉय करते हैं शायद ये वाला नगमा हमारी नीना की फरमाइश पर, जो कि है गोंडा से। स्टे ट्यून्ड और वेरी वेरी गुड इवनिंग एंड वेलकम इन योर शो। नवीन राजपूत जी एमपी से आपका स्वागत है।

की बंसी को बजने से काम, और राधा का भी श्याम हो तो मेरा का भी श्याम। हमने एंजॉय किया है ये बहुत ही खूबसूरत सा डिवोशनल सा सॉन्ग से पॉसिव नीना की फरमाइश पर। वेरी वेरी गुड इवनिंग एंड वेलकम इन योर शो इम्तियाज अहमद गोंडा से और मुकेश यादव गोंडा से। इनका कहना है, मुकेश यादव का गोंडा से कहना है कि उगता हुआ सूरज दुआ दे आपको, उगता हुआ सूरज दुआ दे आपको, खिलता हुआ फूल खुशबू दे आपको। हम तो कुछ भी देने के काबिल नहीं, हम तो कुछ भी देने के काबिल नहीं, देने वाला हजार खुशियां दे आपको। वेरी गुड इवनिंग आरजे सिंपल। सो वेरी गुड इवनिंग मुकेश यादव फ्रॉम गोंडा। स्टे ट्यून्ड और एंजॉय करते हैं अगली फरमाइश। अगली फरमाइश हमारे पास में है जग्गू दादा की, जुगल किशोर वर्मा जी को एमपी से सुनना है। किशोर कुमार लता मंगेशकर जी की आवाज में ओल्ड इज गोल्ड वाला नगमा दूसरा आदमी मूवी का नजरों से कह दो। स्टे ट्यून्ड।

दूसरे आदमी का। ये नगमा किशोर कुमार लता मंगेशकर जी की आवाज में हमने एंजॉय किया है हमारे जग्गू दादा की फरमाइश पर। नाउ लेट्स गो टू अगले वाले डिमांड की तरफ। और अगली फरमाइश हमारे पास में है सबलू सावंत की मुंबई से। उनको सुनना है गाना हायो रब्बा दिल जलता है। सो एंजॉय करते हैं ये बहुत ही खूबसूरत सा सैड सैड सैड वाला नगमा सबलू सावंत की फरमाइश पर। और इसी के साथ में सबलू सावंत जी का कहना है कि कितना नादान है ये दिल, कैसे समझाऊं इसे, जिसे तू खोना नहीं चाहता वो तेरा हो ही नहीं सकता। नादान दिल ने देखिए क्या क्या समझ लिया, हर शख्स को जहां में अपना समझ लिया। अक्सर नादान दिल की यही खता होती है, मोहब्बत किसी और से होती है और शादी किसी और से होती है। सो एंजॉय करते हैं ये नगमा। स्टे ट्यून्ड।

पापा, दिल चलता है, हमने इंजॉय किया है ये दर्द भरा नगमा। पता नहीं क्यों आज इससे भी ज़्यादा दर्द मुझे अंदर ही अंदर महसूस हो रहा है। मैं फील किए जा रही हूँ। आप लोग सोच नहीं सकते, आप लोग समझ नहीं सकते, सब कुछ ऐसा लग रहा है कि क्यों मुझे कभी कुछ अच्छा करने का सोचना ही नहीं चाहिए ना दोस्तों। मैं जब भी सोचती हूँ कि लाओ थोड़ी सी अच्छी मैच बना लूँ, थोड़ी सी अच्छी बन जाऊँ, लेकिन फिर सब कर्म मेरा ऐसे कांड में परिवर्तित हो जाता है, ऐसा परिवर्तन होता है कि मैं फिर कर्म करने का भी नहीं सोचती हूँ दोस्तों, क्योंकि हर एक कर्म कांड में बदल जाता है। सो एंजॉय करते हैं अगली फरमाइश नागेश्वर धाकड़ की। नागेश्वर धाकड़ को सुनना है राजस्थानी डीजे सॉन्ग। सो फाइनली मूड को रिफ्रेश करते हैं और थोड़ा सा मोर की तरह, मोरनी की तरह, किसकी तरह डोंट नो, लेकिन ताता थैया जरूर करते हैं। सो राजस्थानी डीजे सॉन्ग पर एंजॉय करते हैं हम, और ये है फरमाइश नागेश्वर धाकड़ की। स्टे ट्यून्ड एवरीवन।

फाइनली हमने ये बरसों रे मेघा मेघा वाला गाना लेकिन राजस्थानी स्टाइल में राजस्थानी टच में एंजॉय कर लिया है, वो भी डीजे मिक्स के साथ में हमारे नागेश्वर धाकर की फरमाइश पर। नाउ लेट्स गो टू अगले वाले फरमाइश की तरफ। और अगली फरमाइश हमारे पास में है उदालक शर्मा की मनकापुर से। उदालक शर्मा को मनकापुर से सुनना है गाना यार बदलना जाना मौसम की तरह। एंजॉय करते हैं ये वाला नगमा। स्टे ट्यून्ड।

0: प्यार बदलना जाना मौसम की तरह हमने एंजॉय किया है। ये बहुत ही खूबसूरत सा नगमा तलाश मूवी का उदालक शर्मा की फरमाइश पर। अगली फरमाइश हमारे पास में है दोस्तों, धर्मेंद्र मोहन की आवाज़ विकास गोंडा से, उनको सुनना है गाना हमको ऐसा वैसा ना समझें, हम बड़े काम की चीज हैं। सो एंजॉय करते हैं ये ओल्ड इज गोल्ड अमिताभ बच्चन का नगमा अदालत मूवी का, सिर्फ और सिर्फ हमारे हमारे हमारे धर्मेंद्र मोहन जी की फरमाइश पर। स्टे ट्यून एवरीवन।
1: का समझा थो
2: हमका ऐसा वैसा ना समझो, हम बड़े काम की चीज, हमका ऐसा वैसा

0: हम गए जंगल मा, हर एक दिन हम गए जंगल मा, वहाँ मिल गए हम काटा तू ससुरा, मिल गए हम काटा तू, किसी के हाथ में परछा भाला, किसी के हाथ में चाकू, हाँ किसी के हाथ में चाकू। हमने पूछा, अरे हमने पूछा कितने हो तुम, तब वो बोले दस,
1: हम कहा बस।

0: दिया गुलाबी फूल।
1: हम कहा ये का देत हो हमका फूल, का देत हो फूल।
0: हाथ जोड़ कर फिर वो बोली हो गई हमसे भूल भूल भूल। हम

ये सब ऐसा ना समझो, हम बड़े काम की चीज, हमने एंजॉय किया ये नगमा। बढ़ते हैं हमारी आज की अगली फरमाइश की तरफ, और अगली फरमाइश हमारे पास में है दोस्तों गीता श्रीवास्तव जी की गोंडा से। उनको सुनना है गाना, तू ही हकीकत ख्वाब तू और दरिया, तू ही प्यास तू, तू ही दिल की बेकरारी तू सुकून। इंजॉय करते हैं ये नगमा नागेश्वर धाकड़ की, नहीं गीता श्रीवास्तव जी की फरमाइश पर। और नागेश्वर धाकड़ का कहना है कि अपनी नीति और नियत साफ रखिए, कभी रणनीति की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये घोर कलयुग है, ये आपका कहना आजकल के जमाने के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। वो बात अलग है कि अगर आप अपने में खुश रहना जानते हैं और लोगों से कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रखते हैं तब तो आपका कहना सही है। लेकिन अगर आपको भी लोगों के बीच में रहना अच्छा लगता है और आपको भी लोगों से एक्सपेक्टेशंस हैं, सो फिर आजकल के टाइम पे रणनीति की जरूरत शायद सबको पड़ रही है। आई थिंक फेक इज विनर,

0: बहुत ही खूबसूरत संगमा हमारी गीता श्रीवास्तव जी की फरमाइश पर बढ़ते हमारी आज की अगली फरमाइश की तरफ। लेकिन उसके पहले दोस्तों मैं आप सभी को देना चाहूंगी एक जरूरी सी सूचना। जी हाँ, इस फरमाइशी गीत के उस तरफ हम लोग चलेंगे हमारी आकाशवाणी की न्यूज की दुनिया में, जहाँ हम रूबरू होते हैं देश दुनिया की खबरों से। सुदेश दुनिया की खबरों से रूबरू होने के बाद में हम लोग फिर से वापस आएंगे हमारे अपने आपके अपने फरमाइशी प्रोग्राम में, जहाँ गीत तो बजते हैं लेकिन सिर्फ और सिर्फ बस और बस आपके नाम से, वो भी आपके अपनी आरजे सिंपल नॉट सो सिंपल के साथ में। सो मिलते हैं 9 बजे के बाद, न्यूज के उस पार। सो पेट पूजा करके आइएगा और आप सुन रहे रेडियो ज्ञान स्थल 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन आपके अपनी आरजे सिंपल नॉट सो सिंपल के साथ में। स्टे ट्यून्ड एवरीवन,
1: और YouTube ऐप के बेल आइकन को

0: और अब समाचार विस्तार से। भारत ने स्पष्ट किया है कि जब तक पाकिस्तान सीमा पार आतंकवाद को समर्थन देना बंद नहीं करेगा तब तक सिंधु जल संधि स्थगित रहेगी। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने नई दिल्ली में ये जानकारी दी।
1: India's position on the Indus Waters Treaty.
2: सिंधु जल संधि पर भारत का रुख पहले की तरह स्पष्ट है। पाकिस्तान के लगातार सीमा पार आतंकवाद को मदद देने के जवाब में सिंधु जल संधि को रोक दिया गया था। पाकिस्तान को विश्वसनीय तरीके से सीमा पार आतंकवाद को मदद देना बंद करना पड़ेगा।
0: तीस्ता नदी के समग्र प्रबंधन और पुनरुद्धार परियोजना पर श्री जायसवाल ने कहा कि बांग्लादेश में भारत की विकास परियोजनाएं दोनों देशों के बीच तय सहमति के आधार पर चलती हैं।
1: India's development assistance.
2: बांग्लादेश में परियोजनाओं के लिए भारत की विकास सहायता आपसी सहमति से तय किए गए रोड मैप पर आधारित है। इसकी नियमित रूप से समीक्षा की जाती है। तीस्ता नदी प्रोजेक्ट पर हमारे विचार पहले ही बांग्लादेश को बता दिए गए हैं। तीस्ता मुद्दे पर अपने समग्र दृष्टिकोण में हम इससे जुड़े सभी घटनाक्रमों को ध्यान में रखेंगे।
0: वेनेजुएला से भारत लाए गए एक भारतीय नाविक के शव से अंग निकालने की खबरों पर उन्होंने कहा कि भारत ने इस मामले को वेनेजुएला सरकार के सामने उठाया है। भारत ने इस मामले की जल्द और निष्पक्ष जांच करने को कहा है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत इस वर्ष $1 ट्रिलियन के निर्यात लक्ष्य को हासिल करने की ओर बढ़ रहा है। नई दिल्ली में व्यापार बोर्ड की बैठक में श्री गोयल ने कहा कि वर्तमान वित्त वर्ष की पहली तिमाही में वार्षिक निर्यात लक्ष्य का लगभग 15% हासिल किया जा चुका है। उन्होंने कहा कि पहली तिमाही में वस्तु निर्यात में लगभग 15% और सेवा निर्यात में 10-11% की वृद्धि का अनुमान है। श्री गोयल ने कहा कि सरकार की निर्यात रणनीति में प्रत्येक राज्य, जिले और उद्योग क्षेत्र को समान महत्व दिया जा रहा है। श्री गोयल ने कहा कि 38 विकसित देशों के साथ मुक्त व्यापार समझौतों ने भारतीय निर्यात के लिए नए अवसर खोले हैं। उन्होंने कहा कि भारत के साथ व्यापार और आर्थिक साझेदारी को बढ़ाने में दुनिया भर में रुचि बढ़ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार से इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पर जाएंगे। विदेश मंत्रालय में पूर्वी मामलों के सचिव रुद्रेंद्र टंडन ने बताया कि प्रधानमंत्री 6 से 8 जुलाई तक इंडोनेशिया में रहेंगे। उन्होंने कहा कि ये यात्रा दोनों देशों के बीच व्यापार, सुरक्षा और अन्य क्षेत्रों में सहयोग को आगे बढ़ाने का अवसर होगी।
3: प्रधानमंत्री सांस्कृतिक और ऐतिहासिक शहर योग्यकार्ता का भी दौरा करेंगे। वे प्रम्बानन मंदिर कॉम्प्लेक्स जाएंगे जहां भारत इंडोनेशिया के साथ काम करने की योजना बना रहा है। यह यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित है, इसलिए भारत और इंडोनेशिया यहां संरक्षण कार्य पर सहयोग करेंगे।
0: प्रधानमंत्री दूसरे चरण में 8 से 10 जुलाई तक ऑस्ट्रेलिया जाएंगे। श्री मोदी मेलबर्न में भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। इस दौरान महत्वपूर्ण खनिज, साइबर सुरक्षा, आपूर्ति श्रृंखला, उभरती प्रौद्योगिकी और अन्य द्विपक्षीय मुद्दों पर बातचीत होगी। अंतिम चरण में प्रधानमंत्री मोदी 10 और 11 जुलाई को न्यूजीलैंड जाएंगे। श्री मोदी न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। पिछले 40 वर्षों में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की न्यूजीलैंड की यह पहली यात्रा होगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। रक्षा खरीद परिषद ने सशस्त्र बलों की क्षमता बढ़ाने के लिए 52,000 करोड़ रुपए के रक्षा खरीद प्रस्तावों को मंजूरी दी है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
4: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में मिले इन रक्षा खरीद प्रस्तावों से सेना, नौसेना और वायुसेना की लड़ाकू क्षमता बढ़ेगी। इसके अलावा आज के दौर में बदलती सुरक्षा चुनौतियों को बेहतर ढंग से सामना करने में भी मदद मिलेगी। भारतीय सेना के लिए एंटी ड्रोन इलेक्ट्रॉनिक युद्ध प्रणाली आकाश तरंग खरीद को मंजूरी दी गई है, जो भारतीय सेना को दुश्मन के ड्रोन से प्रभावी सुरक्षा देगी। इसके अलावा मध्यम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रणाली, बहुत कम दूरी की वायु रक्षा प्रणाली और जेट आधारित कामिकाजे ड्रोन प्रणाली की खरीद को मंजूरी दी गई है। वहीं भारतीय नौसेना के लिए मल्टी इन्फ्लुएंस ग्राउंड माइन, जहाज से संचालित मानव रहित हवाई प्रणाली और इलेक्ट्रिक प्रोपल्सन सिस्टम के लिए भूमि आधारित परीक्षण केंद्र शामिल है। इसके अलावा भारतीय वायुसेना के लिए अधिक ऊंचाई पर लंबे समय तक उड़ान भरने वाले फिक्स्ड विंग प्लेटफॉर्म और अन्य रक्षा उपकरणों की खरीद को भी मंजूरी दी गई है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: गृह मंत्री अमित शाह तथा कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज अल नीनो के कारण देश के कुछ हिस्सों में सामान्य से कम वर्षा और उसके प्रभाव की स्थिति की समीक्षा बैठक की। श्री शाह ने कहा कि सरकार अल नीनो के कारण देश के कुछ हिस्सों में सामान्य से कम वर्षा और संभावित सूखे की स्थिति पर लगातार नजर रख रही है। उन्होंने कृषि मंत्रालय और सभी संबंधित मंत्रालयों को सतर्क रहने और किसानों को उपयुक्त फसलों की बुवाई के बारे में सलाह देने के लिए राज्य सरकारों के साथ समन्वय करने का निर्देश दिया। पंचायती राज मंत्रालय ने आज नई दिल्ली में राज्यों के पंचायती राज मंत्रियों की एक राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित की। इसमें 16वें वित्त आयोग की सिफारिशों पर विचार विमर्श किया गया। पंचायती राज मंत्री राजीव रंजन सिंह ने कहा कि 16वें वित्त आयोग ने पंचायतों के लिए 80% मूल अनुदान और 20% प्रदर्शन आधारित अनुदान प्रस्तावित किए हैं।
5: 16वें वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक राज्यों में कैसे तैयारी करें, कैसे परफॉर्मेंस ग्रांट का पूरा लाभ उठा सकें, सभी बिंदुओं पर चर्चा करके सभी राज्यों को उसके लिए तैयार करने के लिए आज की यह कार्यशाला थी। 73वें संविधान संशोधन के तहत ये राज्यों का विषय है और राज्यों के सहयोग से ही हम पंचायतों को आत्मनिर्भर बना सकते हैं।
0: कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आंध्र प्रदेश में तोतापुरी आम उत्पादक किसानों की समस्याओं के आकलन के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अंतर्गत एक उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति के गठन का निर्देश दिया है। श्री चौहान ने कहा कि तोतापुरी आम उत्पादकों की आय और आजीविका की रक्षा करना सरकार की प्राथमिकता है। सरकार बच्चों के यौन शोषण को बढ़ावा देने वाले इंस्टाग्राम विज्ञापनों पर मेटा से स्पष्टीकरण मांगेगी। सूत्रों ने बताया कि इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने अधिकारियों को इस मामले में मेटा को तलब करने का निर्देश दिया है। इस बीच मंत्रालय के अधिकारियों ने व्हाट्सएप पर यूजर नेम फीचर शुरू किए जाने के नोटिस के बाद आज मेटा के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। मेटा को इस संबंध में विस्तृत स्पष्टीकरण देने के लिए 3 दिन का समय दिया गया है। सरकार ने बैट, BMS, इपोक आई आयन और लॉसिगी एप्स को गूगल प्ले स्टोर और एप्पल एप स्टोर से हटाने का निर्देश दिया है। ये कदम सुरक्षा से जुड़ी चिंताओं को देखते हुए उठाया गया है। इन एप्स का इस्तेमाल ई रिक्शा की बैटरी को ब्लूटूथ के जरिए दूर से बंद करने के लिए किया जा रहा था। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा है कि पत्रकारिता को हमेशा सत्य, ईमानदारी और उच्च पेशेवर मानकों के प्रति समर्पित रहना चाहिए। नई दिल्ली में ऑर्गेनाइजर साप्ताहिक पत्रिका के 80वें स्थापना दिवस समारोह में उन्होंने कहा कि आपातकाल के दौरान ऑर्गेनाइजर साप्ताहिक और उसकी सहयोगी पत्रिका द मदरलैंड संविधान और लोकतंत्र की आवाज थे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने अयोध्या में श्री रामलला मंदिर में चढ़ावा चोरी की घटना की निंदा की है। संघ के सर कार्यवाह दत्तात्रेय होसबाले ने कहा कि ये घटना अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है और इससे पूरे समाज तथा भगवान राम के भक्तों की आस्था को गहरी ठेस पहुंची है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। कश्मीर घाटी में अमरनाथ यात्रा के पहले दिन कुल 12,168 श्रद्धालुओं ने अमरनाथ जी गुफा में शिव की पूजा अर्चना की। कड़ी सुरक्षा और व्यवस्थाओं के बीच तीर्थयात्रियों ने गुफा के दर्शन किए। इससे पहले अधिकारियों ने तीर्थयात्रियों को सलाह जारी कर कहा था कि वे केवल अपनी पंजीकृत तिथियों पर ही यात्रा करें। इस बीच तीर्थयात्रियों का दूसरा जत्था बालतल और नुनवान बेस कैंप पहुंच चुका है और कल सुबह तड़के पवित्र गुफा की ओर रवाना होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल राजस्थान में जोधपुर हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन करेंगे। श्री मोदी बालूतरा में लगभग 1,06,000 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण भी करेंगे। प्रधानमंत्री बालूतरा के पचपदरा में देश की पहली हरित क्षेत्र आधारित एकीकृत रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल परिसर राष्ट्र को समर्पित करेंगे। श्री मोदी जयपुर मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण की आधारशिला भी रखेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री गुजरात के सांणंद में भारत सेमीकंडक्टर मिशन के अंतर्गत CG सेमी के सेमीकंडक्टर असेंबली और परीक्षण संयंत्र का उद्घाटन करेंगे। निर्वाचन आयोग ने आज 16 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के विभिन्न जिलों के मीडिया और संचार अधिकारियों का दूसरा सम्मेलन आयोजित किया। इसमें 260 से अधिक अधिकारी शामिल हुए। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा कि निर्वाचन आयोग का हर निर्णय संविधान, चुनाव कानूनों और समय समय पर जारी लिखित निर्देशों के आधार पर पूरी पारदर्शिता के साथ लिया जाता है। बंबई शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक आज 262 अंक बढ़कर 77,764 पर बंद हुआ। निफ्टी भी 95 अंक की बढ़त के साथ 24,271 दर्ज हुआ। दक्षिण पश्चिम मानसून आज गुजरात, राजस्थान और हरियाणा के कुछ और हिस्सों तथा मध्य प्रदेश के शेष भागों में आगे बढ़ गया। मौसम विभाग ने कल गुजरात, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, ओडिशा और पश्चिमी मध्य प्रदेश में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। पूर्वी राजस्थान, पूर्वी मध्य प्रदेश, तटीय कर्नाटक, तेलंगाना और विदर्भ में अगले दो दिन तेज बारिश हो सकती है। अगले दो से तीन दिनों के दौरान जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, मध्य महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, झारखंड, बिहार और सिक्किम में तेज हवाओं के साथ बारिश की संभावना है। इस बीच महाराष्ट्र के कई हिस्सों में आज भी बारिश हुई। स्ट्रीमिंग ऐप की हमारे मुंबई संवाददाता से और जानकारी।
6: आज महाराष्ट्र के कई हिस्सों में बारिश हुई, जिसमें तटीय इलाकों में सबसे ज्यादा बारिश दर्ज की गई। रायगढ़, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग और कोल्हापुर जिलों की नदियों में जलस्तर बढ़ गया है। आईएमडी के अनुसार कल से 7 जुलाई तक राज्य में बारिश और तेज होने की संभावना है। कई जगहों पर भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है, जबकि कोंकण और नजदीक के घाट इलाकों में कुछ जगहों पर बहुत ज्यादा बारिश होने की संभावना है। मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा और विदर्भ के कुछ हिस्सों में आंधी तूफान की भी संभावना है। आईएमडी ने मछुआरों को 7 जुलाई तक समुद्र में न जाने की सलाह दी है। इस बीच एहतियात के तौर पर एनडीआरएफ की 5वीं बटालियन ने महाराष्ट्र और गोवा के संवेदनशील जिलों में बचाव दल तैनात कर दिए हैं। संगीता गोडबोले, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
0: फ्रांस में रिकॉर्ड तोड़ गर्मी के दौरान पिछले सप्ताह मरने वालों की संख्या तेजी से बढ़ी है। 22 से 28 जून के बीच लगभग 9,000 लोगों की मौत हुई है। ये पिछले सप्ताह की तुलना में 29% अधिक है। पेरिस में सबसे अधिक मौतें हुई। अस्पतालों में निर्जलीकरण, दिल का दौरा, गुर्दे की जटिलताओं और अन्य लू से संबंधित बीमारियों से पीड़ित मरीजों की संख्या में भारी वृद्धि देखी गई। कांगो में इबोला वायरस के इलाज के लिए दो संभावित दवाओं का क्लिनिकल परीक्षण शुरू हो गया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक टेड्रोस अधनोम घेब्रेयेसस ने बताया कि इस परीक्षण में पहले मरीज को शामिल कर लिया गया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार मौजूदा प्रकोप में अब तक 438 लोगों की मौत हो चुकी है। फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड ऑफ 32 में रात 11:30 बजे ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला मिस्र से होगा। एक अन्य मैच में तड़के 3:30 बजे अर्जेंटीना का मुकाबला केप वर्डे से होगा। राउंड ऑफ 32 का अंतिम मैच कल सुबह 7 बजे घाना और कोलंबिया के बीच खेला जाएगा। इससे पहले स्पेन, पुर्तगाल और स्विट्जरलैंड ने अंतिम 16 में प्रवेश किया। स्पेन ने ऑस्ट्रिया को 3-0 से हराया। पुर्तगाल ने क्रोएशिया को 2-1 से, जबकि स्विट्जरलैंड ने अल्जीरिया को 2-0 से हराकर अगले दौर में जगह बनाई। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सरकार ने कहा, सिंधु जल संधि अभी भी स्थगित। पाकिस्तान को सीमा पार आतंकवाद को समर्थन देना बंद करना होगा। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, भारत इस वर्ष $1 ट्रिलियन के निर्यात लक्ष्य को हासिल करने की राह पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को 3 देशों इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के 6 दिन के दौरे पर रवाना होंगे। रक्षा खरीद परिषद ने युद्ध की तैयारी मजबूत करने के लिए 52,000 करोड़ रुपए के रक्षा खरीद प्रस्तावों को मंजूरी दी। सरकार बच्चों के यौन शोषण को बढ़ावा देने वाले इंस्टाग्राम विज्ञापनों पर मेटा से स्पष्टीकरण मांगेगी। फ्रांस में पिछले सप्ताह रिकॉर्ड तोड़ गर्मी के कारण लगभग 9,000 लोगों की मौत। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में आज रात राउंड ऑफ 32 के मैच में ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला मिस्र से होगा। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

जाने मेरी यार। एक बार फिर से स्वागत और इस्तकबाल करती है आपके अपने आज सिंपल नॉट सो सिंपल आपके अपने शो फरमाइशी में, और आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। सो दोस्तों, एंजॉय करते हैं हमारी आज की अगली फरमाइश, लेकिन री वेलकम और एक बार फिर से स्वागत और इस्तकबाल करती है आपके अपने आज सिंपल। सो अगली फरमाइश हमारे पास में है नवीन राजपूत जी की MP से, उनको सुनना है गाना पतली कमर लंबे बाल। सो एंजॉय करते हैं लोहा मूवी का ये गाना अनुराधा जी की कविता जी की आवाज में, 90s का सुपर डुपर हिट नगमा नवीन राजपूत की फरमाइश पर। स्टे ट्यून्ड।

हमारे नवीन राजपूत जी की फरमाइश पर जो की है MPC और इसी के साथ में उन्होंने कुछ अर्ज भी किया है। सो नवीन राजपूत जी का MP से कहना है कि एक पहचान हजारों दोस्त बना देती है, एक पहचान हजारों दोस्त बना देती है, एक मुस्कान हजारों गम भुला देती है। जिंदगी के सफर में संभाल कर चलना, जिंदगी के सफर में संभल कर चलना, एक गलती हजारों सपने जला कर राख कर देती है। सो एंजॉय करते हैं अगली फरमाइश। अगली फरमाइश है आशु मिश्रा जी की लखनऊ से और उनको सुनना है गाना जिसे देख के दिल मेरा धड़के। सो एंजॉय करते हैं सुपर डुपर हिट नंबर कुमार सानू की आवाज में।

स्टार्ट करते हैं हमारी आज की अगली फरमाइश। तो फरमाइश थी आशु मिश्रा जी की लखनऊ से, और अगली फरमाइश हमारे पास में है दोस्तों चिंटू जी की, और चिंटू को सुनना है गाना मन की लगन। तो एंजॉय करते हैं ये नगमा चिंटू की फरमाइश पर स्टेडियो।

सुनना है गाना, जब किसी लड़की को किसी लड़के से मोहब्बत हो जाती है। सो एंजॉय करते हैं महामानव शिव जी की फरमाइश पर ये वाला नगमा, और इसी के साथ में आपके आरजे सिंपल नॉट सो सिंपल लेना चाहेंगे आपसे अलविदा। सो अपना ख्याल रखना दोस्तों, अपनों का ख्याल रखना, मुस्कुराते रहना, हमेशा गुनगुनाते रहना और सुनते रहना रेडियो ज्ञान स्थली 89.6 FM गोंडा शहर के आपके अपनी आरजे सिंपल नॉट सो सिंपल के साथ। सो गाइस हैव अ वेरी वेरी वेरी ग्रेट नाइट। Take care of yourself and family as well. Someone special का ध्यान रखना बिल्कुल मत भूलना। आजू बाजू वालों पर, वालियों पर ध्यान देना कतई नहीं भूलने का है, और अपनी आरजे सिंपल नॉट सो सिंपल को मिस करने का कोई सवाल नहीं बनता दोस्तों, क्योंकि मैं कल फिर मिलूंगी। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच।

0: 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।
1: हमारी जिंदगी की ऐसी दौड़ है जहां हम मंजिल तो ढूंढ लेते हैं पर रास्ते में अपने आप को कहीं छोड़ आते हैं। वक्फा सिर्फ एक ब्रेक नहीं बल्कि एक आईना है जहां हम अपनी रूह से मिलते हैं। जब हम रुकते हैं तभी हमें अपनी खामोशी की गूंज सुनाई देती है। आदाब, आप सभी का इस्तकबाल करते हैं आपके अपने फ्राइडे स्पेशल बहारे गजल में। आज जिस वक्फे की हम बात कर रहे हैं उसको लेकर एक बड़ा ही खूबसूरत सा शेर है कि रुक कर देखो अपने कदमों के निशान को, कौन चला है साथ और कौन छोड़ गया है। आज की रात इसी वक्फे के नाम, जहां हम अपनी जिंदगी के ठहराव को महसूस करेंगे। आइए पहली गजल के साथ इस सफर खामोशी का आगाज करते हैं।

रस्में अजीब क्या कहना, मैं उनसे दूर वो मेरे करीब क्या कहना। ये तीरगिये मुसलसल में एक वक्फ़े नूर, ये जिंदगी का तिलिस्मय अजीब क्या कहना। तुम जो हो बरक़े नशेमन तो मैं नशेमन बर्क, उलझ पड़े हैं हमारे नसीब क्या कहना। हुजूम रंग फरावा सही मगर फिर भी बहार नौहे सद अंदलीब क्या कहना। हजार काफिले जिंदगी की तीरा शबी, ये रोशनी से उफक के करीब क्या कहना। लरस गई तेरी लौ मेरे डगमगाने से, चरागे गोशे कुए हबीब क्या कहना क्या कहना। ये शेर अपने आप में वक्फे की बहुत बड़ी बात कहता है। रिश्तों की दुनिया में वक्फा एक ऐसी चीज है जिसे लोग अक्सर दूरी समझकर घबरा जाते हैं, लेकिन हकीकत यह है कि रिश्तों में थोड़ा सा वक्फा उन्हें ताजगी देता है, जैसे एक तस्वीर में खाली जगह उस तस्वीर को उभार देती है। वैसे ही रिश्तों में दी गई थोड़ी सी आजादी उन्हें मजबूत करती है। अगर हम हर पल चिपके रहेंगे तो जज्बात की गर्मी खत्म हो जाएगी। इसकी नजाकत को आप इस शेर से समझ सकते हैं कि नजदीकियों में भी थोड़ा सा वक्फा जरूरी है, मोहब्बत की सांस लेने के लिए जगह जरूरी है। रिश्तों को घुटने से बचाने के लिए कभी कभी एक छोटा सा वक्फा लेने में कोई हर्ज नहीं। और एक ऐसी ही आपको गजल हम सुना रहे हैं जिसका मफहूम है, जिसका कंक्लूजन है कि ये खूबसूरत सी उदासी को समेटे हुए है। ये याद दिलाता है कि जिंदगी में ख्वाहिशें करना जितना आसान है, इस जालिम दुनिया में अपने ही दिल को समझा कर खामोश रखना उतना ही जरूरी और उतना ही मुश्किल।

सब लहू जम गया उबाल के बीच, कौन याद आ गया विसाल के बीच। एक वक्फा है जिंदगी भर का, जख्म के और इंदिमाल के बीच। आन बैठा है एक अंदेशा, गुफ्तगु और अर्ज़े हाल के बीच। ताल देती है जब कभी वहशत, रक्स करता हूँ मैं ख्याल के बीच। कभी मातम मियाँ रक्स किया, कभी सजदा किया धमाल के बीच। एक पर्दा है बेसबाती का, आईने और तेरे जमाल के बीच। एक बरस हो गया उसे देखे, एक सदी आ गई साल के बीच। मेरे दामन को धोने वाला है, एक आंसू है जो रुमाल के बीच। एक आंसू है जो रुमाल के बीच। जिंदगी में जब हम कभी किसी बड़ी मुश्किल में फंसते हैं तो हमारा पहला जो रिएक्शन होता है वो होता है तेज भागना। मगर तभी वक्फा लेने की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। ये वक्फा यानी ये थोड़ा सा टाइम लेना हार नहीं बल्कि ये एक ऐसी रुकावट है जो आपके लिए कहीं ना कहीं आपको वापस से जगाने वाली है। जब आप रुकते हैं तो आपकी सोच साफ होती है और आपके सामने नए रास्ते खुलते हैं। सब्र का मतलब चुप रहना नहीं बल्कि सही वक्त का इंतजार भी कई बार होता है। तभी तो मीर तकी मीर साहब ने भी क्या खूब कहा था कि हस्ती अपनी हबाब किसी है, ये नुमाइश शराब किसी है। जब दुनिया एक धोखा लगे तो वहां रुककर अपनी असलियत को पहचानना ही वक्फा है। ये ठहराव आपको टूटने नहीं देता बल्कि संभलने का हौसला।

अब आप भी अपना सपना पूरा कीजिए डिजिटल मास कम्युनिकेशन के साथ जुड़कर। एडमिशंस ओपन। जानकारी के लिए कॉल करें 8840339584 8840339584। अब सपने होंगे साकार।

0: मुझे आर्किटेक्ट बनना है।
1: आई वॉन्ट टू बिकम अ साइंटिस्ट।
2: आई वॉन्ट टू बी एन IAS ऑफिसर।
3: रास्ते तो हर मोड़ पर बदल जाते हैं मगर दिशा नहीं। रवि चिल्ड्रंस एकेडमी, जहां आपके बच्चों की यूनिकनेस को मिलते हैं पंख। गोंडा का सबसे पुराना कॉन्वेंट स्कूल, अचीवर ऑफ द बेस्ट स्कूल सर्टिफिकेट एट नेशनल लेवल। एडमिशंस ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। स्पेसिफिकेशंस हैं 10+2 इन ऑल स्ट्रीम्स, साइंस, कॉमर्स एंड ह्यूमैनिटीज। एक्सलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, स्मार्ट क्लास एंड डिजिटल क्लास बोर्ड, कन्वीनियंस फैसिलिटीज, स्काउट गाइड, इवेंट्स, प्रोजेक्ट एंड एजुकेशनल टूर।
4: और सेशन 2026-27 में पहले 100 एडमिशंस पर एडमिशन फी बिल्कुल मुफ्त। एड्रेस है रवि चिल्ड्रंस एकेडमी, नियर दुखरनाथ मंदिर, पटेल नगर, गोंडा। संपर्क करें 9450944999।
5: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े बनता है।
6: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
5: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
6: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
5: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
6: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, तुरालो रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करें 888-100-9400।
7: जी हाँ बहनों और भाइयों, आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।
8: आपने कभी सोचा है कि एक गजल में शेर के बाद जो वक्फा होता है, वही तो उस गजल को मुकम्मल करता है ना? अगर सिर्फ अल्फाज ही हों और खामोशी ना हो, तो वो शेर नहीं, बस एक कहानी बन जाएगी। जिंदगी भी वैसी ही है, इसका असली रंग वक्फे में छुपा है। हम इतनी जल्दी में हैं कि हमने मौसम बदलना देखना ही छोड़ दिया। हमने किसी के चेहरे पर मुस्कुराहट की वजह नहीं देखी। जब हम रुकते हैं, तभी तो जिंदगी का असल खूबसूरती नजर आती है। इसी बात को लेकर इकबाल साहब ने कहा था कि मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मिल जाए तुझको दरिया तो समंदर तलाश कर। मगर सफर के बीच में जो रुकना है, वही आपको अपनी मंजिल के काबिल बनाता है। जैसे आप जो अगली गजल सुनने वाले हैं, दरअसल इस गजल में लगातार सफर और मुश्किलों के बाद इंसान थक जाता है, तब उसे किसी बड़ी कामयाबी या ख्याली चंद सितारों की चाह नहीं रहती, बल्कि वो सिर्फ एक पल के ठहराव और सुकून की तलाश करता है, जहां वो अपनी थकान मिटा सके।

ये कुछ बदलाव सा अच्छा लगा है, हम एक दूसरा अच्छा लगा है, समझना है उसे नजदीक जाकर, जिसे मुझसा बुरा अच्छा लगा है। ये क्या हर वक्त जीने की दुआएं, यहां ऐसा भी क्या अच्छा लगा है, सफर तो जिंदगी भर का है लेकिन ये वक्फा जरा अच्छा लगा है। मेरी नजरें भी हैं अब आसमां पर, कोई महवाए दुआ अच्छा लगा है, हुए बर्बाद जिसके अश्क में हम, वो अब जाकर जरा अच्छा लगा है, वो सूरज जो मेरा दुश्मन था दिन भर, मुझे ढलता हुआ अच्छा लगा है, कोई पूछे तो क्या बतलाएंगे हम कि इस मंजर में क्या अच्छा लगा है। दोस्तों, वक्फा जिंदगी का दुश्मन नहीं है, एक ऐसा साथी है जो हमें जीना सिखाता है। इस रात के आखिरी हिस्से में मैं बस इतना ही कहूंगा कि अपने लिए थोड़ा वक्त निकालना सीखिए। जिंदगी कोई रेस नहीं जिसे आपको जीतना है, ये एक सफर है जिसे आपको महसूस करना है। तभी तो गालिब साहब ने कहा था कि कैदे हयात व बंदे गम असल में दोनों एक हैं, मौत से पहले आदमी गम से नजात पाए क्यों। मुझे उम्मीद है कि आज का ये स्पेशल शो आपको जरूर पसंद आया होगा, और अगले हफ्ते इसी फ्राइडे स्पेशल में किन्हीं नई बात के साथ हम वापस से हाजिर होंगे, लेकिन तब तक के बीच का वक्फा जो है आपकी जिंदगी को बदलने वाला साबित हो।

0: मुझे मिल गया है तुम्हारी घबराहट का समाधान।
1: मतलब
0: मानसिक समस्याएं होंगी दूर, जैसे नींद ना आना, घबराहट, काम में मन ना लगना, आत्महत्या के विचार आना, अत्यधिक गुस्सा, अत्यधिक साफ सफाई, भूत प्रेत, देवी देवता आदि की छाया का भ्रम होना, याददाश्त की कमी, घरेलू कलह, पढ़ाई में मन ना लगना, बिजनेस में लॉस होना, करियर की समस्या, किसी भी प्रकार का नशा एवं मिर्गी, बेहोशी के दौरे आना।
2: इन समस्याओं के लिए निशुल्क टेली मानस हेल्पलाइन नंबर है 14416 या 1800891 4416 पर कॉल करें। जरूर याद रखें 14416। जिला स्वास्थ्य समिति गोंडा द्वारा जनहित में जारी। मानसिक समस्याएं होंगी दूर, खुलकर जिंदगी जिए भरपूर।
3: जी हाँ बहनों और भाइयों, आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

नमस्कार दोस्तों, रात गहरी हो चुकी है, चारों तरफ सन्नाटा है और इस सन्नाटे में आप सुन रहे हैं लेट नाइट हॉरर शो 89.6 एफएम पर और मैं हूँ आपकी लेट नाइट आरजे। आज की रात हम आपको सुनाने जा रहे हैं मेक्सिको की 3 बेहद डरावनी कहानियाँ, ऐसी कहानियाँ जिन्हें वहाँ के लोग सिर्फ कहानी नहीं मानते बल्कि सच्ची घटना मानते हैं। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले जरा उस देश के बारे में जान लेते हैं जहाँ से ये रहस्य आया है। मेक्सिको उत्तर भारत का एक खूबसूरत देश, रंग बिरंगे त्योहारों, पुराने चर्चों और रहस्यमय लोक कथाओं के लिए प्रसिद्ध है। वहाँ की गलियाँ रात में भी इतिहास की कहानियाँ सुनाती हैं और इन्हीं गलियों में छिपी है एक ऐसी कहानी जो करीब 100 साल से लोगों को डरा रही है। ये कहानी शुरू होती है साल 1930 में मेक्सिको के एक शहर चिहुआहुआ से। उस शहर में एक लड़की रहती थी, बहुत सुंदर, लंबे काले बाल और आंखें इतनी गहरी कि देखने वाला पल भर को ठहर जाए। उसकी माँ की एक ब्राइडल की ड्रेस की दुकान थी जहाँ शहर की लड़कियाँ शादी के लिए गाउन खरीदने आती थी। लेकिन उस लड़की के लिए उसकी माँ ने खुद अपने हाथों से एक खास दुल्हन का गाउन बनाया, सफेद रेशमी कपड़ा, उस पर महीन कढ़ाई और लंबा सा घूंघट, क्योंकि कुछ ही दिनों में उसकी शादी होने वाली थी। कहते हैं वो अपने मंगेतर से बहुत प्यार करती थी। दोनों शाम को शहर की गलियों में घूमते, भविष्य के प्यारे प्यारे सपने देखते और लड़की अक्सर अपनी माँ की दुकान में खड़ी होकर आईने में खुद को दुल्हन के रूप में देखती। लेकिन कभी कभी किस्मत सबसे खूबसूरत सपनों को एक ही पल में तोड़ देती है। शादी का दिन आ गया, घर फूलों से सजा हुआ था, मेहमान आने लगे और कमरे में दुल्हन तैयार हो रही थी। वो आईने के सामने खड़ी थी, अपने हाथों में चूड़ियां पहन रही थी और हल्की मुस्कान के साथ अपने प्यारे से भविष्य की कल्पना कर रही थी। तभी अचानक उसे अपने पैरों में एक तेज दर्द महसूस हुआ। नीचे देखा तो एक काला बिच्छू उसके पैर से दूर भाग रहा था। कुछ ही मिनटों में उसका चेहरा पीला पड़ने लगा, सांस तेज हो गई, घर में अफरा तफरी मच गई। डॉक्टर को बुलाया गया लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। शादी के दिन ही वो लड़की मर गई। घर में खुशियों की जगह मातम छा गया। उसकी माँ, जिसकी वो इकलौती बेटी थी, इस सदमे को नहीं सहन कर पाई। कई दिनों तक दुकान बंद रही, लेकिन कुछ हफ्तों बाद जब दुकान दोबारा खुली तो लोगों ने कुछ ऐसा देखा जिससे पूरा शहर सन्न रह गया। दुकान की खिड़की में एक दुल्हन की गुड़िया रखी हुई थी। पहली नजर में वो एक साधारण मैनीक्विन थी, लेकिन जो भी उसे ध्यान से देखता उसके रोंगटे खड़े हो जाते, क्योंकि वो गुड़िया बहुत ज्यादा असली लगती थी। उसकी आंखें ऐसी लगती थी जैसे उसमें जिंदगी हो। उसके हाथ इतने वास्तविक थे कि नसें तक दिखाई देती थी। लोगों ने आपस में फुसफुसाना शुरू किया। कुछ ने कहा ये दुनिया की सबसे असली मैनीक्विन है, लेकिन कुछ लोगों ने धीरे धीरे एक और बात कही, ये गुड़िया नहीं है, ये उसी दुल्हन का शरीर है जिसकी शादी वाले दिन मौत हो गई थी। कहते हैं उसकी माँ अपनी बेटी से इतना प्यार करती थी कि वह उसे दफना नहीं पाई और किसी तरह उसके शरीर को संरक्षित कर लिया और उसे हमेशा हमेशा के लिए दुल्हन बनाकर दुकान की खिड़की पर बैठा दिया। पहले
लोग इसे अफवाह समझते रहे, लेकिन फिर कुछ अजीब अजीब घटनाएं होने लगी। दुकान में काम करने वाली एक लड़की ने कहा, एक रात जब वो दुकान बंद कर रही थी तो उसे ऐसा लगा कि गुड़िया की गर्दन थोड़ी सी हिली, वो डर के मारे भाग गई। कुछ लोगों ने कहा, रात में जब वे दुकान के सामने से गुजर रहे थे तो उन्हें लगा कि दुल्हन की आंखें उनका पीछा कर रही है। और कुछ लोगों ने ये भी कहा, सुबह जब वे लौटे तो गुड़िया की पोजीशन बदल चुकी थी, जैसे रात में कोई उसे हिलाता हो या वो खुद चलती हो। आज भी 100 साल से ऊपर हो गए, मेक्सिको के उस शहर में लोग उस दुल्हन को देखने आते हैं, और जो भी उसे ध्यान से देखता है

अपनी उस शादी का जो कभी हो ही नहीं पाई। तो दोस्तों, ये थी मेक्सिको की पहली डरावनी कहानी, जिंदा दुल्हन की कहानी। लेकिन डर अभी खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि म्यूजिकल ब्रेक के बाद हम आपको ले चलेंगे मेक्सिको के एक ऐसे द्वीप पर जहाँ पेड़ों पर सैकड़ों गुड़िया लटक रही है, और कहा जाता है रात में उनकी आंखें खुल जाती है। कहीं जाइएगा मत, आप सुन रहे हैं 89.6 FM पर लेट नाइट हॉरर शो।

0: ज्ञान स्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन गोंडा शहर की धड़कन।
1: वेलकम बैक प्यारे श्रोतागण, आप सुन रहे हैं 89.6 FM पर अपना फेवरेट शो लेट नाइट हॉरर स्टोरीज। अभी अभी आपने सुनी मेक्सिको की पहली डरावनी कहानी जिंदा दुल्हन की गुड़िया। लेकिन मेक्सिको की धरती पर रहस्यमयी घटनाओं की कहानियाँ यहीं खत्म नहीं होती। अब हम आपको ले चलते हैं मेक्सिको के एक ऐसे स्थान पे जहाँ पेड़ों पे फूल कम उगते हैं, बल्कि वहाँ ज्यादा लटकी रहती है सैकड़ों सैकड़ों टूटी फूटी गुड़िया। और रात के सन्नाटे में लोग कहते हैं कि उनकी आंखें अपने आप खुल जाती है। ये कहानी है गुड़िया के श्रापित द्वीप की। मेक्सिको सिटी के पास एक अजीब सा द्वीप है, एक पुराना इलाका। वहाँ नदियों और नहरों का एक जाल है, घने पेड़, पानी में तैरती छोटी नावें और उसी जगह के बीचों बीच एक छोटा सा द्वीप है। आज की दुनिया उसे जानती है आइलैंड ऑफ द डॉल्स के नाम से। लेकिन करीब 1950 के दशक में ये जगह बिल्कुल सुनसान हुआ करती थी। वहाँ एक आदमी अकेला रहता था, उसका नाम था डॉन जूलियन। वो शहर के भीड़ भाड़ से दूर शांति से जीवन बिताना चाहता था, इसलिए उसने उस छोटे से द्वीप में आकर अपना घर बना लिया। दिन में वो खेती करता, पेड़ों की देखभाल करता और शाम को अपनी छोटी सी नाव में बैठकर नहरों में घूमता। उसकी जिंदगी शांत थी। लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने उसकी पूरी जिंदगी बदल दी। एक शाम जब सूरज ढल रहा था,

चारों तरफ हल्की धुंध छा रही थी। डॉन जूलियन को पानी में कुछ तैरता हुआ दिखाई दिया। वह अपनी नाव लेकर करीब गया और जैसे ही उसने उस चीज को पकड़ा, उसके हाथ कांप उठे, क्योंकि वो एक छोटी सी लड़की की लाश थी। कहा जाता है वो बच्ची नहर में डूबकर मर गई थी। डॉन जूलियन ने उसका शरीर किनारे लाकर लोगों को खबर दी, लेकिन दोस्तों उस दिन के बाद से उसके साथ अजीब अजीब चीजें होने लगी। डॉन जूलियन कहता था रात में उसे एक छोटी सी लड़की दिखाई देती है, भीगे बाल, सफेद चेहरा और आंखों में अजीब सी उदासी। वह लड़की उससे कुछ नहीं कहती थी, बस दूर खड़ी होकर उसे देखती रहती। पहले तो उसने सोचा ये उसका भ्रम है, लेकिन फिर एक रात उसे बच्ची के रोने की आवाज सुनाई दी और तभी उसे पानी में एक पुरानी गुड़िया तैरती हुई दिखाई दी। उसने वो गुड़िया उठाई और सोचा कि शायद यह उस बच्ची की थी। उसने उस गुड़िया को द्वीप के एक पेड़ पर टांग दिया, ये सोचकर शायद उसकी आत्मा को शांति मिल जाए। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। उसके बाद डॉन जूलियन को हर रात ऐसा महसूस होने लगा कि जैसे कोई उसे देख रहा है। कभी कभी उसे लगता कि पेड़ों के पीछे से कोई फुसफुसा रहा है। वो डरने लगा और धीरे धीरे उसने एक अजीब सा काम शुरू कर दिया। जब भी उसे कहीं कोई पुरानी गुड़िया मिलती, वो उसे उठा लाता और पेड़ पर टांग देता। कुछ सालों में उस द्वीप पे सैकड़ों गुड़िया लटकने लगी, कुछ बिना सिर के, कुछ की आंखें टूटी हुई, कुछ की बाहें गायब और कुछ इतनी पुरानी कि उनका चेहरा डरावना हो गया था। दोस्तों, लोगों ने जब ये सुना तो उस द्वीप को देखने आने लगे, लेकिन जो लोग वहां गए उन्होंने कुछ अजीब बात बताई। कुछ लोगों ने कहा जब हवा चलती है तो गुड़िया के हाथ अपने आप हिलने लगते हैं। कुछ लोगों ने कहा कि गुड़िया की आंख उनका पीछा कर रही है और कुछ लोगों ने तो ये भी कहा रात में उन्हें गुड़िया के बीच से फुसफुसाने की आवाजें सुनाई देती है, जैसे कोई बच्ची धीरे धीरे बात कर रही हो। लेकिन दोस्तों, सबसे अजीब घटना कई साल बाद हुई। साल 2001 में डॉन जूलियन की लाश उसी नहर में मिली जहां उसने पहली बार उस बच्ची को पाया था। डॉन जूलियन करीब 50 साल से उसी द्वीप पर अकेला रह रहा था। लोगों का कहना था वो अक्सर कहता था कि उसे डूबी हुई बच्ची की आत्मा दिखाई देती है। कभी कभी कहता था रात में नहर के किनारे एक छोटी लड़की खड़ी रहती है और उससे कहती है मेरी गुड़िया मुझे दे दो। सालों तक लोग इसे भ्रम समझते रहे, लेकिन आया साल 2011। एक दिन लोगों ने देखा कि डॉन जूलियन कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। जब लोग उसे खोजते हुए नहर तक पहुँचे तो उन्हें एक भयानक दृश्य दिखाई दिया। डॉन जूलियन की लाश उसी नहर में तैर रही थी जहाँ कई साल पहले उसे उस बच्ची की लाश मिली थी। ये बात लोगों को और भी ज्यादा डराने लगी, क्योंकि डॉन जूलियन अक्सर कहता था कि वही जगह उस आत्मा का असली ठिकाना है। कुछ लोगों ने कहा शायद वो गलती से पानी में गिर गया, लेकिन बहुत से लोग आज भी मानते हैं कि उस बच्ची की आत्मा ने आखिरकार उसे अपने पास बुला लिया और शायद इसी कारण आज भी उसी द्वीप पे लटकी गुड़िया उस रहस्य की गवाह है। और आज भी जो लोग उस द्वीप पर जाते हैं वे कहते हैं जब शाम ढलती है और हवा पेड़ों को हिलाती है तो ऐसा लगता है कि सैकड़ों गुड़िया धीरे धीरे आपकी तरफ देख रही है, और अगर आप
बहुत देर तक वहाँ रुक जाए तो आपको भी सुनाई देगा एक छोटी सी बच्ची की आवाज, मेरी गुड़िया मुझे वापस कर दो। तो दोस्तों, ये थी मेक्सिको की श्रापित द्वीप की कहानी। लेकिन आज की रात की सबसे खौफनाक कहानी अभी बाकी है। म्यूजिकल ब्रेक के बाद हम आपको सुनाने जा रहे हैं एक ऐसे पेड़ की कहानी जो एक मरे हुए वैम्पायर के दिल में घुसे खूंटे से उगा था। तो कहीं जाइएगा मत, हम जल्द ही मिलते हैं एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक के बाद।

0: ज्ञान स्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन गोंडा शहर की धड़कन।
1: वेलकम बैक 89.6 FM पर आप सुन रहे हैं लेट नाइट हॉरर शो। आज की रात हम आपको सुना रहे हैं मेक्सिको की तीन बेहद डरावनी कहानियाँ जिन्हें लोग आज तक सच मानते हैं। चलिए अब हम चलते हैं तीसरी कहानी की ओर, जो इस रात की सबसे रहस्यमयी कहानी है। ये कहानी हमें ले जा रहा है मेक्सिको के एक पुराने शहर ग्वालराजा की ओर। करीब 1800 के दशक में एक छोटा सा शहर था। पत्थर की गलियां, पुराने चर्च और रात होते ही फैल जाने वाला गहरा सन्नाटा। लेकिन उसी समय शहर में एक अजीब सा डर फैलने लगा। लोग कहने लगे कि रात में कोई रहस्यमय प्राणी लोगों का पीछा करता है। कुछ दिनों बाद शहर के बाहर खेतों में एक आदमी की लाश मिली। उसके शरीर पर कोई घाव नहीं था, लेकिन उसके शरीर से लगभग सारा खून गायब था। लोग डर गए। कुछ दिनों बाद फिर एक और लाश मिली और फिर एक और। हर बार एक ही अजीब बात सामने आती, शरीर में खून नहीं होता। धीरे धीरे शहर में एक शब्द फैल गया, वैम्पायर। लोग रात को घरों से निकलना बंद करने लगे, दरवाजों पे क्रॉस लगाने लगे और चर्च में प्रार्थना करने लगे। कहते हैं कई लोगों ने दावा किया कि उन्होंने रात में एक अजीब आदमी को देखा। बहुत पीला चेहरा, काली आंखें और बेहद तेज नजर। वो हमेशा रात में दिखाई देता और सुबह होने से पहले गायब हो जाता। आखिरकार एक रात कुछ लोगों ने उस आदमी को पकड़ लिया। लोगों को यकीन था कि वही वैम्पायर है। डरे हुए लोगों ने एक पुरानी मान्यता का सहारा लिया। कहा जाता था कि अगर वैम्पायर के दिल में लकड़ी का खूंटा घोंप दिया जाए तो वो हमेशा के लिए मर जाता है। लोगों ने वही किया। उस आदमी को जमीन में लिटाया और उसके दिल में एक बड़ा लकड़ी का खूंटा घोंप दिया। फिर उसे उसी जगह मिट्टी में दबा दिया। शहर में धीरे धीरे मौतों का सिलसिला रुक गया। लोगों ने सोचा कि अब सब खत्म हो गया, लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। कुछ साल बाद लोगों ने देखा कि जहाँ वह खूंटा गड़ा था, वहाँ जमीन से एक छोटा सा पौधा उगाया। धीरे धीरे वो पौधा एक बड़े से पेड़ में बदल गया और लोग कहने लगे, ये साधारण पेड़ नहीं है, ये उसी लकड़ी के खूंटे से उगा है जो वैम्पायर के दिल में घोपा गया था। शहर में फिर डर फैल गया। कुछ लोगों ने कहा इस पेड़ को काट देना चाहिए, लेकिन बुजुर्गों ने मना कर दिया। उन्होंने कहा अगर ये पेड़ काट दिया गया तो वो खूंटा टूट जाएगा और तब शायद वो वैम्पायर फिर से जिंदा हो सकता है। आज भी मेक्सिको के उस शहर में वो पेड़ खड़ा है। लोग कहते हैं वैम्पायर का पेड़। और कई लोग कहते हैं कि रात के समय जब हवा उस पेड़ की शाखाओं को हिलाती है तो ऐसा लगता है जैसे जमीन के नीचे से कोई धीरे धीरे जाग रहा हो। जल्दी मिलते हैं आपसे एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक के बाद।

0: ज्ञान स्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन, गोंडा शहर की धड़कन।
1: प्यारे श्रोतागण, आज की इस गहरी और रहस्यमयी रात में हमने आपको सुनाई मेक्सिको की तीन बेहद डरावनी कहानियाँ। मेक्सिको एक ऐसा देश जो सिर्फ रंग बिरंगे त्योहारों और संगीत के लिए ही नहीं, बल्कि अपनी रहस्यमयी लोक कथाओं और आत्माओं की कहानियों के लिए भी दुनिया भर में जाना जाता है। वहाँ के लोग मानते हैं कि हमारी दुनिया के साथ साथ एक और दुनिया भी चलती है, आत्माओं की दुनिया। कई पुराने शहरों में आज भी लोग कहते हैं कि रात के सन्नाटे में कभी अजीब अजीब आवाजें सुनाई देती हैं, कभी किसी पुराने घर की खिड़की अपने आप खुल जाती है, कहीं किसी सुनसान रास्ते पर कदमों की आहट सुनाई देती है। और शायद यही कारण है कि मेक्सिको की कहानियाँ सिर्फ डराती नहीं, बल्कि रहस्य और रोमांच का एहसास भी कराती है। आज आपने सुनी एक ऐसी दुल्हन की कहानी जिसकी शादी कभी पूरी नहीं हो पाई, एक ऐसे द्वीप की कहानी जहाँ पेड़ों पर सैकड़ों गुड़िया लटक रही हैं, और एक ऐसे पेड़ की कहानी जो शायद एक वैम्पायर की आखिरी निशानी है। लेकिन दोस्तों, कहानियों का असली जादू यही है कि हम कभी पूरी तरह से जान ही नहीं पाते कि उनमें से कितना सच है और कितना रहस्य। शायद ये सब सिर्फ लोक कथाएं हों, या शायद इनमें कहीं ना कहीं सच्चाई की कोई छाया छिपी हो। तो अगर कभी जिंदगी में आपको मेक्सिको जाने का मौका मिले और आप किसी पुराने शहर की पत्थर की गलियों से गुजर रहे हों, या किसी शांत झील के किनारे रात के सन्नाटे में खड़े हों, तो एक पल के लिए चारों तरफ की खामोशी को ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि कभी कभी हवा की हल्की सरसराहट के बीच ऐसा महसूस होता है जैसे कोई पुरानी आवाज हो धीरे धीरे फुसफुसा रही है, मैं अभी भी यहीं हूँ। फिलहाल के लिए दोस्तों, इस रहस्य और रोमांच के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। आप सुन रहे हैं लेट नाइट हॉरर शो 89.6 FM पर। अगले हफ्ते मैं आपकी लेट नाइट आरजे फिर मिलूंगी एक नई कहानी, एक नए रहस्य और शायद एक नए डर के साथ। तब तक के लिए शुभ रात्रि, आप सुरक्षित रहिए।

समंदर सा।

यादों के गुलशन से चली एक बयार, जहां हर गीत है दिलों का इजहार। सुरों के मोती, लफ्जों की माला, भूले बिसरे नगमों का ये है शिवाला। नमस्कार दोस्तों, आपके दिलों की धड़कन, आपके अतीत की महक और सुरों की सौगात लेकर हाजिर हूँ मैं आपकी अपनी आरजे अनोखी इस खास शो भूले बिसरे गीत में, जहाँ लाएंगे हम वो नगमे जिन्हें सुनते ही आपकी पुरानी यादें ताजा हो जाएंगी। तो चलिए सफर की शुरुआत करते हैं संगीत की उस दुनिया का, जहाँ हर धुन एक दास्तां कहती है। बने रहिए मेरे साथ, क्योंकि ये शो है भूले बिसरे गीत और आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञानस्त्री 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन।

कभी कोई बात दिल में रह जाती है और कभी एक चिट्ठी हर बात कह जाती है। आज के इस संगीतमय शाम में आइए चले उन गलियों में जहां इश्क के हर लफ्ज को कागज पे नहीं अपने दिल पे जगह दी जाती थी और डाकिया बनकर गीत किसी दिल तक पहुंचा करते थे। स्वागत है आपका आपके अपने पसंदीदा शो भूले बिसरे गीत में, जो लेके आ गई है आपकी अपनी आरजे अनोखी। बिल्कुल सही सुना आपने, कभी एक खत पूरे इश्क की दास्तां कह जाता था, एक चुप्पी 100 सवालों का जवाब बन जाती थी। आज की ये शाम उन्हीं पन्नों को उलटने की कोशिश है जहां प्यार, वादा, इंतजार और यादें चिट्ठियों में बसी होती थी। आज के एपिसोड का नाम मैंने रखा है एक चिट्ठी मोहब्बत के नाम, जहां भूले बिसरे गीत दिल से दिल तक का सफर तय करेंगे। तो आइए आज के शो का आगाज करते हैं इस प्यारे से गीत से, जिसके बोल हैं, ये मेरा प्रेम पत्र पढ़कर हाँ कि तुम नाराज ना होना, क्योंकि तुम ही मेरी जिंदगी हो और तुम ही मेरी बंदगी हो। जब दिल में कुछ ऐसा हो जो लफ्जों में ना उतर सके, तब लिखा जाता था ये प्रेम पत्र, और इसको हम जानेंगे इस सॉन्ग के माध्यम से।

तो आज के शो का पहला गीत हमने सुना उस चिट्ठी के माध्यम से जो एक इजहार बन गई थी। जी हाँ, ये मेरा प्रेम पत्र पढ़कर, आराधना मूवी से किशोरदा की आवाज में। और अब चलिए बढ़ते हैं दूसरे नजराने की ओर, जिसके बोल हैं वो मैं आपको बताऊंगी, लेकिन उससे पहले उस गीत के नाम एक शायरी। कभी कभी कोई हमें इतना अपना लगने लगता है कि हर अल्फाज उसी के नाम हो जाते हैं। खत लिख दे सवरिया के नाम बाबू, याद तो आया ना वो वाला गाना, एक पुकार, एक निवेदन और एक प्रेम की बात। चलिए सवरिया के नाम सुनते हैं ये पैगाम।

और अब मैं जिस सॉन्ग की बात करने जा रही हूँ वो है कन्यादान मूवीज, जो फिल्म आई थी 1968 में और जिसको आवाज से सजाया था मोहम्मद रफी साहब ने। कहा गया है कि मोहब्बत को बयां करने के लिए जब लफ्ज कम पड़ जाएं, तब एक चिट्ठी सब कुछ कह जाती है। वो खत जिसमें इत्र की खुशबू होती थी और हर हर्फ में इंतजार की धड़कन। सॉन्ग के बोल हैं, लिखे जो खत तुम्हें और खत लिखते वक्त बस तुम्हें ही याद करें। तो चलिए हम भी अपने अपनों को याद करते हैं इस सॉन्ग के माध्यम से और मिलते हैं उस पार एक नए सॉन्ग के साथ। बने रहिए अपने वाले शो में जिसका नाम है भूले बिसरे गीत, ओनली ऑन रेडियो यानस्ली 89.6 FM पर, जो है आपके अपने शहर गोंडा की धड़कन।

अभी हमने एंजॉय किया वो नगमा, वो खत जिसमें हर लफ्ज इश्क से भीगा हुआ था और हर बार पढ़ने पर नया सा लगा। इस गीत को सुनते ही वो जमाना आंखों के सामने आ जाता है जब लिफाफे में जज्बात भेजे जाते थे। हाँ जी, हमने बात की उस गीत की जिसके बोल थे लिखे जो खत तुझे, और अब जो नेक्स्ट वाला सॉन्ग है ना, वो फूल के साथ सजाया गया खत के माध्यम से, और उसके अल्फाज भी कुछ ऐसे ही थे। और उसकी लिरिक्स मैं आपको बता देती हूँ। लिरिक्स है, फूल तुम्हें भेजा है खत में, फूल नहीं मेरा दिल है। सोचिए, फूल को दिल बताया जा रहा है, अल्फाजों से ऐसे पिरोया जा रहा है इतनी खूबसूरती के साथ जिसका कोई जवाब ही नहीं है। और इसके नाम एक शायरी ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो चलिए सुनते हैं इस सॉन्ग के नाम एक शायरी। तेरे शहर में क्या भेजूं तुझे याद दिलाने को, तेरे शहर में तुझे क्या भेजूं तुझे याद दिलाने को, फूल भेजा है इत्र से भीगे कुछ एहसास लाने को। ये गीत उस वक्त की बात करता है जब फूल भी चिट्ठियों का हिस्सा होते थे। मुकेश की आवाज में ये प्यारा सा सॉन्ग आपके लिए।

कुछ फूल लिफाफे में रखकर भेज दिए थे, पर वो नादान समझ ना सका कि वो मेरे ख्यालों की ताजगी है। महकते जज्बात जब कागज पर उतरते हैं तो लफ्जों से भी ज्यादा इश्क की खुशबू फैलती है। खैर, अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट वाले सॉन्ग की ओर, जिसके बोल हैं, हमने सनम को खत लिखा। जी हाँ, दो बंधन मूवी से 1966 की मूवी। कहा जा रहा है कि भाई हमने सनम को अपने खत लिखा, और खत में क्या क्या लिखा, कभी सुबह लिखा तो कभी शाम लिखा तो कभी दर्द और कभी कोई प्यार भरा पैगाम लिखा। और इसके लिए भी एक शायरी लिख दी है आपकी अनोखी ने। कहती हैं, जब अल्फाज जुबा से नहीं निकलते तब दिल चुपचाप कागज पर उतर आता है। ध्यान से सुनिएगा, जब अल्फाज जुबा से नहीं निकलते तब दिल चुपचाप कागज पर उतर आता है। और यही हुआ था उस बेनाम मोहब्बत में, जहां हर खत एक इकरार था। तो चलिए इस इकरार पैगाम को सुनते हैं इस गाने के माध्यम से।

0: अरे सुना
1: क्या?
0: यही कि गीता इंटरनेशनल स्कूल सेशन 2026-27 के लिए दे रहा पहले 100 एडमिशंस पर एडमिशन फी पर 100% डिस्काउंट।
1: वाओ!
0: गीता इंटरनेशनल स्कूल फॉर अ बेटर टुमारो। एडमिशंस ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। गीता इंटरनेशनल स्कूल जहां आपको मिलता है साइंस एंड कॉमर्स स्ट्रीम, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, ट्वाइक्वांडो क्लासेस और वाहन की सुविधा उपलब्ध है। पता है गोंडा रेलवे स्टेशन से 1 किलोमीटर दूर, जयनगर बलरामपुर रोड गोंडा। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 945-583-5346।
2: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े बनता है।
3: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
2: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
3: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
2: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
3: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल नियर न्यू सब्जी मंडी, उतराला रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करें 888-100-9400।
4: मुझे आर्किटेक्ट बनना है।
5: आई वॉन्ट टू बिकम अ साइंटिस्ट।
6: आई वॉन्ट टू बी एन IAS ऑफिसर।
7: रास्ते तो हर मोड़ पर बदल जाते हैं, मगर दिशा नहीं। रवि चिल्ड्रंस एकेडमी, जहां आपके बच्चों की यूनिकनेस को मिलते हैं पंख। गोंडा का सबसे पुराना कॉन्वेंट स्कूल, अचीवर ऑफ द बेस्ट स्कूल सर्टिफिकेट एट नेशनल लेवल। एडमिशंस ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। स्पेसिफिकेशंस हैं 10+2 इन ऑल स्ट्रीम्स, साइंस, कॉमर्स एंड ह्यूमैनिटीज। एक्सलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, स्मार्ट क्लास एंड डिजिटल क्लास बोर्ड, कन्वीनियंस फैसिलिटीज, स्काउट गाइड, इवेंट्स, प्रोजेक्ट एंड एजुकेशनल टूर।
0: और सेशन 2026-27 में पहले 100 एडमिशंस पर एडमिशन फी बिल्कुल मुफ्त। एड्रेस है रवि चिल्ड्रंस एकेडमी, नियर दुखरननाथ मंदिर, पटेल नगर, गोंडा। संपर्क करें 9450-944-999।

आप सभी सम्मानित पशुपालकों से अनुरोध है कि अपने सभी गोवंशीय एवं महिषवंशीय पशुओं को खुरपका मुहपका रोग का टीकाकरण कराएं। कार्यकर्ताओं का आधार एवं OTP अवश्य प्रदान करें, जिससे टीकाकरण को ऑनलाइन दर्ज किया जा सके। आपके द्वार निःशुल्क टीकाकरण। याद रखें, टैग नहीं तो टीकाकरण नहीं। स्वस्थ पशुधन, खुशहाल किसान। टीकाकरण कराएं, पशुओं को बीमारी से बचाएं।

0: सिर में लगातार दर्द, चक्कर आना, याददाश्त में कमी या हाथ पैर का सुन पड़ जाना, इन लक्षणों को नजरअंदाज ना करें।
1: आइए मंडल के एकमात्र न्यूरो हॉस्पिटल सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर, जहां दिमाग, नस, रीढ़, माइग्रेन, कमर दर्द, लकवा, ब्रेन हैमरेज व न्यूरो से संबंधित सभी बीमारियों का मंडल के जाने माने वरिष्ठ न्यूरो सर्जन डॉक्टर सुजीत कुमार शुक्ला द्वारा सफल इलाज 17 वर्ष के अनुभव के साथ साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सुविधा उपलब्ध है। भरोसे का दूसरा नाम सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर। अभी कॉल करें 9838-288-386।
0: पता है सर्कुलर रोड, आवास विकास कॉलोनी, गोंडा।
2: इलाज होगा बेहतर, खुशहाल होगी जिंदगी।
1: अब आप भी अपना सपना पूरा कीजिए डिजिटल मास कम्युनिकेशन के साथ जुड़कर। एडमिशंस ओपन। जानकारी के लिए कॉल करें 8840339584। 88 40 33 95 84। अब सपने होंगे साकार।

0: डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
1: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
0: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल नियर न्यू सब्जी मंडी उतराला रोड गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करें 888-100-9400। अरे सुना
1: क्या,
0: यही कि गीता इंटरनेशनल स्कूल सेशन 2026-27 के लिए दे रहा पहले 100 एडमिशन पर एडमिशन फी पर 100% डिस्काउंट।
1: वाओ,
0: गीता इंटरनेशनल स्कूल फॉर अ बेटर टुमारो। एडमिशंस ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। गीता इंटरनेशनल स्कूल, जहां आपको मिलता है साइंस एंड कॉमर्स स्ट्रीम, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, ट्वाइकोंडो क्लासेस और वाहन की सुविधा उपलब्ध है। पता है गोंडा रेलवे स्टेशन से 1 किलोमीटर दूर, जयनगरा बलरामपुर रोड गोंडा। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 945-583-5346। मुझे मिल गया है तुम्हारी घबराहट का समाधान।
1: मतलब?
0: मतलब मानसिक समस्याएं होंगी दूर, जैसे नींद ना आना, घबराहट, काम में मन ना लगना, आत्महत्या के विचार आना, अत्यधिक गुस्सा, अत्यधिक साफ सफाई, भूत प्रेत, देवी देवता आदि की छाया का भ्रम होना, याददाश्त की कमी, घरेलू कलह, पढ़ाई में मन ना लगना, बिजनेस में लॉस होना, करियर की समस्या, किसी भी प्रकार का नशा एवं मिर्गी, बेहोशी के दौरे आना।
2: इन समस्याओं के लिए निशुल्क टेली मानस हेल्पलाइन नंबर है 14416 या 1800-891-4416 पर कॉल करें। जरूर याद रखें 14416। जिला स्वास्थ्य समिति गोंडा द्वारा जनहित में जारी। मानसिक समस्याएं होंगी दूर, खुलकर जिंदगी जिए भरपूर।
3: जी हाँ बहनों और भाइयों, आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

मेरी गजल को मेरी जहां फकत गजल न समझ, एक आईना है जो हरदम तेरे मुकाबिल है। वो गुजरे जमाने की बातें, वो पुरानी यादें, गजल शेर व शायरी रात की महफिल, वाह क्या बात। तो अब आप भी बनिए ना इन महफिलों का हिस्सा, हर सैटरडे टू थर्सडे अपने आरजे मनु के साथ और फ्राइडे स्पेशल आरजे अदनान के साथ, ओनली ऑन रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM।